हर मुश्किल समय में कोई ना कोई अच्छा मौका छुपा होता है। हमें बस हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और उस मौके को पहचान कर उसका सही उपयोग करना चाहिए।

हमें हमेशा अच्छी और सही सोच रखनी चाहिए। सकारात्मक सोच और मेहनत से कठिन काम भी आसान हो जाते हैं और असंभव काम को भी संभव बनाया जा सकता है। तो चलते चलते चलिए आपको सुनवाने जा रहे हैं आया सावन झूम की फिल्म का गीत रफी साहब की आवाज में। और इसी गीत के साथ अब सुरभि भोर सुहानी से लेती है आपसे अनुमति और आपको छोड़े जा रहे हैं इस गीत के साथ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के अश्विन मास की छठी तिथि, तदनुसार 28 सितंबर 2026 सुबह के 5:53 और 36 सेकंड हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

2:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम संगीत.com और 3:10 पर कार्यक्रम मन भावन। चार पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम परिक्रमा। 5:10 का समय है गाते गुनगुनाते कार्यक्रम का। छ पर विश्लेषण और 6:30 पर सुनेंगे मार्केट मंत्रा। 8:10 का समय है मधुरिमा कार्यक्रम का और 8:45 पर समाचार संध्या का प्रसारण किया जाएगा। 10:30 पर आप सुनेंगे हर श्रृंगार और 11:40 का समय है गीत मेरे मनमीत कार्यक्रम का।

ये आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है। अब से कुछ ही देर में 6 बजने वाले हैं और आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। ये कार्रवाई 18 सितंबर को हुए उरी आतंकी हमले के बाद की गई थी, जिसमें 18 भारतीय जवान शहीद हुए थे। इस कार्रवाई ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की सुरक्षा नीति में बदलाव को दर्शाया। इसके बाद वर्ष 2019 में बालाकोट और वर्ष 2025 में ऑपरेशन सिंदूर से भी पाकिस्तान पर कार्रवाई की गई। आकाशवाणी पर प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति अब आतंकवाद के प्रति कतई बर्दाश्त न करने की है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में रबी अभियान 2026 के लिए 2 दिन के राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में आगामी रबी सीजन की तैयारियों और कृषि क्षेत्र की प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। मंत्रालय के अनुसार सम्मेलन में केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय तथा कृषि उत्पादन, उत्पादकता और किसानों की आय बढ़ाने के लिए साझा रणनीति बनाने पर विचार किया जाएगा। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत करेंगे। इसे देश में पशुधन बीमा सेवाओं के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में

महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में काम करेगा। आज से शुरू होने वाली 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित हो गई है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBEA ने इसकी पुष्टि की है। ये फैसला भारतीय बैंक संघ IBA के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। AIBEA ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हड़ताल से जुड़े मुद्दों पर भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस UFBU के बीच हुई बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम में संशोधन किया है। इसमें दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख अब 30 अक्टूबर होगी। नोटिस जारी करने और दावे आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया 30 नवंबर तक जारी रहेगी। अंतिम मतदाता सूची 4 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय आज केंद्र सरकार के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें 2,000 रुपये से अधिक के चुनिंदा UPI मर्चेंट लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाने का निर्णय लिया गया है। तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। एशियाई खेलों में पुरुष क्रिकेट के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज भारत का सामना अफगानिस्तान से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 से खेला जाएगा। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में वर्तमान चैंपियन भारत प्रतियोगिता में सीधे क्वार्टर फाइनल में पहुंचा है और अपनी जीत का सिलसिला जारी रखने का लक्ष्य रखेगा। जापान एशियाई खेलों में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कल 4 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जैसे गहरी नदी शोर नहीं करती, वैसे ही गहरा ज्ञान भी शोर नहीं करता। जिसे भीतर ईश्वर मिल जाता है, उसे दुनिया को बताने की जरूरत नहीं पड़ती। उसका मौन ही उसके शांत और सरल होने का प्रमाण देता है। अर्पण सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। पूजा है आपके साथ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और साथियों को नमस्कार।

परमहंस योगानंद के अनुसार एक चंद्रमा आकाश के अंधकार को दूर कर देता है। उसी प्रकार एक मनुष्य जो ईश्वर को जानने में प्रशिक्षित हुआ है, जिसमें सच्ची भक्ति और सच्ची जिज्ञासा एवं तीव्रता है, वो जहां भी जाएगा दूसरों के आध्यात्मिक अंधकार को नष्ट कर देगा।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

सदा सूंघती आपनो जिय को जीवन प्राण सो तू बिसर्यो सहज ही हरि ईश्वर भगवान। सूरदास जी कहते हैं कि जो ईश्वर सदा अपने साथ रहने वाला है, प्राणों का भी प्राण है, उस प्रभु को तूने अनायास ही बातों में भुला दिया है।

रैदास कहते हैं कि जब तक सामर्थ्य हो मनुष्य को ईमानदारी से कमाकर खाना चाहिए। जो मनुष्य ईमानदारी और शुद्ध भाव से कमाता है वो कभी निष्फल नहीं जाता।

राम सखा निषाद राज को गले लगाकर भरत ने कुशलक्षेम पूछा। निषाद राज ने कहा, हे प्रभु, कुशल का स्रोत तो आपके चरण हैं, जिनके आज मुझे दर्शन हो गए और आपकी कृपा पाकर मेरी करोड़ों पीढ़ियों का कल्याण और मंगल हो गया। मैं कपटी, कायर, कुबुद्धि और कुजाति हूँ, किंतु श्री राम ने मुझ जैसे अधम को अपनाकर विश्व का आभूषण बना दिया है। निषाद राज की प्रीति देख और उनके वचन सुनकर छोटे भाई शत्रुघ्न उनसे मिले। अपने कुल और धाम बताते हुए निषाद राज ने सभी रानियों को प्रणाम निवेदित किया। रानियां उन्हें लाख वर्ष की आयु प्राप्त करने का आशीष देती हैं। ये अद्भुत दृश्य देखने वाले अनायास ही कह उठते हैं कि मनुष्य जीवन धारण करने का वास्तविक लाभ तो निषाद राज ने पाया है। निषाद सेवकों ने घरों, वृक्षों के नीचे, बागीचों तथा आसपास के वन उपवन में भरत जी के पूरे दलबल के विश्राम के लिए समुचित प्रबंध कर दिए। श्रृंगवेरपुर को देख भरत का शरीर प्रेमातिरेक से शिथिल पड़ गया। गंगा के दर्शन कर सभी यही कामना प्रकट करते हैं कि श्री राम के चरणों में उनका प्रेम कभी कम न हो।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। भारतम् अद्य सर्जिकल प्रहारस्य दशमीं वार्षिकीम् आमानयति। ह्यः विश्वस्य समक्षं नरेन्द्र मोदी प्रशासनस्य उग्रवाद विरोधी नीतेः नवीनम् उदाहरणं प्रादर्शयत्। षोडशोत्तर द्विसहस्र तमे वर्षे सितंबर मासस्य 28-29 दिनांकयोः भारतीय सैन्यबलम् उरी प्रहारस्य प्रत्युत्तरे सति सीमारेखां विलंघ्य आतंकवादी शिबिराणि व्यनाशयत्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सम्प्राह यत् अस्य साहसिक प्रहारस्य संकल्पः एव बालाकोट वायु प्रहारस्य अथ सिंदूराभियानस्य आधारशिलाम् अरचयत्।
1: 10 वर्ष पहले 28-29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। सर्जिकल स्ट्राइक ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया था। बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब्रवीत यत् शल्य प्रहारः दीर्घकालात् आतंकवादं प्रति भारतस्य निर्णायकं प्रत्युत्तरम् आसीत्। सः 28-29 सितंबर मासे दिल्ल्यां सम्भूतान् श्रृंखलाबद्ध विस्फोटान् तथा मुंबय्याः 26-11 प्रहारं संस्मृत्य अवदत् यत् एतासु घटनासु बहुभिः निरपराधैः जनैः प्राणाः त्यक्ताः। प्रधानमंत्री स्पष्टं उक्तवान् यत् अधुना भारतम् आतंकवादस्य उपरि शून्य सहिष्णुता नीतिम् अनुसरति।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। ये कार्रवाई 18 सितंबर को हुए उरी आतंकी हमले के बाद की गई थी, जिसमें 18 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। वर्ष 2019 में बालाकोट और वर्ष 2025 में ऑपरेशन सिंदूर से भी पाकिस्तान पर कार्रवाई की गई। आकाशवाणी पर कल प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: आज से शुरू होने वाली 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित हो गई है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBEA ने इसकी पुष्टि की है। ये फैसला भारतीय बैंक संघ IBA के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। AIBEA ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हड़ताल से जुड़े मुद्दों पर भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस UFBU के बीच हुई बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम में संशोधन किया है। दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख अब 30 अक्टूबर होगी। नोटिस जारी करने और दावे आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया 30 नवंबर तक चलेगी। अंतिम मतदाता सूची 4 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय आज केंद्र सरकार के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें ₹2,000 से अधिक के चुनिंदा UPI मर्चेंट लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाने का निर्णय लिया गया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में रबी अभियान 2026 के लिए 2 दिन के राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में आगामी रबी सीजन की तैयारियों और कृषि क्षेत्र की प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत करेंगे। इसे देश में पशुधन बीमा सेवाओं के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल

नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है गर याद रहे। हम में से कोई भी लता जी की आवाज को नहीं भुला सकता। सुरों की रानी, स्वर कोकिला की आवाज में ऐसा जादू था जिसे सुनते ही आज भी हम सब खो जाते हैं। आज के दिन यानी 28 सितंबर 1929 को लता जी का जन्म हुआ था। तो आज एफएम गोल्ड पर हम मना रहे हैं लता दीदी का जन्मदिन। गोल्ड सुप्रभात पे सुनते हैं उन्हीं का गाया गीत, फिल्म है मधुमती।

मौसम की बात कर लेते हैं तो आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं बारिश आने की भी संभावना है। अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहेगा। सूर्य उदय हुआ 6:12 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:10। आइए अब सुनते हैं आखिरी खत से लता जी को।

0: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो? इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
1: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
2: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
3: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
4: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
0: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
5: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
6: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है, हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
7: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विथ इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
8: सात 7:20 गोल्ड सुप्रभात सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। पूजा है आपके साथ, आइए अब सुनते हैं जंगली फिल्म से लता मंगेशकर को।

7:24 और 21 सेकेंड FM गोल्ड पर प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों के बारे में आपको बता दें। 8:45 पर आप सुनेंगे म्यूजिकल दिल लगी। 10:30 पर प्रोग्राम होगा दिल का मेल बॉक्स। 11:10 पर आप घूमने चलेंगे कुरुक्षेत्र तस्वीर के माध्यम से। 1:10 पर कार्यक्रम है कलाकार बेमिसाल। 2:30 पर संगीत.com और 3:10 पर आप सुनेंगे मन भावन।

0: नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग।
1: कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं।
0: देशभक्त स्वदेश के लिए जीता है क्योंकि उसे जीना ही चाहिए, स्वदेश के लिए ही मर जाता है क्योंकि देश की ये मांग होती है।

0: पर है छाना। एक नए दिन की नई सुबह में आकाशवाणी गोल्ड पर हम आपके साथ जुड़ चुके हैं न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे लेकर। मैं हूं मनोज और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी वीसी प्रमोद। नमस्कार प्रमोद।
1: नमस्कार मनोज एंड गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून इन टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द एंटायर आकाशवाणी नेटवर्क। मनोज आज तो आपने समा बांध दिया।
0: जी हाँ जी हाँ।
1: वी ब्रिंग टू यू आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे वेयर इन वी गिव द लेटेस्ट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज मेट्रो सिटी अपडेट्स एज वेल एज सम हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस डे दैट इज द 28th ऑफ सितंबर।
0: भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों के खिलाफ लक्षित कार्रवाई की थी। ये कार्रवाई 18 सितंबर को हुए उरी आतंकी हमले के बाद की गई थी जिसमें 18 भारतीय जवान शहीद हुए थे। इस कार्रवाई ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की सुरक्षा नीति में बदलाव को दर्शाया। इसके बाद वर्ष 2019 में बालाकोट और वर्ष 2025 में ऑपरेशन सिंदूर से भी पाकिस्तान पर कार्रवाई की गई। आकाशवाणी पर कल प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक आतंकवादी हमलों के लंबे दौर के बाद भारत की निर्णायक कार्रवाई थी। उन्होंने वर्ष 2008 में दिल्ली में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों और मुंबई के 26/11 आतंकी हमलों को याद किया। श्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति अब आतंकवाद के प्रति कतई बर्दाश्त न करने की है।
1: The proposed three-day nationwide bank strike, which was to begin from today, has been deferred. It was confirmed by All India Bank Employees Association, AIBEA. The decision in this regard was taken following an agreement

0: with the Indian Banks Association, IBA. In a social media post, AIBA said that this decision was taken after a meeting held between the Indian Banks Association and the United Forum of Bank Unions last night on the issues related to the strike.
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आयुष्मान भारत और हर नागरिक के लिए डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA के संयुक्त सचिव किरण गोपाल वास्का शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0111-3381-01 0111-2371-17 0111-2371-4444। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप पर 9289094044 पर भेज सकते हैं। सवाल #AskAIR के साथ एक्स पर भी पोस्ट किए जा सकते हैं।
0: Lalit Kala Academy has announced the 20 Lalit Kala Academy Awards at the 65th National Exhibition of Art. The Lalit Kala Academy National Academy of Art is organizing the 65th National Exhibition of Art. This is one of the most prestigious annual exhibitions of contemporary visual art in India. The Ministry of Culture said that the exhibition has received an overwhelming response from artists across India. They added that Academy received around 6,000 artworks from more than 2,000 artists representing 27 states and union territories. The ministry highlighted that the exhibition of art is not only a platform for artistic recognition, but also contributes to the strengthening of India's creative economy.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन सेवा के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा और सुशासन के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहे हैं। आज हमारी विशेष श्रृंखला में बताएंगे कि इस सोच को लोथल स्थित राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर जैसी दूरदर्शी पहल के जरिए किस तरह साकार किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: गुजरात के लोथल में प्राचीन हड़प्पाकालीन डॉकयार्ड के पास आकार ले रहा राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर भारत के 4,500 वर्षों से अधिक पुराने समृद्ध समुद्री इतिहास को प्रदर्शित करने वाला देश का पहला राष्ट्रीय संस्थान बन रहा है। 1230 करोड़ से अधिक की लागत से निर्मित हो रहे इसके प्रथम चरण का कार्य तीव्र गति से जारी है। वही इसके तहत 266 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक लाइट हाउस संग्रहालय भी बनाया जा रहा है। लोथल की ऐतिहासिक धरोहर को सजीव करने और इसके तकनीकी स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
3: लोथल में ये जो हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसको ऐसे बनाया जा रहा है कि भारत का सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी इस इतिहास को आसानी से जान सके। इसमें अति आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके बिल्कुल उसी युग को फिर से सजीव करने का प्रयास किया जा रहा है।
2: इस परियोजना के महत्व को रेखांकित करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा,
4: मैरिटाइम हेरिटेज की बात है तो हमारे पास इस सेक्टर का 5000 वर्ष का लंबा इतिहास और लोथल इसका एक जीवंत प्रतीक है। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से विश्व का सबसे बड़ा मैरिटाइम हेरिटेज म्यूजियम इस लोथल में बनाने जा रहे हैं।
2: प्राचीन विरासत और अत्याधुनिक तकनीक के अद्भुत संगम के साथ लोथल का यह राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर भारत के गौरवशाली नौवन इतिहास का एक भव्य प्रतीक बन रहा है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: A 5-day elephant festival and rejuvenation camp is being held at Bandhavgarh Tiger Reserve in Umaria district of Madhya Pradesh. The camp is being organized near Parasi Gate in the Dhamokar buffer zone from 24th to 28th of this month. The aim is to give working elephants some rest, check their health and provide them with nutritious and favorite food. 9 out of the 15 camp elephants in Bandhavgarh have been included in the camp. The event also aims to promote tourism in the buffer zone and spread awareness among villagers about wildlife conservation. Local people are getting an opportunity to see the elephants closely and learn about their care.
1: एशियाई खेलों में क्रिकेट के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज भारत का सामना अफगानिस्तान से होगा। मैच

0: भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 से खेला जाएगा। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में वर्तमान चैंपियन भारत प्रतियोगिता में सीधे क्वार्टर फाइनल में पहुंचा है और अपना खिताब बरकरार रखने का लक्ष्य रखेगा। उधर अफगानिस्तान जापान को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंचा है, लेकिन ग्रुप स्टेज में उसे नेपाल से हार का सामना करना पड़ा था। अफगानिस्तान की टीम भारत को कड़ी टक्कर देने और सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए मैदान में उतरेगी। अब रुक करते हैं महानगरों के समाचारों का। पहले दिल्ली की खबर। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की समय सीमा बढ़ा दी है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार दावे और आपत्तियां दाखिल करने की आखिरी तारीख अब 30 अक्टूबर होगी। नोटिस और दावे आपत्तियों के निपटारे का काम 30 नवंबर तक चलेगा। अंतिम मतदाता सूची 4 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि दिल्ली के सभी मतदान केंद्रों पर नए मतदाताओं के नामांकन के लिए फॉर्म 6 के जरिए विशेष कैंप सफलतापूर्वक आयोजित किए गए और इन कैंपों में अन्य चुनावी सेवाएं भी प्रदान की गई। युवा मतदाताओं के नामांकन के लिए विशेष कैंप का एक और दौर इस महीने के 29 और 30 तारीख को राष्ट्रीय राजधानी के सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में आयोजित किया जाएगा। दिल्ली की एक और खबर।
1: जी,
0: रोहिणी जिला पुलिस ने कल कम्युनिटी पुलिसिंग पहल के अंतर्गत जिला स्तरीय कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन किया। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य युवाओं में खेल भावना, अनुशासन, फिटनेस और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना तथा उन्हें नशे और अपराध जैसी असामाजिक गतिविधियों से दूर रखना था। इस प्रतियोगिता में महिला कबड्डी टीम ने भी भाग लिया। इस अवसर पर भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान मंजीत छिल्लर ने खिलाड़ियों को अपने अनुभव साझा कर प्रेरित किया। साथ ही प्रतियोगिता के विजेता और उप विजेता टीमों को ट्रॉफी और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।
1: मनोज, आपने उत्तर में दिल्ली की बात की
0: जी,
1: मैं दक्षिण में चेन्नई में ले जाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। रिसर्चर्स फ्रॉम क्राइस्ट यूनिवर्सिटी सर्वेड ओवर 1,082 हाउसेज एंड मैंशंस अक्रॉस 12 विलेजेस इन शिवगंगा एंड पुदुकोट्टई टू क्रिएट द चेट्टिनाड हेरिटेज एक्सप्लोरर डिजिटल रिपोजिटरी। इट रिकॉर्ड्स डिटेल्स सच एज बिल्डिंग एज, ऑक्यूपेंसी, प्रिजर्वेशन एंड आर्किटेक्चुरल स्टाइल। Researchers found that many heritage buildings are located in environmentally suitable areas with traditional mansions featuring rainwater harvesting systems. Another news of Chennai is the Periyar Science and Technology Center in Kottupuram will soon display models of Mangalyaan, Chandrayaan, PSLV rockets and a crew re-entry model. The center also plans to make its science exhibits more interactive. NIOT will upgrade a 5,000 square feet gallery showcasing India's Arctic and Antarctic missions.
0: अब मुंबई महाराष्ट्र की खबर।
1: जी,
0: गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने युवा शोधकर्ताओं से अंधविश्वासों पर सवाल उठाने और भौतिकी, गणित, खगोल विज्ञान और आयुर्वेद जैसे विषयों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करने का आग्रह किया। मुंबई के ठाणे में आयोजित वैदिक भारत युवा विचारक संवाद 2026 में प्रोजेक्ट विज्ञान दर्शन का शुभारंभ करने के बाद उन्होंने तकनीकी विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखने पर भी बल दिया। मुंबई की एक और खबर। मध्य रेलवे अक्टूबर और नवंबर महीने के दौरान दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पर्व की भीड़ को देखते हुए 418 विशेष ट्रेनें चलाएगी। ये ट्रेनें मुंबई को गोरखपुर, चेन्नई, बेंगलुरु, नागपुर, लातूर और कोल्हापुर जैसे शहरों से जोड़ेंगी। इन सेवाओं में महाराष्ट्र के विभिन्न स्टेशनों CSMT, लोकमान्य तिलक टर्मिनस, पुणे और हड़पसर से दैनिक, साप्ताहिक और द्विसाप्ताहिक ट्रेनें शामिल हैं। मुंबई की एक और खबर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय रोजगार महाकुंभ कल मुंबई के 46 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य रोजगार के इच्छुक युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर प्रदान करना है। मुंबई शहर में 20 मेले और अंधेरी, कुर्ला, बोरीवली और बांद्रा सहित उपनगरीय क्षेत्रों में 26 मेले आयोजित किए जाएंगे। ये मेले सुबह 10 से शाम 5 तक चलेंगे और इनमें विनिर्माण, इंजीनियरिंग, बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं, IT सेवाएं, परिवहन और लॉजिस्टिक क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।

0: Moving on to Bengaluru, citizens have urged the Karnataka government to conduct a detailed environmental impact assessment of the proposed Hebbal short tunnel project. A petition with over 21,000 signatures raised concerns about the loss of biodiversity, impact on birds, and the proposed use of 3.5 acres of Hebbal Lake. Southwestern Railway held a Kannada and Hindi poetry competition as part of its Vigilance Awareness Campaign 2026. 29 employees participated. Ravi Chalavadi and Bijini Titi won the Kannada and Hindi first prizes respectively. The winning poems will be compiled into a book promoting integrity and honesty.
1: अब पश्चिम बंगाल कोलकाता की खबर
0: जी।
1: पश्चिम बंगाल के पर्यटन मंत्री शंख घोष ने कल विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर आयोजित पश्चिम बंगाल पर्यटन निवेशक सम्मेलन में बताया कि पश्चिम बंगाल के पर्यटन क्षेत्र को 12,530 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित निवेश से पर्यटन क्षेत्र में लगभग 22,000 नए रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। उन्होंने ये भी बताया कि राज्य ने पर्यटन राजस्व और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए कई पहल की हैं।
0: Moving on to Hyderabad, more than 35,000 people took part in the third edition of the Pink Power Run at the HMDA grounds near Hussain Sagar in Hyderabad. The event was organized by Megha Engineering and Infrastructure Limited's MEIL and the Sudha Reddy Foundation to spread awareness about breast cancer, early detection, prevention, healthcare, and women's empowerment. The event featured 3 kilometers, 5 kilometers, 10 kilometers and 21 kilometer races with participants from different age groups. Runners from more than 12 countries including the US, UK, Ethiopia and Kenya joined the half marathon. Panchayati Raj Minister Dhanasari Anusuya Sitakka and Telangana DGP CV Anand flagged off the event.
1: और अब महानगरों के मौसम का हाल जानते हैं। पहले दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के मौसम की बात। दिल्ली में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। यहाँ का न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई की बात करें तो मुंबई में आज आसमान आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कोलकाता में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने और बिजली कड़कने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और अब चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु के मौसम का हाल जानते हैं वीसी प्रमोद से।
0: जी मनोज, Chennai is likely to see generally partly cloudy sky with possibility of moderate rain or thunderstorm. The temperatures are expected to range between a minimum of 27 degrees Celsius and a maximum of 36 degrees Celsius. Bengaluru will have generally partly cloudy sky. The minimum temperature is expected to be 21 degrees, while the maximum may reach 32 degrees Celsius. Hyderabad is also likely to have partly cloudy sky with possibility of rain or thunderstorm or dust storm. Temperatures are expected to range from 23 degrees to 33 degrees Celsius.
1: और अब समय है इतिहास में दर्ज आज की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के जिक्र का। आज 28 सितंबर है। देश और दुनिया के इतिहास में आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है।
0: That's right. And Manoj, today, as you said, is 28 September. आज World Rabies Day भी है। A reminder that rabies is a deadly disease, but its deaths are preventable through timely action.
1: 1887 में आज ही के दिन येलोस्टोन नेशनल पार्क में पहली बार आधिकारिक वन्य जीव संरक्षण और पर्यटक मार्गदर्शन के लिए आधुनिक आगंतुक केंद्रों की रूपरेखा तैयार की गई थी, जिसने वैश्विक पर्यावरण पर्यटन की नींव रखी।
0: On this day in 1066, William the Conqueror landed on the southern coast of England at Pevensey, initiating the peaceful assembly and logistics that reshaped medieval English language, architecture and governance.
1: 2015 में आज ही के दिन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने भारत की पहली समर्पित खगोलीय वेधशाला एस्ट्रोसैट को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया था।
0: That's right, 1928, स्कॉटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग documented his breakthrough observation of penicillin mold inhibiting bacterial growth, setting the stage for modern antibiotic research.
1: और अब याद करते हैं उन महान विभूतियों को जिनका जन्मदिन, जयंती और पुण्यतिथि है।
0: That's right. Today, the nation celebrates the 119th birth anniversary of the great revolutionary Shaheed-e-Azam Bhagat Singh today. It was on this day in 1907 that Bhagat Singh was born into village Banga in the Lalpur district of Punjab, which is now in Pakistan. More from our correspondent.
2: Bhagat Singh was born in a family of revolutionaries and was the second among seven siblings. He was lovingly called as Bhagawala, meaning the lucky one. He proved his name for the freedom of the country by sacrificing himself along with Rajguruji and Sukhdevji. A state-level program titled Jashn-e-Inqilab has been scheduled at Ludhiana Agriculture University to celebrate his birth anniversary by organizing cultural events. People are also visiting his native village Khatkat Kalan at Shahid Bhagat Singh Nagar to pay their respects to the great son of the soil. Rajesh Bali, Akashwani News, Jalandhar.
1: Ek kavita.
0: Ji.
1: Main Grishm ki tejasvita hoon aur guthli jaisa chhipa sharad ka ushm taap. मैं हूं वसंत में सुखद अकेलापन, जेब में गहरी पड़ी मूंगफली को छांट कर चबाता फुर्सत से। मैं चेकदार कपड़े की कमीज हूं, उमड़ते हुए बादल जब रगड़ खाते हैं तब मैं उनका मुखर गुस्सा हूं। इच्छाएं आती हैं तरह तरह के बाने धरे, उनके पास मेरी हर जरूरत दर्ज है। एक फहरिस्त में मेरी हर कमजोरी, उन्हें ये तक मालूम है कि मैं चुप होकर गर्दन कब लटका लूंगा, मगर फिर भी मैं जाता रहूंगा ही। हर बार भाषा को रस्से की तरह थामे साथियों के रास्ते पर, एक कवि और कर ही क्या सकता है सही बने रहने की कोशिश के सिवा। ये काव्य रचना है वीरेन डंगवाल की। आज पुण्यतिथि है वीरेन डंगवाल की। उनका जन्म 5 अगस्त 1947 को कीर्तिनगर टेहरी गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ था। वे हिंदी के प्रसिद्ध कवि और वरिष्ठ पत्रकार थे। साहित्य अकादमी सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित वीरेन डंगवाल अपनी शक्तिशाली कविताओं के साथ साथ अपनी जनपक्षधरता, फक्कड़पन और यार बाश व्यक्तित्व के चलते बेहद लोकप्रिय थे। आपकी मुख्य रचनाएं इसी दुनिया में, दुष्चक्र में सृष्टा, कवि ने कहा, स्याही ताल आदि हैं। आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार, रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार, श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार और शमशेर सम्मान से सम्मानित किया गया था।
0: That's right. Today is also the death anniversary of Karaikal Arunachalam Thangavelu, who was born in 1917 but died on this day in 1994. Popularly known as Danal Thangavelu, he was an Indian actor and comedian, popular in the 1950s and then 1960s and also up to the 1970s. Not known for his physical acrobatic comedy like his contemporaries J.P. Chandrababu and Nagesh, Thangavelu humor is recognized for his impeccable timing in verbal agility and the characteristic twang of his delivery. He exclusively acted in Tamil films like Ponvayal and Panum Padadum, both which released in 1954. But throughout his career, Thangavelu acted only in Tamil films. He won the Tamil Nadu Government Award Kalaimani in 1968 and Kalai Varar in 1989. But the important song that I want to play for you is from the movie called Shingari, jispe unhone cycle pe gana gaya hai. To wo sun lete.
1: Haan, bilkul.

0: मनोज, इसमें वो एक बार बार एक वर्ड बोल रहे हैं दनाल, उसका मतलब समझ में आ गया आपको?
1: नहीं नहीं, मैं नहीं समझा।
0: दनाल का मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि एक तकिया कलाम है, अगर मैं आपसे कुछ बोलो आ रहा बोलो बिल्कुल बिल्कुल,
1: अच्छा वो है
0: तो वो है, तो इसकी आदत बन गई थी इस सॉन्ग

0: में उन्होंने बार बार दनाल दनाल बोल के, तो उनका फिर नाम दनाल तंगेवेलु बन गया इस गाने के बाद।
1: जी जी जी, और प्रमोद जी
0: जी,
1: आज एक ऐसी गायिका का जिक्र करने जा रहे हैं जिनके जाने से संगीत की दुनिया सुनी हो गई है, लेकिन उनके गाए गीत आज भी सदाबहार हैं।
0: लता मंगेशकर की बात
1: जी, जी जी जी, आज जयंती है लता मंगेशकर की। उनका जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था, जिनकी आवाज ने 6 दशकों से भी ज्यादा संगीत की दुनिया को सुरों से नवाजा। भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने 20 भाषाओं में 30,000 गाने गाए। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत, गजल और भजन गाए। उनकी आवाज सुनकर कभी किसी की आंखों में आंसू आए तो कभी सीमा पर खड़े जवानों को सहारा मिला।
0: बिल्कुल,
1: उन्होंने स्वयं को पूर्णतः संगीत को समर्पित कर रखा था। लता मंगेशकर जैसी शख्सियतें विरले ही जन्म लेती हैं। उन्हें भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आइए सुनते हैं उनके कुछ गीत
0: जी।

0: मनोज, एक मेरा बहुत ही एक फेवरेट गाना है, अजीब दास्तां है ये।
1: जी जी जी।
0: उसकी एक स्टोरी है, सुना दूं आपको?
1: हाँ हाँ, जरूर सुनाओ।
0: स्टोरी ये है मनोज कि एक्चुअली वो ऑल इंडिया रेडियो पर बैन हो गया था गाना, अजीब दास्तां है ये। आपको लग रहा हो कि बैन क्यों हुआ, उसमें ऐसे कुछ है नहीं। तो उसका स्टोरी ये है कि उसी मूवी का दिल अपना और प्रीत पराये का एक और गाना है शीशा ए दिल, वो उसमें कुछ वर्ड्स थे जो थोड़े से कॉन्ट्रोवर्शियल थे, तो गवर्नमेंट ने बोला कि इसको बैन कर लेते हैं। तो जो क्लर्क था, हेड क्लर्क था आकाशवाणी में, उसने गलती से वो जो रिकॉर्ड है उसमें एक साइड पे शीशा ए दिल था और उसके ऑपोजिट साइड में था अजीब दास्तां। उसने फाइल वर्क करते करते अजीब दास्तां को बैन कर दिया। तो क्वाइट एन अमेजिंग स्टोरी, बट हमारे पास वो गाना है, वो सुन लेते हैं।
1: जी।

0: आज जयंती है अभिनेता, निर्देशक और निर्माता पी जयराज की। उनका पूरा नाम पैदी जयराज है। उनका जन्म 28 सितंबर 1909 को करीमनगर आंध्र प्रदेश में हुआ था।
1: जी
0: वे हिंदी फिल्म जगत के एकमात्र ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने मूक फिल्मों के दौर से लेकर वर्तमान दौर तक की अनेक फिल्मों में काम किया। हिंदी सिनेमा के पर्दे पर सर्वाधिक राष्ट्रीय और ऐतिहासिक नायकों को जीवित करने का कीर्तिमान पी जयराज के साथ ही जुड़ा है। नौशाद जैसे महान संगीतकार को फिल्मों में ब्रेक देने का श्रेय भी पी जयराज को ही जाता है। उनकी मुख्य फिल्में हमारी बात, नई कहानी, शिकारी, राइफल गर्ल, भाभी, डॉन आदि हैं। उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आइए सुनते हैं अमिताभ बच्चन और जीनत अभिनीत फिल्म डॉन में उनका संवाद, जिस फिल्म में उन्होंने कराटे और जूडो के कोच का किरदार निभाया था।
1: जी
2: तुम कराटे और जूडो सीखोगी?
3: हाँ, मैं जूडो और कराटे सीखूंगी।
2: अच्छा, तुम जैसी हसीन खूबसूरत लड़की को आखिर जूडो और कराटे सीखने का शौक कैसे हो गया? क्यों, किसके कत्ल का सामान करना चाहती हो?
3: जिसने मेरे भाई का खून किया है।
2: खून का बदला लेना तुम जैसी नाजुक लड़कियों का काम नहीं। ये कटीला बदन जूडो और कराटे के लिए नहीं, अगर मेरी मानो तो। गुड, तुम अपने पहले इम्तिहान में पास हो गई। जूडो और कराटे भी उन्हीं लोगों के काम आते हैं जिनमें मुकाबला करने की और लड़ने की हिम्मत हो। मैं देखना चाहता था कि तुम में वो हिम्मत है या नहीं।

0: ढक्कन खोल के था का इस्तेमाल किया। कार्यक्रम प्रस्तुत करते समय उन्होंने इस शब्द का प्रयोग लगभग हर वाक्य में प्रत्यय यानी सफिक्स के रूप में किया, जिससे उनके शो में हंसी का संचार हुआ। दुबे जी लगभग हर वाक्य के बाद इसे सफिक्स के रूप में प्रयोग करते थे। ये उनका एक तरह से हस्ताक्षर बन गया था।
1: आज जन्मदिन है रणबीर कपूर का। उनका जन्म 28 सितंबर 1982 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ है। वे एक भारतीय अभिनेता हैं जो हिंदी भाषा की फिल्मों में काम करते हैं। उन्हें 7 फिल्म फेयर पुरस्कारों सहित कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। आइए सुनते हैं उनका संवाद और गीत।
2: वही सब है जो आप अच्छी तरह जानते हैं।
1: और अब आपसे विदा लेने का समय हो गया है। अब अनुमति दीजिए कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की।
3: थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन, हैव अ सुपर्ब डे। नमस्कार। नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत की पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की आज 10वीं वर्षगांठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत की आतंकवाद रोधी नीति का नया उदाहरण बताया। आज से प्रस्तावित 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की। मौसम विभाग का आज उत्तराखंड, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में विराट कोहली और शुभमन गिल के शतक की बदौलत भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद ये कार्रवाई की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। वर्ष 2019 में बालाकोट और वर्ष 2025 में ऑपरेशन सिंदूर से भी पाकिस्तान पर कार्रवाई की गई थी। आकाशवाणी पर कल प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
4: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा और सुशासन के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहे हैं। आज हमारी विशेष श्रृंखला में बताएंगे कि इस सोच को लोथल स्थित राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर जैसी दूरदर्शी पहल के जरिए किस तरह साकार किया जा रहा है।
5: गुजरात के लोथल में प्राचीन हड़प्पा कालीन डॉकयार्ड के पास आकार ले रहा राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर भारत के 4,500 वर्षों से अधिक पुराने समृद्ध समुद्री इतिहास को प्रदर्शित करने वाला देश का पहला राष्ट्रीय संस्थान बन रहा है। 1230 करोड़ से अधिक की लागत से निर्मित हो रहे इसके प्रथम चरण का कार्य तीव्र गति से जारी है। वही इसके तहत 266 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक लाइट हाउस संग्रहालय भी बनाया जा रहा है। लोथल की ऐतिहासिक धरोहर को सजीव करने और इसके तकनीकी स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
6: लोथल में ये जो हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसको ऐसे बनाया जा रहा है कि भारत का सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी इस इतिहास को आसानी से जान सके। इसमें अति आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके बिल्कुल

0: उसी युग को फिर से सजीव करने का प्रयास किया जा रहा है।
1: इस परियोजना के महत्व को रेखांकित करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा,
2: मैरीटाइम हेरिटेज की बात है तो हमारे पास इस सेक्टर का 5000 वर्ष का लंबा इतिहास और लोथल इसका एक जीवंत प्रतीक है। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से विश्व का सबसे बड़ा मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम इस लोथल में बनाने जा रहे हैं।
1: प्राचीन विरासत और अत्याधुनिक तकनीक के अद्भुत संगम के साथ लोथल का यह राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर भारत के गौरवशाली नौवन इतिहास का एक भव्य प्रतीक बन रहा है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: आज से प्रस्तावित 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित हो गई है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBEA ने इसकी पुष्टि की है। ये फैसला भारतीय बैंक संघ IBA के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। AIBEA ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हड़ताल से जुड़े मुद्दों पर भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बीच हुई बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम में संशोधन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए कल से 2 दिन तक दिल्ली के सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में विशेष शिविरों का एक और चरण आयोजित किया जाएगा।
4: दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का काम जारी है। निर्वाचन आयोग की संशोधित समय सारिणी के अनुसार दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तारीख अगले महीने की 30 तारीख है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार दावों और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया 30 नवंबर तक चलेगी और अंतिम मतदाता सूची अब 4 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। इससे पहले दिल्ली के सभी मतदान केंद्रों पर फॉर्म 6 के जरिए नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर लगाए गए थे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए कल और बुधवार को राजधानी के सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में एक बार फिर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
3: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
5: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है, हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
6: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की है। इसके अंतर्गत एक साझा डिजिटल मंच पर पर्यटन से जुड़ी विभिन्न सेवाओं और सुविधाओं तक पहुंच मिल सकेगी। मंत्रालय ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC के साथ मिलकर नेशनल डिजिटल टूरिज्म स्टैक तैयार करने की पहल की है। पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल विश्व पर्यटन दिवस पर भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में इस परियोजना की शुरुआत की। पर्यटन सचिव भुवनेश कुमार ने कहा कि नेशनल डिजिटल टूरिज्म स्टैक की परिकल्पना एक टिकट एक पास की है, जिससे पूरे भारत को एक ही यात्रा अनुभव से जोड़ा जा सकेगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में रबी अभियान 2026 के लिए 2 दिन के राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में आगामी रबी सीजन की तैयारियों और कृषि क्षेत्र की प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत करेंगे। इसे देश में पशुधन बीमा सेवाओं के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में काम करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजसेवी अशोक सिंघल को श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मोदी ने कहा कि अशोक सिंघल का जीवन इस विचार को दर्शाता है कि दूसरों के कल्याण के लिए काम करना व्यक्तिगत उपलब्धियों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कल से राष्ट्र अशोक सिंघल की जन्मशती मना रहा है। उन्होंने कहा कि अशोक सिंघल ने सामाजिक एकता और समानता को मजबूत करने के लिए काम किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज भारत रत्न लता मंगेशकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि लता मंगेशकर ने अपनी दिव्य गायन प्रतिभा से पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। देश आज शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती मना रहा है। भगत सिंह का जन्म वर्ष 1907 में आज ही के दिन पंजाब के तत्कालीन लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो पाकिस्तान में है। एक रिपोर्ट।
7: भगत सिंह का जन्म क्रांतिकारियों के परिवार में हुआ था। उन्होंने देश की आजादी के लिए खुद को कुर्बान करके अपने नाम को सार्थक किया। उनकी जयंती मनाने के लिए लुधियाना में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में जश्न इनकलाब नाम का एक राज्य स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। लोग उनके पैतृक गांव खटखट कला में इस महान सपूत को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुँच रहे हैं। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
3: मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले दो दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत के असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बिजली चमकने के साथ आंधी और तेज हवाएं चल सकती हैं। आज हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकल, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, ओडिशा और तेलंगाना में भी आंधी और बिजली के साथ वर्षा होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को बारिश और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य चलाने के निर्देश दिए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि खराब मौसम को देखते हुए कई जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद करने के निर्देश दिए गए हैं।
8: सीतापुर में सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गई हैं। इसके बाद लखीमपुर खीरी, बहराइच, बलरामपुर, अयोध्या और गोरखपुर में भी लोगों की मौतें हुई हैं। लगभग 1020 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। घाघरा और राप्ती नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हालात को देखते हुए अधिकारियों को प्रभावित लोगों को तत्काल राहत और सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के पूर्वी और पश्चिमी जिलों के कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
3: और अब खेल खबरों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
9: तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। 296 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत ने 41 ओवर और 4 गेंद में 2 विकेट खोकर 300 रन बनाकर जीत हासिल की। विराट कोहली ने नाबाद 139 रन और कप्तान शुभमन गिल ने 110 रन बनाकर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। ये विराट का एक दिवसीय क्रिकेट में 55वां शतक है। इसके साथ ही वो सचिन तेंदुलकर के बाद एक दिवसीय क्रिकेट में 15,000 रन पूरे करने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। भारत की ओर से कुलदीप यादव ने 4 विकेट लिए और उन्हें मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। अब बात एशियाई खेलों की। एशियाई खेलों के 9वें दिन आज पुरुष क्रिकेट के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में वर्तमान चैंपियन भारत का सामना अफगानिस्तान से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 से खेला जाएगा। इसके अलावा मुक्केबाजी, एथलेटिक्स, निशानेबाजी और हॉकी में भी भारत अपनी चुनौती पेश करेगा। इससे पहले कल भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 16 रजत और 17 कांस्य सहित कुल 37 पदक लेकर 12वें स्थान पर है।
3: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आयुष्मान भारत और हर नागरिक के लिए डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के संयुक्त सचिव किरण गोपाल वास्का शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विषय से संबंधित सवाल पूछ सकते हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
10: धन्यवाद विशाल। सर्जिकल स्ट्राइक के 10 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कड़ा संदेश हिंदुस्तान सहित कई अखबारों में है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सर्जिकल स्ट्राइक ने आतंक के खिलाफ भारत का संकल्प दर्शाया। आप शांति चाहते हैं तो युद्ध के लिए रहें तैयार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान दैनिक जागरण में है। रक्षा मंत्री ने एक कार्यक्रम में कहा, भारत किसी देश की भूमि नहीं मांगता और युद्ध भी नहीं चाहता, लेकिन किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रीय सुरक्षा पर कभी समझौता नहीं करेगा। साबरमती स्टेशन से दौड़ी देश की पहली LNG ट्रेन, गृहमंत्री अमित शाह ने झंडी दिखाकर किया रवाना। अमर उजाला के अनुसार LNG आधारित दोहरे ईंधन वाली तकनीक अपनाने के साथ भारत चुनिंदा देशों में शामिल। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को मिले स्थायी सीट, जर्मनी और जापान को नहीं। संयुक्त राष्ट्र महासभा

0: में रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ के बयान को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता दी है। पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एक छात्रा के साथ कथित दुष्कर्म की खबर के बाद तोड़फोड़ और आगजनी को अखबारों ने सचित्र दिया है। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, रात भर प्रदर्शन के बाद केस दर्ज, SIT गठित, यूनिवर्सिटी ने बताया अफवाह।
1: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत की पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की आज 10वीं वर्षगांठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत की आतंकवाद रोधी नीति का नया उदाहरण बताया। आज से प्रस्तावित 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की। मौसम विभाग का आज उत्तराखंड, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में विराट कोहली और शुभमन गिल के शतक की बदौलत भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। इंडिया मार्क्स 10th एनिवर्सरी ऑफ सर्जिकल स्ट्राइक्स ऑन टेररिस्ट हाइडआउट्स इन पाकिस्तान। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज इट डेमोंस्ट्रेटेड न्यू एग्जाम्पल ऑफ इंडियाज काउंटर टेररिज्म पॉलिसी। Proposed 3-day nationwide bank strike, which was to begin today, deferred. Government launches project to build national digital public infrastructure for tourism sector. Weather department forecasts heavy rainfall in Uttarakhand, South Interior, Karnataka and Andaman and Nicobar Islands today. And in men's cricket, centuries by Virat Kohli and Shubman Gill powered India to an 8-wicket victory over West Indies in first ODI in Tiruvananthapuram. And now the news in detail. India marks the 10th anniversary of surgical strikes that demonstrated to the world a new example of Narendra Modi government's counter-terrorism policy. On September 28th and 29th in 2016, Indian Army carried out targeted surgical strikes on terrorist launch pads across the line of control in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. The operation was launched as a direct and decisive military response to the Uri terror attack earlier that month, where 19 Indian soldiers lost their lives. The anniversary highlights a decade of evolved national security measures. In his Mann Ki Baat program on Akashvani yesterday, Prime Minister Narendra Modi described the 2016 surgical strike against terrorist hideouts as a historic milestone. He said the surgical strike highlighted the role of the Indian Army in carrying out the operation across the line of control.
3: 10 वर्ष पहले 28-29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। LOC के उस पार जाकर हमारे वीर जवानों ने जिस तरह आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की थी, वो देख दुनिया हैरान थी। सर्जिकल स्ट्राइक ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया था। आतंकवादी हमलों के कारण भारत ने लंबे समय तक जो दर्द झेला था, सर्जिकल स्ट्राइक उस कष्ट के खिलाफ हमारी निर्णायक प्रतिक्रिया थी।
2: The Prime Minister said that India's counter-terrorism approach has continued to evolve over the past decade, citing the Balakot airstrike and Operation Sindoor as examples. Prime Minister Narendra Modi has paid tributes to activist Ashok Singhal. In an article for an English daily, Mr. Modi said Ashok Singhal's life reflected a cherished ethos. The pursuit of others' welfare acquires far greater meaning than individual achievement. Mr. Modi said that starting from yesterday, the nation marks to celebrate the birth centenary of the outstanding personality of Ashok Singhal. The Prime Minister added that Ashok Singhal worked towards strengthening social unity and equality. He said that Ashok Singhal was blessed with the clarity of thought that there could be no distinction of any kind in society and every individual deserved equal dignity and respect. The Prime Minister said it was his privilege to get innumerable opportunities to interact with Ashok Singhal. The proposed three-day nationwide bank strike, which was to begin from today, has been deferred. It was confirmed by All India Bank Employees Association.

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कौनैन हैदर। पहले इस वक्त की खास खबरें। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर किए गए सर्जिकल स्ट्राइक के 10 साल पूरे होने के मौके पर इसकी याद ताजा कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि उसने दहशतगर्दी से निपटने की भारत की पॉलिसी की नई मिसाल का मुजाहरा किया है। बैंकों की मुजवजा 3 रोजा मुलगीर हड़ताल जो आज शुरू होना थी मुलतवी कर दी गई है। हुकूमत ने सियाहत के शोबे के लिए कौमी डिजिटल सरकारी बुनियादी ढांचा तामीर करने के प्रोजेक्ट का आगाज किया है। महकमे मौसमियात ने आज उत्तराखंड, जनूबी अंदरूनी कर्नाटक और अंडमान निकोबार जजायर में शदीद बारिश की पेशगोई की है। और तिरुवनंतपुरम में पहले ODI में मर्दों के क्रिकेट में विराट कोहली और शुभमन गिल की सेंचुरी से भारत को वेस्टइंडीज पर 8 विकेट की कामयाबी में बड़ी मदद मिली है। अब खबरें तफसील से। भारत सर्जिकल स्ट्राइक्स की 10वीं सालगिरह मना रहा है, जिसने दुनिया के सामने नरेंद्र मोदी हुकूमत की दहशतगर्दी मुखालिफ पॉलिसी की एक नई मिसाल कायम की थी। 28-29 सितंबर 2016 को भारतीय फौज ने पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में कंट्रोल लाइन के पार दहशतगर्दों के लॉन्च पैड्स पर निशाना बनाकर सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी। ये कार्रवाई इसी महीने के शुरू में उड़ी में होने वाले दहशतगर्दाना हमले का एक बराह रास्त और फैसला कुन फौजी जवाब थी, जिसमें 19 भारतीय जवानों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी थीं। ये सालगिरह कौम की दिफाई तदाबीर में एक दहाई के इर्तका की अक्कासी करती है। गुज़श्ता रोज आकाशवाणी पर अपने मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दहशतगर्दों के ठिकानों के खिलाफ 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक्स को एक तारीखी संग मील करार दिया। उन्होंने कहा कि इस सर्जिकल स्ट्राइक ने कंट्रोल लाइन के पार कार्रवाई करने में भारतीय फौज के किरदार को उजागर किया।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। एक समय था जब भारत में सीरियल ब्लास्ट होना बहुत सामान्य बात हो गई थी। 26/11 का इतना बड़ा हमला हुआ था, पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी, लेकिन उस पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता था। समय बीतने का इंतजार किया जाता था। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कारकुन अशोक सिंघल को खिराज-ए-अकीदत पेश किया है। एक अंग्रेजी अखबार में अपने मजमून में जनाब मोदी ने कहा कि अशोक सिंघल की जिंदगी एक यादगार उसूल की अक्कास है। दूसरों की फलाह बहबूद की कोशिश फर्द की जाती कामयाबी से कहीं ज्यादा अहमियत हासिल कर लेती है। जनाब मोदी ने कहा कि हफ्ते के रोज से मुल्क ने अशोक सिंघल की सालगिरह की 7 साला तकरीबात का आगाज किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अशोक सिंघल ने समाजी इत्तेहाद और मसावात को मजबूत बनाने के लिए काम किया। उन्होंने कहा कि अशोक सिंघल को फिक्री वजाहत की ऐसी नेमत हासिल थी कि मुआशरे में किसी भी किस्म का कोई

0: फर्क नहीं होना चाहिए और हर फर्द मसावी इज्जत व एहतराम का मुस्तहिक है। वजीर आजम ने कहा कि ये उनका एजाज था कि उन्हें अशोक सिंघल के साथ बातचीत करने के बेशुमार मौके मिले। बैंकों की मुजवजा 3 रोजा मुल्कगीर हड़ताल जो आज से शुरू होना थी मुलतवी कर दी गई है। इसकी तस्दीक बैंक मुलाजमीन की ऑल इंडिया एसोसिएशन AIBEA ने की है। यह फैसला भारतीय बैंकों की एसोसिएशन IBA के साथ एक मुआहदा तय पाए जाने के बाद किया गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में AIBEA ने कहा कि यह फैसला IBA और बैंक यूनियनों के मुत्तहिदा फोरम UFBU के दरमियान एक मीटिंग के बाद किया गया। यह मीटिंग हड़ताल से मुतालिक मामलात के बारे में कल रात मुनाकिद की गई थी। मरकज ने सियाहत के शोबे के लिए एक कौमी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया है जो सारिफिन को एक मुश्तरका डिजिटल जगह पर प्रोडक्ट्स और खिदमात के वसी रेंज तक रसाई के काबिल बनाएगा। सियाहत की वजारत ने नेशनल डिजिटल टूरिज्म स्टैक की तामीर के लिए ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के साथ हाथ मिलाया है जिसका हदफ 2028 के अख्ताम तक 23,000 सियाहती तजर्बात और होम स्टेज को साथ लाना और उन्हें तलाश के काबिल काबिल एतमाद और बैंकिंग के काबिल बनाना है। मरकजी वजीर सियाहत गजेंद्र शेखावत ने कल आलमी योम सियाहत के मौके पर भारत मंडपम में मुनक़दा एक तकरीब से इस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। मुल्क आज मुजाहिद आज़ादी भगत सिंह को उनके योम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश कर रहा है। आज ही के दिन 1907 में भगत सिंह पंजाब के लायलपुर के बंगा गांव में पैदा हुए थे जो कि अब पाकिस्तान में है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: भगत सिंह की पैदाइश एक इनकलाबी घराने में हुई। वो अपने 7 बहन भाइयों में दूसरे नंबर पर थे। उन्हें घर में प्यार से भगन वाला कहा जाता था जिसका मतलब होता है खुशकिस्मत, और उन्होंने राजगुरु जी और सुखदेव जी के हमरा अपनी कुर्बानी पेश करके मुल्क की आज़ादी में अपने नाम के इस मतलब को साबित किया। जश्न इनकलाब के उनवान से आज लुधियाना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एक रियासती सतह पर प्रोग्राम मुनक़िद किया जाएगा। मुल्क के अजीम सपूत को खराज अकीदत पेश करने के लिए लोग शहीद भगत सिंह नगर में उनके आबाई गांव खटकर कला भी पहुंच रहे हैं। जालंधर से राजेश बाली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज मुजाहिद आज़ादी शहीद भगत सिंह के यौम पैदाइश पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि अपनी गैर मामूली शुजात और बहादुरी से भगत सिंह ने आज़ादी की तहरीक में नई जान डाली है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारत के इंतखाबी कमीशन ने दिल्ली में 2026 की वोटर फहरिस्त पर खुसूसी तफसीली नज़रसानी SIR के जारी काम के लिए नई तारीखें मुकर्रर की हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: दिल्ली में 2026 की वोटर फहरिस्त में खुसूसी तफसीली नज़रसानी SIR का काम जारी है और इंतखाबी कमीशन ने दावे और एतराजात दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर मुकर्रर की है। नोटिस का मरहला या दावों और एतराजात को निपटाने का मरहला 30 नवंबर तक जारी रहेगा। हतमी वोटर फहरिस्त अब 4 दिसंबर को जारी की जाएगी। इससे पहले दिल्ली के आला इंतखाबी अफसर ने बताया कि कल कौमी राजधानी दिल्ली के सभी पोलिंग स्टेशनों की जगहों पर खसूसी कैंपों का एहतमाम कामयाबी के साथ अंजाम दिया गया। ये कैंप फॉर्म 6 के जरिए नए वोटरों के इंदराज और दीगर इंतखाबी खिदमात फराहम करने के लिए लगाए गए थे। दिल्ली के आला इंतखाबी अफसर ने एक बयान में बताया कि नौजवान वोटरों के इंदराज के लिए खसूसी कैंपों के इनेकाद का एक और दौर शुरू किया जाएगा। ये कैंप कल और बुध को कौमी राजधानी के सभी कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों और दीगर तालीमी इदारों में मुनक़द किए जाएंगे। समर्थ की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अवामी खिदमात के 25 बरस मुकम्मल हो रहे हैं जो जन सेवा से देश सेवा के मंत्र पर मबनी है और इस अंतक अजम का सिलसिला जारी है। सेवा और सुशासन के इस नजरिए के तहत हुकूमत 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने की खातिर अंथक काम कर रही है। सबकी शमूलियत वाली तरक्की और समाजी तौर पर बाइख्तियार बनाने के अमल के जरिए लोगों की जिंदगियों में बड़ी तब्दीली आ रही है। आज इस खसूसी सीरीज सेवा संकल्प अभियान में हम तस्करा कर रहे हैं कि नमो भारत के जरिए इस नजरिए को लोथल में समंदर से मुतालिक कौमी विरासती कॉम्प्लेक्स जैसे इकदाम की शक्ल में किस तरह बरूए कार लाया जा रहा है।
2: गुजरात के शहर लोथल में कदीम हड़प्पन गोदी के फरोग के साथ साथ समंदर से मुतालिक कौमी विरासती कॉम्प्लेक्स भारत के पहले कौमी इदारे के तौर पर तैयार किया जा रहा है, जहां समंदर से मुतालिक मुल्क की 4,500 साल से ज्यादा की मालामाल तारीख की नुमाइश की जाएगी। इस कॉम्प्लेक्स को आलमी सतह के एक सकाफती मकाम के तौर पर डिजाइन किया गया है, जिसमें दुनिया का सबसे ऊंचा लाइट हाउस म्यूजियम बनाया जाएगा और बहरिया की एक गैलरी कायम की जाएगी, जिसमें INS निशंक, समंदर पर प्रवास करने वाले एक जहाज और एक UH-3 हेलीकॉप्टर जैसे मशहूर दिफाई असासों की नुमाइश की जाएगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा,
3: लोथल में ये जो हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बन रहा है, उसको ऐसे बनाया जा रहा है कि भारत का सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी इस इतिहास को आसानी से जान सके, समझ सके। इसमें अति आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके बिल्कुल उसी युग को फिर से सजीव करने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे विश्वास है ये दुनिया भर के पर्यटकों के लिए आकर्षण का बहुत बड़ा केंद्र बनेगा।
2: गुजरात की समंदर से मुतालिक 5,000 साल की विरासत और कैसे इस बड़े प्रोजेक्ट से मुस्तकबिल की नस्लों के लिए इसका तहफ्फुज किया जाएगा, ये जिक्र करते हुए गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल ने कहा,
4: जहाँ तक गुजरात में मैरीटाइम हेरिटेज की बात है तो हमारे पास इस सेक्टर का 5,000 वर्ष का लंबा इतिहास और लोथल इसका एक जीवंत प्रतीक है। आप सभी यह जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से विश्व का सबसे बड़ा मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम इस लोथल में बनाने जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में सबसे बड़ा लाइट हाउस म्यूजियम और सबसे बड़ी ओपन एक्टिव गैलरी का साथ भव्य नेवल म्यूजियम भी बनाया जाएगा।
2: अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: भारत के महकमे मौसमियात IMD ने आज उत्तराखंड, जनूबी अंदरूनी कर्नाटक और अंडमान निकोबार जजायर में शदीद बारिश की पेशगोई की है। उसने अगले 2 दिन के दौरान आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा समेत भारत के शिमाल मशरकी हिस्सों में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की भी पेशगोई की है। IMD के मुताबिक हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और तेलंगाना में भी आज इसी तरह की सूरत हाल रहने का इम्कान है। उत्तराखंड में हिमालयी इलाकों में फंसे हुए 179 कोह पैमा और मुआविन अमले को बहिफाजत निकालने के लिए बचाव कार्रवाई जारी है। उत्तरकाशी और बागेश्वर जिलों में कोह पैमाओं के 13 ग्रुप्स के अरकान मुख्तलिफ मकामात पर फंसे हुए हैं। मर्दों के क्रिकेट में कल रात तिरुवनंतपुरम में विराट कोहली और शुभमन गिल की शानदार सेंचुरियों की बदौलत भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले एक रोजा मैच में जबरदस्त जीत हासिल की। विराट कोहली 139 रन पर जबकि ऋतुराज गायकवाड़ 13 रन पर नॉट आउट रहे। 296 रन के हदफ का ताकुब करते हुए भारत ने 41 ओवर्स और 4 गेंदों में 2 विकेट के नुकसान पर 300 रन बनाए। इस तरह भारत ने 3 एक रोजा मैचों की सीरीज में 1-0 से सबकत हासिल कर ली है। विराट कोहली ने एक रोजा मैचों की अपनी 55वीं सेंचुरी बनाई। वो वनडे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के बाद 15,000 रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। भारतीय मर्दों की क्रिकेट टीम जापान में जारी एशियाई खेलों में आज निशिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरा क्वार्टर फाइनल मैच खेलेगी। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक सुबह 10:30 बजे शुरू होगा। श्रेयस अय्यर की क्यादत में भारतीय टीम शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए सोने का तमगा अपने पास बरकरार रखने की कोशिश कर रही है। अफगानिस्तान जापान को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंचा है, लेकिन उसे ग्रुप मरहले के मुकाबले में नेपाल से शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया कोनन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात ने मन की बात प्रोग्राम में वजीर आजम मोदी के इजहार ख्याल को शह सुर्खी बनाते हुए लिखा है, भारत में दहशतगर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, मर्दमशुमारी में शिरकत की अपील। अखबार प्रताप ने अक्वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से वजीर खारजा एस जयशंकर के खिताब को अहमियत देते हुए लिखा है कि दहशतगर्दी से समझौता नहीं, अपने दिफा का हक बरकरार, इस्लाहात पर मबनी कसीर फरीकी निज़ाम का हामी है भारत। अखबार इंकलाब ने भी इसे अहम खबर बनाया है। प्रताप की एक और अहम सुर्खी है, मोबाइल रिचार्ज 28 दिन के बजाय 30 दिन का मिलेगा, मरकजी हुकूमत ने टेलीकॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलेशन 2026 को लागू किया। अखबार की बैनुल अक्वामी खबरें इस तरह है, आबनाए हुरमुज को दोबारा खोलने का फैसला तेहरान की जानिब से तय करदा शराइत की तकमील से मशरूत है। ईरानी वजीर खारजा का

0: बयान, ईरान को मौसी तौर पर तनहा करने के लिए अमरीका का 50 से ज्यादा ममालिक पर दबाव, अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट का दावा।
1: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर किए गए सर्जिकल स्ट्राइक्स के 10 साल पूरे होने के मौके पर उसकी याद ताजा कर रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि उसने दहशतगर्दी से निपटने की भारत की पॉलिसी की नई मिसाल का मुजाहिरा किया है। बैंकों की मुजवजा 3 रोजा मुल्कगीर हड़ताल जो आज शुरू होना थी मुलतवी कर दी गई है। हुकूमत ने सियाहत के शोबे के लिए कौमी डिजिटल सरकारी बुनियादी ढांचा तामीर करने के प्रोजेक्ट का आगाज किया है। महकमे मौसमियात ने आज उत्तराखंड, जनूबी अंदरूनी कर्नाटक और अंडमान निकोबार जजायर में शदीद बारिश की पेशगोई की है। और तिरुवनंतपुरम में पहले ODI में मर्दों के क्रिकेट में विराट कोहली और शुभमन गिल की सेंचुरी से भारत को वेस्टइंडीज पर 8 विकेट की कामयाबी में बड़ी मदद मिली है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।

असफलता निराशा का संदेश नहीं बल्कि और अधिक प्रयास करने की अग्रिम चेतावनी है। म्यूजिकल दिल लगी सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। पूजा है आपके साथ, आप सभी को मेरा नमस्कार। 8:46 और 12 सेकेंड, आइए सुनते हैं मेरा साया फिल्म से लता मंगेशकर को।

0: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो? इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
1: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
2: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
3: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
4: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
5: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
0: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
6: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
7: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
8: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
7: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
8: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
7: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
8: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद ये कार्रवाई की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। आकाशवाणी पर कल प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: आज से प्रस्तावित 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित हो गई है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBEA ने इसकी पुष्टि की है। ये फैसला भारतीय बैंक संघ के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम में संशोधन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए कल से 2 दिन तक दिल्ली के सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में विशेष शिविरों का एक और चरण आयोजित किया जाएगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में रबी अभियान 2026 के लिए 2 दिन के राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में आगामी रबी सीजन की तैयारियों और कृषि क्षेत्र की प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। मत्स्य और पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत करेंगे। इसे देश में पशुधन बीमा सेवाओं के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में काम करेगा। देश आज शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती मना रहा है। भगत सिंह का जन्म वर्ष 1907 में आज ही के दिन पंजाब के तत्कालीन लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए एक वीडियो साझा किया है। श्री मोदी ने कहा कि उनका बलिदान भारत के युवाओं को देश प्रेम के लिए प्रेरित करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज भारत रत्न लता मंगेशकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि लता मंगेशकर ने अपनी दिव्य गायन प्रतिभा से पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय संगीत की दुनिया में लता मंगेशकर का अतुलनीय योगदान युगों तक स्मरणीय रहेगा। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले हिमालयी क्षेत्रों में 179 ट्रैकर्स पर्वतारोहियों और उनके सहयोगी कर्मचारियों को सुरक्षित निकालने के लिए बचाव अभियान चलाया जा रहा है। ये लोग उत्तरकाशी और बागेश्वर जिलों में 13 अलग अलग ट्रैकिंग दलों में फंसे हुए हैं। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने अधिकारियों को मौसम में सुधार होते ही हेलीकॉप्टरों के जरिए बचाव अभियान शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
2: सभी 179 ट्रैकर्स की सुरक्षित वापसी के लिए संबंधित जिला में रेस्क्यू प्लान तैयार किए गए हैं। उत्तरकाशी में जिला प्रशासन, वन विभाग, SDRF, पुलिस और आपदा प्रबंधन की संयुक्त टीमें रेस्क्यू अभियान में जुटी हैं। मुख्य सचिव ने रेस्क्यू अभियान की समीक्षा करते हुए यूकाडा के माध्यम से पर्याप्त संख्या में हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज उत्तरकाशी और देहरादून में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: इस बीच मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड, दक्षिणांतरिक कर्नाटक और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत के असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बिजली चमकने के साथ आंधी और तेज हवाएं चल सकती हैं। तिरुवनंतपुरम में पहले

0: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 11वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा, संकट से समाधान तक। इसमें भाग ले रहे हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA के सदस्य एवं विभाग अध्यक्ष डॉक्टर KS वत्स और कोएलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI के महानिदेशक अमित प्रोथी। कार्यक्रम का संचालन कर रही है आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना।
1: नमस्कार, मैं हूं दीक्षा सक्सेना और आकाशवाणी की इस विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साल 2001 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पॉलिटिकल जर्नी स्टार्ट की एज चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात और आज साल 2026 में उनके 25 वर्ष पब्लिक गवर्नेंस और पब्लिक सर्विस में पूरे हो चुके हैं। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय उनको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसमें से सबसे बड़ी एक चुनौती जो थी वो साल 2001 में गुजरात में भुज में आए अर्थक्वेक की थी। तब शायद उन्होंने ये सीख ली थी कि कैसे डिजास्टर से ना सिर्फ निपटा जाए बल्कि आगे आने वाले डिजास्टर के लिए कैसे खुद को प्रिपेयर किया जाए। तो आज का जो हमारा विषय है चर्चा का वो भी यही है, संकट से समाधान तक। और इस विषय पे चर्चा करने के लिए मेरे साथ दो बहुत ही अहम गेस्ट स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर कृष्णा S. वत्स, ही इज मेंबर एंड HOD NDMA एंड श्री अमित प्रोथी, DG CDRI। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर वत्स, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि साल 2001 में जो गुजरात में कच्छ को जिसने इम्पैक्ट किया, जिस अर्थक्वेक ने, उसमें काफी लोगों की जान गई, काफी लोग इम्पैक्टेड हुए, काफी लोगों के घर बर्बाद हो गए, तो वहां से एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है डिजास्टर की दिशा में जब भारत ने अपने कदम उठाए, तो आप क्या हमें ये समझा सकते हैं कि उस पर्टिकुलर मोमेंट में कैसे डील किया गया गवर्नमेंट के द्वारा और ना कि सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको आगे कैसे रेजिलिएंट बनाया जाए उस पे काम किया।
2: करीब करीब 12,000 लोगों की जाने गई थी और बहुत बड़े क्षेत्र में आर्थिक और बिल्डिंग्स का जो नुकसान हुआ था, घरों का नुकसान हुआ था, तो यह गुजरात के लिए भी और देश के लिए भी एक बहुत बड़े संकट की घड़ी थी और इसमें पूरे देश की तरफ से जो रिस्पांस आया था, सारे राज्यों ने मदद का हाथ बढ़ाया था और इसके साथ साथ बहुत सारे देशों से भी मदद मिली थी। तो पहला तो था कि बहुत बड़े क्षेत्र में सर्च एंड रेस्क्यू ऑर्गेनाइज किया गया था। इसके साथ साथ फिर लोगों को जो तात्कालिक जो मदद देनी होती है वह दिया गया, लोगों को जो टेम्पररी शेल्टर में रखा गया क्योंकि घरों का बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था, स्कूलों के गिरने से बहुत बच्चों के भी डेथ हुए थे, तो पूरा राज्य सरकार जुट करके लोगों की मदद कर रहा था और लोगों को सारी जो सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य की, खाने पीने की, रहने की, ये सारी सुविधाएं, पीने के पानी की, मैं उस समय था वहां पर और मैं देख रहा था कि राज्य सरकार ने पूरी मुस्तैदी से सारा कुछ जो रिलीफ है और उसका काम किया था। साथ साथ जो है वो एक उस समय यह भी एक चुनौती थी कि इस पूरे

0: का पुनर्वास कैसे किया जाए, रिहैबिलिटेशन कैसे किया जाए, तो उसके लिए एक बहुत बड़े आर्थिक सहायता की आवश्यकता थी और उसके लिए वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसे जो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं उनकी मदद ली गई थी और उनके माध्यम से एक बहुत बड़ा पुनर्वास का कार्यक्रम लिया गया। लेकिन इसकी जो तैयारी है उसमें काफी कुछ नीतियों का बहुत बड़ा योगदान था कि एक तो जब हम लोगों का पुनर्वास करें तो अच्छे से करें, लोगों को बेहतर घर मिले, भूकंप प्रवणता का ध्यान रखें और साथ साथ जो है सो लोगों को रोजगार के भी बेहतर अवसर मिले, इस क्षेत्र में एक इन्वेस्टमेंट आए तो इस क्षेत्र का आर्थिक विकास हो, आर्थिक रूपांतरण हो। कच्छ जो है वह कम वर्षा वाला क्षेत्र है, वहां सूखे की प्रवणता ज्यादा रहती है, तो कच्छ का आर्थिक रूपांतरण भी हो उसकी ओर भी उतना ही ध्यान था। तो लोगों का पुनर्वास, एक पूरे क्षेत्र का आर्थिक रूपांतरण और साथ साथ लोगों को किस तरह से फिर से अपने पैर पर खड़ा करना और एक राज्य को आगे आने वाली आपदा से मुकाबला करने के लिए ज्यादा सक्षम बनाना, ये सारी चुनौतियां थी। और मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री भी उस समय जो मुख्यमंत्री थे उनका नेतृत्व इसके लिए बड़ा कारगर सिद्ध हुआ।
1: यहीं से चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मिस्टर प्रोथी मैं आपसे समझना चाहूंगी, अगर हम ग्लोबली फिगर्स को देखें तो लगभग 100 मिलियन से ज्यादा लोग हर साल इफेक्ट होते हैं किसी न किसी नेचुरल डिजास्टर से। जैसा डॉक्टर वत्सा ने अभी हमें बताया, प्रधानमंत्री की वो दूरदर्शी सोच ही है जिसने 2019 में CDRI की स्थापना को जन्म दिया, CDRI का जन्म हुआ। तो आपसे मैं समझना चाहूंगी कि आखिर CDRI को बनाने के पीछे की सोच क्या थी और CDRI का काम एक्चुअली में है क्या?
2: आई थिंक जैसे कृष्णा जी ने बताया कि जो कच्छ में एक्सपीरियंस हुआ उसमें बहुत साफ साफ दिखने लगा कि जैसे भूकंप आता है, साइक्लोन आता है, फ्लड आता है, इसमें लोगों को भी काफी डेथ्स भी होती हैं, डिफिकल्टीज भी होती हैं, लेकिन जो अब इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर भी काफी भारी डिस्ट्रक्शन भी बहुत ज्यादा होता है। तो और ये हम देख रहे हैं, जैसे आपने कहा इंडिया में तो हमने देखा है, लेकिन अब पीछे नेपाल में भी देखा है, कोलंबिया में भी भूकंप आया है। लोगों पे इन इवेंट्स की जो चैलेंज आते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काफी आते हैं, जैसे घर कैसे बनाया जाए, जैसे सड़कें कैसे बनाई जाए कि गिरे ना, जैसे पानी चलता रहे, बिजली चलती रहे, नॉर्मल लाइफ बेसिकली चलती रहे। इनफैक्ट 23 सितंबर एग्जैक्टली 7 साल हो गए हैं जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कोलिशन को न्यूयॉर्क में अनाउंस किया था कि भारत ग्लोबल लीडरशिप दिखाएगा कि कैसे हम अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं उसको इस तरीके से बनाया जाए कि हम ये जो लॉसेज आ रहे हैं साथ साथ में उसको अवॉइड कर सके। अब हमारे करीब 59 देश इस कोलिशन के मेंबर बन चुके हैं एंड वो हमसे तीन चीजें पूछते हैं। हम जो सेक्रेटेरिएट हैं कोलिशन के, हमको तीन सवाल आते हैं। एक कि अभी मैंने अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो उसमें किस तरीके से बनाया जाए कि ताकि कल का जो भूकंप आएगा या कल जो साइक्लोन आएगा वो मेरा सर्विसेज को डिस्ट्रप्शन ना करे, मेरी बिजली आती रहे, लाइफ चलती रहे, एक वो है। दूसरा है कि लोगों पे जो इम्पैक्ट है उस पर किस तरीके से ऐसे ध्यान दिया जाए कि वो इम्पैक्ट ना हो और अगर है तो बहुत जल्दी उससे रिकवर किया जाए। और तीसरा, अगर इसमें जो पैसा जाता है बाद में जब डिस्ट्रक्शन के बाद जो पैसा जाता है उसको किस तरीके से पहले अवॉइड किया जाए,
1: तो
2: एक्सपेंसेस को, लॉसेस को। तो हमको पता है कि इवेंट्स तो आएंगे, भूकंप आएंगे, बारिश भी आती है, गर्मी भी आएगी और साइक्लोन्स भी आएंगे, लैंडस्लाइड्स भी आएंगे, बट इंफ्रास्ट्रक्चर उस टाइम पे ना गिरे, घर ना गिरे, डिसरप्शन ना हो, उस पे कैसे काम किया जाए वो हमारा सबसे ज्यादा मेन फोकस है। एंड बिकॉज अब हम बोलते हैं कि हमारे इतने सारे देश मेंबर्स हैं तो इनसे एक दूसरे से सीखा कैसे जाए, बिकॉज हर देश में कुछ ना कुछ तो काम चल रहा है, उसको किस तरीके से शेयर किया जाए ताकि जिस देश को जरूरत है उसको बड़ी जल्दी से इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि इस तरीके से आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर रिजर्व कर सकते हैं। तो वो भी कोलिशन का जो एक आइडिया है कि एक दूसरे से कैसे सीखा जाए और शेयर किया जाए एक्सपीरियंस, ताकि जो गलतियां हम कर चुके हैं या कोई और कर चुका है उसको अवॉइड कैसे किया जाए।
1: डॉक्टर वत्सा, जब 2001 में गुजरात में अर्थक्वेक आया था उसके बाद ही GSDMA का भी जन्म हुआ था, उसके पीछे का सोच क्या था और शायद अर्थक्वेक ने एक सीख दे दी कि आगे काम को कैसे बढ़ाया जाए या कैसे प्लान्ड मोड में किया जाए, उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी।
0: क्योंकि वो पुनर्वास का जो स्वरूप था वो इतना बृहद था

0: कि उसके लिए आवश्यक था कि एक विशेष व्यवस्था की जाए, और वह विशेष व्यवस्था जीएसटीए में गुजरात स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के माध्यम से हुई। एक ऐसी संस्था बनाई जाए जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को फिर से अपने जीवन में पुनर्स्थापित करने का था। तो जीएसटीएमए की स्थापना हुई। जीएसटीएमए की स्थापना एक एक्ट के माध्यम से हुई, तो राज्य सरकार ने एक ना उसके लिए लेजिस्लेशन लाया, और फिर जीएसटीएमए का एक किड, कई विंग्स थे, कई जो शाखाएं थी जिनके माध्यम से ये पुनर्वास का कार्यक्रम लिया गया। तो करीब करीब ये जो प्रोग्राम था वो कई हजार करोड़ों का था। मतलब मैं अगर वर्ल्ड बैंक और एडीबी की मदद मिली और अन्य संस्थाओं की मदद मिली तो करीब करीब वो $2 बिलियन के आसपास का यह प्रोग्राम था। तो काफी बड़ा प्रोग्राम था और इसलिए वो आवश्यक था कि इस तरह की संस्था बनाई जाए और उनके माध्यम से पूरा इसका कार्यान्वयन हो। और फिर जीएसडीएमए फिर आगे भी चला और वो अभी भी है। जीएसडीएमए के बाद राज्य में एक नया कानून डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी लाया गया, वो भी माननीय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वह भी संभव हुआ। और इन सब के कारण गुजरात में जो है डिजास्टर मैनेजमेंट की जो संकल्पना है वह काफी मजबूत हुई। पूरे राज्य में जो रिस्क असेसमेंट का काम लिया गया और भी जो साइक्लोन के लिए जो तैयारियां होती हैं, गुजरात में 1996-97 में शायद है ना कांडला का साइक्लोन हुआ था, काफी लोग उसमें मरे थे, तो एक गुजरात में फिर साइक्लोन की तैयारी की भी बात आवश्यक थी। तो भूकंप हो या साइक्लोन हो या फ्लड्स हो, इन सारे विषयों पर ध्यान दिया गया और राज्य में एक ना आपदा प्रबंधन के लिए एक नया संकल्प आया, मैं इस बात को निश्चित रूप से कहूंगा।
1: मिस्टर प्रोति, जैसे कि डॉक्टर वत्सा ने बताया, किसी भी डिजास्टर किसी भी प्रॉब्लम से डील करने के लिए एक प्लान तरीका होता है, सीडीआरआई भी वहीं से आया है। तो कोई डिजास्टर अगर होता है तो उसमें नॉर्मल आम आदमी इम्पैक्ट होता है, तो क्या आपका काम आम आदमी से रिलेटेड है? आप लोग कैसे जनता को ये बताते हैं, कैसे लोगों को ये बताते हैं कि उनको डिजास्टर रेजिलियंट घर बनाने चाहिए? जैसे हमने नेपाल में भी देखा कि फ्लड आया और बहुत लोगों की जाने गई पर एक घर सुरक्षित रहा और वो कई बार सुरक्षित रहा है कई ऐसी चुनौतियों में, तो आप लोगों का ऐसा क्या काम है?
2: मैं एक्चुअली आपको बताता हूँ कि जो 2015 में गोरखा अर्थक्वेक आया था नेपाल में, मैं काठमांडू में ही था एंड मैं थोड़ा पहाड़ों में था। जब मैं पहाड़ों में जब था, जब अर्थक्वेक आया है, मेरे को तो लगा कि पूरा शहर खत्म हो रहा है, पर जब मैं नीचे आया 6 में से 5 बिल्डिंग्स खड़ी हुई थी, एक बिल्डिंग शायद गिरी थी। मतलब अगर आप आसपास देखो, एक चीज उस दिन बड़ा क्लियर हो गया मुझे कि जो हमारे बिल्डिंग कोड है, हम जब घर बनाते हैं, टावर्स बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, इनके पीछे होता है ये पूरा कोड एंड स्टैंडर्ड होता है कि इस तरीके से बनाइए, आप इस रिस्क जोन में हैं, आपका इस टाइप का विंड स्पीड है, तो इनको महत्व देना है। और जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं तो इन सब पे अटेंशन आपको देना है। अब हमारा जो काम है वो ये भी है कि देखना है कि जैसे अब क्लाइमेट चेंज की वजह से या अभी रिस्क चेंज हो रहे हैं, साइक्लोन्स की स्पीड चेंज हो रही है, जो बारिश गिर रही है उसका भी चेंज आ रहा है कि कब बारिश गिर रही है, कितनी बारिश गिर रही है, अगर हम उसको समझ सकें और उसको फिर कोड एंड स्टैंडर्ड में ट्रांसलेट कर सकें ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा वो आगे का जो रिस्क है उसको समझ के बने। जो पीछे का रिस्क है वो तो हमको पता है, लेकिन जो आगे का रिस्क आने वाला है एंड वो चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ प्री असेसमेंट, और प्री असेसमेंट भी नहीं, रिस्क असेसमेंट इसको कहते हैं। कि अब आपने पहाड़ों में सड़क बनानी है, पहाड़ों में हमको पता है कि लैंडस्लाइड्स होती हैं, लेकिन लैंडस्लाइड सब जगह नहीं होती हैं। उसके पीछे आपको समझना पड़ता है कि पहाड़ कहाँ पर गिर सकता है, उसके पीछे जो टेक्नोलॉजी का साइंस है, तो वो सब चीजें अगर समझ के फिर सड़क बनाई जाए तो उसका गिरने के चांसेस कम हो जाते हैं। वो हमारा एक तरह से है कि वो रेजिलियंस है। एक और चीज में एग्जांपल दे सकता हूँ कि जब हम सब सेलफोन पे इतने डिपेंडेंट हैं, ये मेरे सामने नेपाल में जब मैं था, अपने मेरे साथ एक गाइड था पहाड़ों में जो चढ़ रहा था, जब भूकंप आया तो मेरे सेलफोन पे मैंने मैसेज अपनी वाइफ को भेज दिया कि मैं भूकंप में हूं और मैं ठीक हूं। जो गाइड था वो वेट करा, भूकंप खत्म हुआ उसके बाद उसने कोशिश करी भेजने की और वो गया नहीं टेक्स्ट, और 1.5 घंटे के लिए उसको ये नहीं पता था कि उसका फैमिली का क्या हाल है। एंड जब उसका टेक्स्ट गया, शुक्र है उसकी फैमिली ठीक थी, ये आदमी मेरे सामने बैठ के रोने लग गया। अब ये बताता है कि हम सब इतने डिपेंडेंट हैं आज कम्युनिकेशन पे, लेकिन अगर वो कम्युनिकेशन सिस्टम काम नहीं करेगा, अगर आप एक दूसरे को नहीं रीच कर पाएंगे

0: पुलिस को नहीं कर पाएंगे या इमरजेंसी को नहीं कर पाएंगे, तो वो डिजास्टर जो इवेंट है वो फिर सबके लिए ज्यादा ही उस पर इम्पैक्ट पड़ता है, राइट? तो कैसे इन सिस्टम्स को भी मेक श्योर करें कि ये सिस्टम्स जब इवेंट्स आते हैं उसके टाइम काम करते रहें, वो भी हमारा काम है देखना।
1: आगे बढ़ते हुए डॉक्टर वत्सा, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, जैसे गुजरात में पानी की भी काफी दिक्कतें हुई और जब वहां के उस समय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे तब उन्होंने पानी की दिक्कतों से निपटने के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी किया, तो अगर आप इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर पाए।
2: नरेंद्र मोदी जी ने नर्मदा के लिए काफी काम किया था, नर्मदा में जो डैम बन रहा था तो वो जो डैम की ऊंचाई है वो कई स्टेजों में उसको बनाना था, तो पहले 95 मीटर पर, फिर 110 मीटर पर, फिर 137 मीटर पर था, और जैसे जैसे डैम से जो लोगों का विस्थापन हो रहा है उनका पुनर्वास जैसे जैसे होगा वैसे वैसे डैम की ऊंचाई बढ़ेगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था। तो उस समय में मैं महाराष्ट्र में था तो वहां पर इस पुनर्वास का कार्यक्रम चल रहा था, और ये पुनर्वास का कार्यक्रम गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश तीनों राज्यों में हो रहा था, और महाराष्ट्र में मैं पुनर्वास का कार्यक्रम देख रहा था। तो उस समय जो था कि पुनर्वास का कार्यक्रम समाप्त करके फिर एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता था, वो सर्टिफिकेट जो है सो एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो स्थापित एक यंत्रणा थी उसके माध्यम से दिया जाता था, तो वो उस पर लगातार काम होते रहता था और गुजरात सरकार बड़ी सक्रियता से इसको देख रही थी, और उनके नेतृत्व में उस समय 95 मीटर पर बना, फिर 110 पर बना, तब मैं वहां था और मैं देख रहा था कि गुजरात सरकार इसको पूरी अच्छे से संभाल रही थी और डैम का हाइट ऊपर गया, फिर नर्मदा का डैम फिर बाद में 137 मीटर पर भी पहुंचा, और नर्मदा के कारण जो पानी की उपलब्धि हुई राज्य को उसका सूखा प्रवण क्षेत्रों पर काफी उसका है ना अच्छा परिणाम हुआ। आज बहुत सारी क्षेत्रों में जो पानी की उपलब्धता है वो नर्मदा में बने डैम के कारण है, तो ये कहा जा सकता है कि उनकी जो प्रतिबद्धता थी नर्मदा डैम के बारे में तो उसके कारण राज्य के पानी की उपलब्धता पर काफी ना अच्छा परिणाम आया।
1: मिस्टर प्रोति, अगर हम CDRI की बात करें, पानी रिलेटेड कोई डिजास्टर आता है स्पेसिफिकली, क्योंकि फ्लड्स की दिक्कतें भारत में होती हैं मॉनसून के सीजन में, उसमें CDRI का क्या रोल रहता है?
0: हाँ, तो इनफैक्ट आज ही हम NDMA के साथ एक वर्कशॉप कर रहे हैं जहां पर देखिए हमारा काम है एक्सपर्टीज लाना डिफरेंट देशों से, और बाढ़ का जो आपने बात किया है, बाढ़ एक्चुअली बहुत ही चैलेंज रहेगा स्पेशली शहरों में, बिकॉज हम शहर बड़े जल्दी बन रहे हैं, हमारे बारिश के जो प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स भी चेंज हो रहे हैं तो उनको समझना आसान नहीं है। तो हमने क्या किया है कि अभी हम नेदरलैंड्स गवर्नमेंट है, नेदरलैंड्स काफी देश दुनिया में माने जाते हैं कि उनको पानी मैनेज जो करना है उसको बहुत अच्छी तरह आता है, वो 8 साल से, अगर आप उस देश के बारे में सोचें, वो देश समुद्र के नीचे लेवल पे है, तो उन्होंने बहुत अरसों से पानी को मैनेज करना पे काम किया हुआ है। तो हम ये कर रहे हैं कि एक्सपर्टीज जैसे नेदरलैंड्स में है, जापान में है, ऑस्ट्रेलिया में है, बाकी देशों में है, उसको किस तरीके से जल्दी से भारतीय इंस्टीट्यूशंस के साथ मिला के थोड़ा सॉल्यूशंस देखे जाएं हमारे शहरों के लिए। अब जैसे हम शहर जब बना रहे हैं तो एक तो उसमें ड्रेनेज जो डालनी है अगर हम उसको ढंग से डाल रहे हैं, उसमें उसका साइंस क्या है, वो सब उसको इम्प्रूवमेंट कुछ कर सकते हैं वो देखना है। कई जगहों पे आपको पूरा ड्रेनेज की डालने की जरूरत ना पड़े, और कोई इनोवेशन अपॉर्चुनिटीज आती हैं, जैसे अब बैंकॉक ने एक पूरा पार्क बनाया है, पब्लिक पार्क, जो फ्लड के लिए भी काम आता है। इन्होंने इस पार्क को इस तरीके से बनाया है कि जब आपका पानी एक्सेस पड़ता है, बिकॉज बाढ़ क्यों आती है, बिकॉज आपको पानी की जगह नहीं है कहीं जाने के लिए, इन्होंने पार्क इस तरीके से बनाया है कि उसमें जब पानी एक्सेस है वो पार्क के अंदर जाके बैठ जाता है एंड धीरे धीरे धीरे चला जाता है, एंड जब वो बाढ़ की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं पड़ती वो पार्क है, लोग खेल रहे हैं वहां पर। सिंगापुर ने भी ये ट्राई किया है, न्यूयॉर्क भी ट्राई कर रहा है, काफी सूरत ने भी इनफैक्ट थोड़ा बहुत इस पे काम थोड़ा करना शुरू किया है। जब पानी को संभालना है शहरों में, उस पानी को किस तरीके से देखा जाए कि उसको सिर्फ ड्रेन में डाल के बाहर निकालना नहीं जाए, बिकॉज उसका कॉस्ट काफी होता है, और कोई भी तरीके

0: जैसे इनको नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस के नाम पे ये पूरा एजेंडा है, जो इस कि जो नेचुरल सिस्टम को समझ के अगर आप पानी को मैनेज कर सकते हैं, तो वो सोच जो है वो हम धीरे धीरे इंडिया में भी कोशिश कर रहे हैं कि बाहर से सीख के लाया जाए। और बाढ़ का काम अभी, क्योंकि हमारे शहर बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं, इस पे काफी अटेंशन हमने पे करना है, और एनडीएमए के साथ हम इस पे थोड़ा काम भी कर रहे हैं।
1: इनफैक्ट क्योंकि डॉक्टर वत्सा, हम अभी पानी की बात कर रहे हैं, और अगर मैं वापस जाऊं गुजरात पे, तो वहां पे एक तरफ सुजलाम सुफलाम और सोनी जैसी लार्ज स्केल वाटर इंटरवेंशन हैं, और दूसरी तरफ चेक डैम्स हैं, फार्म पॉन्ड्स हैं, और ग्राउंड वाटर रिचार्ज जैसे लोकल इंटरवेंशन भी हैं। तो गुजरात का ये जो इंटरवेंशन है, गुजरात का जो ये मॉडल है, क्या देश में बाकी स्टेट्स भी इससे कुछ सीख ले रहे हैं?
2: सारी जगह जो है सो ये लोकल लेवल पर जो पानी की उपलब्धता है, फार्म पॉन्ड्स जो है ना, जिसको हम खेत में जो तालाब, छोटे छोटे तालाब बनाए जाते हैं और जिसके कारण जल का संवर्धन होता है, उस पर काफी ध्यान दिया जा रहा है ना। और ग्राउंड वाटर को कैसे हम रिचार्ज कर सकें, इसकी ओर काफी ध्यान दिया जा रहा है। और इसके कारण देखिए, इस साल भी हमारे यहाँ पानी काफी कम हुआ, बारिश काफी कम हुई इस साल, करीब करीब 15% का डेफिसिट था। लेकिन चूंकि स्थानीय स्तर पर सिंचाई की सुविधाएं बढ़ रही हैं, इसके कारण खेती पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा है। मैं नहीं कहूंगा कि खेती पर असर नहीं पड़ा है, टोटल जो एरिया है खेती में उसमें 4-5% जो है मैं कह सकता हूं कि उस पर असर पड़ा है। लेकिन जिस हिसाब से बारिश इस बार कम हुई, उस हिसाब से खेती पर उतना असर नहीं पड़ा है। इसका कारण मुख्य ये है कि जो स्थानीय स्तर पर जल संवर्धन पर काफी ध्यान दिया गया है, इसके साथ साथ पर्यावरण पर भी ध्यान दिया जाता है। पेड़ लगाने पर, पेड़ों के लगाने से भी है ना, वो उर्वरता और जमीन की जो उपजाऊ संभावना है वो सब बढ़ती है। साथ साथ अभी हमने एनडीएमए की ओर से भी हमने एक छोटा सा कार्यक्रम 12 राज्यों में शुरू किया है, जहां हम हर राज्य में 25,000 किसानों को हम मदद कर रहे हैं। जहां भी इस तरह की सूखे की स्थिति है, उस सूखे की स्थिति को निपटने के लिए किस तरह से हम उनके खेतों में हम ज्यादा से ज्यादा सिंचाई की व्यवस्था कर सके, उन्हें अच्छे बीज उपलब्ध करा सके। तो एक वो किसानों की ओर एक तो ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, और दूसरा मैं कहूंगा कि स्थानीय स्तर पर सिंचन की व्यवस्था, उस पर भी काफी निवेश हुआ है और इसके अच्छे परिणाम आए हैं।
1: मिस्टर प्रोति, हमने पानी की बात करी, हमने बाढ़ की बात करी, अगर मैं सीडीआरआई का मॉडल समझूं, आपका मॉडस ऑपरेंडी जिसको कहते हैं वो समझूं, तो सबसे पहले प्रायोरिटी में आप कौन से नेचुरल डिजास्टर को रखते हैं, और उसके बाद उससे डील करने का तरीका क्या होता है?
0: सो आई थिंक पानी का सबसे बड़ा है एक्चुअली, अगर हमने डेटाबेस एक डाला है 3 साल पहले, कि ग्लोबली सबसे बड़ा रिस्क किसका है, वो फ्लड्स का ही आता है, भूकंप का भी आता है, उसके बाद फिर साइक्लोन आता है, अब गर्मी का भी शुरू हो गया है, अब
1: हीट वेव
0: लेकिन एक्सट्रीम हीट। अब हीट वेव क्या होता है कि अब हमको पता है दिल्ली में गर्मी आती है, 45-50 डिग्रीज का टेम्परेचर पहुंच जाता है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ उस पर क्या इम्पैक्ट आता है, आपकी एसी की जरूरत ज्यादा पड़ती है, बिजली की जरूरत ज्यादा पड़ती है, आपका सिस्टम उस टाइम काम ना करे, हॉस्पिटल की ज्यादा जरूरत, तो ये सब चीजें हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। फ्लड्स तब भी सबसे, आई थिंक 8 out of 10 आपके फ्लड्स के ही डिजास्टर सबसे ज्यादा होते हैं, लेकिन बाकी के भी जब भूकंप आता है तो डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा होती है उसकी। जब भूकंप आता है वो कम आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो फिर बहुत डिस्ट्रक्ट करते हैं। फ्लड्स रेगुलरली आ रहे हैं, उन पे डिस्ट्रक्शन भी बहुत हो रहा है, लेकिन उस पे अब काम इस तरीके से हो रहा है कि कल को पता है पानी में वेरिएबिलिटी आएगी, प्रेसिपिटेशन में वेरिएबिलिटी आएगी, उसको फ्लड और डिजास्टर ना हो पाए उस पे सोच अभी काफी चल रही है। एंड ये सिर्फ भारत में ही नहीं, ये बाहर देशों में भी इसी पे काफी फोकस आ रहा है। अब आपने यूरोप में भी देख लिया
1: गर्मी,
0: बट फ्लड, स्पेन में बहुत बड़ा फ्लड आया है, एक और चीज शुरू हो गई है वाइल्ड फायर, अभी अगेन हमारे भी स्पेन में भी आया है, पीछे लॉस एंजलिस में पूरा, काफी शहर में भी। तो ये सब चीजों में जनरली ज्यादा अटेंशन हो रहा है, और क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब पता लग रहा है कि वी आर नाउ 1 to 2 डिग्रीज वार्मर ग्लोबली में, पिछला साल सबसे गर्म साल था, उसके पहला साल वो सबसे गर्म साल था। तो ये इसकी वजह से वेदर पैटर्न

0: फिलोसफी में भी चेंज आ रहा है, और उसकी वजह से फिर ये वाइल्ड फायर हो गया, अभी ग्लेशियर बेल्ट की भी प्रॉब्लम शुरू हो रही है. सो ये सब चीजें हो रही हैं, बट इस पे काम भी होने लग गया है काफी.
1: मिस्टर प्रोति, आपसे ही मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि काफी मल्टीलैटरल फोरम्स होते हैं, जैसे अभी ब्रिक्स का समिट खत्म हुआ, उसके अलावा भी एससीओ मीटिंग हुई, काफी मल्टीलैटरल फोरम्स हैं, और सारे, जैसे आपने देशों का नाम लिया, हर कोई नेचुरल डिजास्टर से परेशान है और समाधान ढूंढ रहा है. तो अगर हम मल्टीलैटरल फोरम्स की बात करें, तो वहां भारत का नेतृत्व कैसा है, और उसके साथ साथ हमें आगे जाके कोई, हमने क्या डॉक्यूमेंट ऐसा बनाया है कि सारे देश एक पर्टिकुलर मॉडस ऑपरेंडी को फॉलो करेंगे, या ये एक अनसेड रूल है कोई?
0: है, और मैं चाहूंगा कि कृष्ण जी भी इस पे आपके तरह बात करें. हम सब देशों ने एक सेंडाई फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पे साइन किया हुआ है. ये एग्रीमेंट बोल रहा है कि हम सब देश डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पे काम करेंगे. ये ऑलरेडी है. G20 हुआ था भारत में, उस टाइम भारत ने G20 फोरम में बोला कि हम डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का मुद्दा में एक वर्किंग ग्रुप डालेंगे. इंडिया ने लीडरशिप ली, उसके बाद ब्राजील ने उसको फॉलो किया, उसके बाद साउथ अफ्रीका ने उसको फॉलो किया, और CDRI को गर्व से मैं बोलूंगा कि हम 7 साल भी नहीं हुए हमें एस्टैब्लिश हुए हुए, लेकिन हम इन तीनों फोरम में डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन सब ग्रुप्स के नॉलेज पार्टनर थे. अब आगे अगले साल सेंडाई पे भी चर्चा हो रहा है कि सेंडाई को भी अब थोड़े टाइम आ चुका है, उसको फिर से देखना है कि एग्रीमेंट में चेंज आए. इसमें भी अब भारत लीडरशिप दिखा रहा है, और सेंडाई का एक टारगेट है, 4 टारगेट्स में से एक टारगेट डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे है. उसमें हम जरूर भारत के साथ काम करके और बाकी देशों के साथ काम करके बोलेंगे कि इसमें क्या एग्रीमेंट दिखना चाहिए, ताकि अगले जो 10 साल है उस पे किस टाइप से फोकस हुआ जाए, उस पे हम जरूर अपनी नॉलेज लाएंगे वगैरह, उसको सपोर्ट करेंगे.
2: तो ये जो है कई क्षेत्रों की ओर अमित जी ने अपना ध्यान खींचा है. एक तो जिसे उन्होंने कहा कि फॉरेस्ट फायर पर, तो फॉरेस्ट फायर के लिए हमने एक अलग से कार्यक्रम शुरुआत की है. अभी वो है ना 15 राज्यों में वो कार्यक्रम अभी चल रहा है. तो हमने जो है फॉरेस्ट फायर के इमीडिएट रिस्पांस के लिए और उनके जो लॉन्ग टर्म जो मिटिगेशन है उसके लिए, दोनों के लिए को इस कार्यक्रम में शामिल किया है. और इसके कारण मुझे लगता है कि जो फॉरेस्ट फायर का जो स्वरूप आपको कई देशों में बाहर दिखने को मिल रहा है, भारत में इसमें काफी कमी आई है और काफी नियंत्रण हमने किया है. जो हमारे NDRF के बटालियंस अभी इसके लिए ट्रेंड हैं, हम जो फॉरेस्ट में वाटर बॉडीज को क्रिएट कर रहे हैं, हम फायर लाइंस को और इम्प्रूव कर रहे हैं. तो इन सब के कारण ये जो हमने कुछ स्टेप्स लिए, इंडियन एयरफोर्स अब मदद करती है. अच्छा. जब भी कभी फॉरेस्ट फायर होता है और एक विशेष सीमा से बाहर जब चला जाता है, तो इंडियन फोर्स तो हमारा फॉरेस्ट फायर पर थोड़ा बेहतर नियंत्रण हुआ है, ये मैं कहूंगा. हीट वेव की बात हो रही है कि तापमान बढ़ रहा है, तो हीट वेव पर भी हम आज हमारे पास 300 से ज्यादा हीट एक्शन प्लान्स हैं पूरे देश में. कई शहरों ने बनाए हैं, कई जिलों ने बनाए हैं. करीब करीब 23 ऐसे राज्य हैं जहां हीट वेव होती है, लू की घटनाएं होती हैं ज्यादा, तो उन सबों ने ये हीट एक्शन प्लान बनाया है. तो हीट एक्शन प्लान के कारण भी थोड़ी जन जागरूकता बढ़ी है, लोगों का थोड़ा इस पर ध्यान गया है, प्रशासन का स्थानीय स्तर पर ध्यान गया है. और इसके कारण जो हीट वेव के कारण जो होने वाली जो बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी परिणाम है, उसमें थोड़ी कमी आई है. मैं ये नहीं कहूंगा कि है ना हम बिल्कुल हमें, लेकिन सारी चीजों में थोड़ा थोड़ा हमारा इस पर हमें सफलता मिली है और हम एक पॉजिटिव डायरेक्शन में हम जा रहे हैं. और इसका मुख्य कारण इन सब चीजों का ये है कि एक थोड़ी जो है राष्ट्रीय स्तर पर एक मिटिगेशन फंड हमने बनाया, नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर मिटिगेशन फंड बनाया. तो हम सिर्फ अब जो है रिस्पांस की ओर नहीं ध्यान दे रहे हैं, हम जो दीर्घकालिक उपाय हैं उनकी ओर ध्यान दे रहे हैं. और ये सब बहुत हाल के वर्षों में हुआ है, ये पिछले 5-6 वर्षों में 7 वर्षों में ये सब कुछ हुआ है. और इसके कारण जो है हम सारे आपदाओं से निपटने की तैयारी कर रहे हैं. तो हमारा ये ध्यान है, और इसमें है ना माननीय प्रधानमंत्री का नेतृत्व एक बहुत ही अहम भूमिका निभाया है कि उन्होंने इस मिटिगेशन फंड के लिए जो आवश्यक निधि है वो उसकी ओर उनका हमेशा समर्थन रहा है. और

0: हम सारे डिजास्टर्स के लिए एक हम लॉन्ग टर्म हमने अप्रोच लिया है, और उसी अप्रोच के तहत सीडीआरआई की भी स्थापना हुई है, जिसके माध्यम से हम जो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इनको किस तरह से हम ज्यादा रेजिलियंट कर सकें, ज्यादा मजबूत कर सकें, सक्षम कर सकें, इसकी ओर हमारा ध्यान है। तो जो भी है, जो भी प्रकल्प बन रहे हैं, उस प्रकल्प में हम किस तरह से जो रिस्क हैं उन रिस्क को फैक्टर करें, उन रिस्क को असेस करें, और उन रिस्क के लिए जो आवश्यक उपाय हैं वो किए जाएं। अभी देखिए, हिमालय का जो क्षेत्र है वो थोड़ा ज़्यादा संवेदनशील हो गया है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, और उसके कारण जो है सो ग्लेशियल मेल्ट हो रहा है, तो ग्लॉफ जैसी घटनाएं जो अभी नेपाल में हुई है, तो ग्लॉफ के लिए भी हमने एक प्रोग्राम लिया है अभी। तो हम सारे जो ग्लेशियल लेक्स हैं जो हिमालयन राज्यों में, सबका हम रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं, सबकी हम मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं। हमारा ये प्रयत्न रहेगा कि अगले कुछ वर्षों में हम सारे जो ग्लेशियल लेक्स हैं सब में हम अर्ली वार्निंग सिस्टम एस्टैब्लिश कर सकें, सब में हम मिटिगेशन का कार्यक्रम कर सकें, सबको एक सारे लेक्स को इकट्ठा करके एक हम ऐसा नेटवर्क स्थापित कर सकें जिसके माध्यम से हम सारे लेक्स की अच्छे से मॉनिटरिंग कर सकें। तो यह हमारा प्रयत्न है कि हम एक लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट ओरिएंटेड अप्रोच रखें, ताकि हम ना आपदाओं पर हमारा एक ना बेहतर नियंत्रण रह सके।
1: जितना मैं आपकी बात से समझ पाई हूँ कि अब साइलोज में काम नहीं होता, लोग
0: जी
1: सारे डिपार्टमेंट साथ आके काम
0: जी
1: करते
0: बिल्कुल,
1: हैं।
0: बिल्कुल।
1: बात हमने 2001 गुजरात अर्थक्वेक से शुरू की थी, और चलते चलते बहुत ही ब्रीफ पार्टिंग कमेंट्स में आप दोनों से लेना चाहूंगी। कोई भी आपदा होती है, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था, आम इंसान इम्पैक्ट होता है, बच्चों की मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता है, उस पर भी क्या कोई काम हो रहा है?
0: हमारे यहाँ एक हम अभी 12 राज्यों में इस पर कर रहे हैं काम, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस की मदद से साइको सोशल काउंसलिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, लोग बहुत बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। हमने अभी सिक्किम में जब ग्लॉफ हुआ था तो भी उस समय भी हम वहाँ हम गए थे, और वहाँ लोगों को जो जिस तरह की काउंसलिंग होनी चाहिए उसके लिए हमने प्रयत्न किया था, और लोकल लेवल पर किस तरह से हम काउंसलर्स और हम ज़्यादा कर सकें, ताकि ये सब चीजें हैं तो ऐसा नहीं है कि एक बार आपने काउंसलिंग दे दी तो हो गया, हर स्टेट में काउंसलिंग के लिए एक सिस्टम बनना चाहिए। तो हमारा ये प्रयत्न है कि हम हर राज्य में इस तरह का एक सिस्टम बनाएं, और सब जगह आपदाओं के बाद होने वाले जो इस तरह के ना मानसिक स्वास्थ्य पर जो परिणाम होते हैं उसके लिए अभी हम प्रयत्न कर सकें।
1: डॉक्टर,
2: हम एक्चुअली स्कूल्स को देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि अभी जैसे गर्मी की वजह से, और ये हमने गाइडलाइंस बनाई हैं ताकि जो सिर्फ भारत में नहीं पर बाहर देशों में भी, कि जैसे स्कूल जैसे जगह को आप किस तरीके से, एक तो उस पर गर्मी कम आए तो बिल्डिंग किस तरीके से बनाई जाए कि उसमें अगर बाहर का तापमान बहुत गर्म है, अंदर उसको कैसे गर्मी से बचाया जाए, आप कैसे बच्चों को सिखाएं कि पानी ज़्यादा पीजिए या बाहर मत खेलिए या थोड़ा उसमें शेडिंग के साथ काम करिए, तो हमने ये गाइडलाइंस निकाली है ताकि स्कूल जैसी संस्था को गर्मी के मौसम में, गर्मी के दिन पे किस तरीके से वो उसका तापमान या उसका एटमॉस्फेयर अंदर ऐसा रह जाए और बिहेवियर जो बच्चों का है ऐसा रहे कि वो कुछ ऐसा नहीं करे जाके बाहर खेल रहे हैं गर्मी में या पानी नहीं पी रहे हैं, या अगर आपका बॉडी में थोड़ा गर्मी आ रही है तो किसी को बता रहे हैं कि थोड़ा कुछ ध्यान दे दीजिए। उस पर अटेंशन हमने फोकस ज्यादा किया है स्कूल्स पे, सिमिलरली हम हॉस्पिटल्स पे भी करेंगे, क्योंकि हमारा काम इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में है, हम ये सोचते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और इसमें जो यूसेज है दोनों को किस तरीके से देखा जाए कि इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कम तंगी आए और जो यूज उसको कर रहा है उसको भी इन चीजों के बारे में ऐसी समझ है कि वो अपने बिहेवियर की वजह से ज्यादा प्रॉब्लम में ना जाए। सो इस तरीके से कोलिशन देख रहे हैं कि जैसे गर्मी के चक्कर में स्कूल्स हो गए, मेट्रो हो गए, ऐसे ही हम अटेंशन दे रहे हैं जिसमें बच्चों पे एक बहुत, एंड ऑफ द डे बच्चे हमारे यूज करते हैं ये सिस्टम्स, तो उनको भी सिखाया जाए कि ऐसे बिहेवियर कैसा आप ध्यान दें, कैसे इस पे आप कंट्रीब्यूट करें कि अगर गर्मी का दिन है कि बाकियों को देख लीजिए। सो इस पे हम थोड़ा काम कर रहे हैं।
1: डॉक्टर कृष्णा एस वत्सा एंड मिस्टर अमित रोथी, आप दोनों आकाशवाणी के स्टूडियो में आए। बात हमने डिजास्टर से शुरू की थी, लेकिन अब हम सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, और वही आज के हमारे प्रोग्राम की थीम भी थी, समस्या से समाधान तक। आप दोनों से बातचीत करके हमें काफी कुछ जानने को मिला। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर दिस स्पेशल एपिसोड ऑन आकाशवाणी।
0: थैंक यू सो मच।
3: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा की 11वीं संस्था

संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा संकट से समाधान तक। इसमें भाग ले रहे थे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA के सदस्य एवं विभाग अध्यक्ष डॉक्टर KS वत्स और कोएलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI के महानिदेशक अमित प्रोथी। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप NewsOnAIR और YouTube चैनल NewsOnAIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289904044।

हमारे स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है 9:50 से थोड़ा सा ज़्यादा और आज है 28 सितंबर, म्यूज़िकल दिल्ली है ये। वैसे तो हर दिन ख़ास होता है लेकिन कुछ दिन उसके लिए हम कह सकते हैं कि बहुत ख़ास होता है। सितंबर का महीना जाने वाला है, ये वही महीना है जब हर सिंगार फूलता है, पानी बरसता है, धूप भी अच्छी लगती है और छांव भी अच्छी लगती है। ये वही महीना है जब बड़े सारे लोगों को याद किया जाता है, कई सारी बातें हम सब के पास होती हैं। तो एक बात है आपके लिए और वो ये है कि अटल पेंशन योजना के बारे में क्या आप जानते हैं? भारत सरकार की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को बुढ़ापे में वित्तीय सुरक्षा और निश्चित पेंशन प्रदान करना है। और इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं और इसकी बहुत सारी एलिजिबिलिटी हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आप पढ़िए विस्तार से और जानिए इसके बारे में कि हाँ ये हमारे काम आ सकती है या नहीं। म्यूजिकल दिल्ली, आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पे।

खुशबू की साई में आइए बैठते हैं, क्योंकि दुनिया में बहुत कुछ है ऐसा जिस पे हम लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं, लेकिन अगर कोई गीत अच्छा लगे, कोई इंसान मन को भाए, किसी से मन मिल जाए, तो फिर जरा से प्यार में पूरा जीवन बीत जाता है और पता ही नहीं चलता।

थोड़ी ही देर में 10 बजने वाले हैं, समय होगा वो समाचारों का और उसके बाद दिल का मेल बॉक्स लेकर के हाजिर हो जाएंगे हम आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे। बहुत सारी

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद ये कार्रवाई की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। आकाशवाणी पर कल प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में रबी अभियान 2026 के लिए 2 दिन के राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में आगामी रबी सीजन की तैयारियों और कृषि क्षेत्र की प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत करेंगे। इसे देश में पशुधन बीमा सेवाओं के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में काम करेगा। आज से प्रस्तावित 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित हो गई है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBEA ने इसकी पुष्टि की है। यह फैसला भारतीय बैंक संघ IBA के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम में संशोधन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए कल से 2 दिन तक दिल्ली के सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में विशेष शिविरों का एक और चरण आयोजित किया जाएगा। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की है। इसके अंतर्गत एक साझा डिजिटल मंच पर पर्यटन से जुड़ी विभिन्न सेवाओं और सुविधाओं तक पहुंच मिल सकेगी। मंत्रालय ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC के साथ मिलकर नेशनल डिजिटल टूरिज्म स्टैक तैयार करने की पहल की है। देश आज शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती मना रहा है। भगत सिंह का जन्म वर्ष 1907 में आज ही के दिन पंजाब के तत्कालीन लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। प्रधानमंत्री ने भी शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए एक वीडियो साझा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत रत्न लता मंगेशकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि लता मंगेशकर ने अपनी दिव्य गायन प्रतिभा से पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय संगीत की दुनिया में लता मंगेशकर का अतुलनीय योगदान युगों तक स्मरणीय रहेगा। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत के असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बिजली चमकने के साथ आंधी और तेज हवाएं चल सकती हैं। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले हिमालयी क्षेत्रों में 179 ट्रैकर्स पर्वतारोहियों और उनके सहयोगी कर्मचारियों को सुरक्षित निकालने के लिए बचाव अभियान चलाया जा रहा है। ये लोग उत्तरकाशी और बागेश्वर जिलों में 13 अलग अलग ट्रैकिंग दलों में फंसे हुए हैं। तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत की पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की आज 10वीं वर्षगांठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत की आतंकवाद रोधी नीति का नया उदाहरण बताया। नेपाल में तेज बारिश से आई बाढ़ और भूस्खलन में 21 लोगों की मौत और 5 लापता। अमेरिका ने ब्रिटेन में आतंकवादी हमले के संदेह में हुई गिरफ्तारियों के बाद अपने नागरिकों के लिए सुरक्षा चेतावनी जारी की। और तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में विराट कोहली और शुभमन गिल के शतक की बदौलत भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। ये कार्रवाई 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद की गई थी। इस हमले में 18 जवान शहीद हुए थे। वर्ष 2019 में बालाकोट और वर्ष 2025 में ऑपरेशन सिंदूर से भी पाकिस्तान पर कार्रवाई की गई। आकाशवाणी पर कल प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की है। इसके अंतर्गत एक साझा डिजिटल मंच पर पर्यटन से जुड़ी विभिन्न सेवाओं और सुविधाओं तक पहुंच मिल सकेगी। मंत्रालय ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC के साथ मिलकर नेशनल डिजिटल टूरिज्म स्टैक तैयार करने की पहल की है। इसका लक्ष्य वर्ष 2028 के अंत तक 23,000 पर्यटन अनुभवों और होमस्टे को इस मंच से जोड़ना है और उन्हें बुक करने योग्य बनाना है। पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल विश्व पर्यटन दिवस पर भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में इस परियोजना की शुरुआत की। मंत्रालय के अनुसार ONDC और इंटरनेशनल सेंटर फॉर DPI इनोवेशन एंड एडवांसमेंट ICDIA के सहयोग से विकसित किया जा रहा है, जो इस डिजिटल ढांचा से पर्यटन विकल्पों को अधिक सुलभ और विश्वसनीय बनाएगा। कार्यक्रम में पर्यटन सचिव भुवनेश कुमार ने कहा कि नेशनल डिजिटल टूरिज्म स्टैक की परिकल्पना एक टिकट एक पास की है, जिससे पूरे भारत को एक ही यात्रा अनुभव से जोड़ा जा सकेगा। इस डिजिटल ढांचे का उद्देश्य पर्यटकों को देश के अधिकतर स्थानों की जानकारी उपलब्ध कराना, यात्रा को सुविधाजनक बनाना, आसानी से बुकिंग और भुगतान की सुविधा देना तथा कागजी कार्रवाई कम करना है। दुबई में भारतीय वाणिज्य दूतावास सेवा पखवाड़े के अंतर्गत कई कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इसका उद्देश्य सेवा की भावना, समुदाय की भागीदारी और देश के प्रति समर्पण को बढ़ावा देना है। एक रिपोर्ट।
2: विकसित भारत दौड़ 2026 के लिए भारतीय समुदाय के लोग बड़ी संख्या में एकजुट हुए। ये दौड़ भारतीय वाणिज्य दूतावास ने इंडियन पीपल्स फोरम IPF के साथ मिलकर मशहूर दुबई फ्रेम के पास आयोजित की थी। महावाणिज्य दूत डॉक्टर ई विष्णु वर्धन रेड्डी ने इस दौड़ को हरी झंडी दिखाई। इसमें लोगों ने बहुत उत्साह दिखाया और लगभग 3,000 लोगों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। यह कार्यक्रम विकसित भारत के प्रति सामूहिक संकल्प को दर्शाता है। इससे पहले भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने शहर के गुरु नानक दरबार गुरुद्वारे का दौरा भी किया, जहां उन्होंने इन आयोजनों के हिस्से के तौर पर लंगर सेवा में भाग लिया। ये गतिविधियां सेवा पखवाड़े के तहत हो रहे कार्यक्रम का हिस्सा हैं और दुबई में भारतीय समुदाय के लोगों के बीच सेवा की भावना और सामुदायिक जुड़ाव को उजागर करती हैं। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: भारत ने अफगानिस्तान को मानवीय सहायता के तौर पर काबुल के सरकारी अस्पताल के लिए जीवन रक्षक दवाओं और चिकित्सा सामग्री की एक खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि अफगान के लोगों के लिए भारत की सहायता में स्वास्थ्य क्षेत्र को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। नेपाल में चार दिन से हो रही मूसलाधार बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से 21 लोगों की मौत हुई है, जबकि 5 लोग लापता और 5 अन्य घायल हैं। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार सबसे अधिक 14 लोगों की मौत भूस्खलन से हुई। खराब मौसम से देश भर में 247 परिवार प्रभावित हैं, 260 मकान पूरी तरह नष्ट और 80 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण 24 से 27 सितंबर के बीच नेपाल के कई हिस्सों में अत्यधिक तेज बारिश हुई। जलस्तर बढ़ने और भूस्खलन के खतरे को देखते हुए करीब 3,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। इस बीच मध्य नेपाल में नारायणी नदी का जलस्तर 9 मीटर के चेतावनी स्तर को पार कर बस्तियों में पहुंच गया है। लंदन स्थित अमरीकी दूतावास ने ब्रिटेन में रह रहे या यात्रा कर रहे अमरीकी नागरिकों के लिए सुरक्षा चेतावनी जारी की है। ये चेतावनी फेयरफोर्ड में रॉयल एयरफोर्स बेस के पास आतंकवादी हमले की तैयारी के संदेह में कई लोगों की गिरफ्तारी के बाद की गई है। दूतावास के अनुसार ब्रिटेन में आतंकवादी हमले की आशंका बहुत अधिक है। दूतावास ने विशेष रूप से चेतावनी दी है कि अमरीकी हितों को भी निशाना बनाया जा सकता है। अमरीकी नागरिकों से सतर्क रहने, अपने आसपास की गतिविधियों पर नजर रखने, व्यक्तिगत सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने और अपने परिवार तथा मित्रों को अपनी स्थिति की जानकारी देते रहने को कहा गया है। उन्हें स्थानीय मीडिया से लगातार अपडेट लेते रहने और सुरक्षा संबंधी सूचनाओं के लिए अमरीकी विदेश विभाग के स्मार्ट ट्रेवलर एनरोलमेंट प्रोग्राम STEP में पंजीकरण कराने की भी सलाह दी गई है। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका और ब्रिटेन की सुरक्षा एजेंसियों के संयुक्त अभियान की सराहना की थी। उन्होंने कहा कि इस अभियान में इंग्लैंड के एक सैन्य हवाई अड्डे के पास विस्फोटक संबंधी अपराधों के संदेह में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक ने कल अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी। ये उनका दूसरा कार्यकाल है। इस घोषणा के बाद राष्ट्रपति चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है। वुसिक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के राजनीतिक सहयोगी हैं। 5 साल का दूसरा कार्यकाल समाप्त होने से 7 महीने पहले वुसिक का इस्तीफा सर्बिया में 25 अक्टूबर को होने वाले संसदीय चुनाव के प्रचार के बीच आया है। और अब खेल खबरों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
3: तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। 296 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत ने 41 ओवर और 4 गेंद में 2 विकेट खोकर 300 रन बनाकर जीत हासिल की। विराट कोहली ने नाबाद 139 रन और कप्तान शुभमन गिल ने 110 रन बनाकर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। ये विराट का एक दिवसीय क्रिकेट में 55वां शतक है। इसके साथ ही वो सचिन तेंदुलकर के बाद एक दिवसीय क्रिकेट में 15,000 रन पूरे करने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। भारत की ओर से कुलदीप यादव ने 4 विकेट लिए और उन्हें मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। अब बात एशियाई खेलों की। एशियाई खेलों के 9वें दिन आज पुरुष क्रिकेट के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में वर्तमान चैंपियन भारत का सामना अफगानिस्तान से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा। इसके अलावा मुक्केबाजी, एथलेटिक्स, निशानेबाजी और हॉकी में भी भारत अपनी चुनौती पेश करेगा। इससे पहले कल भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 16 रजत और 17 कांस्य सहित कुल 37 पदक लेकर 12वें स्थान पर है।
0: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत की पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की आज 10वीं वर्षगांठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत की आतंकवाद रोधी नीति का नया उदाहरण बताया। नेपाल में तेज बारिश से आई बाढ़ और भूस्खलन में 21 लोगों की मौत और 5 लापता। अमेरिका ने ब्रिटेन में आतंकवादी हमले के संदेह में हुई गिरफ्तारियों के बाद अपने नागरिकों के लिए सुरक्षा चेतावनी जारी की। और तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में विराट कोहली और शुभमन गिल के शतक की बदौलत भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

हर दिल गाएगा क्योंकि हर गीत में भावनाओं की बात है। उनकी आवाज में मिठास है, सुरों की मल्लिका संगीत की शान है। लता जी सचमुच में बहुत सारे भावनाओं की पहचान है। दिल का मेल बॉक्स है ये, आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पे आप सबका स्वागत है। दिल का मेल बॉक्स में हमें हर पल हमारी खुशियों से भरा रहे ऐसी आप कामना करते हैं, हमें मेल करते हैं, थैंक यू वेरी मच। तो ये है जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज आयुषी, रमेश चंद, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बुड़ाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदनी, रोहित, रितु, मुकेश जगताप हैं। मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड़ हैं। कविता कर्ण, शक्ति, रिया, जया और दर्शन भाई ये कहते हैं एनी सॉन्ग। और हर गाना लता जी की आवाज में अगर वो गाना है तो फिर हम सबके दिल के करीब है। दिल का मेल बॉक्स है ये, आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे, एफएम गोल्ड aardelhi@gmail.com पे आपने हमें किया मेल, बताया अपना नाम, अपने शहर का नाम। जैसे कि इन्होंने कहा, गांव टोरोवाल, जिला नवांशहर, पंजाब से गगनदीप, चित्रा गुप्ता, तृप्ता कुमारी थांती, डॉक्टर प्रियंका, प्रशांत, प्रियम, बेबी वामिका और वाणी धांती, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा, सिटी दीवाना गुरवंश सिंह जौड़ा और मलयाना सरधना मेरठ से अनिल जैन, जैन साहब, संयम, मुस्कान, मास्टर जीवीएम जैन। और इसके अलावा अनीता वर्मा है द्वारका दिल्ली से। आप सब याद कर रहे हैं आज एक ऐसी पर्सनैलिटी को, क्योंकि आज है 28 सितंबर। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि हर दिन खास होता है, लेकिन कुछ दिन बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है। और आज ही लता जी, जी हाँ, लता मंगेशकर जिनका जन्म हुआ, और उन्हीं के गाने, उन्हीं की चॉइसेस, उन्हीं के बारे में बहुत कुछ आप लोग लिख के भेज रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। स्वर कोकिला लता मंगेशकर 28 सितंबर 1929 में इंदौर को पैदा हुई, और उसके बाद जो कहानी है हम सबके सामने है।

लता जी की आवाज़, फिल्म का नाम दस्तक और आपका नाम सौराष्ट्र राजकोट से जूली जगदीश गुजराती, प्राची और प्रवीण पुजारी, छोटी बलिया मुंबई करजत से अहमद भाई फूलवाले, इमरान अहमद फूलवाले, आमना, आसमा और नसरीन, इकबाल अहमद और समस्त फूल वाले परिवार, सौंगा धमतरी से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित कुमार, देविका रानी, गजेंद्र कुमार चंदन, हे यांश कुमार चंदन, गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से मास्टर खीलू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाज शेख, दानिश, अमन आफरीदी और मुक्कम पोस्ट फूल चिंचोली पढ़रपुर से जाकिर, सुमैया, सुबान, समीर, सलमा, मुमताज, मुलानी और दिलशाद है नसीर, चाचा, चाची और इनके साथ साथ पूरा का पूरा इनका परिवार, फजल का पंजाब खेड़ा परिवार, भूषण खेड़ा, विशु, विशार और शालिनी हैं, टिवानशी हैं, वाणी खेड़ा हैं और बी खेड़ा, जीवन सिंह बुक, समस्त पूरा का पूरा इनका परिवार है और लता जी की आवाज़, लता जी को याद कर रहे हैं। और मैं आपको वैसे याद दिला दूँ, आज कलाकार बेमिसाल में शबनम के साथ आप ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि बातें होंगी लता जी की और गाने भी होंगे उन्हीं के, सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर।

0: दिल की गहराइयों से पसंद किया ये गाना ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू जामुन देवी साहू राजू लल्ला पूजा प्रांजल समीक्षा बेबी आराध्या साहू बेबी आराध्या को ये गाना समझ में आ गया कितनी अच्छी बात है। बबलू कश्यप अशरफ अली नवाब अहमद शबाना संजय और अरहान दिल्ली से उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल कमला रानी भानु प्रकाश गीतिका खोरवाल और ये है दिल का मेल बॉक्स सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पे।
1: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
2: मैम मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
3: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
4: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
5: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
6: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
1: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं, तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
7: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
8: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन अप्लायंसेस हो या कार या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है, हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
9: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया इनोवेट विद इंडिया स्केल फॉर द वर्ल्ड।
10: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
11: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
10: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
11: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
10: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
11: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी

दिल का मेल बॉक्स है ये। पहाड़गंज मुदाली ढांढा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक कहते हैं कि कोई भी गाना हर गाने में हमारी बात है। इसके साथ साथ मोहम्मद कुमार हैं, सुमेरा हैं, धर्मेंद्र, दिलावर, जय जय जय, बहुत सारे जय के हमारे पास मैसेजेस आए हैं। एसपी गोयल साहब हैं, जाकिर हैं, दिलावर खान हैं, धर्मेंद्र जी हैं, सुमेरा हैं और बहुत सारे लोग अपनी अपनी चॉइस, अपनी अपनी बात बता रहे हैं, जिसके लिए हम हर बार की तरह चाहते हैं थैंक यू वेरी मच, क्योंकि ये है दिल का मेल बॉक्स आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो आप इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए, अपनी चॉइसेस हमें बताते रहिए। फिलहाल बजने वाले हैं 11, समय है ये समाचारों का।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद ये कार्रवाई की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए।

0: के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन एशियन अवसंरचना निवेश बैंक की 11वीं वार्षिक बैठक और निवेशक संवाद 2026 में भाग लेने के लिए कतर की राजधानी दोहा पहुंच गई हैं। इस वार्षिक बैठक में सदस्य प्रतिनिधिमंडल, नीति निर्माता और अन्य संबंधित पक्ष बैंक की रणनीतिक दिशा, संचालन प्राथमिकताओं और भविष्य के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने घोषणा की है कि आज से शुरू होने वाली 3 दिन की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित कर दी गई है। ये निर्णय भारतीय बैंक संघ के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। सोशल मीडिया पोस्ट में ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने कहा है कि ये निर्णय कल रात भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बीच हड़ताल से संबंधित मुद्दों पर हुई बैठक के बाद लिया गया। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम में संशोधन किया है। युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए कल से 2 दिन तक दिल्ली के सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षा संस्थानों में विशेष शिविरों का एक और चरण आयोजित किया जाएगा। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की है। इसके अंतर्गत एक साझा डिजिटल मंच पर पर्यटन से जुड़ी विभिन्न सेवाओं और सुविधाओं तक पहुंच मिल सकेगी। मंत्रालय ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के साथ मिलकर नेशनल डिजिटल टूरिज्म स्टैक तैयार करने की पहल की है। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत करेंगे। इसे देश में पशुधन बीमा सेवाओं के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में काम करेगा। देश आज शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए एक वीडियो साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि भगत सिंह ने कम उम्र में ही मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत रत्न लता मंगेशकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि लता मंगेशकर ने अपने दिव्य गायन प्रतिभा से पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित 46वें शतरंज ओलंपियाड में नोना ग्रैपिनशिवाली ट्रॉफी बरकरार रखने पर भारतीय शतरंज खिलाड़ियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने खिलाड़ियों के जुनून और दृढ़ संकल्प की सराहना की। जापान के आईची नागोया में एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारत और अफगानिस्तान के बीच क्वार्टर फाइनल मैच खराब मौसम के कारण रद्द होने के कारण रैंकिंग के लिहाज से भारत को सेमीफाइनल में प्रवेश मिल गया है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला नेपाल और श्रीलंका के बीच होने वाले क्वार्टर फाइनल के विजेता से होगा। भारतीय शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज सुबह के सत्र में 1% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 730 अंक गिरकर 73,170 पर और निफ्टी 231 अंक गिरकर 22,909 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. India marks the 10th anniversary of surgical strikes that demonstrated to the world a new example of Narendra Modi government's counter-terrorism policy. On September 28th and 29th in 2016, Indian Army carried out targeted surgical strikes on terrorist launch pads across the line of control, or LOC, in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. The operation was launched as a direct and decisive military response to the Uri terror attack earlier that month, where 19 Indian soldiers lost their lives. The anniversary highlights a decade of

11:10 हो गए हैं। ये समय होता है तस्वीर का। धूल उड़ी थी रणभूमि में, गूंजी शंख की तान, कुरुक्षेत्र की धरती ने देखा धर्म अधर्म का मान। अर्जुन खड़ा था चिंतित होकर सामने अपना कुल, कृष्णा ने तब गीत सुनाई मिटा दिया मन का शूल। कुरुक्षेत्र केवल रण नहीं, जीवन का संदेश है, कर्तव्य पथ पर बढ़ते जाना यही इसका उपदेश है। तो फिर आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं जहाँ पे आपको लेके जाऊंगी, जिस जगह की तस्वीर दिखाऊंगी, उस जगह का नाम क्या है, और वो है कुरुक्षेत्र, हरियाणा का कुरुक्षेत्र, जो बहुत ही पास में है और बहुत ही दिल्ली के बहुत पास है और बहुत सारे लोगों के दिल के बहुत करीब।

कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र सिर्फ इतिहास का एक मैदान नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी बात है जो हम सब के साथ चलती रहती है, जो कभी हमारे अंदर होती है। हमें ज़िंदगी जब दो रास्तों पे खड़ा कर देती है, तब हमारा मन कहता है कि रुक जाओ, लेकिन हमारा कर्तव्य कहता है कि नहीं भाई, आगे बढ़ो। कभी नंदलाला बनके, कभी कान्हा बनके, और कभी अर्जुन के सारथी बनकर। तो चलिए, हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे कुरुक्षेत्र के बारे में, कि आप हैरान हो जाएंगे और कहेंगे कि भाई, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली के आसपास वाले अगर कुरुक्षेत्र नहीं गए हैं तो वो ज़रूर इसका प्लान बनाएंगे और यही सोचेंगे कि इतनी पास वाली जगह और इतनी ख़ास वाली जगह हमसे भला कैसे मिस हो गई। कुरुक्षेत्र, अगर आप अभी हमें वहाँ पर सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली की एफएम गोल्ड चैनल को, तो आप हमें मेल करके अपने शहर के बारे में बता सकते हैं, नहीं तो फिर तस्वीर लेकर के मैं हूँ ना आपके लिए सिर्फ और सिर्फ यहीं पे।

तस्वीर है आज कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र एक ऐसा शहर है जिसका अपने बड़े सारे इवेंट्स होते हैं वहाँ पे, उनका अपना एक कैलेंडर है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की बात की जाए, अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव, सूर्य ग्रहण, छठ पूजा, चैत्र चौदस मेला, रत्नावली और हर अमावस। हर बार आप जब भी यहाँ पे जाएंगे, इस जो भी मैंने अभी नाम लिए इतने सारे इवेंट्स के, तो आपको वहाँ पे हर बार एक अलग अलग रंग देखने को मिलेगा। इसलिए ये शहर हमेशा हमेशा लोगों के दिलों में और दिमाग में भी बसता है और वो सोचते हैं कि भाई कब हम जाएं। और ये जो इवेंट है ना इस शहर के, इसको आप डाउनलोड करके रखिए, हो सकता है कि आगे आने वाली यात्रा में आपको काम आए।

फिर हम चलें कुरुक्षेत्र। यह तस्वीर आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पे और तस्वीर है आज कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र कैसे पहुंचे? तो सड़क मार्ग से अगर आप जाना चाहते हैं तो कुरुक्षेत्र राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 बहुत ही अच्छे से जुड़ा है, दिल्ली से लगभग 160 किलोमीटर की दूरी पर है। ट्रेन की अगर बात करें तो कुरुक्षेत्र जंक्शन रेलवे स्टेशन देश के सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। कुरुक्षेत्र मुख्य दिल्ली अम्बाला रेलवे लाइन पे है जो दिल्ली से लगभग 160 किलोमीटर, जैसा कि मैंने आपको बताया, करनाल से 34 किलोमीटर मतलब उत्तर की तरफ अगर जाएंगे और अम्बाला से 40 किलोमीटर दक्षिण की तरफ है। और कुरुक्षेत्र एक ऐसी जगह है जिसे पूरे भारत में अपनी महान संस्कृति और विरासत के लिए जाना जाता है। इसके बारे में अगर आप हिस्ट्री पढ़ने जाएंगे ना तो फिर बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल तो मैं आपको बता रही हूँ कि इस शहर में जाइए, यहाँ की जो अनोखी चीज़ें हैं उनको देखिए, समझिए और बहुत सारी चीज़ें आपको याद आएंगी, क्योंकि यहाँ पे गीता का उपदेश, इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का अमर उपदेश दिया था। और इस क्षेत्र का नाम प्राचीन काल के राजा कुरु के नाम पर रखा गया। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि किस शहर में कौन सी नदी है, कौन से तालाब है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो उसके साथ जुड़ती है और एक कहानी बनती है, क्योंकि जहाँ भी हम जाते हैं हर शहर की कोई ना कोई कहानी होती है और वो कहानी स्पेशली मुझे तो बड़ी रुहाती है। ये तस्वीर है कुरुक्षेत्र की, आपको कैसी लग रही है बताइएगा।

प्यार बांटते चलो और इसी तरह से यात्राओं पे साथ साथ हो चलो। तो कुरुक्षेत्र में हम क्या देखेंगे, ब्रह्म सरोवर देखेंगे, यहाँ का सबसे विशाल और पवित्र सरोवर ये माना जाता है। ज्योतिसर जाएंगे, वहाँ पे पवित्र स्थल है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। और आपको मालूम है कि जब आप आस पास घूमेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि ऐसा लगेगा कि शायद ये साक्षी हैं उस समय की। थोड़ा सा आगे और जाइए तो सन्निहित सरोवर मिलेगा जिसे पवित्र नदियों का संगम स्थल माना जाता है। कुरुक्षेत्र को उसकी ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के साथ साथ म्यूजियम के लिए भी जाना जाता है। मालूम है आपको कि ये शहर है एक ऐसा जिसको के लिए कहा जाता है कि ये शहर म्यूजियम का शहर है, और आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट म्यूजियम मिल जाएंगे, तो उनको बिल्कुल भी आप मिस मत कीजिएगा, देखने जाइएगा। और आपको हर म्यूजियम में अलग अलग कहानी मिलेगी। श्री कृष्ण संग्रहालय कुरुक्षेत्र हरियाणा में, मतलब आप जब जाएंगे तो फिर आपको एक अलग कहानी मिलेगी। बगल में जाएंगे तो भारत में आपको कुरुक्षेत्र पैनोरामा और विज्ञान केंद्र वहां पे नजर आएगा। इसके साथ साथ वहां पे मतलब कम से कम 5 या 6 आपको म्यूजियम मिल जाएंगे, जो इसकी लिस्ट है काफी लंबी है। तो आप अगर इसके शौकीन हैं तो इसको देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये अपने आप में ना एक बहुत ही अच्छा और प्यारा सा अनुभव रहेगा। तस्वीर है ये। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है 11:35 और ठीक 35 सेकंड, आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पे।

0: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
1: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
0: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
1: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
0: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
1: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
2: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है, हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
3: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
4: पास आ

0: वो
1: वो क्या
0: वो बात ये है हो गया है मुझको वो समझ लो ना कि वो
1: का मतलब आ

अगर आपको लगता है कि घूमने के लिए कोई साथ नहीं मिल रहा तो फिर अकेले चले जाइए। ये तस्वीर है कुरुक्षेत्र की, आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पे। कुरुक्षेत्र की धरती धर्म की धरती, और धार्मिक परंपरा में एक बहुत ही प्रसिद्ध लाइन मिलती है कि कुरुक्षेत्रम धर्म क्षेत्रम, अर्थात कुरुक्षेत्र धर्म की भूमि है। अब ये आप जब वहाँ पे जाएंगे ना, तब इस बात को और अच्छे से शायद महसूस कर पाएंगे, क्योंकि जब हम वहाँ पे जाएंगे और साक्षात रूप से अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें हमें दिखेंगी, तब आपको लगेगा। जैसे कि नाभि कमल तीर्थ, कार्तिक तीर्थ, स्थानेश्वर महादेव मंदिर जाएंगे, भद्रकाली, कुबेर तीर्थ, और इसके साथ साथ वहाँ पे आठकोस परिक्रमा भी होती है, शिव मंदिर, बाण गंगा, ये बहुत सारी जगहें ऐसी हैं हरियाणा की जो इतनी अच्छी हैं। और ज्योतिसर, जिसकी कि मैंने आपको बताया कुरुक्षेत्र में, जब आप ये सारी की सारी चीज़ें देखेंगे फिर आप कहेंगे कि भाई हमने इतनी सारी दूर दूर की जो यात्राएं थी वो सब की, और 48 कोस, 8 कोस परिक्रमा, इसके बारे में भी आप यहाँ पे पता कर लीजिएगा। और उसके बाद जब आगे बढ़ते रहेंगे तो एक के बाद एक कोई ना कोई परत दर परत कहानी आपके सामने आती जाएगी। कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है।

कुरुक्षेत्र में खड़े होके बड़ी सारी कविताएं आपको जरूर याद आएंगी, लेकिन मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जब थोड़ी मौसम ठंडा हो ना, तब यहाँ पे जाइए तो आपको अच्छा लगेगा। और यहाँ पे आप जाएं और क्या क्या वहाँ पे खाने को मिलेगा ये भी मैं आपको बता सकती हूँ। आलू गोभी के पराठे, दही और मक्खन के साथ लस्सी, गर्मी में खासतौर पर तैयार हो की जाती है, वैसे तो हर मौसम मिलती है। इसके अलावा कढ़ी चावल, राजमा चावल, जलेबी और रबड़ी मिठाई में बहुत ही फेमस है। दूध और देसी घी से बनी हुई कई सारी मिठाइयाँ, ये सब आपको मिलेंगी कुरुक्षेत्र में। और जब आप सरोवर के सामने बैठेंगे, बैठ के उस जल की धारा को देखेंगे ना, तब अपने आप में ये एक अलग सा अनुभव होगा, जिसको हम कहते हैं ना कि हम अपने आप से बातें करते हैं, तो आप अपने आप से बातें करेंगे। और यहाँ पे 48 प्रमुख तीर्थ सरोवर माने जाते हैं, तो उन सबको देखिए और समझिए कि क्या है, क्या चीज़ है, कैसे है। और उसके बाद फिर अगर आपको लगे कि हाँ कोई कविता सुनाई जा सकती है, तो उस कविता को आप गुनगुनाइए और पढ़िए।

हो सकता है कि मैं थोड़ी सी आपकी हेल्प कर दूं। वही धूल उड़ी थी रणभूमि में, गूंजी शंख की तान, कुरुक्षेत्र की धरती ने देखा धर्म अधर्म का मान। अर्जुन खड़ा था चिंतित होकर सामने अपना कुल, कृष्णा ने तब गीता सुनाई, मिटा दिया मन का शूल। जहां गिरे थे वीर असंख्य, जहां बही थी धार, आज वही धरती देती है हम सबका मान। कुरुक्षेत्र केवल रण नहीं है, जीवन का एक मैसेज है। कर्तव्य पथ पे बढ़ते जाना, यही है इसका उपदेश। कुरुक्षेत्र हम सबका स्वागत करता है।

संग संग। लेकिन कुरुक्षेत्र आप अकेले बड़े आराम से जा सकते हैं। और इस बार गीता जयंती जो है वो 5 दिसंबर से लेकर के 25 दिसंबर तक चलेगी, इसलिए यहाँ पे जाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जब आप देखेंगे ना वहाँ पे हुजूम, लगभग 40 लाख लोग इकट्ठे होते हैं, तो वो अपने आप में एक अलग अनुभव होता है। और इस अनुभव को अगर हो सके तो इस बार प्राप्त ज़रूर करिएगा। तस्वीर कुरुक्षेत्र की आपको कैसी लगी आप हमें बता सकते हैं fmgoldaardelhi@gmail.com पे मेल करके। और कौन सा शहर है जो आपके लिस्ट में शामिल करना है आप ये हमें बताइए। फिलहाल तो दीजिए इजाजत फिर से मिलने के लिए, क्योंकि समय हो रहा है समाचारों का।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद ये कार्रवाई की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत

0: 2026 में भाग लेने के लिए कतर की राजधानी दोहा पहुंच गई हैं। इस वार्षिक बैठक में सदस्य प्रतिनिधिमंडल, नीति निर्माता और अन्य संबंधित पक्ष बैंक की रणनीतिक दिशा, संचालन प्राथमिकताओं और भविष्य के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने अमरीकी संसद की प्रतिनिधि सभा के विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष ब्रायन मास्ट के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल से मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों देशों के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विकास पर चर्चा हुई। इस दौरान रक्षा, औद्योगिक और तकनीकी सहयोग पर विशेष बल दिया गया। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम में संशोधन किया है। युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए कल से दो दिन तक दिल्ली के सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षा संस्थानों में विशेष शिविरों का एक और चरण आयोजित किया जाएगा। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की है। इसके अंतर्गत एक साझा डिजिटल मंच पर पर्यटन से जुड़ी विभिन्न सेवाओं और सुविधा तक पहुंच मिल सकेगी। मंत्रालय ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के साथ मिलकर पर्यटन से जुड़ी सेवाओं और जानकारी के लिए एक साझा डिजिटल व्यवस्था, नेशनल डिजिटल टूरिज्म स्टैक तैयार करने की पहल की है। मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत करेंगे। इसे देश में पशुधन बीमा सेवाओं के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में काम करेगा। देश आज शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि भगत सिंह ने कम उम्र में ही मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित 46वें शतरंज ओलंपियाड में नोना गाप्रदाश्वली ट्रॉफी जीतने पर भारतीय शतरंज खिलाड़ियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने खिलाड़ियों के जुनून और दृढ़ संकल्प की सराहना की। जापान में आयोजित एशियाई खेलों 2026 में भारत की ईशा सिंह ने आज आईची नागोया में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीता। वहीं भारतीय एथलीट पिंकी बलहारा ने आईची नागोया में महिलाओं के अंडर 78 किलोग्राम कुराश स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया की लिम गरम को हराया। वहीं भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारत और अफगानिस्तान के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला खराब मौसम के कारण रद्द कर दिया गया था। गत चैंपियन भारत को ICC T20 रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर होने के कारण सेमीफाइनल में जगह मिली है। सेमीफाइनल का मुकाबला भारत और नेपाल, कृपया दोबारा सुने, सेमीफाइनल में भारत का सामना नेपाल और श्रीलंका के बीच होने वाले क्वार्टर फाइनल के विजेता से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi today urged countrymen to make sure to set aside time for the census. Recalling the appeal from yesterday's Mann Ki Baat address, Mr. Modi said, participating in the census is a national duty for all citizens. He added that the participation helps in creating an accurate picture of the country's future. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has reached Doha in Qatar to participate in the 11th annual meeting of the Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB, and the AIIB Investors Dialogue 2026. The annual meeting will bring together member delegations, policymakers, and other stakeholders from around the world to discuss the AIIB's strategic direction, operational priorities, and future agenda. Defence Secretary Rajesh Kumar Singh met with a bipartisan delegation from the United States House of Representatives, led by Representative Brian Mast, chairman of the House Foreign Affairs Committee. Defense Ministry said the discussion

लेकर ढेर सारी जानकारियां और मनोरंजन प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम घर आंगन, जिसे आप सुन रहे हैं एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, साथ ही इनप्रेस चैनल यानी कि 366.3 मीटर यानी कि 819 किलो हर्ट्ज़ पर अपनी रेडियो सखी कल्पना के साथ। तो सबसे पहले स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार, और आइए दोस्तों कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं इस प्रेरक विचार के साथ। इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से कि अगर मैं इश्क लिखना चाहूं तो इंकलाब लिख जाता है। ये विचार है महान क्रांतिकारी शहीद आजम सरदार भगत सिंह के, एक ऐसा नाम जिसने देश की आजादी के लिए अपना जीवन हंसते हंसते न्योछावर कर दिया। उनकी निर्भीकता, विचार और देश प्रेम आज भी युवाओं को प्रेरणा देते हैं। आज उनकी जयंती भी है तो हम उन्हें शत शत नमन करते हैं। साथ ही साथ आज जयंती है आवाज की दुनिया की जादूगरनी स्वर साम्राज्ञी कोकिला लता मंगेशकर की। उनकी आवाज सिर्फ गीत नहीं, भावनाओं की एक पूरी दुनिया थी। उनकी सुरीली आवाज ने कई पीढ़ियों को प्रेम, विरह, खुशी और देशभक्ति के रंगों से जोड़ा। उनके योगदान के लिए उन्हें भारत रत्न पद्म विभूषण दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो लता जी की जयंती पर आज हमारी पूरी टीम की तरफ से उन्हें सादर नमन, विनम्र श्रद्धांजलि।

दोस्तों, ये प्यारा सा गीत आप अभी सुन रहे थे किनारा फिल्म से लता मंगेशकर और भूपेंद्र की आवाज़ में। और आइए अब बात करते हैं कि स्वच्छता के बारे में कुछ बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम अच्छे काम करते हैं तो हमारा नाम हमेशा जीवित रहता है और हम याद किए जाते हैं। तो स्वच्छ रहें, सुंदर बने, अपना देश महान, स्वच्छता ही सेवा बने जन जन का अभियान। जी हाँ दोस्तों, स्वच्छता केवल सफाई कर्मियों की जिम्मेदारी नहीं होती है, हम सबकी रोज़मर्रा की आदत भी होनी चाहिए। इसलिए इस अभियान से जुड़े रहकर अपने हिस्से की जो साफ सफाई है वो हमें भी करनी चाहिए, और साथ ही जो हमारे आसपास के लोग हैं उनको भी हमें समय समय पर जागरूक करते रहना है। और साथियों, आज के दिन यानी 28 सितंबर को विश्व रैबीज दिवस भी मनाया जाता है, जो घर के किसी पालतू पशु या किसी संक्रमित जानवर के काटने पर लापरवाही करने से ये समस्या जो है वो हो जाती है। तो इससे आपको जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। तो अगर कभी आपके साथ ऐसी दुर्घटना होती है तो घाव को तुरंत साबुन और पानी से धोएं और समय पर चिकित्सकीय सलाह लें। और साथ ही आपको करना क्या है कि भाई, सलाह लेने के बाद आपको टीकाकरण भी करवाना है, क्योंकि जो जागरूकता है वही रेबीज से बचाव की पहली सीढ़ी है। साथ ही दोस्तों, इसी दिन सूचना तथा सार्वभौमिक पहुंच का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है, जो हमें ये याद दिलाता है कि सही और भरोसेमंद जानकारी हर व्यक्ति तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सही सूचना जो है ना वो कई बार सही फैसला लेने में मदद करती है। आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, और खूबसूरत सा जो मौसम है उसका आनंद लेते रहें, खूबसूरत से जीवन का आनंद लेते रहें, और साथ में गुनगुनाते रहें ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, ये प्यारा सा गीत अभी आप सुन रहे थे मेला फिल्म से, जिसे गाया लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी साहब ने। दोस्तों देखिए, पितृ पक्ष आरंभ हो गए हैं और श्राद्ध नाम सुनते ही मन में तर्पण, पिंडदान और पूजा पाठ की तस्वीर उभरती है। लेकिन क्या आपको भी यही लगता है कि श्राद्ध सिर्फ कर्मकांड है? तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। दरअसल श्राद्ध का एक गहरा अर्थ है अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करना, जिन्होंने हमें जीवन दिया, संस्कार दिए, परिवार और समाज को आगे बढ़ाने की नींव रखी, उन्हें याद करने का ये अवसर है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में शायद हम अपने बुजुर्गों की कही बातें भी भूल जाते हैं। श्राद्ध हमें ठहर कर ये सोचने का मौका देता है कि हम अपने पूर्वजों से क्या लेकर आए और आने वाली पीढ़ी को क्या सौंप रहे हैं। इसलिए श्राद्ध केवल किसी एक दिन का कर्मकांड नहीं, बल्कि अपनी जड़ों से जुड़ने और कृतज्ञ होना सीखने की परंपरा भी है। और शायद सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि अपने पूर्वजों को याद करने के साथ उनके अच्छे संस्कारों को अपने व्यवहार और जीवन में भी हम जीवित रखें, साथ ही साथ उन्हें भावी पीढ़ी तक भी पहुंचाते रहें। और वो जहां भी रहें, हमारे पूर्वज जहां भी हैं, उन्हें हम ये महसूस कराते रहें कि भाई, तुमसे दूर रह के भी हमें तुम्हारा प्यार, तुम्हारा व्यवहार याद आता है, हमें तुम्हारी याद आती है।

तुमसे दूर रह के मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में आप ये खूबसूरत सा गीत सुन रहे थे दोस्तों, अदालत फिल्म से। और देखिए, कुछ लोगों से दूर रह के तो हमें पता चलता ही है कि भाई वो हमारे लिए कितने ख़ास हैं, लेकिन कई बार कुछ लोगों के साथ रह के, उनके पास रह के भी हमें ये पता चलता है कि भाई वो हमारे लिए कितने ख़ास हैं। तो चलिए आपको इसी बात पर एक कविता सुनाती हूँ कि मैंने देखा अपनी माँ को, चाची को सुबह सवेरे चुपचाप उठती हुई, धूप दीप से घर को महकाती हुई, रसोई से उठती तरह तरह की महक और अपने हाथों के जायके से सबकी थालियों में प्यार परोसती हुई। न कोई इत्र, न ज्यादा साज श्रृंगार, बस अपनी सादगी में मुस्कुराती हुई। लेकिन महसूस किया, आंका जाता है उन्हें अक्सर कामकाजी स्त्रियों से कम, जबकि वो एक दिन भी थक कर बैठ जाएं तो थम जाता है पूरे घर का जीवन। ये सब देखकर मैं मुस्कराई और एक बात मुझे समझ आई कि वैसे तो सभी स्त्रियां अपने आप में बेहतरीन हैं और ख़ास हैं, लेकिन घर संभालती हुई स्त्रियां भी बहुत अलग होती हैं और उनमें भी कुछ बात है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ना तो किसी को कम आंकना है और ना ही किसी को ज़्यादा आंकना है, क्योंकि हर पीढ़ी की जो महिलाएँ हैं वो अपनी अपनी पीढ़ी के हिसाब से अपना सर्वश्रेष्ठ कर रही हैं, चाहे वो बाहर निकलकर काम करने वाली महिलाएं हों या फिर घर पर रहकर परिवार संभालने वाली महिलाएं।

श्रोताओं, पिया का घर फिल्म से आप ये प्यारा सा गीत सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में। और देखिए, जो सितंबर माह है उसको पोषण का महीना भी कहा जाता है, और साथ ही कुपोषण से जो लड़ाई है वो सिर्फ सरकार की नहीं बल्कि पूरे समाज की साझी जिम्मेदारी है। पोषण की कुछ प्रेरक कहानियाँ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम में भी कही हैं, जो इसी सोच को मजबूत कर रही हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही कहानियों में पहली कहानी है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ का हर घर मुनगा, घर घर मुनगा अभियान लोगों को पोषक मुनगा यानी कि मोरिंगा को अपने खान पान में शामिल करने के लिए प्रेरित कर रहा है। वहीं मिजोरम में लोगों ने मिलकर पोषण वाटिकाओं की देखभाल का अभियान शुरू किया है, जो वहां की तलो मुड़यना यानी निस्वार्थ सेवा की परंपरा से जुड़ा है। और तकनीक भी इस लड़ाई में साथी बन रही है। पोषण ट्रैकर के जरिए आंगनबाड़ी सेवाओं से जुड़कर बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली जो माताएं हैं उनकी बेहतर देखभाल को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। गुजरात में भी वांगी स्पर्धा यानी मिलेट से बने व्यंजन की प्रतियोगिता शुरू की है, जिसके माध्यम से सस्ता और पौष्टिक भोजन हर घर हर थाली तक पहुंच रहा है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में भी शिक्षक, आंगनबाड़ी केंद्र के लोग और माता पिता भी इस अभियान से जुड़ रहे हैं। यानी कि संदेश जो है वो बहुत साफ है कि भाई कुपोषण के खिलाफ जो लड़ाई है वो थाली से शुरू होती है और समाज की साझी भागीदारी से भी। तो आइए पोषण को सिर्फ एक महीने का अभियान नहीं बल्कि हर घर की रोजमर्रा की आदत बनाएं, क्योंकि जब आप स्वस्थ होंगे, आपका शरीर स्वस्थ होगा, तो कोई भी खराब मौसम, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी बीमारी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, चाहे हवाएं कितनी भी ठंडी क्यों ना चल रही हों।

श्रोताओं, हाथी मेरे साथी फिल्म से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में ये प्यारा सा खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे। और देखिए, स्वास्थ्य की बात चल रही है, पोषण का जिक्र हुआ है, तो एक बात आपसे पूछती हूँ कि भई ये बताइए, क्या आपको लगता है कि सर्दी, ज़ुकाम, वायरल बुखार या गले में खराश हुई तो एंटीबायोटिक ले लेना चाहिए? अगर हाँ तो ज़रा सा रुकिए, ठहरिए, क्योंकि भाई एंटीबायोटिक जो है वो हर बीमारी की दवा नहीं है। ये दवाएं ख़ास तौर पर बैक्टीरिया से होने वाले कुछ जो संक्रमण हैं उनके इलाज के लिए उपयोगी होती हैं। वायरल संक्रमण जैसे कि सामान्य सर्दी, ज़ुकाम या फ्लू में एंटीबायोटिक आमतौर पर काम नहीं करती। बिना डॉक्टर की सलाह एंटीबायोटिक लेना या बीच में ही दवा छोड़ देना नुकसानदेह हो सकता है। इससे

शरीर में ऐसे बैक्टीरिया विकसित हो सकते हैं जिन पर जो दवाइयाँ हैं ना वो असर करना बंद कर देती हैं। इसे एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहते हैं। इसलिए हर बीमारी में खुद से एंटीबायोटिक लेने के बजाय डॉक्टर की सलाह लें और जितनी अवधि तथा जितनी मात्रा में आपको बताई जाए ना उतनी ही दवा लें। याद रखिए, सही बीमारी के लिए सही दवा ही समझदारी है। तो इतनी अच्छी जानकारी के बाद चलिए आपको सुनाती हूँ मैं चुप रहूँगी फिल्म से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये खूबसूरत सा नगमा।

दोस्तों, आपकी नज़र में समृद्धि क्या है? क्या सिर्फ बड़ा घर, महंगी गाड़ी और बैंक बैलेंस का नाम है? तो ज़रा रुकिए और सोचिए, अगर घर बड़ा है लेकिन उसमें साथ बैठकर बात करने का समय नहीं है, बैंक बैलेंस अच्छा है लेकिन स्वास्थ्य और सुकून नहीं है, तो क्या इसे पूरी समृद्धि कहेंगे? दरअसल समृद्धि का सच्चा मापदंड हमारी चीज़ों की संख्या नहीं, बल्कि हमारे जीवन की गुणवत्ता है। जहाँ परिवार में अपनापन हो, शरीर स्वस्थ हो, मन शांत हो, ज़रूरतमंद के लिए मदद का हाथ हो और अपनी मेहनत से कमाई रोटी में संतोष हो, वहीं असली समृद्धि है। क्योंकि पैसा सुविधाएं खरीद सकता है, लेकिन विश्वास, रिश्ते, मान सम्मान और मन का जो सुकून है ना, वो कभी नहीं खरीद सकता। इसलिए कभी जो आपकी समृद्धि है उसे गिने तो सिर्फ ये मत देखिएगा कि आपके पास क्या क्या है, बल्कि ये भी देखिए कि आपके पास अपने कितने लोग हैं जिन्हें आपके व्यवहार से, आपकी बातों से और आपकी खुशी में खुशी मिलती है। क्योंकि असली दौलत तो यही है। और देखो ना, किसी ने कहा है कि भाई, तेरी दौलत रह जाएगी तेरे घर चौबारों तक, मेरी बातें सैर करेंगी सूरज चांद सितारों तक। तो कहने की बात यह है कि भाई, अपना व्यवहार ऐसा रखिए कि भाई, अगर कोई आपसे मिले तो आपसे मिलके बस वो एक यही बात कहे।

श्रोताओं, परिंदा फिल्म से अभी आप ये प्यारा सा गीत सुन रहे थे आशा भोसले और सुरेश वाडेकर की आवाज़ में। और सुनिएगा कि भई हाथों में कलम के साथ मुझे चूड़ियों की खनक भी पसंद है। बात कर रही हूँ अपनी महिलाओं की, अपनी बहनों की, कि हाथों में कलम के साथ मुझे चूड़ियों की खनक भी पसंद है, आगे बढ़ते कदमों में पायल की छनक भी पसंद है, माथे पर पड़ती शिकन के बीच बिंदी मुझे बहुत भाती है और आंचल पसंद है, आंखों में बड़े बड़े सपनों के साथ ही मुझे काजल पसंद है, इस भागदौड़ भरी जिंदगी में कुछ पल ठहरना पसंद है, खुद को देखना, महसूस करना और संवरना पसंद है। अब संवरने की बात दोस्तों इसलिए कि भाई जब हम संवरती हैं तो हम कॉन्फिडेंस में रहती हैं, हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है और साथ ही साथ होता क्या है कि हमारे व्यक्तित्व में भी चार चांद लग जाते हैं।

श्रोताओं, ये प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे लम्हे फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ में। और देखिए, मौसम का जो मिजाज है वो आजकल थोड़ा सा बदला बदला है, तो आप भी अपना और अपने घर के बच्चों का, बुज़ुर्गों का रखिए ख़ास ध्यान। और साथ ही आइए अब सुनते हैं घर आंगन कार्यक्रम की आज की ये अंतिम प्रस्तुति, ये प्यारा सा गीत दो रास्ते फिल्म से, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी साहब ने। और इस गीत के साथ ही, इस गीत को आप सुनते रहिए और इसके साथ ही मुझे यानी अपनी रेडियो सखी कल्पना त्रिवेदी को दीजिएगा अनुमति। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद ये कार्रवाई की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की 11वीं वार्षिक बैठक और निवेशक संवाद 2026 में

विशेष बल दिया गया। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज कहा कि देश में 100 करोड़ से अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा है। इसमें 60 करोड़ से अधिक नागरिकों के लिए 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, 25 करोड़ लोगों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम स्वास्थ्य सुरक्षा, 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त अनाज और किसानों तथा महिलाओं को वित्तीय सहायता शामिल है। वे नई दिल्ली में आयोजित औद्योगिक संबंध और श्रम तथा पुरस्कार संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत करेंगे। इसे देश में पशुधन बीमा सेवाओं के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में चलती बस में एक नाबालिग के साथ हुए कथित सामूहिक दुष्कर्म का आज स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा कि ऐसे मामले कानूनी व्यवस्था की विफलता को उजागर करते हैं। न्यायालय ने कहा कि अपर्याप्त रोशनी, खराब निगरानी और अन्य आवश्यक प्रशासनिक सुविधाओं के अभाव के कारण सार्वजनिक स्थानों को उच्च जोखिम वाले क्षेत्र बनने नहीं दिया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने 2000 रुपए से अधिक के लेन देन पर व्यक्ति से व्यापारी यूपीआई पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर लगाने के केंद्र के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये शुल्क अगले महीने की 15 तारीख से लागू होना है। 2000 रुपए से अधिक के यूपीआई भुगतान पर एमडीआर लगाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कहा कि ये मामला कानूनी से अधिक तकनीकी है। जापान में एशियाई खेलों में भारत की ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीत लिया है। वहीं भारतीय एथलीट पिंकी बलहारा ने महिलाओं के अंडर 78 किलोग्राम कुराश स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। महिला मुक्केबाजी में लवलीना बोरगोहाइन ने 75 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया की सियांग सियोन को हराकर पदक पक्का कर लिया है। उधर भारतीय क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। एशियाई खेलों में भारत 4 स्वर्ण सहित कुल 39 पदकों के साथ तालिका में 12वें स्थान पर है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1.3% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 945 अंक गिरकर 72,952 पर और निफ्टी 299 अंक लुढ़क कर 22,842 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। शबनम के साथ हैं आप। आप सभी का स्वागत है कलाकार बेमिसाल में। और दोस्तों, आज का प्रोग्राम सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि आज मुझे उनकी बातें करनी है जिनके लिए सारे शब्द, सारी तारीफें, सारी उपमाएं कम पड़ जाती हैं। आज लता मंगेशकर का जन्मदिन है। समझ सकते हैं आप कि उनके गाए हजारों गानों में से कुछ गाने ढूंढ कर लाना कितनी बड़ी बात है। समझ में नहीं आता कौन से गाने रखे जाएं, कौन से गाने छोड़े जाएं। खैर, मैंने कोशिश की है कुछ अच्छे से गाने सिलेक्ट करने की। उम्मीद करती हूँ कि ये सारे के सारे गाने आपके भी फेवरेट होंगे।

कभी कभी तो यकीन नहीं होता कि ये वाला गाना लता जी ने गाया है। जी हाँ, लता मंगेशकर की आवाज़ में आपने सुना अनामिका फिल्म का गाना। कितना रोमांटिक, कितना खूबसूरत गाना है ये, और इसे कंपोज किया है आर डी बर्मन साहब ने। दोस्तों, लता मंगेशकर का नाम लता कैसे पड़ा, इसके पीछे का राज मैं आज आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले उनके बारे में और थोड़ी सी जानकारी। 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में जन्मी थी लता मंगेशकर। बचपन में उन्हें हेमलता नाम दिया गया था। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर मराठी थिएटर के जाने माने अभिनेता और संगीतकार थे, और गायन भी बहुत अच्छा किया करते थे। उनका नाम था मराठी थिएटर में। उनके नाटक भावबंधन की एक पात्र का नाम लतिका था। इसी किरदार पर उन्होंने लता मंगेशकर का नाम रखा। और ये नाम आप तो जानते ही हैं कि बस आप एक बार लता कह दीजिए, कोई भी कहेगा कि आप गायिका लता की बात कर रहे हैं। ये नाम इतना ज़्यादा मशहूर हो गया हिंदी फिल्म संगीत में। चलिए चलिए, लता जी के गाने बहुत सारे सुनाने हैं, तो बातें कम करती हूँ।

कितना खूबसूरत गाना है ये, और बहुत सारे लोगों ने अंदाज़ा भी लगा लिया होगा कि ये जो गाना है इसे कंपोज़ किया है मदन मोहन ने। लता मंगेशकर ने अपनी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत जो गाने हैं, वैसे तो बहुत सारे संगीतकारों के साथ उन्होंने सदाबहार गाने दिए हैं, लेकिन मदन मोहन के साथ उन्होंने जो गाने दिए वो वाकई में लाजवाब रहे हैं। वैसे चिराग फिल्म का ये गाना है, और ये गाना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में भी है, और वो भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहा, लेकिन लता जी की आवाज़ वाला मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी बहुत पसंद आया होगा। खैर, लता जी की बातें करते हैं। दोस्तों, घर का जो माहौल है लता जी के घर का, वो हमेशा से ही संगीतमय और फिल्मी रहा, तो परिवार के बच्चों पर इसका पूरा पूरा असर हुआ। लता, उषा, आशा और हृदयनाथ मंगेशकर सभी ने संगीत सीखा और खूब नाम कमाया। लता ने तो अभिनय भी किया है। जी हाँ, वो सिर्फ 5 साल की थी जब अपने पिता के थिएटर में एक्टिंग करने लगी। हालांकि

0: उनका जो रुझान था वो गायन की तरफ ज्यादा था। लता मंगेशकर को गायकी में पहला मौका मिला आकाशवाणी पर, ये 1941 की बात है। 16 दिसंबर को लता जी ने दो गाने गाए थे रेडियो पर। इस पल को वो हमेशा याद किया करती थीं और अक्सर सोशल मीडिया पर भी इस बारे में लिखा करती थीं।
1: नैना लगे रे जाने क्या हो

0: गाइड फिल्म का ये गाना है लता मंगेशकर की आवाज़ में और इसे कंपोज किया है एसडी बर्मन साहब ने। दोस्तों ये जो फिल्म रही है ये सिर्फ लता जी के लिए ही नहीं बल्कि कई लोगों के लिए बहुत ही खास रही है। एसडी बर्मन साहब के लिए बहुत खास रही है, वहीदा रहमान के लिए बहुत ही खास रही है और देवानंद की तो ये बेस्ट मूवी मानी जाती है। वैसे लता जी के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग चर्चा करते हैं, जैसे कि सभी को लगता है कि उनका करियर बहुत ही शानदार रहा, बहुत ही कामयाब रहा है, वो बहुत ज़्यादा खुश रही होंगी। अपनी ज़िंदगी में इंसान क्या चाहता है, पैसे चाहता है, कामयाबी चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक बार लता जी ने अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ किस्से सुनाए थे जिनमें से एक ये रहा कि उनका बचपन कैसे बीता, कहाँ परेशानी आई। थोड़ा सा बताऊंगी इस बारे में क्योंकि हमें दुखी नहीं होना, उनका जन्मदिन है आज तो खुशी खुशी हमें उन्हें याद करना है। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं इस बारे में।
1: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
2: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
1: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
2: फॉर्म

0: 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
1: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
2: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
3: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है? हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे, आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
4: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड,

100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। शबनम के साथ हैं आप। कलाकार बेमिसाल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लता मंगेशकर की आज बातें हो रही हैं और मैं पहले कह देना चाहती हूँ कि लता जी के लिए बातें करना बहुत बड़ी बात है। हाँ, आप कितनी भी कोशिश कर लें, कहीं ना कहीं आपको फील आ ही जाएगा कि ये छूट गया, ये वाला गाना भी होना चाहिए था, है ना। तो पहले से माफ़ी मांगती हूँ अगर आपको लगे कि लता जी का वो वाला गाना सुनाना था और मैंने नहीं सुनाया। मैं क्या करूँ, सारे गाने तो अच्छे हैं उनके। खैर, कुछ और बातें लता जी के बारे में, एक छोटा सा साइड वाला पॉइंट आपको बताती हूँ। दोस्तों, लता मंगेशकर का जो पहला गाना था वो 1942 में रिलीज़ हुआ था, रिकॉर्ड हुआ था असल में, ये रिलीज़ नहीं हो पाया। ये एक मराठी फिल्म थी, कीर्ति हसाल, यानी कि कितना हंसोगे इस फिल्म का नाम था। हालांकि इसे फाइनल कट में फिल्म से बाहर कर दिया गया था। जी हाँ, इसकी कई वजह बताई गई, जिनमें से एक वजह ये थी कि वहां मौजूद लोगों को लगा कि लता की जो आवाज़ है वो बाकी जो गायक है उनके मुकाबले में थोड़ी सी पतली है। लेकिन लता जी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, उन्होंने कोई बहस नहीं की, बल्कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने रियाज के घंटे बढ़ाए, खूब मेहनत की अपनी आवाज़ पर और अपने काम से जवाब दिया। लता मंगेशकर उस वक्त छोटी ही थी, 13 बरस की थी जब उनके पिता चल बसे। जिस उम्र में सपने सिर्फ आकार ही लेते हैं, उस उम्र में लता ने पूरा घर संभाला, कई मराठी नाटकों में और फिल्मों में अभिनय किया ताकि परिवार का खर्च चलाया जा सके। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि इतनी प्यारी आवाज़, तो फिर दिल उनका कहीं ना कहीं गायन में ही ज़्यादा था।

ऐसा बहुत ही कम होता है कि हम कोई गाना पहले से सोच के आए और उस गाने के हिसाब से मौसम बदल जाए। क्या ये लता मंगेशकर जी का गाना सुनने आया था मौसम? बिल्कुल ऐसा ही मौसम है ना जैसे इस गाने में था। दोस्तों ये गाना आपने सुना पाकीज़ा फिल्म से, गुलाम मोहम्मद का संगीत है ये और लता मंगेशकर की खूबसूरत प्यारी सी आवाज़ इस गाने में आपने सुनी। ये जो फिल्म है पाकीज़ा, ये तो आप जानती हैं अपने म्यूज़िक के लिए भी इसकी चर्चा बहुत ज़्यादा होती है और लता जी के कितने यादगार कितने खूबसूरत गाने इस फिल्म में रहे हैं। दोस्तों लता मंगेशकर ने कई चर्चित मराठी और हिंदी फिल्मों में भी काम किया है, जैसे कि पाहिली मंगला गौर, ये एक्ट्रेस के तौर पर उनकी पहली फिल्म थी, माझे बाल, गज भाऊ, बड़ी माँ, छत्रपति शिवाजी आदि। अपने किरदारों के लिए उन्होंने गाने भी गाए और अपनी बहन आशा भोसले के लिए भी उन्होंने गाने गाए जब आशा जी और लता जी दोनों एक्टिंग किया करती थी, जी हाँ, अपनी टीनेज में। दोस्तों साल 1947 में वसंत जोगलेकर ने उन्हें अपनी फिल्म आपकी सेवा के लिए गाने का मौका दिया। इन गानों की खूब चर्चा हुई, फिर मजबूर और इसके बाद आई महल। महल के गीत ने लता और मधुबाला दोनों का करियर संवार दिया। ये उनके लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। महल का जो गीत है उसे अक्सर आप रेडियो पर सुनते हैं, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि महल फिल्म का गाना मैं आपको ना सुनाऊँ, आएगा आने वाला, वो बहुत बार आप सुन चुके हैं। तो लता जी का बर्थडे है तो मैं सोच रही हूँ ये वाला गाना आपको सुनाऊँ। मुझे उम्मीद है ये गाना आपको पसंद आएगा, शक्ति फिल्म का। इसके शब्द सुनिएगा आप।

लता मंगेशकर की आवाज में शक्ति फिल्म का बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना। इसे कंपोज किया है आर डी बर्मन साहब ने। दोस्तों, यूं तो लता मंगेशकर के फैंस देश विदेश हर जगह मिलेंगे आपको, आज भी उनके चाहने वालों की कोई कमी नहीं है, लेकिन

कुछ बहुत बड़े बड़े कलाकार लता मंगेशकर के बेहद दीवाने थे, जैसे कि मीना कुमारी, जैसे कि स्मिता पाटिल। दोस्तों, मीना कुमारी लता मंगेशकर की बहुत अच्छी सहेली भी रहीं। लता ने उनके लिए कई यादगार सदाबहार गाने भी गाए। मीना अक्सर लता मंगेशकर को लाइव सुनने के लिए उनके स्टूडियो पहुंच जाया करती थी। और दोस्तों, मधुबाला के बारे में तो यहाँ तक कहा जाता है कि मधुबाला अपनी फिल्मों के साइनिंग कॉन्ट्रैक्ट में ये शर्त रखा करती थी कि उनके सारे के सारे गाने लता ही गाएंगी। वैसे लता मंगेशकर खुद मधुबाला के लिए गाना बेहद पसंद किया करती थी, उनको बहुत अच्छा मानती थी, बहुत पसंद करती थी मधुबाला को। दोस्तों, मीना कुमारी और मधुबाला के अलावा दिलीप कुमार, राज कपूर, यश चोपड़ा, वहीदा रहमान, साधना, डिंपल कपाड़िया, श्रीदेवी, एक बहुत लंबी लिस्ट है लता मंगेशकर के फैंस की। दोस्तों, बहुत लंबी।

दोस्तों, लता मंगेशकर की आवाज़ में एक गाना आपने लेकिन फिल्म से सुना और इस गाने के लिए नेशनल अवार्ड मिला था लता मंगेशकर को। इसका म्यूजिक तैयार किया था हृदयनाथ मंगेशकर ने। दोस्तों, लता मंगेशकर को कई नामों से पुकारा जाता है, उन्हें स्वर साम्राज्ञी भी कहा जाता है। फिल्म संगीत में उनका योगदान हमारी चर्चाओं से भी बड़ा है, हमारी कल्पना से भी बड़ा है। साल 1942 से लेकर 2021 तक उन्होंने हजारों गानों को आवाज़ दी, जिनमें हिंदी के अलावा 30 अन्य भाषाओं के गाने शामिल हैं। उन्होंने कुछ बेहतरीन प्राइवेट एल्बम्स के लिए भी गाने गाए जो बेहद लोकप्रिय रहे। लता मंगेशकर को 3 बार नेशनल अवार्ड मिला, 7 बार फिल्मफेयर अवार्ड से उन्हें नवाजा गया। इसके बाद उन्होंने खुद मना कर दिया कि नहीं, नई प्रतिभाओं को भी मौका मिलना चाहिए अवार्ड जीतने का। दोस्तों, इसके अलावा उन्हें देश के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले, 1989 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, 1969 में पद्म भूषण, 1999 में पद्म विभूषण मिला। साल 2001 में लता मंगेशकर जी को भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, भारत रत्न, उससे सम्मानित किया गया। और उनके अवार्डों की जो अवार्ड्स हैं उनकी लिस्ट इतनी ज़्यादा लंबी है कि 1 घंटे का प्रोग्राम किया जा सकता है उन अवार्ड

दोस्तों लता जी पर प्रोग्राम करना गागर में सागर भरने जैसा है। बहुत कुछ कहना था लेकिन क्या करें, वक्त कहता है कि नहीं, बस बहुत हो गया। चलिए मिलती हूँ आपसे 2:30 पर। तब तक उर्दू में खबरें और समाचार सुनिएगा और जल्दी से लौट कर आइएगा। 2:30 पर लेकर आऊँगी संगीत.com।

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमन अली खान। सुप्रीम कोर्ट ने यूपीआई लेनदेन पर एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट नाफिज करने के मरकजी सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। बैंकों की मुजव्वजा 3 रोजा मुल्कगीर हड़ताल जो आज शुरू होना थी मुलतवी कर दी गई है। पाकिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर भारत की सर्जिकल स्ट्राइक्स को आज 10 साल मुकम्मल हो रहे हैं। आज मुजाहिद आजादी शहीद भगत सिंह को उनकी यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। खाम तेल की कीमतों में उछाल के तनाजुर में सेंसेक्स में तकरीबन 1000 पॉइंट्स की गिरावट आई है। निफ्टी भी 299 पॉइंट नीचे आ गया। और जापान में जारी एशियाई खेलों में आज खवातीन के 25 मीटर पिस्टल मुकाबले और अंडर 78 कुराश मुकाबले में भारत ने चांदी और कांसे के तमगे जीते हैं। अब खबरें तफसील से। सुप्रीम कोर्ट ने 2000 रुपए से ज्यादा के पर्सन टू मर्चेंट यानी बाज यूपीआई लेनदेन पर एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट नाफिज करने के मरकजी सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इन चार्जेस का इतलाक अगले महीने की 15 तारीख से होना है। 2000 रुपए से ज्यादा की यूपीआई अदायगी पर एमडीआर नाफिज किए जाने को चैलेंज करने से मुतालिक एक दरख्वास्त की समाअत करते हुए अदालत आलिया ने कहा कि मामला कानूनी एतबार से कम लेकिन तकनीकी लिहाज से ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज और दीगर मुतालिका फरीकों को हिदायत दी है कि वो 4 हफ्ते के अंदर अंदर अपने जवाबी हलफनामे दाखिल करें। बैंक यूनियनों के यूनाइटेड फोरम ने ऐलान किया है कि बैंकों की मुजव्वजा 3 रोजा मुल्कगीर हड़ताल जो आज से शुरू होना थी मुलतवी कर दी गई है। भारतीय बैंकों की एसोसिएशन आईबीए के साथ समझौता

0: का होने के बाद इस सिलसिले में फैसला किया गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर ऑल इंडिया बैंक मुलाजमीन एसोसिएशन ने कहा है कि यह फैसला कल रात भारतीय बैंकों की एसोसिएशन और 7 बैंक यूनियनों के मुत्तहदा फोरम के दरमियान हड़ताल से मुतालिक मामलात पर मीटिंग के बाद किया गया। इससे कबल बैंक यूनियनों के मुत्तहदा फोरम और सरकारी मिल्कियत के बैंकों की बाज दीगर यूनियनों और अंजुमनों ने 28 से 30 सितंबर तक पूरे मुल्क में 3 दिन की हड़ताल का नारा दिया था। पाकिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर भारत की सर्जिकल स्ट्राइक्स को आज 10 साल मुकम्मल हो रहे हैं, जिससे दुनिया के सामने दहशतगर्दी से निमटने की नरेंद्र मोदी सरकार की पॉलिसी की एक नई मिसाल कायम हुई थी। साल 2016 में 28 और 29 सितंबर को भारतीय फौज ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के इलाके में कंट्रोल लाइन के उस पार दहशतगर्दों के लॉन्च पैड्स को निशाना बनाते हुए सर्जिकल स्ट्राइक्स की थीं। उरी में दहशतगर्दाना हमले के तनाजुर में बराह रास्त और फैसला कुन फौजी कार्रवाई के तहत ये ऑपरेशन अंजाम दिया गया था। उरी के हमले में 19 भारतीय फौजियों की जान गई थी। कल आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दहशतगर्दों के ठिकानों के खिलाफ 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक को एक तारीखी संग मील करार दिया। जनाब मोदी ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक से कंट्रोल लाइन के उस पार कार्रवाई अंजाम देने में भारतीय फौज का रोल उजागर हुआ।
1: 10 वर्ष पहले 28-29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। एलओसी के उस पार जाकर हमारे वीर जवानों ने जिस तरह आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की थी वो देख दुनिया हैरान थी। सर्जिकल स्ट्राइक ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया था।
0: मेहनत और रोजगार के महकमे के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज कहा है कि मुल्क के 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को समाजी तहफ्फुज़ के दायरे में लाया गया है। इनमें 60 करोड़ से ज्यादा शहरियों के लिए 5 लाख रुपए का सेहत से मुतालिक कवरेज, 25 करोड़ अफराद के लिए ESIC के तहत सेहत की देखभाल की यकीनी फराहमी, 80 करोड़ से ज्यादा अफराद को मुफ्त अनाज और किसानों खवातीन को माली मदद शामिल है। वजीर मौसूफ नई दिल्ली में सनती राबतों और लेबर और अवार्ड से मुतालिक कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे।
2: हम 25 करोड़ लोगों को ESIC की हेल्थ सिक्योरिटी दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं, 10 करोड़ किसान के अकाउंट में हर 4 महीने 2000 रुपया डालते हैं। आज देश के 10 स्टेट ऐसे हैं जो महिला के अकाउंट में प्रति महीने कोई न कोई 2000, 1500, 1200 ऐसी अमाउंट डालते हैं। तो मैंने कहा कि क्या सोशल सिक्योरिटी का पार्ट नहीं बन सकता और कैलकुलेशन चालू करा, तो उन्होंने स्वीकारा कि इंडिया आज 101 करोड़ यानी कि 68% लोगों को सोशल सिक्योरिटी देता है।
0: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली कौमी राजधानी खत्ते में एक चलती बस में एक नाबालिग लड़की की मुबैना इज्तिमाई आबरूरेजी का ये कहते हुए अपने तौर पर नोटिस लिया है कि इस तरह के वाकयात से कानून नाफिज करने वाले हुक्काम की नाकामी उजागर होती है। जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस विनोद चंद्रन पर मुश्तमिल एक बेंच ने कहा कि नाकाफी रोशनी, खराब निगरानी और दीगर जरूरी इंतजामी सहूलियात के फुकदान की वजह से पार्कों और बसों समेत अवामी मकामात को बड़े खतरे वाले जोन नहीं बनने दिया जा सकता। गुज़श्ता महीने 16 साल की एक लड़की ग्रेटर नोएडा में एक स्लीपर बस में सवार हुई थी, जिसकी बस के कंडक्टर और ड्राइवर ने मुबैना आबरूरेजी की थी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। गंगटॉक, सिक्किम और लोहगोम्पा त्वांग अरुणाचल प्रदेश से तलबा के ग्रुपों ने आज राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। ये तलबा कौमी यकजहती टूर के हिस्से के तौर पर राष्ट्रपति भवन पहुंचे। मुल्क आज अजीम इनकलाब पसंद शहीद आजम भगत सिंह का 119वां यौम पैदाइश मना रहा है। आज ही के दिन 1907 में भगत सिंह पंजाब के लायलपुर जिले के बांगा गांव में पैदा हुए, जो अब पाकिस्तान में है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने भगत सिंह को खराज अकीदत पेश किया है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि भगत सिंह की गैर मामूली शुजात और बहादुरी ने आजादी की तहरीक में एक नई जान फूंकी थी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल कर रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और पुख्ता अजम के साथ ये सफर आगे बढ़ा है और ये सिलसिला आज भी जारी है। अपनी खसूसी सीरीज के तहत आज हम इस बात का तस्करा कर रहे हैं कि तलाक सलासा के कानून से किस तरह मुस्लिम खवातीन की जिंदगी में तब्दीली आई है।
3: नरेंद्र मोदी सरकार ने मुस्लिम खवातीन की जिंदगी में उम्मीद और सलामती का

0: एहसास लाने के लिए काम किया है, जिन्हें तीन तलाक या तलाक़े सालसा के रिवाज के वजह से दुश्वार हालात में छोड़ दिया गया था। तलाक़े सलासा के खिलाफ कानून बनाकर नरेंद्र मोदी सरकार ने ये दिखा दिया है कि सियासी कुव्वते इरादी के साथ कानून के जरिए उन समाजी रस्मों रिवाज पर तवज्जो दी जा सकती है जिनका लोगों पर नामुवाफिक असर पड़ता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि मजकूरा कानून भारतीय आइन के ऐन मुताबिक मुस्लिम खवातीन को बराबर के हुकूक देता है। कानून बनने के बाद से साल के दौरान तलाक़े सलासा के मामलात में 80% से ज़्यादा की गिरावट देखने में आई है। तीन तलाक की रोकथाम से मुतालिक कानून के तहत मुस्लिम खवातीन को कानूनी तहफ़ुज़ मिल गया है, जो इससे पहले समाजी दबाव की वजह से खामोशी इख्तियार किए रहती थी। लखनऊ से सुशील चंद तिवारी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शोएबा।
1: खाम तेल की कीमतों में उछाल के तनाजुर में मुल्क के शेयर बाजारों में तकरीबन 1.3% की गिरावट देखने में आई है। सेंसेक्स में तकरीबन 1000 पॉइंट्स की गिरावट आई और ये 72972 पर आ गया। इसी तरह निफ्टी भी 299 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 22842 पर आ गया। एशियन गेम्स 2026 में आज ख्वातीन के 25 मीटर पिस्टल इनफरादी मुकाबले में भारत की ईशा सिंह ने चांदी का तमगा जीता। 21 साला निशानेबाज ने 38 पॉइंट्स के साथ दूसरा मकाम हासिल किया। भारतीय एथलीट पिंकी बालहारा ने ख्वातीन के अंडर 78 किलोग्राम के कुराश मुकाबले में कांसे का तमगा जीता। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में जनूबी कोरिया की लिम गाराम को 3-0 से हराया। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। सुप्रीम कोर्ट ने यूपीआई लेनदेन पर एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट नाफिज करने के मरकजी सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। बैंकों के मुजवजा 3 रोजा मुल्कगीर हड़ताल जो आज से शुरू होना थी मुलतवी कर दी गई है। पाकिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर भारत की सर्जिकल स्ट्राइक्स को आज 10 साल मुकम्मल हो रहे हैं। आज मुजाहिद आजादी शहीद भगत सिंह को उनकी यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। और जापान में जारी एशियाई खेलों में आज खवातीन के 25 मीटर पिस्टल मुकाबले और अंडर 78 कुराश मुकाबले में भारत ने चांदी और कांसे के तमगे जीते हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: At the Asian Games 2026 in Japan, India's Esha Singh won the silver medal in women's 25-meter pistol individual competition at Aichi, Nagoya today. The 21-year-old shooter won the medal with 38 points to finish second. Indian athlete Pinky Balhara secured the bronze medal in the women's under 78-kilogram Kurash event. She won the medal after defeating South Korea's Lim Garum 3-0 in the quarterfinals. Earlier, the Indian men's cricket team has entered the semi-final without even taking the field after its quarterfinal against Afghanistan was abandoned due to inclement weather at Aichi, Nagoya in Japan today. Benchmark domestic equity indices witnessed a sharp decline and were trading around 1.3% lower during the afternoon session today. The Sensex tumbled nearly 1,000 points, falling below the 73,000 mark. The Nifty shed 306 points to 22,835 when reports last came in. In the broader market at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index cracked 1.4% and the small-cap 100 index slid 1.6% a short while ago. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Supreme Court refuses to stay the centre's decision to impose merchant discount rate on UPI transactions. Proposed three-day nationwide bank strike, which was to begin today, deferred. India marks 10th anniversary of surgical strikes on terrorist hideouts in Pakistan. Nation remembers freedom fighter Shahid Bhagat Singh on his birth anniversary today. Sensex plunges nearly 1,000 points amid surge in crude oil prices. Nifty tanks 306 points. And in Asian Games, India bags silver and bronze medals today in women's 25-meter pistol and under 78-kilogram Kurash events. Details of these stories and more log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. With that, we end the midday news.
1: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। बैंकों की आज से शुरू होने वाली 3 दिन की प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी हड़ताल स्थगित। भारत पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। शहीद आजम भगत सिंह की आज 119वीं जयंती। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच सेंसेक्स में करीब 1000 अंकों की गिरावट। निफ्टी भी 299 अंक गिरा। और एशियाई खेलों में भारत ने आज महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल में रजत और अंडर 78 किलोग्राम कुराश स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने 2000 रुपए से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये शुल्क 15 अक्टूबर से प्रभावी होने हैं। न्यायालय ने केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य प्रतिवादियों से जवाब मांगा है और 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा कि ये मुद्दा कानूनी से अधिक तकनीकी है। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अपर सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरामन ने पीठ को बताया कि भुगतान गेटवे के 96% उपयोगकर्ता इससे मुक्त रहेंगे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने घोषणा की है कि आज से शुरू होने वाली 3 दिन की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित कर दी गई है। ये निर्णय भारतीय बैंक संघ के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। सोशल मीडिया पोस्ट में ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने कहा कि ये निर्णय कल रात भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बीच हड़ताल से संबंधित मुद्दों पर हुई बैठक के बाद लिया गया। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कुछ अन्य यूनियनों और एसोसिएशनों ने 5 दिवसीय बैंकिंग प्रणाली को लागू करने और प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन पीएलआई योजना को वापस लेने की 2 प्रमुख मांगों को लेकर हड़ताल का आह्वान किया था। केंद्र सरकार कर्नाटका और महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए टीमें भेजेगी। नई दिल्ली में रबी फसल अभियान

0: 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही। संवाददाताओं से श्री चौहान ने कहा कि महाराष्ट्र और कर्नाटका सरकारों ने अपने अपने राज्यों के बड़े हिस्से में सूखा घोषित कर दिया है।
1: राज्य सरकारों ने महाराष्ट्र में बड़े हिस्से पर और कर्नाटक में भी बड़े हिस्से पर सूखा घोषित किया है। भारत सरकार राज्यों के साथ डट के खड़ी रहेगी। कर्नाटक में भी 3 अक्टूबर को टीम बना के भेज रहे हैं वहाँ की स्थिति के आकलन के लिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से बात हुई है तो भाभी हम टीम की तैयारी कर रहे हैं। मैं स्वयं भी उन राज्यों में जाके स्थिति देखूंगा और हम अपने किसानों के साथ राज्य सरकारों के साथ पूरी ताकत से खड़े रहेंगे इस परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए।
0: श्री चौहान ने कहा कि शुरुआत में आशंका थी कि अल नीनो के प्रभाव से बुवाई का क्षेत्र कम हो सकता है और महत्वपूर्ण चुनौतियां उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने देश भर में पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
1: जो प्रयास किए भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खाद की कोई कमी नहीं आई। खाद की व्यवस्था करने के लिए सरकार कृत संकल्पित है, लेकिन हम ये जोर जरूर दे रहे हैं कि जितना जरूरी है उतने खाद का उपयोग, संतुलित उपयोग, उसके लिए खेत बचाओ अभियान हम फिर चलाएंगे ताकि सॉइल हेल्थ कार्ड में जो सिफारिश की है माटी में जो तत्व कम है उसके आधार पर कितना खाद चाहिए उतना खाद डाला जाए तो मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद ये कार्रवाई की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
3: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने आज देशवासियों से जनगणना के लिए समय निकालने का आग्रह किया है। मन की बात कार्यक्रम में किए गए अपने आह्वान को याद करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जनगणना में भाग लेना सभी नागरिकों का राष्ट्रीय कर्तव्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि 3 तलाक कानून कैसे मुस्लिम महिलाओं के जीवन में बबदलाव लाने में मदद कर रहा है।
4: 3 तलाक की प्रथा से प्रभावित मुस्लिम महिलाओं को कानूनी सुरक्षा और अधिकार दिलाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 लागू किया। इस कानून के तहत तत्काल 3 तलाक को गैर कानूनी और दंडनीय बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये कानून संविधान की भावना के अनुरूप मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार और न्याय सुनिश्चित कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
5: भारत के संविधान की भावना को, बाबा साहब आम्बेडकर की भावना को आदर करते हुए हमारी मुस्लिम बहनों को भी समान अधिकार मिले, उनके अंदर भी एक नया विश्वास पैदा हो, भारत की विकास यात्रा में वो भी सक्रिय भागीदार बने, इसलिए हमने इस महत्वपूर्ण निर्णय को किया।
4: मुस्लिम मामलों के विशेषज्ञ रजा रिजवी का कहना है कि 3 तलाक कानून ने मुस्लिम महिलाओं को उनके वैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक करने और उन्हें सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
6: ये कानून केवल एक कानूनी बदलाव नहीं है, बल्कि महिला के सम्मान और उसके अधिकारों की रक्षा से जुड़ा विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिला सशक्तिकरण को विकास से जोड़ा।
4: मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम ने उन महिलाओं के लिए कानूनी सुरक्षा का प्रावधान किया है जो 3 तलाक की स्थिति में सामाजिक और पारिवारिक दबाव के कारण अपनी बात सामने नहीं रख पाती थी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ तेजी से बढ़ते आंवला उद्योग के लिए जाना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में आंवला उद्योग में प्रतापगढ़ के योगदान की सराहना की। आइए सुनते हैं इस पर हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि आंवले ने प्रतापगढ़ को एक मजबूत पहचान दी है। उन्होंने कहा कि प्रतापगढ़ के सावित्री फुले सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं के आंवले से बने उत्पाद आज ODOP के तहत नए बाजारों तक पहुंच रहे हैं, जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी हुई है।
3: आंवले ने प्रतापगढ़ को एक मजबूत पहचान दी है और अब यही पुरानी पहचान यहाँ के किसानों और महिलाओं के लिए नए अवसर लेकर आ रहे हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP के माध्यम से यहाँ आंवले से जुड़े स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा मिला है।
7: सावित्री फूले सेल्फ हेल्प ग्रुप की कमलेश कुमारी ने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा,
8: प्रधानमंत्री को हम धन्यवाद देते हैं, सावित्री फूले स्वयं सहायता समूह बनाए हैं, आंवला का लड्डू मुरब्बा जूस बर्फी भी यही हमारा प्रोडक्ट बनता है।
7: प्रतापगढ़ जनपद में 196 से अधिक आंवले के उत्पाद की इकाइयां हैं और यहां बने उत्पाद देश के अलग अलग हिस्सों के साथ कई देशों में भेजे जा रहे हैं। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश में 100 करोड़ से अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा है। वे आज नई दिल्ली में आयोजित औद्योगिक संबंध और श्रम तथा पुरस्कार संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
9: हम 25 करोड़ लोगों को SIC की हेल्थ सिक्योरिटी दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं, 10 करोड़ किसान के अकाउंट में हर 4 महीने 2000 रुपया डालते हैं। आज देश के 10 स्टेट ऐसे हैं जो महिला के अकाउंट में प्रति महीने कोई ना कोई 2000, 1500, 1200 ऐसी अमाउंट डालते हैं। तो मैंने कहा कि क्या सोशल सिक्योरिटी का पार्ट नहीं बन सकता और कैलकुलेशन चालू करा, तो उन्होंने स्वीकारा कि इंडिया आज 101 करोड़ यानी कि 68% लोगों को सोशल सिक्योरिटी देता है।
0: संयुक्त राष्ट्र महासभा में विश्व नेताओं ने शिक्षा, कौशल, प्रौद्योगिकी और रोजगार के माध्यम से वैश्विक समृद्धि को गति देने में युवा आबादी की क्षमता का उल्लेख किया। उन्होंने चेतावनी दी कि AI का बढ़ता उपयोग रोजगार को लेकर अनिश्चितता बढ़ा सकता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि AI मानव सशक्तिकरण और आर्थिक समृद्धि के लिए परिवर्तनकारी शक्ति बन सकता है, लेकिन उन्होंने इसके दुरुपयोग से होने वाले नुकसानों के बारे में चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि देशों को अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप AI मॉडल विकसित करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की 11वीं वार्षिक बैठक और निवेशक संवाद 2026 में भाग लेने के लिए कतर की राजधानी दोहा में हैं। इस बैठक में सदस्य प्रतिनिधिमंडल, नीति निर्माता और अन्य संबंधित पक्ष बैंक की रणनीतिक दिशा, संचालन प्राथमिकताओं और भविष्य के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। देश आज शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। भगत सिंह का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1907 में पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है।
10: शहीद आजम भगत सिंह के मन में देश की आजादी के लिए लड़ने का जज्बा अपने परिवार से ही मिला था। उनके दादा, पिता और चाचा सभी स्वतंत्रता आंदोलन में पूरी तरह सक्रिय थे। भगत सिंह खुद भी इस आंदोलन से जुड़े और देश की आजादी के लिए आवाज उठाने वाले क्रांतिकारी बन गए। अंग्रेजों के कठोर और दमनकारी कानूनों का विरोध करने के लिए उन्होंने साल 1929 में केंद्र विधानसभा में ऐसे बम फेंके जिससे किसी की जान न जाए। इसके बाद उन्होंने खुद को अंग्रेजों के हवाले कर दिया और गिरफ्तारी दी। साल 1931 में अंग्रेजों ने उन्हें फांसी दे दी। शहीद भगत सिंह की शहादत ने पूरे देश में गुस्से और प्रेरणा की एक जबरदस्त लहर पैदा कर दी, जिसने उनके बलिदान को ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध का एक शक्तिशाली प्रतीक बना दिया। उनके अदम्य साहस ने देश के युवाओं में जोश भर दिया और भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा और गति दी, जिससे गुलामी की जंजीरों को तोड़ने को देशवासियों का संकल्प और अधिक मजबूत हो गया। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के सत्र में 1.3% की गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 956 अंक गिरकर 72,939 पर और निफ्टी 306 अंक लुढ़ककर 22,835 पर पहुंच गया। और अब एशियाई खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
11: जापान एशियाई खेलों में भारत की ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीत लिया है। वहीं भारतीय एथलीट पिंकी बलहारा ने

0: महिलाओं के अंडर 78 किलोग्राम कुराश स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। महिला मुक्केबाजी में लवलीना बोरगोहाइन ने 75 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया की सियोंग सियोन को हराकर पदक पक्का कर लिया है। वहीं भारतीय क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला नेपाल और श्रीलंका के बीच होने वाले क्वार्टर फाइनल के विजेता से होगा। एशियाई खेलों में भारत पदक तालिका में 12वें स्थान पर है। अब तक भारत कुल मिलाकर 39 पदक जीत चुका है, जिनमें 4 स्वर्ण, 17 रजत और 18 कांस्य पदक शामिल हैं।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एशियाई खेलों में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर ईशा सिंह को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि ईशा सिंह के शानदार प्रदर्शन में उनके कौशल, सटीकता और निरंतरता की झलक दिखाई देती है। मौसम विभाग ने कल तक दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच आज दिल्ली के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हुई। विभाग के अनुसार कल तक केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। वहीं अगले 2 दिनों के दौरान आंध्र प्रदेश में तेज हवाएं चल सकती हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। बैंकों की आज से शुरू होने वाली 3 दिन की प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी हड़ताल स्थगित। भारत पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। शहीद आजम भगत सिंह की आज 119वीं जयंती। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच सेंसेक्स में करीब 1000 अंकों की गिरावट, निफ्टी भी 306 अंक गिरा। और एशियाई खेलों में भारत ने आज महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल में रजत और अंडर 78 किलोग्राम कुराश स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। शबनम के साथ हैं आप सभी का स्वागत है संगीत.com में।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना प्यार का मौसम फिल्म का, जो इस मौसम के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ सा लग रहा है। आर डी बर्मन साहब का ये संगीत है। और दोस्तों, पंचम दा के कंपोज किए गानों के बिना हिंदी फिल्म संगीत की चर्चा बिल्कुल अधूरी है, तो मैंने सोचा प्रोग्राम की शुरुआत में उन्हीं की बात करते हैं। पंचम दा के गानों का जादू ऐसा है कि आज भी सुनने वालों पर चल रहा है, और शायद अगली पीढ़ी यानी कि जेन अल्फा भी पंचम दा को सुनेगी हमारी तरह। बिल्कुल, आपको उनका कंपोज किया एक ऐसा गाना सुनाने वाली हूँ जो कि कल्ट क्लासिक माना जाता है, और इसे आर डी बर्मन साहब ने दो वर्जन में रिकॉर्ड किया था, एक फीमेल वर्जन में जिसे परवीन सुल्ताना ने गाया, और एक मेल वर्जन में जो कि मैं किशोर दा की आवाज़ में अब आपको सुनाने वाली हूँ। इस गाने के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है जो आप आज जानेंगे। चलिए पहले गाना सुनते हैं।

तो बताइए ना कितना है, कितना प्यार करते हैं। कुदरत फिल्म का ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना है दोस्तों, किशोरदा की आवाज़ में और बेहद लोकप्रिय गाना रहा है ये। हेमा मालिनी और राजेश खन्ना पर ये फिल्म आया गया। कुदरत फिल्म का ये जो गीत है ये दो आवाज़ों में इस फिल्म में रखा गया है, एक सेमी क्लासिकल जो कि परवीन सुल्ताना ने गाया, दूसरा अभी जो आपने सुना किशोरदा वाला। बड़ा अजीब सा इत्तेफाक रहा इस गाने के साथ, किशोरदा वाले जो गाने हैं उसको बहुत सारा प्यार मिला, जनता का कल्ट क्लासिक ये गाना माना जाता है, और परवीन सुल्ताना वाले गाने को फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। एक ने अवार्ड जीता, दूसरे ने दिल जीता। वैसे दिल जीतने से याद आया एक गाना जिसे आवाज़ दी है लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह ने, ये गाना सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।

इस गाने में एक लाइन है कि तेरी खुशी से हो खुशी, तेरे गम से हो गम। जी हाँ, बिल्कुल यही बात है, आपकी खुशी में हमारी खुशी है। आप इस गाने को बहुत पसंद करते हैं, आप सोशल मीडिया पर भी हमें बताते हैं कि ये गाना बहुत अच्छा है। एक हमारे लिसनर है, उन्होंने लिखा कि मैं ड्राइव करते करते इस गाने को सुनना चाहता हूँ, प्लीज़ सुनाइए। और इत्तेफाक ये रहा कि ये गाना मेरी लिस्ट में भी था, तो मैंने ये गाना सुना दिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये गाना पसंद आया होगा। दोस्तों, वारिस फिल्म का ये गाना है और ये अमृता सिंह और राज बब्बर पर फिल्माया गया है। ये गाना उस जमाने में रेडियो पर सुने जाने वाले गीतों की लिस्ट में बहुत ऊपर था। इसकी दो वजह रही, एक तो ये कि गाना भाई गाया बहुत अच्छा है, लता जी और मनमोहन सिंह ने बहुत ही खूबसूरती से गाया है। दूसरी वजह ये रही कि इस फिल्म में स्मिता पाटिल थी और फिल्म की रिलीज से कुछ दिनों पहले ही बेटे को जन्म देने के बाद महज 31 साल की उम्र में वो चल बसी। उनके चाहने वालों के लिए ये बहुत ही गहरा सदमा था, इसलिए जब वारिस रिलीज हुई स्मिता पाटिल के जाने के बाद, तो इस गाने को लोग स्मिता पाटिल से जोड़कर देखने लगे और इसे बार बार सुनना

0: जी बिल्कुल, आपका हमारा साथ यूं ही बना रहे, हम तो यही दुआ करते हैं। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में एक गाना आपने सुना, भीगी पलकें फिल्म से। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
1: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
2: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
1: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
2: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
1: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
2: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
3: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है, हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे आज

0: बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
1: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विथ इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
2: हंड्रेड पॉइंट वन मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। शबनम के साथ हैं आप। संगीत.com में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, अब बात ही करते हैं दिल तो पागल है फिल्म की, जो कि 1997 की एक सुपरहिट फिल्म थी, जिसे म्यूजिकली हिट भी कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, बल्कि म्यूजिक की वजह से ये हिट हुई ये कहना सही होगा। दोस्तों, फिल्म की पूरी कहानी गीत संगीत के साथ आगे बढ़ती है। इसके संगीतकार थे उत्तम सिंह। दिल तो पागल है के लिए शाहरुख खान को कुछ ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ी। जी हाँ, इसके गानों में डांस बहुत है। ऊपर से करिश्मा कपूर और माधुरी दीक्षित दोनों बेहतरीन डांसर्स मानी जाती हैं। ऐसे में शाहरुख खान को उनकी एनर्जी के साथ अपनी एनर्जी मिलाने के लिए घंटों डांस सीखना पड़ा और प्रैक्टिस करनी पड़ी बहुत ही ज्यादा अपने गुरु श्यामक डावर के साथ। और गाने तो आप जानते ही हैं, एक से बढ़कर एक रहे हैं इस फिल्म के।

दिल तो पागल है फिल्म का एक गाना लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज में आपने सुन लिया है बिल्कुल अभी। उम्मीद करती हूँ आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। सुनते रहिए यूं ही आकाशवाणी एफएम गोल्ड। फिलहाल मैं चलती हूँ, देविका जल्द होंगी आपके साथ।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। सर्वोच्च न्यायालय ने 2000 रुपए से अधिक के यूपीआई लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये शुल्क 15 अक्टूबर से प्रभावी होने हैं। न्यायालय ने केंद्र सरकार, रिजर्व बैंक और अन्य प्रतिवादियों से जवाब मांगा है और 4 सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा कि ये मुद्दा कानूनी से अधिक तकनीकी है। केंद्र सरकार की ओर से अपर सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरामन ने पीठ को बताया कि भुगतान गेटवे के 96% उपयोगकर्ता इससे मुक्त रहेंगे। इस कदम को चुनौती देने वाली जनहित याचिका अधिवक्ता अंजन दत्ता ने दायर की थी। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने घोषणा की है कि आज से शुरू होने वाली 3 दिन की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित कर दी गई है। यह निर्णय भारतीय बैंक संघ के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। सोशल मीडिया पोस्ट में ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने कहा कि ये निर्णय कल रात भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बीच हड़ताल से संबंधित मुद्दों पर हुई बैठक के बाद लिया गया। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कुछ अन्य यूनियनों और एसोसिएशनों ने 5 दिवसीय बैंकिंग प्रणाली लागू करने और प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना को वापस लेने की 2 प्रमुख मांगों को लेकर हड़ताल का आह्वान किया था। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज कहा कि देश में 100 करोड़ से अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा है। वे आज नई दिल्ली में आयोजित औद्योगिक संबंध और श्रम तथा पुरस्कार संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। डॉ. मांडविया ने कहा कि सभी हितधारकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद की गई कार्रवाई में 18 जवान शहीद हुए थे। प्रधानमंत्री ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवाद रोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया। सेना की यह कार्रवाई आतंकवाद को कतई बर्दाश्त

0: आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में चलती बस में एक नाबालिग के साथ हुए कथित सामूहिक दुष्कर्म का आज स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा कि ऐसे मामले कानूनी व्यवस्था की विफलता को उजागर करते हैं। न्यायालय ने कहा कि अपर्याप्त रोशनी, खराब निगरानी और अन्य आवश्यक प्रशासनिक सुविधाओं के अभाव के कारण सार्वजनिक स्थानों को उच्च जोखिम वाले क्षेत्र बनने नहीं दिया जा सकता। देश आज शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। भगत सिंह का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1907 में पंजाब के लालपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री मोदी ने आज भारत रत्न लता मंगेशकर की जयंती पर भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारतीय संगीत की दुनिया में लता मंगेशकर का अतुलनीय योगदान युगों तक स्मरणीय रहेगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में विश्व नेताओं ने शिक्षा, कौशल, प्रौद्योगिकी और रोजगार के माध्यम से वैश्विक समृद्धि को गति देने में युवा आबादी की क्षमता का उल्लेख किया। उन्होंने चेतावनी दी कि एआई का बढ़ता उपयोग रोजगार को लेकर अनिश्चितता बढ़ा सकता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. The Supreme Court today refused to stay the center's decision to impose merchant discount rate MDR on specified person-to-merchant UPI transactions above 2,000 rupees, with the charges set to come into effect from the 15th of next month. A bench comprising Chief Justice of India Suryakant and Justice Joymalia Bagchi and Justice V. Mohana sought responses from the center, the Reserve Bank of India and other respondents, directing them to file their counter-affidavits within 4 weeks. The Apex Court observed that the issue is less legal and more technical. The Supreme Court today took Xiaomoto cognizance of the alleged gang rape of a minor in a moving bus in the Delhi NCR region, observing that such cases underline a systematic failure on the part of law enforcement authorities. A bench comprising Justice J.B. Pardiwala and Justice K. Vinod Chandran observed that public spaces, including parks and buses, cannot be allowed to turn into high-risk zones because of inadequate lighting, poor surveillance and the lack of other essential administrative facilities. Last month, a 16-year-old girl who boarded a sleeper bus in Greater Noida was allegedly gang-raped by its conductor and driver and abandoned near Kashmiri Gate in Delhi. The two accused have been arrested. The centre will dispatch teams to Karnataka and Maharashtra to assess the drought situation in the two states. Talking to reporters in New Delhi after the inaugural session of the National Conference on Agriculture for Rabi Campaign 2026, Union Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan said the governments of Maharashtra and Karnataka have declared drought in large parts of their states. He said the central team will be sent to Karnataka on the 3rd of October to assess the drought situation. The minister said the central government stands firmly with the states in this situation. Union Labour and Employment Minister Dr. Mansukh Mandavia today said over 100 crore people in the country receive social security coverage. This includes 5 lakh rupees health security coverage for over 60 crore citizens, ESIC health security for 25 crore people, free grains to over 80 crore people, and financial assistance to farmers and women. The minister was addressing the National Conference on Industrial Relations and Labour Awards in New Delhi. Dr. Mandavia said the government is working to sustain the growth of industries as well as promote the welfare of workers for sustainable development of the country.
3: हमारा लक्ष्य 2047 में विकसित भारत बनाना।
4: Our goal is to achieve a विकसित भारत by 2047. Every sector is a stakeholder in this vision. Industries, industrialists, the workforce, workers and governments are all stakeholders. We are all stakeholders. If we move forward together step by step, I believe we will achieve our goal and emerge as a developed nation.
3: फिर एक developed country के रूप में दुनिया के सामने हम आएंगे।
2: India today marks the 10th anniversary of surgical strikes that demonstrated to the world a new

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और आप इसे सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। 3:11 और ठीक 1 सेकंड मन भावन लेकर देविका हाजिर है और मन भावन की ईमेल आईडी fmgoldaiadelhi@gmail.com जहां आप अपनी मेल्स हम तक पहुंचा सकते हैं। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। लता मंगेशकर, एक ऐसा नक्षत्र, एक ऐसा तारा जिसकी रोशनी कभी कम नहीं हो सकती। लता जी ने यूं तो अनगिनत गीत गाए हैं और लता जी अपने सहयोगी गायकों को भी सम्मान देती थी, उनका ख्याल रखती थी और इसी दिशा में उन्होंने श्रद्धांजलि नाम से एक एल्बम निकाली जिसमें उन्होंने अपने समकालीन सभी गायकों के प्रसिद्ध गीत गाए थे। और मन भावन का आगाज हम कर रहे हैं लता जी की श्रद्धांजलि एल्बम से, रफी साहब के एक गीत से जो लता जी को बेहद पसंद था। आइए सुनते हैं।

0: मन रेतु काहे ना धीर धरे, लता जी की आवाज़ में आपने सुना। और मन भावन में आज लता जी के कुछ नगमे, कुछ खूबसूरत से नगमे, डुएट या सोलो। और फिलहाल जो पहली मेल हम शामिल कर रहे हैं वो हमें भेजी है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चिप्पा, कपिल चिप्पा, ईशान चिप्पा, पूजा परिहार ने। और इन्होंने जिस गीत की फरमाइश की है, बस थोड़ी सी देर में आपको सुनवाती हूँ।
1: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
0: अगला गीत मनभावन का फिल्म चोरी चोरी से।

0: मन भवन सुन रहे हैं आप सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर।
1: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है, हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे, आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
2: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेटिव इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड,

जी हाँ, मन भावन की अगली फरमाइश जो हम पूरी करने जा रहे हैं वो हमें भेजी है भारत मक्कर कमल सहनी पिंगावाला चौक जालंधर से। मन्नत मक्कर भी हैं, ज्योति मक्कर भी हैं, संदीप मक्कर भी हैं और इन्होंने फिल्म लेकिन के बहुत ही खूबसूरत गीत की फरमाइश की है।

0: फिल्म लेकिन का गीत आपने सुना, और सचमुच श्रोताओं के लता जी के इतने सारे गाने हैं कि चुनना मुश्किल है कि कौन से गीत की फरमाइश की जाए और कौन से की नहीं। ये हमें लिख के भेजा है मोहम्मद फीर अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान, अमान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य, और कुछ और नाम हैं जो हम शामिल करना चाहते हैं, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेराज जहाँ। ये हमें लिखते हैं आज़ाद नगर हरिद्वार उत्तराखंड से, छत्तीसगढ़ टू चूड़ी लाइन से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, निलोफर फातिमा छत्तीसगढ़ रायपुर से, मोहम्मद इमरान, इशरत परवीन, मोहम्मद हसैन, रज़ा, गौसिया फातिमा और परिवार के सभी सदस्य मेरठ से, दिग्दर्शन और कविता गौर हैं, शबाना भारती, अरहान अहमद, सूफिया नवाब, नवाब अहमद भारती, बली मरान से, ज़िला महाराष्ट्र से शंकर लाल जायसवाल, गणेश लाल जायसवाल, शुभ प्रसाद जायसवाल, अर्णव जायसवाल, दुगेश्वरी जायसवाल, राखी और तृप्ति हैं, और हमें कस्बा बलराम से इशरत अहमद शाह, शाहजहाँ बेगम और मरियम जैनब है, और इसके साथ जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल हैं, और गुरुग्राम से सरोज बंसल हैं, अनूप कौर हैं, और ये लिखते हैं कि पहले ही गीत ने क्वालिटी बता दी कि प्रोग्राम की क्या होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, श्रद्धांजलि एल्बम का जो गीत है वो सच मानिए मेरा भी बहुत पसंदीदा है। मनभावन रहे हैं आप सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर।
1: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
2: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
1: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
2: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
1: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
2: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी

मन भावन सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर। और अगली फरमाइश जो हम पूरी करने जा रहे हैं वो हमें भेजी है हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया और तमन्ना भाटिया ने, और इन्होंने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के इस गीत की फरमाइश की है।

जी हाँ, फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगा का गीत आपने सुना और लता जी और उदित नारायण की आवाज़ थी। अगली फरमाइश हम पूरी करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक बात ज़रूर कहना चाहेंगे कि कुछ गीत ऐसे होते हैं जो आपके बचपन की बिल्कुल याद बन के रह जाते हैं, और जिस गीत को हम प्ले करने जा रहे हैं वो गीत मेरे बचपन की याद है और आपकी भी होगी, बहुत सारे श्रोता ऐसे होंगे। फिल्म समाधि का गीत है और इसकी फरमाइश हमें भेजी है शेरवानी स्कूल गंज टुंडवारा से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी, और गीत है ये।

फिल्म आह का गीत आपने सुना लता जी की आवाज़ में, और कुछ नाम है हम पढ़ने चाहेंगे, और बहुत से ऐसे श्रोता हैं जो हमें लिख के भेज रहे हैं कि मन रेतु का है न धीर धरे, हमने पहली बार लता जी की आवाज़ में सुना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये हमें भेजा है मेल, ये हमें लिखते हैं फिल्म प्रेम पर्वत की फरमाइश की है गौरी शंकर नांगलोई से, लेकिन आपकी फरमाइश फिल्म आह का गीत हम प्ले कर चुके हैं। और हम तक पहुंचा है सलीम अख्तर रेशमा बेगम अलीगढ़ से।

0: कहते हैं कि आप हमारी मेल शामिल नहीं करती हैं। लीजिए, ऐसा है कि मेल बहुत सारी आती हैं हमारे पास, तो कभी ऐसा होता है कि आपका नाम कहीं मिस हो जाता है, तो उसके लिए क्षमा। और हम तक पहुंचा है, ये हमें भेजा है रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू कहते हैं कि लता जी की आवाज़ सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है, उनका हर गीत दिल में उतर जाता है, ऐसी महान आवाज़ को दिल से नमन, सचमुच। और हम तक पहुँचा है वाइल्ड फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, तब दिवेंद्र भूषण संस्कृति और पौरिश का।
1: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

मन भावन से आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर और 3:44 और ठीक 44 सेकंड देविका है आपके साथ। और हम गीत जो प्ले कर रहे हैं वो लता जी के या डुएट या सोलो। और हम तक अगली फरमाइश जो हमें भेजी है वो हमें भेजी है पहाड़गंज मुल्तानी डांडा से अनिल मोहन उषा मोहन टिल्लू नायक और मधु नायक ने। और इन्होंने फिल्म सौदागर के इस गीत की फरमाइश की है।

जी हाँ, ये साथ जो है हमारे श्रोताओं का और एफएम गोल्ड का, ये हमेशा से बना रहे. और बहुत सारे श्रोता ऐसे जो बहुत प्यारे हैं और ये भी लिखते हैं कि आप हमारा नाम शामिल नहीं करती है. देखिए, समय कम होता है हमारे पास, कोशिश हमारी रहती है कि हम हर किसी का नाम शामिल करें. ज़िला खरगोन सनावाद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बुडाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश और जगताप हैं. नई दिल्ली से कमलेश, मुकुल, सचिन और दीपांशु हैं. कस्बा यूपी से फारूक अली खान, फैजी, फराज, फरहीन, फरहान, फारिया और ताहिरा, अहमद भाई फूल वाले, इमरान अहमद फूल वाले, आमना, आसमा, नसरीन, इकबाल अहमद फूल वाले और समस्त फूल वाले परिवार. और इसके साथ बिहारी कॉलोनी दिल्ली से मेल पहुंची है तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन और रचिता मस्कीन की. कहते हैं कि अभी तक आपने रिप्लाई नहीं किया. लीजिए, रिप्लाई कर दिया आपको. अगली फरमाइश हम पूरी करने जा रहे हैं, वो हमें भेजी है चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा बिमला ने जाने. और इन्होंने इस गीत की फरमाइश की है. फिल्म है आपकी परछाइयां.

0: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
1: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
0: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
1: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
0: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
1: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
2: मनभावन से आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर और मनभावन का आखिरी गीत हम प्ले कर रहे हैं फिल्म दुनिया से।

सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया। मन भावन में आज बस इतना ही। ठीक 4 बजे होंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने 2000 रुपए से अधिक के यूपीआई लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये शुल्क 15 अक्टूबर से प्रभावी होने हैं। न्यायालय ने केंद्र सरकार, रिजर्व बैंक और अन्य प्रतिवादियों से जवाब मांगा है और 4 सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। न्यायालय ने कहा कि मुद्दा कानूनी से अधिक तकनीकी है। केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरामन ने पीठ को बताया कि भुगतान गेटवे के 96% उपयोगकर्ता इससे मुक्त रहेंगे। इस कदम को चुनौती देने वाली जनहित याचिका अधिवक्ता अंजन दत्ता ने दायर की थी। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश में 100 करोड़ से अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा है। वे नई दिल्ली में आयोजित औद्योगिक संबंध और श्रम तथा पुरस्कार संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। डॉ. मांडविया ने सभी हितधारकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने देश भर में सोने की तस्करी के एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। निदेशालय ने 6 किलो 600 ग्राम से अधिक विदेशी सोना जब्त किया है। इसकी कीमत करीब 10 करोड़ रुपए है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि यह गिरोह कोरियर नेटवर्क के जरिए काम करता था। पिछले 9 महीनों में इस नेटवर्क के जरिए 318 किलोग्राम तस्करी का सोना लाया गया, जिसकी कीमत 475 करोड़ रुपए है। मामले में गिरोह के एक मुख्य षड्यंत्रकर्ता सहित 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मामले की जांच जारी है। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद ये कार्रवाई की गई थी, जिसमें 18 जवान शहीद हुए थे। प्रधानमंत्री ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवाद रोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया है। सेना की यह कार्रवाई आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने के नीति को दर्शाती है। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: संयुक्त राष्ट्र महासभा में विश्व नेताओं ने शिक्षा, कौशल, प्रौद्योगिकी

फिल्म आग गले लग जाएगा गीत आपने सुना किशोर कुमार की आवाज़ और साथ थी सुषमा श्रेष्ठ। और अगला गीत हम लेकर आए हैं लता जी और मुकेश जी की आवाज़ में।

0: लोगों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: आपको बता दें, थोड़ी सी देर में आप सुनेंगे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ और रोजगार समाचार, और उसके बाद 4:30 पे प्रोग्राम होगा परिक्रमा, और ठीक 5 बजे होंगे समाचार।

0: can obtain complete details regarding eligibility, qualifications, experience and the application format from the Department of Agriculture and Farmers Welfare and Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage. For details, kindly look up www.agriwelfare.gov.in. The ICAR, National Research Institute of Integrated Pest Management, New Delhi, invites eligible candidates to attend a walk-in interview for one position of Young Professional 2 under the project title ICT-based Pest Surveillance and Advisory Services for Horticulture Crops in Haryana. The engagement is on purely contractual basis for the duration and requirement of the project. Candidates meeting the prescribed eligibility conditions are required to attend the walk-in interview along with necessary documents as specified in the detailed notification. Information regarding the educational qualifications, age limit, remuneration, date and venue of the interview, application forms and other conditions are available on the Institute's website. The last date for applications is 6th October 2026. For details, kindly look up www.nriipm.res.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: Namaskar. रोजगार समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। दिल्ली उच्च न्यायालय आयोजित करने जा रहा है वरिष्ठ निजी सहायक और निजी सहायक परीक्षा 2026। वरिष्ठ निजी सहायक के कुल 117 पद उपलब्ध हैं, जबकि निजी सहायक के कुल 33 पद उपलब्ध हैं। विस्तृत जानकारियों के लिए देखिए दिल्ली उच्च न्यायालय की वेबसाइट। वेबसाइट का पता है www.delhihighcourt.nic.in www.delhihighcourt.nic.in। भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान कोलकाता में इन पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। वरिष्ठ सुपरिंटेंडेंट, काउंसलर, कनिष्ठ इंजीनियर, नर्सिंग सहायक, कनिष्ठ ऑफिस सहायक, कनिष्ठ सहायक एमएस और परिचारक। कनिष्ठ ऑफिस सहायक के 2 पद तथा कनिष्ठ सहायक के 10 पद उपलब्ध हैं, जबकि अन्य सभी पदों पर एक एक रिक्ति ही उपलब्ध है। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान कोलकाता की वेबसाइट apply.iiserkol.ac.in। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग में प्रशासनिक अधिकारी का पद भरा जाना है। वेतन, भत्ते, अन्य शर्तें समय समय पर कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार ही रहेंगे। इच्छुक और पात्र अधिकारी काडर नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप परिशिष्ट जे में इस पद के लिए अपने आवेदन भेज सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट dor.gov.in/vacancies। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए महिला शोधकर्ताओं हेतु बायोकेयर कार्यक्रम के अंतर्गत आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में महिला शोधकर्ताओं की जैव प्रौद्योगिकी एवं संबद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान के प्रति भागीदारी को बढ़ावा देना है। फेलोशिप अनुदान, पात्रता मानदंड, दिशा निर्देश एवं आवेदन प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत जानकारी डीबीटी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। वेबसाइट है dbt.gov.in। इसके अलावा आरसीबी की वेबसाइट पर भी जानकारियां उपलब्ध हैं। पता है rcb.res.in। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति आधार पर संयुक्त निदेशक राजभाषा के पद को भरा जाना है। इस पद से संबंधित विस्तृत जानकारियां यथा शैक्षिक योग्यता,

0: आरक्षण, आयु सीमा, वेतन, तैनाती का स्थान आदि की विस्तृत जानकारी के लिए आप देख सकते हैं रोजगार समाचार पत्र का 19 से 25 सितंबर 2026 का अंक। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार, शाम का ये सुहाना वक्त एक बार फिर लेकर आया है देश दुनिया की खबरों, रोचक जानकारियों और दिन भर की प्रमुख हलचलों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा। अगले आधे घंटे में होगी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों पर नजर, क्षेत्रीय संवाददाताओं से खास जानकारी, खेल जगत की प्रमुख गतिविधियां और उन विशिष्ट व्यक्तित्वों का स्मरण जिनकी आज जयंती, जन्मदिन या पुण्यतिथि है। तो आइए शुरू करते हैं आज की परिक्रमा। मैं हूं वैष्णवी और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। हेलो अभिषेक।
2: Hello Vaishnavi, hello and a very warm welcome to all those tuned in to the news magazine program Parikrama on 100.1 FM Gold. I am Abhishek Mukhopadhyay and with me today is of course my co-host Vaishnavi.

0: and so do the ways we watch, listen and experience content.
1: अब स्क्रीन छोटी हो गई है अभिषेक, दुनिया भी तेज हो गई है और कार्यक्रम हमारी उंगलियों पर उपलब्ध है, लेकिन बदलते समय का मतलब ये नहीं है कि पुरानी आवाजें पीछे छूट जाएं। इसी सोच के साथ वेव्स मंच उस सुनहरे अतीत को आज की डिजिटल दुनिया से जोड़ता है, एक ऐसी लहर बनकर जिसमें विरासत भी है और भविष्य भी।
0: बिफोर मूविंग फॉरवर्ड लेट अस अंडरस्टैंड ओटीटी इन सिंपल टर्म्स फॉर ऑडियंस. OTT or over the top is a digital medium that allows you to watch or listen to your preferred programs, films, show, live TV and radio content via the internet at your own convenience and on your own schedule.
1: अभिषेक, वेव्स भी एक ऐसा ही ओटीटी मंच है. ये भारत के सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती का आधिकारिक डिजिटल मंच है. इसे 20 नवंबर 2024 को गोवा में 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में शुरू किया गया था.
0: Yes, and here listeners, you get everything in one place, including television, radio, live programs, archives, that is old shows and recordings, educational content, culture and heritage, publications and magazines, and selected entertainment.
1: यानी आसान शब्दों में कहें तो ये दूरदर्शन और आकाशवाणी की सामग्री का बड़ा संग्रह आपके फोन या टेलीविजन पर उपलब्ध कराता है. इसे आप अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी देख या सुन सकते हैं और इसके आंकड़े भी एक दिलचस्प तस्वीर पेश करते हैं. 1,40,00,000 से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता, 1,70,00,000 से अधिक डाउनलोड और 20,000 से अधिक सामग्री जो 130 से अधिक देशों के दर्शकों तक पहुंच रही है.
0: एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ डिजिटल एक्सेस वेयर डिस्टेंस स्टार्ट्स लूजिंग इट्स पावर. बट हियर कम्स द बिगर क्वेश्चन, कैन पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग रिमेन रेलेवेंट व्हेन ऑडियंसेस नो लॉन्गर वेट फॉर अ प्रोग्राम टू कम ऑन एट अ फिक्स्ड टाइम?
1: अभिषेक, वेव्स इस सवाल का जवाब एक आसान विचार के साथ दे रहा है. दर्शकों को ये तय करने दें कि वे कब, कहां और किस तरह देखना या सुनना चाहते हैं. इस मंच पर आप 140 से अधिक टेलीविजन चैनल और 220 से अधिक रेडियो सेवाओं के साथ साथ दूरदर्शन के सभी 35 उपग्रह चैनल भी देख और सुन सकते हैं.
0: एंड द वेव्स प्लेटफॉर्म ऑल्सो ब्रिंग्स एजुकेशनल प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग PME विद्या, an advanced digital library of more than 9,300 e-books and publications such as Yojana and Kurukshetra. And for entertainment and discovery, there are films, documentaries, series and thousands of hours of archival content.
1: और भारत की सबसे बड़ी ताकत यानी इसकी विविधता वेव्स मंच के केंद्र में है. इसकी सामग्री में 26 से अधिक भाषाएं शामिल है, जबकि ये मंच 10 से अधिक भाषाओं में उपलब्ध है. क्षेत्रीय कहानियां, लिखित अनुवाद और पुरानी सामग्री का संग्रह दर्शकों के लिए देश भर की अलग अलग आवाजों और कहानियों को खोजना आसान बनाते हैं.
0: एंड वैष्णवी, टुडे ऑलमोस्ट एवरी थर्ड पर्सन इज अ क्रिएटर ऑन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म और अनदर, शेयरिंग आइडियाज, टेलिंग स्टोरीज, शोकेसिंग टैलेंट एंड बिल्डिंग कम्युनिटीज. एंड वेव्स वेरी वेल रिकॉग्नाइजेस दिस शिफ्ट. माय वेव्स लॉन्च ऑन द 23rd ऑफ मार्च दिस ईयर टेक्स द स्टोरी अ स्टेप फर्दर.
1: इसके जरिए लोग अपनी छोटी वीडियो या कोई सीरीज को साझा और अपलोड कर सकते हैं. कैमरे के पीछे कोई कॉलेज का छात्र हो सकता है या स्थानीय कहानीकार या युवा फिल्म निर्माता या ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो अपने परिवार में पीढ़ियों से चली आ रही किसी परंपरा को रिकॉर्ड कर रहा हो.
0: And here's a wonderful example, that is Gems of India initiative. And this initiative is connected to Waves and in fact is a part of the Waves ecosystem. Launched as a pilot across 6 states and union territories, the initiative invited creators to tell 1 to 3 minute stories about the districts, the heritage, food, festivals and local achievements.
1: अभिषेक, सोचिए कोई युवा रचनाकार दुनिया को अपने जिले की सदियों पुरानी कला दिखा रहा है या किसी ऐसे स्थानीय त्योहार की कहानी सुना रहा है जिसके उसके दादा दादी ने जिंदगी भर मनाया था.
0: एंड अ स्टोरी दैट वंस बिलोंग्ड टू वन रीजन, वन विलेज और वन डिस्ट्रिक्ट कैन नाउ ट्रैवल अक्रॉस इंडिया एंड बियॉन्ड. एंड एज द फेमस सेइंग गोज, वैष्णवी, द वर्ल्ड इज अ बुक एंड दोज हु डू नॉट ट्रैवल रीड ओनली वन पेज. Well, today technology can help us turn every district into a new page.
1: बिल्कुल सही कहा अभिषेक आपने. वेव्स जो है वो सिर्फ दर्शकों और रचनाकारों तक ही सीमित नहीं है. विश्व श्रव्य दृश्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन यानी वेव्स रचनाकारों, व्यापार जगत, निवेशकों, नीति निर्माताओं और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विशेषज्ञों को एक दूसरे से जोड़ता है.
0: And perhaps the real transformation is not television moving on to smartphones. It is the very idea of broadcasting opening itself to participation. The stories India has preserved now sit alongside the stories Indians are creating every day. that is Waves Public Broadcasting, meeting a digital generation.

0: participation and giving India's incredible diversity a much bigger stage.
1: श्रोताओं, वेव्स के जरिए डिजिटल दुनिया में सूचना और मनोरंजन तक आसान पहुंच की बात के बाद अब बात करते हैं उस अधिकार की जो हर नागरिक को जानकारी पाने और सवाल पूछने की पूरी ताकत देता है। अब जरा सोचिए, हर दिन हमारे मन में कितने सवाल आते हैं। ये सड़क यहाँ क्यों बनाई गई, उस परियोजना के लिए पैसा कहाँ गया, और शायद सबसे आसान सवाल, मुझे ये जानकारी कहाँ से मिलेगी।
0: बिकॉज इन्फॉर्मेशन इज इन मेरली अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, इन्फॉर्मेशन गिव्स पीपल द पावर टू अंडरस्टैंड, क्वेश्चन एंड पार्टिसिपेट।
1: यूनेस्को ने सबसे पहले 2015 में इस दिवस की घोषणा की थी और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2019 में इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी, और इस मामले में भारत की कहानी भी महत्वपूर्ण है।
0: Absolutely, Vaishnavi, and for years, citizens, activists, and civil society groups worked towards making information from public authorities more accessible. The journey saw proposals and campaigns through the 1990s and early 2000s before the Right to Information Act 2005 finally came into force.
1: इसके जरिए कोई भी नागरिक सरकारी संस्थाओं से जानकारी मांग सकता है। इससे सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिला।
0: And as Francis Bacon famously said, knowledge itself is power. But today, when information travels faster than ever, access also means access to reliable, accurate and meaningful information.
1: तो इस 28 सितंबर को क्यों ना सवाल पूछने की हिम्मत, जानने का अधिकार और जानकारी का समझदारी से इस्तेमाल करने की जिम्मेदारी का जश्न मनाया जाए।
0: Because democracy becomes stronger when citizens don't merely listen to the world around them, they actually understand it, question it and become a part of this very democracy. In a bilingual live phone-in program, Public Speak, tonight at 9:30 p.m., we will bring a discussion on Ayushman Bharat and digital health services for every citizen with Kiran Gopal Vaska, JS, National Health Authority, NHA. During the program, listeners can ask questions on the subject. To participate, listeners can call on telephone numbers 011-2331-0481, 011-2371-7117, and 011-2331-4444 from 9:30 p.m. onwards tonight. Alternatively, you can also send your queries via WhatsApp to the number 9289094044, or post your questions on X with the hashtag AskAIR.
1: और अभिषेक, अब समय हो चला है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जाने का कि उनके पास क्या खास है।
0: Yes, and straight away we start off with a story from Imphal, and the World Tourism Day was observed yesterday at various places across Manipur, highlighting the state's rich natural beauty, cultural heritage and immense tourism potential. We have more from our Imphal correspondent.
2: Manipur Governor Ajay Kumar Bhalla, Chief Minister Yumnam Khemsan Singh, ministers, MLAs and senior civil and police officials attended the World Tourism Day. Showcasing the rich and diverse tourism potential of Manipur was a major highlight of this celebration. Addressing the gathering, Manipur Governor Ajay Kumar Bhalla has called for greater use of digital technology and artificial intelligence to promote tourism in the state. Sri Bhalla said,
3: "Here in Bishnupur district, we are surrounded by places and symbols that have come to represent the very identity of Manipur. The pristine Loktak Lake, the unique Kabil Lamjao National Park, the graceful Sangai deer, and the historic town of Mairang itself, which holds the proud legacy of Indian National Army and the first flag of Indian independence hoisted on Indian soil."
2: With sustained development and greater attention to the tourism sector, Manipur has immense potential to emerge as a major tourist destination. Ngangom Kiran, Akashvani News, Parikrama, Imphal.
1: और इम्फाल से आगे बढ़ते हैं, कोहिमा की ओर रुख करते हैं। इतिहास में पहली बार नागा फिल्म मेकर तीजा रेयो की पहली फिल्म अंग ने टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्लेटफॉर्म प्राइज 2026 जीता है। इसकी घोषणा इस महीने की 20 तारीख को की गई। इस अवार्ड से फिल्म को 2027 के ऑस्कर में इंटरनेशनल फीचर फिल्म की दौड़ में सीधे एंट्री भी मिल गई है। एक रिपोर्ट।
4: Ankh has marked a significant moment for Naga cinema. Set in the early 1960s near the Indo-Burma border, Ankh follows Angba, an aging Konyak village chief who struggles to hold on the beliefs and traditions passed down through generations. Shot on 16mm film, Ankh combines indigenous

लता मंगेशकर ने 36 से अधिक भाषाओं में गीत गाए, लेकिन हिंदी और मराठी में उनकी पहचान सबसे गहरी रही। लग जा गले, ए मेरे वतन के लोगों, तेरे बिना जिंदगी से, और प्यार किया तो डरना क्या, ये कुछ ऐसे अनमोल गीत हैं जो पीढ़ियां बदल जाने के बाद भी अमर रहेंगे। लता मंगेशकर की उपलब्धियां किसी गगनचुंबी मीनार से कम नहीं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सबसे अधिक गीत गाने का कीर्तिमान, 36 भाषाओं में 25,000 से गीतों की रचना और पद्मभूषण, दादा साहेब फाल्के, भारत रत्न जैसे सम्मान उनके नाम की माला में मोती हैं। हम आपके लिए कुछ खूबसूरत गीत उनके लेके आए हैं, आइए सुनते हैं।

श्रोताओं, आज पी जयराज का जन्मदिन है। आज ही के दिन 1909 को उनका जन्म हुआ था। जयराज जी ने 1929 में अपने करियर की शुरुआत मूक फिल्मों से की और बाद में टॉकी फिल्मों में भी शानदार अभिनय किया। वे ऐतिहासिक और पौराणिक भूमिकाओं के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध रहे। उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, जो भारतीय सिनेमा में उनके अमूल्य योगदान की पहचान है। आइए सुनते हैं उनकी फिल्म रजिया सुल्ताना का ये गीत।

0: Yes, and his portrayal of Sanjay Dutt in the movie Sanju in 2018 won him a Filmfare Award.
1: और श्रोताओं, समय हो चला है आपसे इजाजत लेने का, तो वैष्णवी और अभिषेक को अनुमति दीजिए परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की।
0: नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भारत ने इस वर्ष वस्तुओं और सेवाओं के कुल निर्यात को पिछले वर्ष के 863 अरब डॉलर से बढ़ाकर 1 ट्रिलियन डॉलर करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीनों में वस्तुओं के निर्यात में 15% से अधिक की वृद्धि हुई है। मुंबई में भारत और संयुक्त अरब अमीरात उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत और यूएई के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के बाद दोनों देशों का व्यापार करीब 100 अरब डॉलर हो गया है। उन्होंने कहा कि यूएई ने भारत में अब तक लगभग 25 अरब डॉलर का निवेश किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने 2000 रुपए से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये शुल्क 15 अक्टूबर से प्रभावी होने हैं। न्यायालय ने केंद्र सरकार, रिजर्व बैंक और अन्य प्रतिवादियों से जवाब मांगा है और 4 सप्ताह के अंदर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा कि यह मुद्दा कानूनी रूप से अधिक तकनीकी है। केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन वेंकट रामन ने पीठ को बताया कि भुगतान गेटवे के 96% उपयोगकर्ता इससे मुक्त रहेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज कहा कि देश में 100 करोड़ से अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा है। नई दिल्ली में आयोजित औद्योगिक संबंध और श्रम तथा पुरस्कार संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। डॉ. मांडविया ने सभी हितधारकों से वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नौसेना के कमांडरों को संबोधित करेंगे। भारतीय नौसेना के शीर्ष कमांडर सम्मेलन कल से 1 अक्टूबर तक नौसेना भवन में आयोजित किया जाएगा। इसमें देश की समुद्री सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। ये नौसेना का सर्वोच्च स्तर का सम्मेलन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों से जनगणना के लिए समय निकालने का आग्रह किया। कल मन की बात कार्यक्रम में किए गए अपने आह्वान को दोहराते हुए श्री मोदी ने कहा कि जनगणना में भाग लेना सभी नागरिकों का राष्ट्रीय कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि इस भागीदारी से देश के भविष्य की सही तस्वीर सामने आती है। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा पार कर आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। ये कार्रवाई 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया।
3: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
2: दिल्ली सरकार ने 1 नवंबर से अगले वर्ष 31 जनवरी तक धूल उत्पन्न करने वाले विध्वंस गतिविधियों और बाहरी निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और आप इसे सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। 5:11 और ठीक 1 सेकंड गाते गुनगुनाते लेकर देविका हाजिर है और कुछ आवाजें श्रोताओं सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचती बल्कि सीधा दिल में उतर जाती हैं। ऐसी ही एक जादुई आवाज थी स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी की। उनकी आवाज में मोहब्बत भी थी, दर्द भी था, भक्ति भी थी और जीवन के हर एहसास की मिठास थी। लता जी ने अपने सुरों से न जाने कितनी पीढ़ियों को संगीत में यादें दी हैं। उनके गीत आज भी उतने ही ताजा लगते हैं जितने कभी पहली बार सुनाई दिए थे। सच्ची कहा है किसी ने, लता जी की आवाज खामोश हो सकती है लेकिन उनके सुर कभी खामोश नहीं होंगे। जहाँ सुरों में बसती है मोहब्बत और आवाज में मिलता है सुकून, वहाँ याद आती हैं लता जी। और गाते गुनगुनाते का आगाज हम कर रहे हैं लता जी के गाए एक अमर कृति से। जयदेव जी संगीतकार रहे और एल्बम थी चांद ग्रहण।

0: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
1: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
0: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
1: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
0: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
1: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
2: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
3: मैम, मेरे वाले में तो HRD से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
4: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
5: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
6: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
2: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं, तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
7: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
8: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है,

0: हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे, आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
1: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड

0: जी हाँ, फिल्म वीर जारा का गीत आपने सुना, लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज़। 5:26 ठीक 7 सेकंड, आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल और प्रोग्राम है गाते गुनगुनाते।
1: कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
0: गाते गुनगुनाते का अगला गीत हम लेकर आए हैं एक नॉन फिल्म एल्बम से। लता जी ने इस गीत को गाया है और गीत के बोल हैं दिल में लेकर। साथ ही गाते गुनगुनाते में आज बस इतना ही, देविका आपसे विदा लेती है।

आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर अब प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा हेलो फार्मर्स।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: अरे अरे अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहे?
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब?
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ,
2: पर हम तो सभी डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
1: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूँगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
4: हेलो फार्मर्स कार्यक्रम में सभी किसान भाइयों का स्वागत है। मैं हूं सुषमा और मेरे साथ है मेरे साथी
5: अमित तेवतिया।
4: जी, हम दोनों ही लेकर आगे हैं ये कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम को आप सुनते हैं प्रत्येक सोमवार शाम 5:30 बजे से लेकर 6 बजे तक। और आज अमित, हम एक खास विषय लेकर आए हैं जो कि हमारी हेल्थ से बहुत जुड़ा हुआ है।
5: बिल्कुल,
4: है ना। वो विषय है हमारा आहार में भारी धातुओं की उपस्थिति और मानव स्वास्थ्य। अब ये भारी धातु क्या होती हैं, कहाँ उपस्थित होती हैं, कैसे हमारे भोजन तक पहुंचती हैं, क्या इनको रोका जा सकता है, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हो आपके भी हो सकते हैं। और उसके लिए यू कैन आस्क अस, यू कैन कॉल अस ऑन द नंबर 2342-1081 एंड द अदर नंबर इज 2342-1083 एंड दीज आर टू नंबर्स। और इन दोनों नंबर पर ही आप ट्राई करिए, हम आपकी डायरेक्ट बात कराने वाले हैं अपने एक्सपर्ट से। तो अमित, इनसे परिचय करा देते हैं हमारे जो आज के एक्सपर्ट हैं।
5: बिल्कुल भाई, हमारे साथ हैं डॉक्टर डी के शर्मा, आप प्रधान वैज्ञानिक हैं पर्यावरण विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है।
6: धन्यवाद
4: जी डॉक्टर साहब।
5: जी,
4: और सर, जैसा कि हमने कहा भारी धातुओं की बात अगर हम लोग करें तो कुछ हमारे किसान भाई बहुत अच्छे से जानते होंगे, लेकिन जो अभी अभी जुड़े हैं जिन्हें पता नहीं है, या फिर वो भी क्लियर करना चाहते हैं चीजों की कि हैं क्या ये भारी धातु, हम किसकी बात कर रहे हैं?
6: सुषमा जी, भारी धातु वे तत्व होते हैं जो हमारी मिट्टी में या हम कह सकते हैं भूपर्णी में पाए जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया, इनका जो अगर हम विज्ञान की दृष्टि से देखें कि इनका परमाणुवार 20 से अधिक होता है तथा इनका जो घनत्व होता है 5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर से अधिक होता है। यानी कि ये वो तत्व होते हैं, जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बताना चाहूंगा किसान भाइयों, जो भारी धातुएं होती हैं जैसे कैडमियम है, क्रोमियम है, मरकरी है, जिसको हम कहते हैं संख्या, आर्सेनिक है ना, बोलते हैं ना संख्या, ये होते हैं, लेड है, ये सब इनको हम भारी धातु कह सकते हैं।
5: डॉक्टर साहब, भारी धातु कौन सी होते हैं, जब ये जान लेते हैं तो जैसा कि विषय है कि मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव, लेकिन वहीं मानव स्वास्थ्य पर जब पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से आहार के माध्यम से पहुंचेंगे। सुषमा, विषय में भी हमने लिया है कि आहार में भारी धातु, तो खेती किसानी को ये कैसे प्रभावित करते हैं, कैसे हमारे जो खाद्य पदार्थ हैं उनमें कैसे ये पहुंचते हैं?
6: देखिए, जैसे मैं बताया, प्राकृतिक रूप से तो इनकी मात्रा बहुत कम होती है, मतलब वो नुकसान, लेकिन कई बार क्या है, औद्योगिकरण, जो अपशिष्ट हैं, जो सीवेज है, उसके अनियंत्रित प्रयोग से उनकी सांद्रता बढ़ जाती है। जैसे मैंने बताया कैडमियम, क्रोमियम, आर्सेनिक, मरकरी, लेड, तो ये क्या है कि ये हमारे जो उद्योग धंधे हैं, जो कल कारखाने हैं, अगर उनको हम ढंग से मैनेज नहीं करते हैं, अव्यवस्थित ढंग से नहीं करते हैं, सीवेज का ढंग से उपचार नहीं करते हैं, तो वो हमारे खाद्य श्रृंखला में आ जाती हैं। तो सबसे बड़ी बात यह कि कैसे हम इनको खाद्य श्रृंखला में, आहार श्रृंखला में पहुँचने से रोकें, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है।
5: बिल्कुल, विषय यही है, और हम जानना भी चाहेंगे, हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं चाहे वो उपभोक्ता की दृष्टि से हों या हमारे कृषि की दृष्टि से हों, तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो ये पर्यावरण में आते कहाँ से हैं।
6: जैसे मैंने बताया ना, प्राकृतिक रूप से जैसे ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, वहां से आ जाते हैं बहुत सारे भारी तत्व हैं जो प्राकृतिक रूप से, लेकिन इनकी बहुत कम मात्रा होती है, वो इतने नुकसानदायक नहीं होते हैं, लेकिन जो औद्योगिकरण की गतिविधियां हैं, जो यातायात के साधन है, ट्रैफिक है, जो सीवेज है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स है, अगर इसका हम अनियंत्रित, और जो बहुत अधिक मात्रा में हम अविवेकपूर्ण ढंग से पेस्टिसाइड्स, अविवेकपूर्ण ढंग से रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, तो उसमें भारी धातु हमारे कृषि परितंत्र या इसकी हम बोलते हैं एग्रो इकोसिस्टम में आते हैं, हमारी खेती में आ जाते हैं, तो ये सबसे बड़ी चुनौती है।
5: यानी कि डॉक्टर साहब सीधा सीधा ये तो बात समझ में आई कि हमारे जो औद्योगिक धंधे हैं उनसे निकलने वाले जो अवशेष हैं या तो उनमें या जो हम कृषि में अत्यधिक उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं उनके माध्यम से ये हमारे भोजन में पहुंच रहे हैं।
6: इसलिए हमारी सरकार कहती है कि संतुलित उर्वरक, संतुलित ढंग से जितना जरूरी है उतना ही कीटनाशक छिड़कें,
5: बिल्कुल
6: जितना जरूरी है उतने ही उर्वरक डालें और हरी खाद का प्रयोग करें।
5: तो डॉक्टर साहब पता कैसे चलेगा कि मान लीजिए कोई हमारे किसान भाई बहन है या हम जानना चाहते हैं कि हमारी मिट्टी में जो ये भारी धातु हैं ये हैं या नहीं है, और यदि हैं तो कितनी है, कैसे पता करें?
6: देखिए किसान भाइयों को मेरी सलाह ये है, अगर कोई किसान ये समझता है कि भाई उनके जो खेत हैं वहां पे भूल बस या असावधानी बस भारी मतलब जो इंडस्ट्रीज का पानी आ गया, सीवेज स्लज आ गया है या औद्योगिक अपशिष्ट का कुछ भी आ गया है, तो वो अपनी मिट्टी को नमूना ले सकते हैं, अपनी मिट्टी का नमूना ले सकते हैं, वहां का जो भूमिगत, कई बार भूमिगत जल में भी आ जाता है। अगर हम भूमिगत स्रोतों का अंधाधुंध दोहन करेंगे तो वहां पर देखा गया है जैसे वेस्ट बंगाल है, बिहार है, तो वहां पर आर्सेनिक की मात्रा आ रही, आसाम है। तो अगर आप तो किसान भाइयों को अपनी मिट्टी की जांच करानी है, 0-15 सेंटीमीटर मिट्टी का सैंपल ले सकते हैं, भूमिगत जल की जांच करा सकते हैं, और जो फसल उन्होंने लगाई है उनका भी हम सैंपल ले सकते हैं। तो अगर ज्यादा मात्रा में, कई बार क्या होता है कुछ धातुएं तो मिट्टी में ही रहती हैं, लेकिन कुछ धातु मिट्टी के माध्यम से पौधे की जड़ों तक होते हुए हमारे जो जो हम खाते हैं, जो अनाज है, फल है, पत्तियां हैं, उसमें भी पहुंच सकती हैं। तो उनका सबका सैंपल लेके अच्छी तरह से उनको मार्क करके आप अपने जो निकटतम केंद्र है, कृषि विज्ञान केंद्र है या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की बहुत सारी प्रयोगशालाएं हैं, वहां पर आप अपने मिट्टी, पानी और अपनी जो फसलें हैं उनकी जांच करा सकते हैं।
4: बिल्कुल सर, जांच करा सकते हैं वो आपने बताया, लेकिन अगर हम इसके जड़ पर जाना चाहें कि ये कहां से आ रही है, कैसे पहुंच रही है, क्या क्या सोर्सेज हैं,
6: जी
4: तो वो जानना भी जरूरी
6: है। जैसे मैंने बताया ना कि कुछ जगह पे अनियंत्रित रूप से किसान, कई बार क्या होता है ऑप्शन नहीं होता उनके पास, तो सीवेज से इरिगेशन कर देते हैं, अनट्रीटेड सीवेज, यानी कि वो सीवेज जिसका उपचार नहीं किया गया अच्छे ढंग से। कई बार क्या होता है कुछ जो खेत हैं, जो हम बोलते हैं परिनगरीय खेती, यानी कि जो शहर के आसपास जो गांव ग्रामीण इलाका है वहां पे क्या होता है एयर पॉल्यूशन की वजह से जो डिपोजिशन हो जाता है भारी धातुओं का मिट्टी में, पौधों के पत्तियों पर, और जो सीवेज है उससे भी ये सब आ जाता है। तो असली बात यही है, प्राकृतिक रूप से जो होता है उसकी मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत एकदम एक विकराल समस्या है, लेकिन धीरे धीरे धीरे ये समस्या आने लगी है।
5: यानी कि अभी हमें इस पर नियंत्रण करना होगा, तभी हम एक कह सकते हैं कि जो मानव स्वास्थ्य है उसको सही रख सकते हैं। तो डॉक्टर साहब बात आती है कि मानव स्वास्थ्य पर जो इसका प्रभाव है उसको किस प्रकार से देखा जाता है?
6: देखिए मानव स्वास्थ्य की हम बात करें कि अगर जैसे हम लोग जानते हैं जैसे आर्सेनिक, आर्सेनिक अगर होता है, अगर आर्सेनिक आता है चाहे वो पानी के माध्यम से आए या फसलों के माध्यम से आए, अगर फसल अपटेक करती है उसको, तो वो उससे कैंसर हो जाता है और हमारे किडनी, लीवर उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही है, लेड के विषय में कहा जाता है इससे जो हमारे जो बच्चे हैं, छोटे छोटे ये स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनकी जो बुद्धि लब्धि है, इंटेलिजेंस, आईक्यू जिसको बोलते हैं, वो लेवल कम हो जाता है और वो हमारे किडनी को, लिवर को प्रतिकूल ढंग से प्रभावित करता है। इसीलिए भारत सरकार ने लेड फ्री पेट्रोल, पहले हम क्या करते थे पेट्रोल में लेड मिलाते थे, लेकिन अब वो लेड फ्री पेट्रोल आ गया है। इसी तरह से लेड फ्री पेंट्स आ गए, जो हम पेंट्स करते हैं, वार्निश करते हैं, वो भी सब लेड फ्री आ गए, क्योंकि सब लोग जान गए हैं कि इसका कितना प्रतिकूल प्रभाव है। तो ऐसे जो स्कूल हैं, जो प्रांगण है, स्कूल के प्रांगण है, तो वहां पे इस चीज का विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि अबोध मासूम बच्चे वहां पे पढ़ते हैं, तो इस तरह के पूरा ध्यान रखा जाता है कि वहां पे लेड की कंसंट्रेशन कब से कम हो, क्योंकि सबसे ज्यादा ये बच्चों को। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो लेड है वो हमारी हड्डियों में कैल्शियम को प्रतिस्थापित कर देता है, यानी कि कैल्शियम की जगह लेड आ जाता है, तो उससे हमारी हड्डियां भुरभुरी हो जाती हैं। एक कहावत है कि जो रोमन सभ्यता थी उसके पतन में लेड का एक बहुत प्रमुख कारण था। वो क्या था कि वहां के जितने भी जो संपन्न लोग थे वो लेड के जो कप थे, जो गिलास थे, उसमें शराब पीते थे, तो उससे क्या हो गया, शराब में लेड घुलनशील हो गया, उनकी हड्डियों में चला गया और वो पूरे पूरी की पूरी आबादी के जो है उनकी हड्डियां कमजोर हो गई, बहुत बड़े स्तर पे वो विलुप्ति के एक बहुत बड़ा एक खतरा उत्पन्न हो गया था उनके लिए।
4: और ये हेरिडिटरी भी होती चली गई, क्योंकि वंश जब इस तरह से आगे मतलब तो उनके शरीर में
6: ये क्या है, हेरिडिटरी तो हम इसको नहीं कह सकते, लेकिन जैसे मैं बताऊं लेड का हो गया, ऐसी क्रोमियम है, क्रोमियम हमारे तंत्रिका तंत्र को नुकसान देता है। क्रोमियम के बारे में जो सबसे पहले जो पूरे अगर पूरे विश्व का जो भारी धातुओं के प्रति जो ध्यान आकर्षित हुआ एक मिनी माता डिजास्टर के नाम से हुआ। जापान में एक जगह थी मिनी माता, वहां पे क्या था कि जो एक फैक्ट्री थी वहां से पारे का रिसाव हुआ, वो पारा मछलियों में आ गया, जब मछलियां लोगों ने खाई तो उनको प्रतिकूल प्रभाव, वहां के लोग कुछ लोग मर भी गए थे वहां पे, तो उसकी वजह से ही पूरे विश्व का ध्यान भारी धातु प्रदूषण की तरफ गया। तो इस तरह पे बहुत शोध होने लगे कि भी हम क्या कैसे हमारी बॉडी को इफेक्ट करता है, किडनी को इफेक्ट करता है, लीवर को इफेक्ट करता है, जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनको इफेक्ट करता है, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको प्रतिकूल ढंग से इफेक्ट करता है।
4: तो सर देखिए कितना खतरनाक हो सकते हैं ये भारी धातु हम सबकी जिंदगी के लिए। तो इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे किसानों की भी बन जाती है कि हमारे किसान भाई क्या क्या ऐसी जिम्मेदारी निभाएं, किस तरह से खेती करें ताकि कहीं ना कहीं इनका जो जिनकी जो मात्रा बढ़ती जा रही है उसमें कमी देखी जा सके।
6: हमारे जो किसान है ना वो बहुत सजग, बहुत जागरूक, मैं कहता हूँ वो पर्यावरण के प्रहरी है अगर एक तरह से देखा जाए। लेकिन कई बार क्या होता है ना, वो हमारे चारों तरफ इतना कंसंट्रेशन है, इतनी सांद्रता है, तो वो निस्संदेह वो कई बार आ जाता है खेत में। तो अगर मैं किसान भाइयों को यही है कि हमारे जो जितने भी हमारे उर्वरक हैं उनको संतुलित प्रयोग करें, हरी खाद का प्रयोग करें, और जितने भी एक जैसे बायोचार अपनी मिट्टी में बायोचार का इस्तेमाल करें, और ताकि जो हैवी मेटल अगर मिट्टी में है भी तो उनकी अवेलेबिलिटी कम हो जाए, उनकी जड़ों तक ना पहुंच पाए पौधों का। इसी विधा को हम बोलते हैं फाइटोरेमेडिएशन, मैं आगे चर्चा करूंगा उसका। तो इस तरीके से हमारे जो किसान भाई हैं और ऐसी किस्मों का चुनाव करें कि जो भारी धातुओं वो केवल जड़ों तक सीमित रखें, क्योंकि हमारे किसान हम जानते हैं कि अगर मान लो हम गेहूं की फसल उगाते हैं ऐसे क्षेत्रों में, तो अगर गेहूं का हमने तो दाना खा लिया, लेकिन अगर कोई भारी धातु हमारे जो भूसे में भी आ गई तो वो पशुओं में जाएगा, पशुओं से फिर हमें अंततोगत्व मनुष्यों के पास आ जाएगा। तो बहुत सावधानी की जरूरत है इस दिशा में, और बहुत कार्य कर रहे हैं जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, इस दिशा में बहुत सचेत है, बहुत अनुसंधान शोध हो रहे हैं, और ऐसी अनेक प्रजातियों का विकास हुआ है जिनसे कि भारी धातुओं का सामना हम कर सकें।
4: जी सर, हम कहते हैं कि भोजन में कुछ धातु की आवश्यकता भी होती है, क्योंकि हमारे भोजन में तो वो कौन कौन सी धातु है वो हमें लेनी बहुत जरूरी होती है, जैसे आयरन है
6: जी,
4: वो हमें चाहिए, जिंक चाहिए हमें अपने भोजन में, जिंक चाहिए
6: जी,
4: तो इनकी कमी भी नुकसान कर जाती है। हाँ, और अधिकता भी बहुत।
6: देखिए एक, एक मुझे एक कविता के कि मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से, है ना
4: जी।
6: तो इसमें क्या है कि हर चीज प्रकृति में एक अनुपात में है, अगर जिंक ज्यादा है तो वो भी नुकसान दे, अगर है ना अगर आयरन ज्यादा है तो उसकी भी नुकसान होते हैं। तो एक निश्चित मात्रा में, निश्चित अनुपात में, वो अगर हमारी पृथ्वी मिट्टी में है, हमारी धरती माता में है, और वो किस तरह से हमारे फसलों में जा रहा है वो बहुत देखने की। जैसे जिंक है, हम लोग पहले कहते थे ना कि हम लोग, आजकल हम लोग क्या करते हैं, कैल्शियम की गोली खाते हैं, आयरन की गोली खाते हैं, जिंक की खाते हैं, लेकिन जो हमारी परंपरागत फसलें थी उनमें सब कुछ था। और जो हमारी जो पूरा जो पहले, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा इकोसिस्टम, पूरा का पूरा परितंत्र संतुलित मात्रा में था, उसमें सभी अवयव थे। अभी जो ये जो औद्योगिकरण, शहरीकरण, आबादी का दबाव, इनका जो संतुलन है वो बिगड़ गया है। तो जैसे मैंने बताया ना, एक चीज मैं बताऊंगा, जैसे क्रोमियम है, क्रोमियम दो रूपों में पाया जाता है नेचर में, प्रकृति में। एक तो है हेक्सावेलेंट क्रोमियम, यानी जिसकी संयोजकता 6 होती है, और एक है ट्राइवेलेंट क्रोमियम, यानी जिसकी संयोजकता 3 होती है। अगर हेक्सावेलेंट क्रोमियम है, जो कि टैनरीज वगैरह से निकलता है, जो हमारे चमड़ा के शोधन के कारखाने होते हैं, वो कार्सिनोजेनिक, यानी उससे कैंसर होता है। वहीं जो हमारा जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, उनको ट्राइवेलेंट क्रोमियम दिया जाता है एज ए फूड सप्लीमेंट, ताकि उनके इंसुलिन की मात्रा बढ़े, उनका पैनक्रियास की सेंसिटिविटी बढ़े। तो ये सब चीज़ें अलग अलग हैं। तो मैंने बताया ना, अगर संतुलित में है, एक अनुपात में है तो बहुत अच्छा है। अगर कॉपर भी ज़्यादा है तो वो नुकसान करेगा, जिंक भी ज़्यादा है तो वो नुकसान करेगा। तो ये सब चीजें, इसीलिए मैंने बोला है, समय समय पर अगर आप समझते हैं कि और कई बार हमारे पौधे ना वो सिम्टम्स दिखाते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारा जैसे कहते हैं हमारा शरीर है ना, अगर हमारा बीपी बढ़ेगा तो हमको पता चल जाएगा, शुगर बढ़ेगी तो पता चल जाएगा, ऐसी अगर किसान अगर अपने खेत में जाएंगे या विशेषज्ञ की सलाह लेंगे तो वो बता सकते हैं कि यहाँ पे कैडमियम है, यहाँ पे क्रोमियम है, यहाँ पे इस तत्व की कमी है, इस तत्व की ज्यादा है, वो सब हमको समय समय पर जांच करानी है।
4: बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छे से बता दिया, और हम अपने किसानों को भी जोड़ना चाहते हैं इस कार्यक्रम से। आप सुन रहे हैं हेलो फार्मर्स, और फोन नंबर हम बता देते हैं अमित, बहुत जरूरी है क्योंकि कॉल अगर आती हैं तो वो उनके कुछ सवाल होते हैं जिसका जवाब देने के लिए एक्सपर्ट मौजूद हैं स्टूडियो में। 2342-1081 एक नंबर, दूसरा है 2342-1083। तो ये दो

0: हमें अभी भी इंतजार है। एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ सर, फिर आती हूँ आप ही के पास।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
0: ब्रेक के बाद स्वागत है, आप सुन रहे हैं हेलो फार्मर्स। मैं हूं आपके साथ सुषमा और मेरे साथ हैं अमित तेवतिया और डॉक्टर डीके शर्मा जी, आज एक्सपर्ट के तौर पर मौजूद हैं हेलो फार्मर्स में। सर, मिट्टी जब खराब हो जाती है तो किसानों के लिए चिंता बढ़ जाती है, उसको ठीक कैसे किया जाए, कहां से जांच कराया जाए, क्या कोई बीमारी ऐसी है जिसकी रेमेडी हो जाए या किस तरीके से किया जाए?
2: देखिए, जो हमारी जो मृदा है, अगर उसमें भारी धातुएं आ गई हैं तो मैंने बताया कि जो अमीर देश हैं अगर वो फिजिकल और केमिकल मेथड इस्तेमाल करते हैं, यानी कि रसायन डाल के कुछ इंजीनियरिंग की टेक्निक लगा के, तो वो बहुत महंगी है। गरीब मतलब अमीर देश भी उसको नहीं कर सकते। तो एक हमारे पास विकल्प होता है फाइटो रेमेडिएशन या वनस्पतिक पुनरुद्धार, यानी कि हमारी मिट्टी को ऐसे पौधों की सहायता से साफ करें और फिर हम उनको मतलब मिट्टी, लेकिन उसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, प्रोसेस थोड़ा स्लो है, समय ज़्यादा लगता है। और ये जो फाइटो रेमेडिएशन में जो पौधे इस्तेमाल होते हैं वो बड़ी धीमी गति से करते हैं। इस दिशा में भी बहुत कार्य हो रहा है कि भी कैसे बढ़ाया जाए। तो फाइटो रेमेडिएशन यानी कि वनस्पतिक परिवेश उद्धार, इसमें 3-4 प्रोसेस हैं। नंबर एक है फाइटो स्टेबलाइजेशन, यानी कुछ ऐसे पौधे होते हैं यानी कि जो प्रदूषित मिट्टी है उसको उड़ने नहीं देते, वो वहां पे उनकी जड़ें उनको रोक के रखती हैं, उसको बोलते हैं फाइटो स्टेबलाइजेशन। एक होती है फाइटो एक्सट्रैक्शन, यानी कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो विशेष रूप से उन्हीं धातुओं को अपनी जड़ों में सींच लेते हैं, उनको बोलते हैं हाइपर एक्यूमुलेटर, यानी कि ऐसे पौधे जो भारी धातु को बहुत अधिक मात्रा में अपने अंदर संचित कर लेते हैं। जैसे हमारी मिट्टी में है तो उन्होंने वो कर लिया, 4-5 साल में वो एरिया साफ हो जाएगा, फिर हम उनको उन्हीं पौधों को फिर हम उनका निस्तारण कर देते हैं। एक होता है फाइटो वोलेटिलाइजेशन, कुछ ऐसे जैसे भारी धातु होते हैं, जैसे मरकरी है, सेलिनियम है, उसको क्या होता है उनकी जो आयोनिक स्टेट होती है, जैसे तो वो क्या होती है, वो ज्यादा खतरनाक होती हैं, तो उनको वो एलिमेंटल स्टेट में बदलते हैं, उसको बोलते हैं फाइटो वोलेटिलाइजेशन। एक होता है राइजोफिल्ट्रेशन, राइजोफिल्ट्रेशन में क्या करते हैं, वो अगर पानी प्रदूषित है तो वहां से वो मिट्टी उसको मतलब उसको शोष के अवशोषित करके अपने अंदर संचित कर लेते हैं। तो फिर हमारा बात क्या होता है, क्योंकि बहुत ही सस्ता है, जैसे आज हमारे जो भारत देश में कुछ ऐसे पौधे पाए जाते हैं जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं अपने भारी धातुओं को साफ करने के गुणों के कारण, जैसे कि सरसों है, सनफ्लावर है जिसको सूरजमुखी होते हैं, है ना। एक होता है मतलब इस तरह से हमारी कुछ वनस्पतियां हैं जो विशेष रूप से भारी धातुओं को अपने अंदर खींच लेती हैं, यानी कि लगभग अच्छा इसमें केवल ये नहीं है कि एक प्लांट या एग्रोनॉमी वाले का रोल है, इसमें क्या होता है फिर हम कुछ माइक्रोब्स डाल देते हैं, यानी कि माइक्रोब डालने का मतलब ये है कि जो भारी धातु है मिट्टी में अघुलनशील रूप में है वो घुलनशील रूप में आ जाती है, फिर उनको हम पौधे के द्वारा ले सकते हैं। फिर उसमें ये तो मैंने कहा सूक्ष्मजीव डाल दिया हमने, फिर उसमें क्या करते हैं कुछ ऐसे केमिकल मिलाए जाते हैं ताकि वो इमोबिलाइज हो जाए। तो एक बहुत ही बड़ा प्रोसेस है, पूरे विश्व के अनेक देशों में एक बहुत बड़ा स्टार्टअप है। वहां पे क्या होता है कि अगर पाप को पता चल गया कि इस एरिया में धातु प्रदूषण है तो वहां पे क्या करते हैं एक टीम बना के लोग बाग उसको साफ करते हैं, उसको बोलते हैं फाइटो रेमेडिएशन।
3: डॉक्टर साहब, जैसा कि विषय है अब सबको ये क्लैरिफाई हो गया कि क्या चल रहा है, भारी धातुएं कैसे हमें नुकसान पहुंचा रही हैं, कितनी खतरनाक है। लेकिन जब बात आती है एक, हम कहें कि साधारण किसान की, जागरूकता की, तो किस प्रकार से सरकार का कोई ऐसा प्रशिक्षण क्षेत्र हो, कोई जागरूकता का ऐसा विषय जहां हम किसानों को, प्रगतिशील किसानों के माध्यम से उन्हें आगे इस बात के विषय में जानकारी दें, तो इसमें चाहे हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं या कृषि संस्थान हैं, इनकी क्या भूमिका है और कहां से हमारे किसान भाई बहन प्रशिक्षण?
0: प्रशिक्षण बहुत जरूरी है।
2: हमारे पास बहुत सारे किसान आते हैं अपने सैंपल लेके, मिट्टी के सैंपल, पानी के सैंपल, तो वो हम जांच करके दे देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार आपको प्रशिक्षण देना है तो हम पूरे, जैसे आपने बताया, कृषि विज्ञान केंद्र है, कृषि विश्वविद्यालय हैं और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम किए जाते हैं, तो उनको ये बताया जाता है कि मिट्टी के सैंपल कैसे लेने, मिट्टी के नमूने कैसे लेने, आपको पानी कैसे बोतल में डालना है, और उनको हम ये भी दिखाते हैं कि किस तरह से अपने, मतलब जो सामान्य जांच है, ईसी है, पीएच है, क्योंकि बहुत सारी जो सॉइल की जो गुण है, जैसे पीएच है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, ऑर्गेनिक कार्बन है, ये क्या करते हैं, इनके गुणों के कारण ही पौधों में भारी धातुओं की मात्रा का निर्धारण होता है। अगर मिट्टी का पीएच कम है, यानी कि 5 है, 6 है, तो क्या होता है, बहुत सारी हैवी मेटल और ज्यादा एक्युमुलेट हो जाती है पौधों में। तो अगर हम जो हमारी मिट्टी है उसका पीएच रेगुलेट कर लेते हैं, अच्छा, इसलिए हम कहते हैं किसान भाई को बोलते हैं कि हरी खाद का प्रयोग करें, घूरे की खाद का प्रयोग करें, केंचो की खाद का प्रयोग करें। उससे क्या होता है कि जो भी मेटल है ना, वो उन पे बाइंड कर जाती है, पौधों की जड़ों को वो अवेलेबल नहीं होती है। तो ये एक बहुत बड़ा हमारा एक संबल है। जैसे मैंने बताया बायोचार में भी यही गुण होते हैं, ये क्या करते हैं, हैवी मेटल को बाइंड कर लेते हैं अपने, और वो आसानी से उपलब्ध नहीं होता है। तो जब जड़ उसको खींचना चाहते हैं तो वो आसानी से उपलब्ध नहीं होता है, तो हमारी फसलें सुरक्षित रहती है, हमारा भोजन सुरक्षित रहता है और हमारा स्वास्थ्य सुरक्षित रहता है।
3: बिल्कुल डॉक्टर साहब, अब जब बात आती है कि आप देश के बेटे हैं, ऐसे वैज्ञानिक हैं जो अनुसंधान कर रहे हैं और किसानों के लिए हमेशा लगातार निरंतर लगे रहते हैं रात दिन, तो जहां हमारे किसान भाई बहनों को लगता है कि चाहे वो जलवायु परिवर्तन हो या भारी धातुओं का फसलों पर या मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव हो, तो क्या इसके लिए ऐसे कुछ शोध हो रहे हैं, अनुसंधान हो रहा है, कोई नई किस्में ऐसी ईजाद हो रही हैं कि जो पूरी तरह से इनके लिए प्रतिकूल हो?
2: देखिए, जैसे मैंने बताया कि एक हर स्टेट में ये बहुत ही, इसमें सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो गया हमारा, FSSAI हो गया, तो ये क्या करते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बहुत सारे संस्थान हैं जो कि प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से जुड़े हुए हैं, जैसे IRI हो गया, भोपाल में संस्थान हो गया, सॉयल साइंस के इंस्टीट्यूट हो गया, और बहुत सारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, तो वहां के जो भी सॉयल साइंस डिपार्टमेंट है, पर्यावरण विज्ञान संभाग है, हमारे पर्यावरण विज्ञान संभाग में भी हम नियमित रूप से प्रशिक्षण देते हैं। और अब जैसे मैंने बताया कि कुछ ऐसी प्रजातियां होती हैं कि वो हैवी मेटल्स को अपने अंदर आने नहीं देती, उनको बोलते हैं हैवी मेटल टॉलरेंस, यानी कि हैवी मेटल है, मिट्टी में है, लेकिन वो
0: रेजिस्टेंस,
2: उसको रेजिस्टेंस कर, उसको आने ही नहीं देती है। जब आने नहीं देंगे, अगर आ भी गए तो केवल जड़ तक ही रोकते हैं उसको, आपके ग्रेन में नहीं आएगा, आपके स्ट्रो में नहीं आएगा। तो ये इस पे बहुत शोध चल रहा है, प्रशिक्षण चल रहा है, मैंने बताया समय समय प्रशिक्षण चलता है, कृषि विज्ञान केंद्र में चलता है, और जितने भी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के शोध संस्थान है वहां पर भी, जो सॉयल से जुड़े हुए हैं, जो एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान से जुड़े हुए हैं, विज्ञान, जो भी प्राकृतिक प्रबंधन संस्थान हैं, वो इस विषय पर बहुत सचेत हैं। और मैंने बताया ना, कभी भी अनट्रीटेड सीवेज खेतों में ना डालें, क्योंकि अनट्रीटेड सीवेज में क्या होता है, और सबसे बड़ी बात, जो केवल हम किसानों को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते, जो हमारे, हम खुद हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, बैटरी का सेल खत्म हो गया, ऐसे हमने डाल दिया, है ना, कुछ भी थर्मामीटर टूट गया, हमने डाल दिया, तो अल्टीमेटली वो कहां जाएगा,
0: जमीन में
2: जाएगा, हो सकता है वो गलत ढंग से इसका निस्तारण किया हो तो हमारे खेत में पहुंच जाएगा। तो हम सब इसके लिए जिम्मेदार हैं, सबको अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, तभी हमारा कृषि पारिस्थितिक तंत्र भारी धातु प्रदूषण से शुद्ध रहेगा।
0: बिल्कुल सर, ये जो छोटी अंत में जो आपने बात की, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि उपभोक्ता जो होता है उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। हमें लगता है कि सारा ठीकरा हम किसानों पर ही फोड़ देते हैं, जो कि सही नहीं है, और घर से शुरुआत होती है, समाज से, और फिर समाज से देश में हम लोग अपने विकास में योगदान दे सकते हैं। तो हम जैसे आम इंसान घरों में रह के या अपने भोजन की थाली में जब हम भोजन खाते हैं, तो कौन कौन सी ऐसी जिम्मेदारी, कूड़ा का जैसे डिस्पोज ऑफ करना, तो और कौन कौन सी जिम्मेदारी निभा सकते हैं?
2: हम बात करें, ये भारी धातु तो है ही है, बहुत सारे और भी मैंने बताया ना कि अपना जो कूड़ा है, जो ऐसे मतलब कूड़ा जिसमें हैवी मेटल होने की संभावना हो सकती है, जैसे हम ट्यूब लाइट से उसको डिस्पोज करते हैं क्योंकि उसमें मरकरी की वेपर्स होती हैं, थर्मामीटर है, प्लास्टिक का निस्तारण करते हैं, बहुत सोच समझ के करना है। जैसे जो बैटरीज हैं, बैटरीज में होता है, और इसलिए ई वेस्ट सबसे बड़ी बात यह है, ई वेस्ट का अगर हम ढंग से निस्तारण नहीं करते हैं, जैसे हमारे कंप्यूटर हैं, फ्लॉपीज हैं, डिस्क हैं, तो उसमें भी बहुत सारे हैवी मेटल्स होते हैं, तो इसलिए अगर उनका हम सही से प्रोसेसिंग करेंगे, सही से निस्तारण करेंगे, तो हम इस खतरे से काफी हद तक जूझ सकते हैं।
0: बिल्कुल सर, एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ सर, फिर मैं आती हूँ आपके पास।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: आप सुन रहे हैं हेलो फार्मर्स और मैं हूं सुषमा, मेरे साथ हैं अमित और आज डॉक्टर डीके शर्मा जी हमारे साथ हैं। सर, हम भारी धातुओं की बात तो कर रहे हैं और आपने बताया कि ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है किसानों के लिए, हम घर से शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी होती हैं जिसे हमें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है।
7: जी,
6: घर से ही शुरुआत होती है और वो हम क्या कर सकते हैं?
7: देखिए, जो एक एक एक व्यक्ति के तौर पे हम अब ये कहना चाह रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं। देखिए, व्यक्ति के तौर पे हमको सबसे बड़ी बात यह, हमको अपने किसानों को समर्थन देना है, उनकी आजीविका बढ़ानी है, आजीविका सुरक्षित करनी है, उनकी आय बढ़ानी है। तो कहते हैं ना, विवक्षितम किम न करोति पापम। अगर आपके पास आपकी आजीविका अच्छी है तो इसीलिए कहते हैं ना कि हमको अच्छे जो हमारा कूड़ा करकट है उसका ढंग से निस्तारण करना है। और उस सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने बताया कि जो औद्योगिक अपशिष्ट हैं वो हमारे खेतों तक ना पहुंच पाएं, जो अनट्रीटेड सीवेज है वो हमारे खेतों तक ना पहुंच पाएं, जो हम लेड है, जो हम बैटरियों को डाल देते हैं इधर उधर, जो ई वेस्ट है, सबसे बड़ी बात आज की तारीख में ई वेस्ट का ढंग से हम प्रोसेसिंग करें, उसको हम घूरे पर नहीं डालें, तो ये बहुत बड़ी बात है। इससे क्या होगा कि हमारे जो कृषि पारिस्थितिक तंत्र है वहां पर हैवी मेटल्स नहीं जाएंगे।
8: जी
6: बिल्कुल सर, आपने सही बोला। एक कॉलर हैं हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जरा पूछते हैं, वो भी कुछ इस तरह की बात पूछ रहे हैं। हेलो।
9: हेलो
6: जी, नाम बताइए, कहाँ से कॉल किया है?
9: जी, मैं फहीम बोल रहा हूँ, श्रीनगर कश्मीर से। सर जी से मेरा ये सवाल है कि अगर हम नया कुआं खोदते हैं पीने के पानी के लिए, और कितने समय के बाद उस पानी को टेस्ट के लिए ले जाना है और कितनी मात्रा में वो पानी ले जाना है लैब में?
7: हाँ फहीम जी, बहुत बढ़िया सवाल है आपका। आप एक जागरूक श्रोता हैं कश्मीर से। देखिए, अगर आपने नया जल स्रोत खोदा है वहाँ पर, तो लगभग अगर एक महीने बाद लगभग जब स्टेबलाइज हो जाएगा आपका पानी, आपका जो भूमिगत जल है, आप वहाँ पे पानी ले सकते हैं। जो आपके निकटतम अच्छी एक प्रयोगशाला है वहाँ पर आप, अगर नहीं, सबसे बड़ी बात यह, आप ये देखिए कि वहाँ पर किस तरह के मेटल्स की कोई शिकायत है क्या, पुराने समय में कुछ हिस्टोरिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से, अगर के भी हाँ भाई ये एरिया है, यहाँ पर कोई इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हैं, तो आप देखिए, है ना, अगर कोई आसपास ऐसी पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज हैं, ओके, तो उससे आपको और ये हो जाएगा कि हाँ भाई मुझे इसकी जांच करानी है। अदरवाइज आप जब 15-20 दिन बाद वो स्टेबलाइज हो जाए पानी, वहाँ से आप 3 सैंपल भर लीजिए एक अच्छी सी बोतल में और आप उसको जांच के लिए भेज सकते हैं।
6: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और किसानों को इन्फॉर्मेशन भी एक जरूरी दे देते हैं जाते जाते कि रबी अभियान 2026 का केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया शुभारंभ और केंद्रीय राज्य मिलकर बनाएंगे जलवायु को भी अनुकूल और कृषि रोड मैप, ये सब तैयारी। और महाराष्ट्र जैसे कर्नाटक में सूखे का संकट है तो केंद्र की टीम करेगी जमीनी आकलन और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे सब चीजों का दौरा, इस तरह की बातें। और दलहन तिलहन में भी आत्मनिर्भरता पर बात की जाएगी अमित, और बीज से बाजार तक ये सारी बातें पहुंचेंगी। और खेत बचाओ रबी में भी चलाएं, संतुलित उर्वरक उपयोग से लागत घटे, मिट्टी स्वस्थ रहे, ये सब बातें हम अपने किसानों के लिए लेकर आ रहे हैं। और आज का जो कार्यक्रम है बहुत इंपॉर्टेंट रहा सर, डॉक्टर डीके शर्मा जी हमारे साथ रहे। सर, आपने बहुत अच्छी बातें बताई और हम भी चाहते हैं कि हमारे किसान इससे जरूर लाभान्वित हों और इसका लाभ लेते रहें और एक धातु की बात की है तो उससे भी निजात पाएं। तो मैं सुषमा विदा लेती हूं और मेरे साथ अमित, दीजिए इजाजत, नमस्कार।
10: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार के निपटान, भुगतान और संदेश प्रणालियों के एकीकरण तथा केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राओं से संबंधित पहलुओं के समय पर क्रियान्वयन के लिए कदम उठाने पर सहमत हुए हैं। दोनों पक्षों ने आज मुंबई में निवेश संबंधी भारत यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के दौरान इस समझौते पर सहमति जताई। बैठक की अध्यक्षता वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अबुधाबी निवेश प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक शेख हामिद बिन जायद अल नहयान ने की। श्री गोयल ने कहा कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, जहाज निर्माण, खाद्य सुरक्षा और जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ रहा है।
1: एनुअली वी हैव बीन मीटिंग रेगुलरली।
2: हम सालाना और नियमित रूप से बैठकें करते रहे हैं और दोनों पक्षों के व्यापारिक समूहों की संतुष्टि के अनुसार ठोस और महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान कर रहे हैं। आज हमने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, पोत निर्माण, आधुनिक बंदरगाहों के विकास, खाद्य सुरक्षा, विशेष रूप से खाड़ी क्षेत्र के लिए कृषि नवाचार, लॉजिस्टिक्स के विस्तार, AI और उभरती प्रौद्योगिकियों पर मिलकर काम करने, ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा फिनटेक क्षेत्र में अपने सहयोग का विस्तार करने जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को बढ़ाने पर भी चर्चा की है।
1: एक्सपेंडिंग आवर कोऑपरेशन इन द फिनटेक सेक्टर।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि मानव अंतरिक्ष उड़ान, स्टार्टअप और नए अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत फ्रांस अंतरिक्ष सहयोग ने एक नए चरण में प्रवेश किया है। डॉ. सिंह ने आज नई दिल्ली में फ्रांस के उच्च शिक्षा, अनुसंधान तथा अंतरिक्ष मंत्री फिलिप बैप्टिस्ट के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत फ्रांस अंतरिक्ष साझेदारी 6 दशक से अधिक पुरानी है, जिसमें रॉकेट प्रयोगों से लेकर गगनयान और संयुक्त उपग्रह मिशन तक शामिल हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि देश ने पश्चिम एशिया में जारी संकट और होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यवधान के बावजूद कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में आई चुनौतियों का अब तक सफलतापूर्वक सामना किया है। कोलकाता में मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में श्री पुरी ने ये बात कही। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार स्थिति पर लगातार नजर रख रही है और ये सुनिश्चित करेगी कि आपूर्ति में आए व्यवधान नियंत्रण से बाहर न हो। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि बेहतर सड़क बुनियादी ढांचे के कारण देश की माल ढुलाई लागत में कमी आई है। श्री गडकरी नई दिल्ली में एक निजी मीडिया सम्मेलन में बोल रहे थे। श्री गडकरी ने कहा कि IIM बंगलुरु, IIT कानपुर और IIT चेन्नई के अध्ययनों के आधार पर भारत की माल ढुलाई लागत में लगभग 6% की कमी आई है। सरकार ने आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा योजना पोर्टल की शुरुआत की। ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एक एकीकृत डिजिटल मंच उपलब्ध कराएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य पशुधन बीमा सेवाओं को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और सुलभ बनाना है। सर्वोच्च न्यायालय ने 2,000 रूपये से अधिक के UPI लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये शुल्क 15 अक्टूबर से प्रभावी होने हैं। न्यायालय ने केंद्र सरकार, रिजर्व बैंक और अन्य प्रतिवादियों से जवाब मांगा है और 4 सप्ताह के अंदर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा कि मुद्दा कानूनी से अधिक तकनीकी है। देश में इस वर्ष अगस्त में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP द्वारा मापे गए औद्योगिक उत्पादन में वार्षिक आधार पर 8% की वृद्धि हुई। सरकार की ओर से जारी ताजा आंकड़ों से संकेत मिलता है कि औद्योगिक गतिविधि का विस्तार स्वस्थ गति से जारी है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज भी पदक जीतने का सिलसिला जारी रखा है। निशानेबाजी, क्रिकेट, कुराश, एथलेटिक्स और मुक्केबाजी में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। भारत ने आज अपने खाते में 3 और पदक जोड़े हैं। भारत की पुरुष क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। निशानेबाजी में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्तौल स्पर्धा में रजत पदक जीता। विद्या रामराज ने महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में कांस्य पदक जीतने के साथ एक नया रिकॉर्ड भी बनाया है। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 18 रजत और 19

0: मैं हूं प्रियंका अरोड़ा। श्रोताओं, भारत के लिए समुद्र केवल व्यापार और परिवहन का माध्यम नहीं है, बल्कि ये देश की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण आधार है। भारत के व्यापार की करीब 95% मात्रा और लगभग 70% मूल्य का आवागमन समुद्री मार्गों से होता है। ऐसे में जहाजों और समुद्र के रास्ते आने जाने वाले माल को बीमा सुरक्षा देना भी बेहद महत्वपूर्ण है। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए भारत ने भारत समुद्री बीमा पूल यानी BMIP की शुरुआत की है। मई 2026 में शुरू किया गया ये देश का पहला घरेलू समुद्री बीमा पूल है। इसका उद्देश्य विदेशी बीमा कंपनियों पर निर्भरता कम करना और भारतीय जहाजों तथा समुद्री व्यापार को देश में ही बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराना है। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे कि भारत समुद्री बीमा पूल क्या है, इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई, ये किस तरह काम करता है और अब तक इससे क्या उपलब्धियां हासिल हुई हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं भारत समुद्री बीमा पूल की जरूरत क्यों पड़ी और ये भारत के समुद्री व्यापार को किस तरह सुरक्षा प्रदान करता है।
1: श्रोताओं, भारत दुनिया के प्रमुख व्यापारिक देशों में से एक है और देश का अधिकांश व्यापार समुद्री रास्तों से होता है। कच्चे तेल के आयात से लेकर विभिन्न वस्तुओं के निर्यात तक समुद्री मार्ग भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत की तटरेखा लगभग 11,098 किलोमीटर लंबी है। देश में 12 बड़े और 217 छोटे बंदरगाह हैं। वर्ष 2025-26 में इन बंदरगाहों ने कुल 1,668 मिलियन मीट्रिक टन माल संभाला। देश में 14,500 किलोमीटर से अधिक अंतरदेशीय जलमार्ग भी हैं। समुद्री क्षेत्र से जुड़े कामकाज से 3 करोड़ से अधिक लोगों की आजीविका जुड़ी हुई है। वहीं वर्ष 2026 के मध्य तक भारतीय ध्वज वाले जहाजों की संख्या बढ़कर 1,609 हो गई थी। श्रोताओं, इतने बड़े समुद्री व्यापार के लिए समुद्री बीमा बहुत जरूरी है। जहाज के ढांचे और मशीनरी का बीमा जहाज को नुकसान से सुरक्षा देता है। कार्गो बीमा समुद्र के रास्ते ले जाए जा रहे माल की सुरक्षा करता है। वहीं संरक्षण और क्षतिपूर्ति यानी P&I बीमा प्रदूषण, चालक दल की दुर्घटना और अन्य देनदारियों से सुरक्षा देता है। युद्ध जोखिम बीमा समुद्री डकैती और संघर्ष जैसे जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करता है। भारत में समुद्री बीमा की इन सेवाओं के लिए लंबे समय से विदेशी बीमा कंपनियों और अंतर्राष्ट्रीय P&I क्लबों पर निर्भरता रही है। इससे हर वर्ष P&I प्रीमियम के रूप में करीब 45 से 60 मिलियन अमरीकी डॉलर देश से बाहर जाते हैं। इसके अलावा लाल सागर और हॉर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास तनाव जैसी परिस्थितियों में समुद्री बीमा की लागत बढ़ सकती है और बीमा कवरेज मिलने में भी कठिनाई हो सकती है। ऐसी परिस्थितियों में घरेलू स्तर पर मजबूत बीमा व्यवस्था की जरूरत और बढ़ जाती है। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए भारत समुद्री बीमा पूल की शुरुआत की गई। 18 अप्रैल 2026 को इसे मंजूरी मिली और 12 मई 2026 को इसे औपचारिक रूप से शुरू किया गया। ये भारत का पहला घरेलू समुद्री बीमा पूल है। BMIP को कुल 13,906.50 करोड़ रुपए यानी लगभग 1.5 बिलियन अमरीकी डॉलर तक के जोखिमों का कवरेज देने के लिए तैयार किया गया है। इसमें 12,980 करोड़ रुपए यानी लगभग 1.4 बिलियन अमरीकी डॉलर की सरकारी गारंटी शामिल है। इस पूल के तहत भारतीय ध्वज वाले जहाजों के साथ साथ ऐसे जहाज भी पात्र हैं जिनका स्वामित्व, प्रबंधन या नियंत्रण भारतीय संस्थाओं के पास है। भारत से जाने या भारत आने वाले मालवाहक जहाज भी इसके दायरे में आते हैं। BMIP जहाज के ढांचे और मशीनरी, कार्गो, संरक्षण और क्षतिपूर्ति तथा युद्ध जोखिमों के लिए बीमा कवरेज उपलब्ध कराता है। इस पूल की पॉलिसियां घरेलू बीमा कंपनियां जारी करती हैं। जोखिमों का प्रबंधन पूल के सदस्य बीमाकर्ताओं द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है। 100 मिलियन अमरीकी डॉलर तक के दावों का निपटान आरक्षित निधि और पुनर्बीमा से किया जाता है। इससे बड़े दावों के लिए आरक्षित निधि समाप्त होने की स्थिति में संप्रभु गारंटी का इस्तेमाल किया जाता है। जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी GIC पूल के प्रबंधक के रूप में काम करता है। वहीं एक शासी निकाय और अंडरराइटिंग कमिटी पूल के संचालन और जोखिम के आकलन की निगरानी करती है। यानी BMIP के माध्यम से भारत ने समुद्री बीमा के क्षेत्र में घरेलू क्षमता विकसित करने और वैश्विक परिस्थितियों में भारतीय समुद्री व्यापार को निर्बाध बीमा सुरक्षा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण व्यवस्था तैयार की है।
0: श्रोताओं, भारत समुद्री बीमा पूल की शुरुआत के बाद अब तक क्या प्रगति हुई है और इससे भारतीय जहाजों तथा व्यापार को किस तरह लाभ मिल रहा है, आइए जानते हैं।
2: श्रोताओं, मई 2026 में शुरुआत के बाद भारत समुद्री बीमा पूल ने भारतीय समुद्री हितधारकों के लिए युद्ध जोखिम बीमा उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सरकारी जानकारी के अनुसार पश्चिम एशिया में संघर्ष बढ़ने के बाद युद्ध जोखिम बीमा के प्रीमियम में करीब 35-40% की कमी आई है। 7 सितंबर 2026 तक BMIP ने 3000 कार्गो युद्ध जोखिम पॉलिसियां, 92 जहाज ढांचा और मशीनरी युद्ध जोखिम पॉलिसियां तथा 3 संरक्षण और क्षतिपूर्ति यानी P&I पॉलिसियां जारी की है। 30 जुलाई 2026 को BMIP के अंतर्गत भारत की पहली P&I पॉलिसी शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को जारी की गई। ये पॉलिसी द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने जारी की और तीसरे पक्ष की देनदारियों के खिलाफ वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। BMIP की पहली पॉलिसी 12 मई 2026 को एक ऐसे जहाज के लिए जारी की गई जो संघर्ष वाले क्षेत्र से होकर गुजर रहा था। द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने ये जहाज ढांचा और मशीनरी युद्ध जोखिम पॉलिसी मेसर्स होगर ऑफशोर एंड मरीन प्राइवेट लिमिटेड को जारी की। BMIP के अंतर्गत भारत आने वाले माल को भी बीमा सुरक्षा दी गई है। मेसर्स वेदांता स्टारलाइट कॉपर लिमिटेड को समुद्री माल युद्ध जोखिम पॉलिसी जारी की गई, जिसे भारत में आने वाले केबल तारों के आयात से जुड़े जोखिम को कवर किया गया। इसी तरह समुद्र के रास्ते माल का परिवहन करने वाली अन्य कंपनियां भी इस व्यवस्था का लाभ ले सकती है। यानी BMIP का लाभ केवल जहाज मालिकों तक सीमित नहीं है, बल्कि समुद्री मार्ग से व्यापार करने वाले विभिन्न उद्योगों और कारोबारों को भी इससे सुरक्षा मिल सकती है। श्रोताओं, BMIP के संचालन के लिए जरूरी संस्थागत व्यवस्था भी तैयार की गई है। शासी निकाय और अंडरराइटिंग कमेटी का गठन किया गया है। GIC ने पूल प्रबंधक और प्रशासक के रूप में काम शुरू कर दिया है। जोखिम के आकलन, दावों के प्रबंधन और नियामकीय अनुपालन से जुड़ी व्यवस्थाएं भी स्थापित की गई हैं। BMIP की अवधि 10 वर्ष रखी गई है, जिसे 15 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। आने वाले समय में पूल का ध्यान समुद्री बीमा से जुड़े मानव संसाधन, कानूनी ढांचा और पुनर्बीमा साझेदारियों को मजबूत करने पर है। इस व्यवस्था का उद्देश्य घरेलू समुद्री बीमा क्षमता को बढ़ाना, भारतीय जहाज मालिकों और व्यापारियों के लिए प्रतिस्पर्धी दरों पर बीमा उपलब्ध कराना और वैश्विक परिस्थितियों के दौरान समुद्री व्यापार के लिए भरोसेमंद सुरक्षा बनाए रखना है। लंबी अवधि में BMIP के माध्यम से भारत समुद्री बीमा के क्षेत्र में अपनी घरेलू क्षमता को और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जैसे जैसे भारत का जहाज निर्माण, बंदरगाहों से माल की आवाजाही और समुद्री व्यापार बढ़ेगा, वैसे वैसे समुद्री बीमा की भूमिका भी महत्वपूर्ण बनी रहेगी।
0: श्रोताओं, भारत समुद्री बीमा पूल देश के समुद्री क्षेत्र के लिए एक नई घरेलू बीमा व्यवस्था है। इसका उद्देश्य भारतीय जहाजों और समुद्री व्यापार को ढांचा और मशीनरी, कार्गो, संरक्षण और क्षतिपूर्ति तथा युद्ध जोखिमों के लिए बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराना है। BMIP के माध्यम से भारत ने विदेशी बीमा व्यवस्था पर निर्भरता कम करने और समुद्री जोखिमों के लिए देश के भीतर ही एक मजबूत वित्तीय सुरक्षा तैयार करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। समुद्री व्यापार भारत की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा का महत्वपूर्ण आधार है। ऐसे में जहाजों और माल के लिए भरोसेमंद बीमा सुरक्षा समुद्री व्यापार की निरंतरता के लिए महत्वपूर्ण है। इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार किया है हमारे सहयोगी उत्पल कुमार ने, प्रस्तुति सहायक अलका सिंह। नमस्कार।
3: EM आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। यूपीआई

0: व्यवहारेषु एमडीआर शुल्क प्रवर्तनस्य केन्द्र सर्वकारस्य निर्णये सर्वोच्च न्यायालयेन स्थगनादेशः अस्वीकृतः। अद्यारभ्य प्रारभ्यमाणः त्रिदिवसीयः राष्ट्रव्यापी बैंक कार्यविरामः स्थगितः। भारतेन पाकिस्तानस्थेषु आतंक्याश्रयेषु विहितस्य सर्जिकल स्ट्राइक इत्यस्य दशमी वार्षिकी आमान्यते। राष्ट्रेणाद्य स्वातन्त्र्य सेनानी शहीद भगत सिंहः तस्य जयन्त्यवसरे संस्मर्यते। अपि च एशियन क्रीडा प्रतिस्पर्धासु भारतेन अद्य स्वपदक तालिकायां पञ्च नूतनानि पदकानि योजितानि। भारतीय पुरुष क्रिकेट दलं च उपांत्य चक्रे प्रविष्टवत्। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। सर्वोच्च न्यायालयेन आगामी मासस्य 15 दिनांकतः प्रवर्तमानेषु 2,000+ रूप्यकाणां निर्दिष्ट व्यक्तितः व्यापारी यूपीआई व्यवहारेषु एमडीआर इति शुल्क प्रवर्तनस्य केन्द्र सर्वकारस्य निर्णये स्थगनादेशे असम्मतिः प्रदर्शिता। न्यायमूर्तेः सूर्यकान्तस्य, न्यायमूर्तेः जयमाल्य बागचीनः अथ न्यायमूर्तेः वी मोहनस्य च पीठेन केन्द्र सर्वकाराय भारतीय रिजर्व बैंक इत्यस्मै अन्येभ्यश्च प्रतिवादिभ्यः सूचनापत्रं प्रेषयित्वा 4 सप्ताहेषु प्रत्युत्तरं समर्पयितुं निर्दिष्टम्। केन्द्रस्य पक्षं स्थापयता अतिरिक्त महान्याय अभिकर्त्रा एन वेंकटरमणेन उक्तं यत् पेमेंट गेटवे इत्यस्य 90% प्रयोक्तारः अस्मात् शुल्कात् मुक्ताः एव स्थास्यन्ति। इयं जनहित याचिका अधिवक्ता अञ्जनदत्तेन उपस्थापिता आसीत्। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस इत्यनेन अद्यारभ्य प्रारभ्यमाणा त्रिदिवसीया राष्ट्रव्यापी बैंक कार्यविराम योजना स्थगितीकृता इति उद्घोषितम्। अयं निर्णयः भारतीय बैंक संघेन सह संवादात् परं गृहीतः। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघेन सामाजिक संचार पटले न्यरूपीयत ह्यः रात्रौ आईबीए अथ 7 बैंकसंघानां यूएफबीयू इत्यस्य च मध्ये कार्यविराम सम्बद्ध विषयेषु सम्पन्नायाः मन्त्रणायाः अनन्तरम् एषः निर्णयः सञ्जातः। पूर्वं यूएफबीयू अन्यैश्च सार्वजनिक क्षेत्रस्य बैंक संघैः सितम्बर मासस्य 28 तः 30 दिनांकं यावत् त्रिदिवसीयस्य कार्यविरामस्य आह्वानं कृतम् आसीत्। तेषां मुख्यतया याचनाद्वयम् आसीत्, सप्ताहे 5 दिवसीय कार्यप्रणाल्याः प्रवर्तनम् अथ च कार्यसम्पादनसम्बद्ध प्रोत्साहन योजनायाः प्रत्याहारः। भारतेन अद्य सर्जिकल स्ट्राइक इत्यस्य दशमी वार्षिकी आमान्यते, येन प्रहारेण विश्वस्य पुरतः नरेन्द्र मोदी सर्वकारस्य आतंकवाद विरोधी नीतेः कश्चन नूतनः प्रभावकारी च दृष्टान्तः उपस्थापितः आसीत्। 16-2000 सितम्बर मासस्य 28-31 दिनांकयोः रात्रौ भारतीय सेनया पाक अधिकृत जम्मू कश्मीरे नियन्त्रण रेखायाः पारस्थितेषु आतंकवादिनां प्रस्थान केन्द्रेषु लक्ष्यकेन्द्रिताः प्रहारः विहितः। एतत् सैन्याभियानं तस्मिन्नेव मासे उरी सैन्यशिविरे सञ्जातस्य आतंकी आक्रमणस्य प्रत्युत्तरम् आसीत्, यस्मिन् 21 भारतीय सैनिकाः वीरगतिम् अवाप्नुवन्। इयं वार्षिकी राष्ट्रिय सुरक्षातन्त्रे विगत दशके आगतानां दृढ परिवर्तनानां द्योतिका वर्तते। ह्यः आकाशवाण्याः मन की बात इत्याख्ये कार्यक्रमे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी 16-2000 एतत् अभियानं कीर्तिस्तम्भात्मकमिति न्यरूपयत्। सः अवोचत् यत् अनेन अभियानेन नियन्त्रणरेखायाः पारे साहसिक अभियानसञ्चालने भारतीयसेनायाः अद्वितीयं सामर्थ्यं विश्वपटले प्रतिष्ठापितम्।
1: 10 वर्ष पहले 28-29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। एलओसी के उस पार जाकर हमारे वीर जवानों ने जिस तरह आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की थी वो देख दुनिया हैरान थी। सर्जिकल स्ट्राइक ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया था। आतंकवादी हमलों के कारण भारत ने लंबे समय तक जो दर्द झेला था, सर्जिकल

0: Good evening and welcome to Market Mantra. Today being Monday, we will also take calls from you, our listeners, on market-related queries. But do remember, listeners, that we do not address stock or company-specific queries. You can call us on 2331-4444, 2331-0481, and 2371-7106. And of course, do remember to prefix the Delhi STD code 011 in front of these numbers. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Manoj Pathak.
1: Namaskar, Market Mantra ki Tazank mein aapka swagat hai. आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताज़ा खबरों को लेकर हाजिर हैं। आज सोमवार है और आज के दिन आप हमारे साथ बातचीत करते हैं। आज भी हमसे आप पूछ सकते हैं कारोबार, अर्थव्यवस्था या शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी सवाल। बस ये ध्यान रखिएगा कि हम किसी खास कंपनी या शेयर के बारे में जानकारी आपको नहीं दे सकते हैं। हमसे सवाल पूछने के लिए डायल कीजिए 2331-4444, 2331-0481 या फिर 2371-7106। हमारे साथ खबरों पर चर्चा और आपके सवालों का जवाब देने के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शिशिर सिन्हा। शिशिर जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: जी नमस्कार, धन्यवाद।
1: आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइंस से, जिसे लेकर मौजूद हैं अनुभा रोहतगी।
0: थैंक यू मनोज। Benchmark domestic indices declined sharply. Sensex tanks over 1100 points. Nifty settles below 22,800. India's industrial output grows by 8% in August this year. And global crude oil prices surge around 3.5%.
1: घरेलू शेयर बाजार में आज हुई भारी गिरावट। सेंसेक्स 1100 अंक से अधिक लुढ़का, निफ्टी 22,800 के नीचे बंद हुआ। देश का औद्योगिक उत्पादन इस वर्ष अगस्त में 8% बढ़ा और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के दाम लगभग 3.5% उछले।

0: And before we take a look at the top story, there's this important announcement for our listeners. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. Manoj.
1: आइए अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन पहले खबरों से पहले आपको लिए चलते हैं गुड़गांव। हमारे साथ फोन लाइन पर है मनीष। मनीष जी, स्वागत आपका, सवाल पूछिए।
2: नमस्कार सर, और मार्केट मंत्रा टीम का बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोग बहुत ही गरिमापूर्वक और बहुत ही गंभीरता से आप ये प्रोग्राम चलाते हैं, और किसी भी सस्ती या किसी नॉन सीरियस न्यूज से आप लोग बचते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सवाल सर ये है कि जैसे मैं एमएफ में एक्सपोजर है मेरा म्यूचुअल फंड्स में, जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप और थोड़ा सा डेट फंड्स में भी है। अभी काफी टाइम से मैं सोच रहा था कि मैं अपनी एसआईपी रोक दूं, क्योंकि मार्केट ठीक होने का नाम बिल्कुल नहीं ले रही है। हालांकि मेरा मानना यह था कि जब मार्केट गिरी होती है एसआईपी में तभी फायदा होता है, क्योंकि कम एमएवी पे आपको ज्यादा यूनिट मिलती है, तो जब मार्केट उठेगी तो हो जाएगा। लेकिन सर ये काफी टाइम हो गया है, और अब आपको क्या लगता है कि क्या मुझे अपनी एसआईपी रोक कर उसको एफडी की तरफ या डेट फंड की तरफ किस तरफ मुझको डाइवर्ट करना चाहिए सर? थैंक यू।
3: मनीष जी, देखिए आपका ये बहुत अच्छा फैसला है कि आपने डाइवर्सिफाई कर रखा है, लार्ज में भी है, स्मॉल में भी है, मिड में भी है, फ्लेक्सी में भी है, और आपका डेट फंड में भी है। तो ये बहुत अच्छा आपका फैसला है, और ये भी जो आपकी सोच है कि जब बाजार गिरता है तो उससे हमें फायदा ही होगा। यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं कि थोड़ा सा आप एक्सपोजर जो है वो इक्विटी से कम करके आप डेट फंड में जा सकते हैं। और आपने खुद ही कहा कि फिक्स्ड डिपॉजिट या डेट फंड, तो मुझे लगता है कि डेट फंड का विकल्प आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि वहां पर एक निश्चित दौर पे जो है वो आपको ब्याज मिलनी है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि वहां जाएं आप, जो आपका मान लीजिए कि 100 रुपये में, अगर मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि अगर 70 रुपये आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगा रखा है, इन

0: बाजारों को मिला दें अगर फ्लेक्सी स्मॉल मिड कैप और लार्ज कैप में, और 30% अगर आपने डेट में लगा रखा है तो उसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, यानी कि 40 कर दीजिए या 45 कर दीजिए, ये आपके लिए एक लंबे समय का बेहतर विकल्प होगा। SIP बंद मत करिए, ये जो है वो चल रहा है, चलने दीजिए। हो सकता है कहते हैं कि गिरावट आती है, बिल्कुल गिरावट आई है बहुत, जैसे कहा जाए कि हर दिन निफ्टी और सेंसेक्स जो है वो गिरावट का एक रिकॉर्ड ही बना रहे हैं। पहले हमने तेजी की बात करी थी कुछ समय पहले, अब हम लोग गिरावट की बात कर रहे हैं। तो जैसे शेयर बाजार की भाषा में कहते हैं कि एक आपका एक रेसिस्टेंस लेवल होता है और एक सपोर्ट लेवल जो होता है। अब यहाँ पर जो सपोर्ट लेवल है वो काफ़ी हद तक टूटता हुआ नजर आ रहा है, और वो कहाँ तक जाएगा ईमानदारी से बताएं तो आज के दिन में कहना बहुत मुश्किल है। बाजार में एक और गिरावट की आशंका जो है वो इनकार नहीं किया जा सकता है, तो मेरी राय ये है कि आप बने रहें।
1: जी, एंड लेट्स टेक द नेक्स्ट कॉल। सुदीप्ता इज ऑनलाइन विद अस फ्रॉम कोलकाता। सुदीप्ता, वेलकम टू मार्केट मंत्रा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
2: हेलो, नमस्ते मैम, आई एम ऑफ योर्स। मेरा क्वेश्चन कि जो ऐप अंदर शुरू क्या करे तो किस चीज में।
1: सुदीप, तो आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, आप दोबारा अपना सवाल प्लीज रिपीट करें।
2: अगर कोई नया शुरू करना चाहता तो उसको।
3: सुदीप, तो हमें लगता है आपकी फोन लाइन में और हमारी फोन लाइन में सीधा संवाद संपर्क नहीं हो पा रहा है, आपकी आवाज कट कट के आ रही है। आप एक बार दोबारा फिर से प्रयास करें। आइए, बात चल रही है गिरावट की। वाकई शेयर बाजार गिरावट के दौर से गुजर रहा है और आज भी अच्छी खासी गिरावट हुई है, बंदड़िए बाजार पर हावी नजर आ रहे हैं। आज के कारोबार में प्रमुख सूचकांक 1.5% से अधिक घाटे के साथ बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1124 अंक घटकर 72772 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 360 अंक गिरकर 22780 दर्ज हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तारित बाजार पर ध्यान दें तो मिड कैप 100 इंडेक्स 1.6% और स्मॉल कैप इंडेक्स 1.8% नुकसान के साथ बंद हुआ, यानी कुल मिलाकर लगभग इस वर्ष अप्रैल के स्तर पर हम फिर से लौट आए हैं। बाजार में आज शुरुआत से ही कमजोरी बनी रही और लगातार पूरे सत्र में बिकवाल हावी रहे। दरअसल पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने का असर, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के दाम ऊपर जाने, बॉन्ड यील्ड में तेजी आने और विदेशी फंड द्वारा पूंजी निकालने का क्रम जारी रहा, जिससे सभी निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई।
1: बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेस डिक्लाइंड शार्पली बाय ओवर 1.5% टुडे। द सेंसेक्स प्लंज्ड 1124 पॉइंट्स टू क्लोज एट 72772। The Nifty shed 360 points to settle at 22,780. In the broader market at the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 Index tumbled 1.6%, while the Small-Cap 100 Index tanked 1.8%. Markets opened with gap down this morning and continued their downward trajectory throughout the session, as rising crude oil prices, escalating tensions in West Asia, surging global bond yields and persistent foreign fund outflows weighed heavily on investor sentiment.
3: सेंसेक्स पैक पर आज ध्यान दें तो इकलौती एक ही कंपनी मुनाफा कमाने में सफल हुई, बाकी सभी 30 में से 29 कंपनियों के शेयर घाटे में रहे। लाभ हुआ सिर्फ इंफोसिस को, जिसके शेयर 0.2% ऊपर उठकर बंद हुए। घाटा उठाने वालों में प्रमुख कंपनियां रहीं लार्सन और टुब्रो, जिसके शेयर 2.8%, पावर ग्रिड 2.6% और अडानी पोर्ट्स के शेयरों में 2.4% का नुकसान हमने देखा।
1: इन द सेक्टरल इंडिसेस ऑन द BSE, ऑल 28 सेक्टर्स एज्ड लोअर। अमंग द टॉप लैगर्ड्स, PSU बैंक्स स्किडेड 3.2%, पावर टेलीकम्युनिकेशन यूटिलिटीज लॉस्ट 2.3% ईच, and mid-small private banks dropped 2.2%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 3,218 companies declined, shares of 1,271 companies advanced, while shares of 228 companies remained unchanged.
3: नजर डालें रुपए की स्थिति पर तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 17 पैसे कमजोर हुआ, 95.99 रुपए के स्तर पर बंद हुआ।
1: And let's take our next call. Amit Jha is online with us. He's calling us from Delhi. Amit, welcome to Market Mantra. Please ask your question.
3: अमित जी आप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, लगता है आपका धैर्य चूक गया और आप हमारा संपर्क टूट चुका है। बहरहाल आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले प्रतिक्रिया हम लेना चाहें अपने विशेषज्ञ शिशिर जी से, आज की गिरावट के पीछे मुख्य कारक क्या रहे शिशिर?
0: अब मुझे लगता है अमित शायद जुड़ नहीं पाए हैं, उनकी जगह हमारे पास एक नए कॉलर हैं, इनसे पहले बात कर ले फिर मैं आपके।
1: जी, सो नाउ वी हैव ऑनलाइन विद अस कांता इज कॉलिंग अस फ्रॉम गुरुग्राम। कांता वेलकम टू मार्केट मंत्र, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
4: जी नमस्ते।
1: जी नमस्ते, सवाल पूछे।
4: मेरा सवाल ये है कि जो पीपीएफ का खाता केनरा बैंक में मैंने खोला है, पीपीएफ का खाता,
1: जी जी,
4: तो मैं ये संतुष्ट करना चाहती थी 15 साल के अंदर कोई जोखिम नहीं होगा मेरे पैसे में अगर बैंक को कुछ भी हो जाए तो?
0: बिल्कुल नहीं कांता जी, देखिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड चाहे बैंक में आप खोले या डाकघर में खोले, ये पूरी तरीके से सरकार की ओर से प्रायोजित होता है, यानी कि इसमें मूल और ब्याज की पूरी गारंटी सरकार की होती है। तो बैंक अगर बंद भी हो जाए या बैंक में अगर किसी भी तरीके का नुकसान भी हो जाए तो वहां पर आपके पीपीएफ पे कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि जो भी आपका ब्याज बनता है 15 सालों पर जो मूल है आपका वो आपको पूरा मिलेगा।
3: आइए चले मुंबई, मुंबई से हमारे साथ हैं नियमित श्रोता रत्नाकर। रत्नाकर जी स्वागत आपका, सवाल पूछें।
5: हेलो गुड इवनिंग सर,
3: स्वागत आपका।
5: मेरा सवाल है कि ये शेयर मार्केट का एक टर्मिनोलॉजी के बारे में मुझे जानना है
3: जी,
5: वो है ओवरऑल एमटीएल, टोटल प्रॉफिट एंड लॉस एंड बुक प्रॉफिट। जब हमने शेयर सेल कर दिया तो वो पोर्टफोलियो से सेल हो गया, लेकिन उसके बाद में भी जो प्रॉफिट दिखता है वो किधर एडजस्ट होता है, ये मेरा सवाल है।
0: देखिए रत्नाकर जी, अगर आपने अपने कोई भी शेयर बेचे हैं और अगर वो आपके खरीद कीमत से ज्यादा है तो आपका मुनाफा है। जब आपने बेच दिया पूरी तरीके से उसके बाद उस शेयर में जो भी बदलाव हो रहा है उससे आपका कोई संबंध तो रह नहीं जाता है, वो जो भी निवेशक उसमें हैं उनके लिए वो मुनाफे की बात होती है। एक और बात आपको रत्नाकर जी ध्यान में रखना चाहिए कि हम लोग कहते हैं कि नोशनल प्रॉफिट, यानी कि कई बार होता क्या है कि आप 100 से वो दाम बढ़ करके 120 पे आ जाते हैं, 125 पे आ जाते हैं, 130 पे आ जाते हैं, आप कहते हैं कि ये 150 होगा तभी जा करके बेचेंगे।
1: बिल्कुल,
0: तो ये जो 150 है वो आपके लिए एक नोशनल प्रॉफिट है, वो अगर हो सकता है कि वो पहुंच भी जाए, हो सकता है नहीं भी पहुंचे, आपकी जो लागत थी वो 100 रुपए की थी। तो जहां तक मुझे लगता है कि आपके प्रश्न का जो सार था वो यही था कि हमने शेयर बेच दिया, हमारा मुनाफा या हमारा जो भी घाटा है वो मेरे ऊपर है, उसके बाद उस शेयर में क्या कुछ होता है जब आप उसमें शेयर धारक ही नहीं रहे तो उसके घाटे और मुनाफे से आपका संबंध नहीं रह जाता।
1: लेट्स टेक द नेक्स्ट कॉल। जितेंद्र इज ऑनलाइन विद अस, ही इज कॉलिंग अस फ्रॉम जयपुर। जितेंद्र वेलकम टू मार्केट मंत्र, प्लीज आस्क द क्वेश्चन।
6: नमस्कार, ये बोल रहा था कि हम लोग को अभी क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए क्योंकि मार्केट का काफी 3 से 2 साल से ऐसे ही चल रहा है, तो निफ्टी 50 में हम लोग SIP कर रहे थे और निफ्टी 50 के IT सेक्टर में हम लोग SIP कर रहे थे, लेकिन IT सेक्टर से थोड़ा सा डर लग रहा है, लेकिन हमको विश्वास है कि वो बहुत अच्छा करेगा आगे, तो क्या हम करें अभी समझ में नहीं आ रहा।
0: जितेंद्र जी आपके विश्वास की ही जीत होगी, और जहाँ तक हम लोगों ने ये भी दौर देखा कि जब AI को लेकर के काफ़ी बड़ी बातें की जा रही थी उस दौर में IT पे थोड़े समय के लिए दबाव बना, लेकिन उसके बाद IT शेयरों में बाउंस बैक हुआ। आज भी अगर आप देखें तो कोई एक शेयर जो आज 30 शेयरों में कोई एक आगे आया है तो वो आपका IT सेक्टर ही है। तो मुझे लगता है कि जब गिरावट का माहौल है उसमें निश्चित तौर पर आप जैसे निवेशक के लिए एक परेशानी और एक प्रश्न चिन्ह है, दोनों चीज़ें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप बने रहें, जो आप कर रहे हैं उसको आप थोड़ा थोड़ा करते रहें, और मेरा ये भी मानना है कि जैसे उसको कहते हैं कि एक सुरक्षा भी आप बना लें, कुछ पैसे जो आपने अपने लगाना चाहते हैं उसको यदि थोड़ा आप उसका विविधीकरण कर दें, बैंक में या डाकघर की बचत योजना में लगा लें। डाकघर की बचत योजनाएँ बहुत बेहतरीन है क्योंकि उसमें मूल और ब्याज दोनों की गारंटी जो है वो सरकार की होती है, तो उसमें आपको कम होने का खतरा नहीं है और आपके लिए वो एक सुरक्षा का भी काम करेगा। तो आप अगर इस तरीके से विविधीकरण कर लें तो जो आपका घाटा है, देखिए बाजार के घाटे को कोई पूरा नहीं कर सकता, उसके लिए धैर्य ही एकमात्र चीज है, लेकिन अगर आप विविधीकरण करते हैं तो आप घाटे को कम कर सकते हैं।
3: आइए लौटे दिल्ली, दिल्ली से हमारे साथ हैं जगदीश। जगदीश जी स्वागत आपका, सवाल पूछिए।
7: हाँ जी सर, गुड इवनिंग, जगदीश जोशी नांगली दिल्ली से।
3: जी स्वागत आपका।
7: सर जो यूपीआई में 0.4 का जो 2000 प्लस की जो पेमेंट का है, तो मैं पर्सनली अपने लिए पूछता हूँ, क्योंकि मैं एक छोटा सा दुकानदार हूँ जिसके पास कि 10 रुपए 20 रुपए किसी ने चिप्स लिया या बॉल पेन लिया, तो मैं जानना चाह रहा हूँ दो बातें, कि अगर कोई 10 10 20 रुपए करके अगर 2000 रुपए इकट्ठे होते तब उसमें कटता है या एक मुश्त कोई करता है तो तब कटता है, क्योंकि हमारे पास तो बहुत छोटा काम है और एक दो कस्टमर ऐसे हैं जो मतलब 10 20 रुपए डेली ना देके वो मंथली 2500 3000 रुपए होता तो वो पेमेंट करते हैं, तो उसमें हमें मतलब कितना 3000 या 2500 तो हमें कितना उसमें हमारे खाते से कटेगा, ये मतलब छोटे दुकानदार के लिए तो मेरे हिसाब से तो ये थोड़ा सा उस पर बर्डन पड़ेगा, तो आपकी विशेषज्ञ टिप्पणी चाहता हूँ सर, धन्यवाद।
0: जगदीश जी ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है इस समय में। देखिए आपके पास दो तरीके के ग्राहक हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि खाते में लिख लो, और एक है जो कि नियमित तौर पे आते हैं और जो जो भी आपसे खरीदते हैं उसका या तो नगद या यूपीआई के जरिए भुगतान कर देते हैं। आपने कहा आप एक छोटे व्यापारी हैं, अगर पूरे महीने के दौरान अगर आपके पास कुल यूपीआई के जरिए लेन देन में आपको 1 लाख रुपए से कम की आ रही है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, नंबर एक। नंबर दो कि अगर कोई व्यक्ति आपके पास 2000 रुपये यानी कि 1999.99 रुपये तक अगर जो भुगतान कर रहा है वहाँ पर 1 रुपया भी उसका MDR नहीं लगेगा, यानी कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट हम जिसको कहते हैं, यदि वो 2000 के बाद महीने के अंत में जो खाते वाले आपके हैं और वो आकर के कहते हैं कि चलो हमारा खाता क्लियर कर दो और हम एक बार में आपको 2500 का भुगतान कर रहे हैं, वो यदि 2500 का भुगतान कर रहे हैं तो वहां पर आपको एक शर्त ये याद रखनी है कि जो अगर 1 लाख रुपए से कम की आमदनी है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा आपकी आमदनी है तो वहां पर आप 2000 के ऊपर का भुगतान जब अगर आप लेंगे तो 0.4% की दर से आपका MDR जो है वो कटेगा, तो इसमें बेहतर होगा कि खाते को 2000 रुपए तक आने ही ना दे और आप उसका नियमित तौर पर भुगतान लेते रहें। वैसे भी कहते हैं ना कि उधार प्रेम की कैंची है, तो ग्राहकों के साथ आपका प्रेम संबंध ना बिगड़े और आपके बचत और आपके खाते के ऊपर बोझ ना पड़े तो ये दो विकल्प अपना करके देखिए बेहतर है।
1: एंड ऑन दैट नोट लेट्स शेयर विद आवर लिसनर्स अ रिलेटेड स्टोरी। द सुप्रीम कोर्ट टुडे रिफ्यूज्ड टू स्टे द सेंटर्स डिसीजन टू इम्पोज मर्चेंट डिस्काउंट रेट और MDR ऑन स्पेसिफाइड पर्सन टू मर्चेंट UPI ट्रांजेक्शंस अबव 2000 रुपीज with the charges set to come into effect from the 15th of next month. A bench comprising Chief Justice of India Suryakant and Justice Joymalya Bagchi and Justice V. Mohana sought responses from the Centre, the Reserve Bank of India and other respondents, directing them to file their counter-affidavits within 4 weeks. The Apex Court observed that the issue is less legal and more technical. Appearing for the court, Additional Solicitor General appearing for the Centre, Additional Solicitor General N. Venkataraman told the bench that 96% of the users of the payment gateway would remain exempt.
3: आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। देश में इस वर्ष अगस्त में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP द्वारा मापे गए औद्योगिक उत्पादन में वार्षिक आधार पर 8% की वृद्धि हुई। सरकार की ओर से जारी ताजा आंकड़ों से संकेत मिलता है कि औद्योगिक गतिविधि का विस्तार स्वस्थ गति से देश में जारी है। जुलाई की IIP वृद्धि दर सुधार के साथ 7.4% पर पहुंच गई, जबकि पहले 6.7% वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया था। आज जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार अगस्त में बिजली और गैस आपूर्ति में 12.3% की शानदार वृद्धि हुई है, जबकि IIP सूचकांक में सबसे अधिक भार रखने वाले विनिर्माण क्षेत्र का विकास 9% की दर से हुआ है। जल आपूर्ति, सीवरेज और अपशिष्ट प्रबंधन में भी 6.3% की वृद्धि हुई। हालांकि इस अवधि के दौरान खनन क्षेत्र में 5.6% की गिरावट आई है। क्या कह रहे हैं ये आंकड़े कुल मिलाकर देश की जो औद्योगिक उत्पादन के अच्छे आंकड़े, इसे हम स्वीकार कर सकते हैं?
0: मनोज जी, इसके पहले आपका जो पहला प्रश्न था वो हम लोग रहे थे, वो कांता जी का फोन आ गया था, तो आपने शेयर बाजार को लेकर के मौजूदा हाल पे जो आपने चर्चा करी थी उसमें देखिए एक जो हमारे लिए एक सबसे बड़ी चिंता यह है कि अमेरिका में ब्याज दरें जो है वो बढ़ रही हैं, जिसको तकनीकी भाषा में हम यील्ड भी कहते हैं, और ये कहा जा रहा है कि अमेरिका काफ़ी कर्ज ले रहा है, तो जो कर्ज ले रहा है उसके लिए वो ऊंची ब्याज देने को तैयार है, तो एक निवेशक के सामने एक विकल्प है कि वो ऊंची ब्याज वाले पे जाए या फिर हमारे यहाँ है। एक और महत्वपूर्ण घटना जो आज हुई है जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि शेयर बाजार में आज काफ़ी गिरावट हुई, कि चीन में पहले अंडरवेट सिचुएशन था, अब वो बेंचमार्क न्यूट्रल हो गया है। अब आप कहेंगे बड़े दो तकनीकी शब्द आप लेकर के क्यों आ रहे हैं।

0: आप इसको ऐसे समझिए कि अगर आपने चीन में 20 रुपया लगाने का फैसला किया था, लेकिन आपको कंपनियों पे भरोसा नहीं था, तो आपने 10 रुपये ही निवेश किए, यानी कि आप अंडरवेट हो गए। अब क्या हो रहा है कि बेंचमार्क न्यूट्रल होने के बजाय 20 का क्या 20 से ज्यादा निवेश करने की स्थिति में आ गए हैं, करने लगे हैं। तो अब पहले तो अमेरिका में पैसा लोग लगा रहे हैं, चीन में भी जा रहे हैं, तो हमारे लिए स्थिति जो है वो थोड़ी कमजोर हो गई है। दूसरी तरफ हमारी जो कच्चे तेल की स्थिति है, आप 104, 105 के ऊपर ही है, भाव चल रहा है, वो भी हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है। तो इन सब का नतीजा है कि बाजार में जो है वो गिरावट का दौर देखने को मिल रहा है। और हालात ये हैं कि अभी के समय में कुछ भी कहना ये जोखिम होगा कि बाजार किस स्थिति में पहुंचेगा, कहां पहुंचेगा। अब आपका जो दूसरा प्रश्न है औद्योगिक उत्पादन को लेकर के, दो क्षेत्र जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक आपका विनिर्माण और दूसरा बिजली उत्पादन। लेकिन बिजली उत्पादन को लेकर के हमें थोड़ा सोचना होगा, क्योंकि हमने कि मौसमी बदलाव की वजह से बिजली की मांग काफी बढ़ी। तो अगर बिजली का उत्पादन दोहरे अंक में रहा है, अगर मैं गलत नहीं, तो 12% के ऊपर की बढ़ोतरी बिजली के उत्पादन में रही है, और विनिर्माण में जो बढ़ोतरी की दर रही वो 9% की दर रही। तो ये जो है वो त्योहारी मांग को देखते हुए निर्माण बढ़ा है, उसका असर आपको देखने को मिला है। तो ये 8% एक अच्छी बढ़ोतरी की दर है, और उम्मीद करनी चाहिए कि पहली तिमाही के जो आपके औद्योगिक विकास के आंकड़े हैं उसका असर, दूसरी तिमाही की माफ कीजिएगा, उसका असर जो है वो दूसरी तिमाही के विकास के आंकड़े जो कि 30 नवंबर को जारी होंगे उसमें देखने को मिले।
1: जी, एंड ऑन दैट नोट लेट्स टेक द नेक्स्ट कॉल फ्रॉम दिल्ली। शंकर इज ऑनलाइन विद अस। शंकर, वेलकम टू मार्केट मंत्रा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। हेलो शंकर, इफ यू कैन हियर अस प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। जी, लुक्स लाइक ही इज नॉट, we have lost contact with Shankar, so let's move on to the next story. India and the UAE have agreed to take steps for the timely implementation of initiatives relating to settlement of trade in local currency, integration of payment and messaging systems, and central bank digital currencies. The two sides reached the agreement during the 14th meeting of the India-UAE high-level joint task force on investments in Mumbai today. It was co-chaired by Commerce and Industry Minister Piyush Goyal and Managing Director of Abu Dhabi Investment Authority Sheikh Hamid bin Zayed Al Nahyan. The Commerce and Industry Ministry said that in a statement that these issues are important as they have the potential to make bilateral trade and investment more efficient, accessible and resilient. The areas where two-way investment flows can be enhanced include energy, industry, logistics, infrastructure, technology and artificial intelligence, space, food security, artificial innovation and the startup ecosystem.
2: बहुत संक्षिप्त टिप्पणी, बड़ी ही महत्वपूर्ण मार्के की बात है। लोकल करेंसी यानी स्थानीय मुद्रा में जो बातचीत कारोबार का आह्वान हम कर रहे हैं उस दिशा में, साथ ही संदेश आदान प्रदान और पेमेंट इंटीग्रेशन की बात। चलिए, कुल मिलाकर क्या कहा जा रहा है, क्या कह रही है खबर और किस रूप में ये लागू होने की संभावना है आने वाले दिन?
0: देखिए, इसका मतलब है कि आपकी निर्भरता जो है वो डॉलर पर थोड़ी कम होगी और ये हमारे लिए एक अच्छी खबर होगी।
1: जी, एंड लेट्स टेक द नेक्स्ट कॉल नाउ। कृपा शंकर इज ऑनलाइन विद अस फ्रॉम दिल्ली। मिस्टर कृपा शंकर, वेलकम टू मार्केट मंत्रा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
3: धन्यवाद। मैं सर से ये पूछना चाहता हूँ, जैसे अभी आप समझा रहे थे कि 2500 अंक की पेमेंट आपके पास आती है तो आप इसको पूरी ना लें, अगर हम उसको 1000 और 1500 रुपए के हिसाब से लें, 1500 एक लें, 1000 एक लें, तब भी चलेगा, और चाहे हमारा लाख से नीचे ही रहता है उस मुताबिक भी ठीक रहेगा। और जैसे हम जॉब करते हैं तो हमारा जो सेट है वो हमारे अकाउंट में UPI में किसी की पेमेंट आ जाती है 5000, 7000, 10000, छोटी मोटी पेमेंट हमारे में डाल देते, तो हमें डलवानी चाहिए या नहीं डलवानी चाहिए, कि या फिर इसके अंदर भी हमारा तो सिर्फ एक सैलरी है, हमें तो 30000 रुपये मिल जाते हैं मंथली, तो हमारे पे क्या कुछ, हम तो दुकानदार नहीं है, तो इस पे क्या आप करते
0: हैं सर? पहली वाली जो परिस्थिति है जो आपने कहा कि हम उसको 2500 को दो हिस्सों में बांटते, 1000 रुपये का और 1500 रुपये का, जाहिर सी बात है उसमें आपका कोई लगेगा नहीं। दूसरी बात यह कि 1,00,000 रुपये के नीचे के जो व्यापारी यानी कि छोटे व्यापारी जो हैं उनके, वो इस दायरे में नहीं है। तीसरी बात है कि व्यक्ति से व्यक्ति को मिलना, वहाँ पर आपके लिए MDR नहीं है। यदि कोई व्यक्ति आपको एक व्यक्ति के तौर पर आपको भुगतान कर रहा है, आपने कहा कि आप एक व्यापारी नहीं है, कारोबारी नहीं है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है।
2: आइए आगे बढ़ें। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस UFBU की 3 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल स्थगित करने के बाद आज देश भर में बैंक खुले रहे। भारतीय बैंक संघ आई बी

0: ए के साथ हुए समझौते के बाद ये निर्णय लिया गया। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ AIBEA ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, प्रस्तावित हड़ताल से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए IBA और 7 बैंक यूनियनों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था UFBU के बीच कल रात हुई बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया। इससे पहले यूनियनों ने मुख्य रूप से 2 मांगों, 5 दिवसीय बैंकिंग सप्ताह को लागू करने और प्रदर्शन से जुड़ी प्रोत्साहन PLI योजना को वापस लेने के लिए 28 से 30 सितंबर तक हड़ताल की घोषणा की थी। और अब चले एशियाई शेयर बाजार, यानी दुनिया के 2 प्रमुख महादेश से हम कुछ चुने हुए बाजारों की खबर आपको देते हैं। एशिया के प्रमुख बाजार दक्षिण कोरिया के कोस्पी सूचकांक में 2.7% की गिरावट आज बिकवाली के दबाव में हुई। जापान का निक्केई 225 सूचकांक भी 0.7% नुकसान के साथ बंद हुआ। यूरोपीय बाजार की ओर आपको ले चले तो अंतरदिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक लंदन का फुटसी 100 0.2% ऊपर चल रहा था, जबकि जर्मनी के डैक्स में कोई परिवर्तन नहीं था और ये अपने पूर्व स्तर के आसपास ही कारोबार कर रहा था।
1: Let's move on to commodities. Global crude oil prices rebounded today after US President Donald Trump rejected an Iranian peace proposal over the weekend aimed at resolving the conflict and reopening the Strait of Hormuz. Brent crude was trading 3.5% higher at $108 per barrel. West Texas Intermediate crude was trading 3.6% up at $95.72 per barrel at the time of writing this report. A very brief comment, Shishir, because I was reading somewhere that one of the international financial service firms actually has said that it has lost visibility on the direction of oil prices for the first time since Iran war. There is no longer a clear baseline scenario for the markets.
2: Very true. At this moment, when today you are listening this one, I mean that there is going to be an agreement. Tomorrow there is no agreement. So this weekend was very critical, and did not happen. Anything did not take place. So we are going to see only the southward movement, not the northward movement. Not the southward.
0: हमारे साथ श्रोता अभी भी फोन लाइन पर जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और जुड़ भी चुके हैं, लेकिन हम अहमद अली जी विशेष रूप से आपको धन्यवाद देना चाहेंगे और अन्य श्रोताओं को भी कि हम अब समय अभाव में आपके प्रश्न को नहीं ले सकते। भाग लेने के लिए आपका धन्यवाद। आइए आपको लिए चले सर्राफा बाजार। भारतीय सर्राफा बाजार में आज 24 कैरेट सोने का मूल्य 2.7% घटकर 1,47,980 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार चांदी 4% घटकर 2,23,053 रुपये प्रति किलो के स्तर पर बंद हुई। यहाँ पर हम समझना चाहेंगे आपके माध्यम से शिशिर के, सोने में और चांदी में दोनों में निवेश के लिए अभी का जो स्तर है वह कैसा दिख रहा?
2: डॉलर देखिए, डॉलर जैसे जैसे मजबूत होता जाएगा सोना कमजोर होगा। तो जो लोग निवेश करना चाहते हैं, 1.80 से हम 1.47 पे आ गए हैं, तो थोड़ा सा एक मौका बनता है सोने में आप पैसा लगा।
0: यदि दीर्घावधि में देखें तो सोने के वैश्विक
2: स्तर पर डॉलर जब भी मजबूत होगा आपका सोना कमजोर होगा।
0: यह है विशेषज्ञ की सलाह कि डॉलर मजबूत यानी सोने में नरमी, सोने की चमक फीकी होगी और आपके निवेश के लिए अवसर बन जाएगा। और आप श्रोताओं ने जिस उत्साह के साथ भाग लिया, इसलिए आपकी ओर से हम शिशिर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे।
2: जी धन्यवाद, नमस्कार।
1: And before we close, look at the headlines once again. Benchmark domestic indices decline sharply. Sensex tanks over 1,100 points. Nifty settles below 22,800. India's industrial output grows by 8% in August this year. And global crude oil prices surge around 3.5%. That's all we have time for in this edition of the program. Till we meet again, namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार के निपटान, भुगतान और संदेश प्रणालियों के एकीकरण और केंद्रीय

0: बैंक के डिजिटल मुद्राओं से संबंधित पहलों के समय पर कार्यान्वयन के लिए कदम उठाने पर सहमत हुए हैं। दोनों पक्षों ने आज मुंबई में निवेश संबंधी भारत यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के दौरान इस समझौते पर सहमति जताई। बैठक की सह अध्यक्षता वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अबूधाबी निवेश प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक शेख हामिद बिन जायद अल नाहयान ने की। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ाने के लिए ऊर्जा, उद्योग, बुनियादी ढांचा और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों की पहचान की गई है।
1: एनुअली वी हैव बीन मीटिंग रेगुलरली।
2: हम सालाना और नियमित रूप से बैठकें करते रहे हैं और दोनों पक्षों के व्यापारिक समूहों की संतुष्टि के अनुसार ठोस और महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान कर रहे हैं। आज हमने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, पोत निर्माण, आधुनिक बंदरगाहों के विकास, खाद्य सुरक्षा, विशेष रूप से खाड़ी क्षेत्र के लिए कृषि नवाचार, लॉजिस्टिक्स के विस्तार, AI और उभरती प्रौद्योगिकियों पर मिलकर काम करने, ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा फिनटेक क्षेत्र में अपने सहयोग का विस्तार करने जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को बढ़ाने पर भी चर्चा की है।
1: एक्सपेंडिंग आवर कोऑपरेशन इन द फिनटेक सेक्टर।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि मानव अंतरिक्ष उड़ान, स्टार्टअप और नए अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत फ्रांस अंतरिक्ष सहयोग ने एक नए चरण में प्रवेश किया है। डॉक्टर सिंह ने आज नई दिल्ली में फ्रांस के उच्च शिक्षा, अनुसंधान और अंतरिक्ष मंत्री फिलिप बैप्टिस्ट के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के दौरान ये बात कही। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि देश ने पश्चिम एशिया में जारी संकट और होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यवधान के बावजूद कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में आई चुनौतियों का अब तक सफलतापूर्वक सामना किया है। कोलकाता में मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में श्री पुरी ने ये बात कही। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार स्थिति पर लगातार नजर रख रही है और ये सुनिश्चित करेगी कि आपूर्ति में आए व्यवधान नियंत्रण से बाहर ना हो। सरकार ने आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा योजना पोर्टल की शुरुआत की। ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एक एकीकृत डिजिटल मंच उपलब्ध कराएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य पशुधन बीमा सेवाओं को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और सुलभ बनाना है। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि अब किसान बीमा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और पूरी प्रक्रिया की डिजिटल माध्यम से निगरानी की जाएगी। ये पोर्टल हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 11 क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने 2,000 रूपए से अधिक के UPI लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये शुल्क 15 अक्टूबर से प्रभावी होने हैं। न्यायालय ने केंद्र सरकार, रिजर्व बैंक और अन्य प्रतिवादियों से जवाब मांगा है और 4 सप्ताह के अंदर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। न्यायालय ने कहा कि यह मुद्दा कानूनी से अधिक तकनीकी है। देश में इस वर्ष अगस्त में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP द्वारा मापे गए औद्योगिक उत्पादन में वार्षिक आधार पर 8% की वृद्धि हुई। सरकार की ओर से जारी ताजा आंकड़ों से संकेत मिलता है कि औद्योगिक गतिविधियां का विस्तार स्वस्थ गति से जारी है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज भी पदक जीतने का सिलसिला जारी रखा है। निशानेबाजी, क्रिकेट, कुराश, एथलेटिक्स और मुक्केबाजी में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। भारत ने आज अपने खाते में 8 और पदक जोड़े हैं। पुरुष क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। लंबी दूरी के धावक गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ के फाइनल में व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ रजत पदक जीता। वहीं महिलाओं की 5000 मीटर फाइनल में पारुल चौधरी ने कांस्य पदक हासिल किया। भाला फेंक स्पर्धा में यशवीर सिंह ने रजत पदक देश के नाम किया। भारत के ही रोहित यादव ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 20 रजत और 21 कांस्य सहित कुल 45 पदकों के साथ 12वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani. The news read by Abhishek Mukhopadhyay. India and the UAE have agreed to take steps for the timely implementation of initiatives relating to settlement

0: देश उत्सव और गुणोत्सव जैसे प्रयासों से शुरू हुई एक सोच ने स्कूल में प्रवेश से लेकर सीखने की गुणवत्ता तक का सवाल उठाया और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, निपुण भारत, विद्या प्रवेश, कौशल विकास, विशेषज्ञता आधारित उच्च शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा में सुधार ने शिक्षा को केवल डिग्री नहीं बल्कि ज्ञान, कौशल और क्षमता से जोड़ने की दिशा तय की। इसी यात्रा में परीक्षा पे चर्चा ने परीक्षा को जीवन का अंतिम पड़ाव नहीं बल्कि सीखने की यात्रा का एक पड़ाव मानने की बात की। तो गुजरात से दिल्ली तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में बिताए 25 वर्षों में क्या कुछ बदला इस दिशा में, आकाशवाणी की इस विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा में आज का हमारा विषय है शिक्षा और कौशल, भविष्य की नींव। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान उपस्थित हैं, वरिष्ठ पत्रकार संजीव चोपड़ा और हमारे साथ जुड़ रही हैं पूर्व यूजीसी सदस्य सुषमा यादव। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद और नमस्कार।
0: संजीव जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने शाला प्रवेश उत्सव और गुणोत्सव जैसे अभिनव प्रयोग शुरू किए थे और इसका असर ये हुआ कि राज्य में ड्रॉपआउट रेट काफी कम हो गए और यहीं से जब आगे बढ़े तो निपुण भारत और विद्या प्रवेश जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों को जब हम देखते हैं तो गुजरात के उस मॉडल और आज के राष्ट्रीय विजन के बीच आप किस तरह का समायोजन या संबंध देख पा रहे हैं?
2: जैसे भारत कोशिश कर रहा है कि विकसित भारत बनने की 2047 में, तो उसके लिए सबसे बड़ी जो जरूरत है वो है उसके नागरिकों की शिक्षा। जब देश शिक्षा में निपुण होगा तभी देश आगे तरक्की कर सकता है। तो इस विषय में जैसे प्रधानमंत्री जी ने जब 25 साल पहले अपनी यात्रा गुजरात से शुरू करी थी एज चीफ मिनिस्टर, तो उन्होंने वहां स्टेट में देखा, गुजरात तब शिक्षा के स्फेयर में इतना डेवलप्ड नहीं था, तो उन्होंने देखा ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा है, सोशल डिस्पैरिटीज बहुत ज्यादा हैं। सो उन्होंने ये दो इनिशिएटिव्स, एक शाला प्रवेशोत्सव जिसमें कि एंट्री एनरोलमेंट स्टूडेंट्स की बढ़ाने के लिए ये प्रयोग किया था 2003 में। सबसे पहले जो ड्रॉप आउट रेट था 37% था गुजरात में, तो धीरे धीरे करके इससे बढ़ते हुए बहुत कंसिडरेबल ड्रॉप आउट रेट रिड्यूस हुआ। तो एक तो ये था और दूसरा था गुणोत्सव जिसमें कि इवैल्यूएशन और अकाउंटेबिलिटी बच्चों की देखी जाती है। तो इन दोनों इनिशिएटिव से उन्होंने आगे प्रयोग शुरू किया और उसको अब स्टेट लेवल, जैसे गुणोत्सव तो असम में भी अडॉप्ट हुआ और कुछ और स्टेट्स भी अब करना चाह रही हैं, और नेक्स्ट इनिशिएटिव 7th एडिशन जो है वो January 7, 2027 को होगा असम में, और गुजरात में तो चल ही रहा है। तो ऐसे इनिशिएटिव्स जो हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि एजुकेशन के फील्ड में जैसे भारत जाना जाता है अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड की वजह से, यूथ पॉपुलेशन जो यंग पॉपुलेशन है इंडिया की वो भारत में है और वर्ल्ड में पॉपुलेशन एज हो रही है, तो भारत का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब उसके जो नागरिक और यूथ हैं वो निपुण हो, शिक्षा के तरीके से स्किल्ड हो, निपुण हो, और तभी देश भी आगे तरक्की करेगा और तभी दुनिया में लीड कर सकता है भारत।
0: जी हाँ, हम अपने आकाशवाणी के श्रोताओं के लिए सरल शब्दों में बताएं तो गुणोत्सव जो योजना थी वो प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता, छात्रों के सीखने के स्तर, शिक्षकों की उपस्थिति और स्कूल के बुनियादी ढांचे का मूल्यांकन करने से जुड़ी थी। जब हम निपुण भारत की बात करते हैं तो इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि देश का प्रत्येक बच्चा प्राथमिक कक्षा के अंत तक बुनियादी साक्षरता और जो नंबर ज्ञान है उसे अवश्य हासिल कर ले। विद्या प्रवेश की जब हम बात करते हैं तो इसका मुख्य मकसद यही रहा कि पहली कक्षा में प्रवेश लेने वाले बच्चों को स्कूल के नए माहौल में ढलने और औपचारिक पढ़ाई के लिए मानसिक एवं भावनात्मक रूप से तैयार किया जा सके। विद्या प्रवेश की चर्चा को प्रोफेसर सुषमा जी अगर आगे बढ़ाएं तो जैसा कि विद्या प्रवेश के बारे में हमने बताया कि 3 महीने के प्ले बेस्ड स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल का मुख्य लक्ष्य रखा गया कि बच्चा जब स्कूल में जाए उससे पहले उसको एक भावनात्मक और शैक्षणिक माहौल प्रदान किया जाए कि स्कूल जाने के लिए वो तैयार हो सके। कुछ समय पहले तक इस तरह की सोच रखना भी सरकारी स्तर पर किसी योजना को बनाया जाए कि बच्चा पहली कक्षा में जाने से पहले तैयार हो, इसके लिए कोई योजना लाई जाए, बहुत मुश्किल काम था। लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता थी कि इस योजना को न सिर्फ शुरू किया गया बल्कि इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। सामाजिक परिवर्तन के लिहाज से और बच्चों के मानसिक विकास के लिहाज से कैसे देखती हैं इस योजना को आप?
1: भारत में विद्या प्रवेश या विद्यालय जाना बच्चों के लिए एक प्रकार से एक पनिशमेंट होती थी।

0: वो क्योंकि सीधे स्कूल में जाना घर का माहौल होता है जहां उस प्रकार की नियमबद्धता नहीं होती और बच्चा अपनी मर्जी का ऑलमोस्ट मालिक होता है, स्वामी होता है। और जब वो विद्यालय में जाता था तो बहुत सारे समय के अनुशासन की सीमाएं उस पर लग जाती थी। उस गैप को दूर करने के लिए यह एक प्रकार से मैं बहुत सुंदर प्रयास मानती हूँ जो स्कूल तैयारी मॉड्यूल बनाया गया, और ये NEP 2020 जिसको हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहते हैं, उसमें कहा गया कि लर्निंग शुड बी ए प्लेजेंट एक्सरसाइज, यानी सीखना आरंभ बच्चे का ऐसा होना चाहिए कि वो उसको एंजॉय करे, वो उसके लिए एक फन जैसी एक्सरसाइज हो। तो इस विद्या प्रवेश का यही उद्देश्य है। और आप जान सकते हैं कि बड़े शहरों में और शहरी उच्च वर्ग में प्ले स्कूल्स का कंसेप्ट आ चुका था, लेकिन वो पूरे देश के बच्चों को उपलब्ध नहीं था। तो उनको भी खेल आधारित गतिविधियों के आधार पर सीखने की प्रक्रिया आरंभ करना, औपचारिक शिक्षा आरंभ होने से पहले उनको उस माहौल में सहज रूप से ढाल लेना और वहीं से निपुण भारत की भी नींव रखना। निपुण इज वेरी इंटरेस्टिंग, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। और आपको याद होगा आयशर जैसी बहुत सारी संस्थाएं पहले ये कहती रही कि 10वीं तक बच्चा पहुंच जाता है देश के सरकारी विद्यालयों में, लेकिन ना वो पढ़ सकता है, ना वो लिख सकता है पूरी बात, और ना ही वो गणना में निपुण होता है। इसलिए वह मिशन रखा गया था और उसी की रणनीति की नींव मजबूत करने के लिए, बुनियाद मजबूत करने के लिए विद्या प्रवेश का ये एक बहुत सुंदर मॉड्यूल बनाया गया। और जिसमें ये हो सकता था, क्योंकि ये प्रारंभिक है तो हर राज्य अपनी अपनी स्थानीय भाषा और सांस्कृतिक संदर्भ के अनुसार पाठ्य सामग्री तैयार कर सकता था ताकि बच्चे को बहुत अजनबी भाव न लगे वहां पर। जैसा वो घर में अभी तक रहा उसी को थोड़ा आगे ले जाते हुए पढ़ना लिखना और गणना करना आरंभ कर दे। थोड़ा शाला प्रवेशोत्सव पर और गुणोत्सव पर भी बात करना चाहती हूँ, क्योंकि वो कन्या केलमणि महोत्सव था एक तरह से, कि कन्या किस प्रकार से विद्यालय पहुंचे भी और फिर वहां रहे भी, क्योंकि ड्रॉपआउट दर बहुत ज्यादा थी उनकी, तो इसलिए बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष बल उसके माध्यम से दिया गया था। और 3 दिवसीय अभियान, यानी जिसमें जनप्रतिनिधि भी और अधिकारी भी गांव गांव जाकर बच्चों को बाल वाटिका, आंगनवाड़ी, प्राथमिक ये खेल विद्यालय, इन सब में प्रवेश दिलाते, शिक्षण सामग्री किट वितरित करते, तो अपने आप ही एक नामांकन उत्सव जैसा बन जाता और बच्चों को भी इसमें रुचि होती और शिक्षक इसलिए सजग रहते क्योंकि इसमें जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों का विशेष ध्यान था। यही गुणोत्सव का भी एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है, क्योंकि ये माना गया कि जितने सरकारी विद्यालय हैं उनमें गुणवत्ता कम होती जा रही। तो गुजरात में 2009 में जो शुरू हुआ, बेसिकली माननीय मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जब ये मुख्यमंत्री थे तब भी, इसीलिए जाने जाते हैं कि इन्होंने जिस भी क्षेत्र पर ध्यान दिया वहां गुणवत्ता और जवाबदेही, उत्तरदायित्व निश्चित करने पर बल दिया, और विद्यालयी शिक्षा में इन तीनों के माध्यम से ड्रॉपआउट कम करने की बात और शिक्षा और शिक्षण और शिक्षार्थियों की गुणवत्ता बढ़ाने की बात कही गई।
1: चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और संजीव जी कुछ और योजनाओं पर चर्चा करते हैं। गुजरात से शुरुआत हुई डोमेन स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज की। हम अपने श्रोताओं के लिए बता दें कि किसी विशेष स्पेसिफिक विषय को लेकर शुरू की गई यूनिवर्सिटी को डोमेन स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज कहते हैं, जैसे राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी या ऊर्जा अनुसंधान संस्थान। इस तरह के विश्वविद्यालय आज राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। सवाल आपसे ये है संजीव जी, कि जो पारंपरिक विश्वविद्यालय हुआ करते थे जहां हम देखते हैं कि आर्ट्स की भी पढ़ाई हो रही है, कॉमर्स भी पढ़ाए जा रहे हैं, विज्ञान के विषय भी पढ़ाए जा रहे हैं, उनसे अलग 21वीं सदी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जो डोमेन स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज शुरू हुए, आज के दौर में भारतीय युवाओं के लिए कितने कारगर हैं और 21वीं सदी की चुनौती के लिए वो कैसे तैयार कर रहे हैं?
2: जी, जैसे आपको पता होगा कि पहले यूनिवर्सिटीज में जनरली सब हर फील्ड में एजुकेशन दी जाती है, मास्टर्स आप अचीव करते हो, उसके बाद PhD उसी फील्ड में लेते हो, लेकिन प्रोफेशनल कोर्सेज में जैसे इंजीनियरिंग होता था तो इंजीनियरिंग भी एक ही डिफरेंट सब्जेक्ट्स एक ही इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाए जाते हैं, लेकिन जैसे लॉ फॉर एग्जाम्पल, लॉ का यूनिवर्सिटी का 2 ईयर कोर्स होता था, तो आहिस्ता आहिस्ता इसको 5 ईयर्स कोर्स स्पेसिफिक कर दिया कि बच्चे को 12वीं के बाद ही एकदम एडमिशन वहां चले जाएं उस यूनिवर्सिटी में और उसी फील्ड में स्पेशलाइजेशन दें। तो लॉ के 5 ईयर कोर्सेज बने, 3 ईयर कोर्सेज भी बने।

0: 5 ईयर कोर्सेज भी हैं कई। ये जरूरी था कि डोमेन स्पेसिफिक, जैसे फिर आपको बताऊं कि प्राइवेट सेक्टर भी इसमें एंटर कर चुका है, लॉ स्कूल्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में बने ही हैं, लेकिन यूनिवर्सिटीज भी डिफरेंट, फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम और एनर्जी की एक यूनिवर्सिटी देहरादून में बनी, वो प्राइवेट सेक्टर में थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वहां एक लॉ स्कूल भी बना प्राइवेट सेक्टर में, वही 5 ईयर स्कूल
1: जी।
0: वहां बच्चे खूब जाने लगे एंड उनकी इनटेक इन द इंडस्ट्री भी बढ़ गई, बिकॉज वो उसी स्पेसिफिक फील्ड में जा रहे थे। जैसे कई यूनिवर्सिटीज में, मैं आपको बताऊं, उसको बहुत सीरियसली नहीं लेते, जैसे इंटरनेशनली फोरेंसिक साइंस है
1: जी,
0: या एस्ट्रोनॉमी की फील्ड, तो नासा वगैरह में भी यहाँ के स्टूडेंट्स कई गए हैं जो यहाँ से यूनिवर्सिटीज में पढ़ के, हालांकि एस्ट्रोनॉमी के लिए स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी नहीं है, लेकिन कई यूनिवर्सिटीज में एस्ट्रोनॉमी की मास्टर्स कराई जाती है। तो सिमिलरली फोरेंसिक साइंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्राइम की फील्ड में और कई फील्ड्स में, एनर्जी और पेट्रोलियम मैंने आपको बताया, स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन मैंने आपको बताया, जैसे भारत बहुत आगे बढ़ रहा है स्पोर्ट्स की फील्ड में, जैसे एस्पिरेशनल इंडिया आगे चल रहा है, हर फील्ड में तरक्की हो रही है। सिमिलरली डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी की यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक बन रही हैं, एग्रीकल्चर के बारे में बनी, और जैसे लॉ के बारे में मैंने आपको बताया, और इनकी एडमिशंस भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन जो होता है CUET उसके थ्रू होती है। इसमें क्या है कि इंडस्ट्री की डिमांड, जब बच्चा ज्यादा टाइम एक ही फील्ड में लगाता है तो इंडस्ट्री की डिमांड उसको समझ में आती है, और इंडस्ट्री को भी समझ में आता है कि ये बच्चा हमारे फील्ड की मास्टरी कर चुका है और इसको इनटेक लेना है। सो एक तो उससे मास्टरी होती है उस सब्जेक्ट में, दूसरी इंटरनेशनली भी प्रिपेयर होता है बच्चा, और तीसरा उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज इंप्रूव होती हैं बहुत ज्यादा।
1: सुषमा जी, अगर इसी चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाएं तो पारंपरिक उच्च शिक्षा में अक्सर जो शिक्षण संस्थान और उद्योग के बीच की दूरी की बात होती रही है, और हमने देखा कि इस कारण कई बार ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी जो युवक हैं या जो छात्र हैं वो रोजगार से वंचित रह जाते थे। गति शक्ति विश्वविद्यालय या नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जैसे डोमेन स्पेसिफिक मॉडल आपके अनुसार इस खाई को कैसे पाट रहे हैं, इस अंतर को कैसे खत्म कर रहे हैं?
2: जी, संजीव जी की बात को आगे बढ़ाते हुए, ये विश्वविद्यालय तो है ही, जैसे अगर राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय तो अपनी तरह का एक विश्वविद्यालय ही है, और उसने बाकियों से MOUs किए हैं, और फोरेंसिक टेस्ट के लिए हमारे यहाँ इतना लंबे समय अभी तक लगता था, वेटिंग पीरियड बहुत ज्यादा था, अब इस विश्वविद्यालय ने उसको संभालना और अपने कैंपसेस के माध्यम से कुछ और एक्सपर्ट्स भी हमें प्रोवाइड किए हैं। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय जो है पहले रक्षा शक्ति माना जाता था, देयर वॉज नो यूनिवर्सिटी इन इंडिया विच वुड स्पेशली टैकल दिस एक्सेप्ट NDA, तो वह भी अब कुछ विशेषज्ञ तैयार कर रही है। लेकिन इसके साथ साथ आरंभ तो गुजरात से हुआ, लेकिन कौशल विश्वविद्यालय भी देश के बहुत सारे प्रांतों में खोले गए हैं जो स्पेसिफिकली स्किल इम्पार्टिंग यूनिवर्सिटीज हैं, पहले नहीं थे। चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी खोली गई है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज खोली गई है, विमेन यूनिवर्सिटीज खोली गई है, और इनकी संख्या जो बड़ी है, केवल इतना ही नहीं, उसी बात को जो आपने मुझसे अभी पूछा है
1: जी,
2: उसको ही पाटने के लिए मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि UGC से संबद्ध रही हूँ। 2014 में यदि इस देश में 723 यूनिवर्सिटीज थी, अब जाकर के लगभग 1400, डबल ऑफ दी नंबर, 1400 से अधिक विश्वविद्यालय खोल दिए गए हैं। इसका मतलब है एनरोलमेंट अधिक हो रहा है, विशेषज्ञता भी बढ़ रही है, और टीचर एजुकेशन यूनिवर्सिटीज भी खुली हैं जो पहले कहीं नहीं थी। एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी खुली है, उद्यमिता विश्वविद्यालय, यानी ये जो स्किल बेस्ड एरियाज थे, डोमेन्स थे, वहां पर विशेषज्ञ उत्पन्न करने के लिए, तैयार करने के लिए ऐसे विश्वविद्यालय खोले गए हैं। एक तरफ राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है हम मेरू मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज भी खोल रहे हैं जो थी पहले भी, लेकिन दूसरी तरफ जो विशेष विशेष क्षेत्र पहचाने गए जहां जहां विशेषज्ञता की आवश्यकता थी वो यूनिवर्सिटीज खुली हैं। कॉलेजेस को भी ऑटोनोमस बनाने का प्रयास किया गया है, और जब मैं UGC में थी तो मैं बता सकती हूँ कि बहुत सारे विश्वविद्यालयों को हमने इनकरेज किया कि वो ऑटोनोमी के लिए आगे आए, बिकॉज इस देश में कुछ कुछ कॉलेजेस तो इतने बड़े थे, दे कुड बीट एनी यूनिवर्सिटी और दे कुड कंपेयर विद द बेस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज, तो उनको ऑटोनॉमी देने की बात, ताकि शिक्षा का विस्तार हो। जहां 38,000 के करीब कॉलेजेस थे 2014 में, वो अब 55,000 के लगभग हो गए हैं, उसका विस्तार भी आप समझ सकते हैं। इनके अपने तरीके भी हैं, एडमिशंस क्लैट के माध्यम से लॉ यूनिवर्सिटीज में होता है, पहले केवल लॉ कॉलेजेस होते थे, अब लगभग हर प्रांत में एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, तो जो लॉ ग्रेजुएट्स को तैयार कर रही है या एक्सपर्ट्स को तैयार कर रही है। और जो एक हमारे यहाँ गैप जिसकी आपने बात की कि मैं बीए हूँ, मैं एमए हूँ, मैं पीएच

0: भी हूं, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं या क्या कर सकती हूं, ये माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार उद्धरण देते हैं, तो बच्चा कोई जवाब नहीं दे पाता विश्वविद्यालयों के माध्यम से। अब जब बच्चा निकलता है तो उसके पास कोई ना कोई निपुणता, कोई ना कोई कौशल, कोई ना कोई विशेषज्ञता अवश्य होती है, और इस प्रकार ये रोजगार से जोड़ने का माध्यम है। दूसरी बात जो आपने पूछी है, इंडस्ट्री, अब लगभग हर विश्वविद्यालय को ये निर्देश दिया गया है शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से भी और यूजीसी के माध्यम से भी, कि वे तीसरे वर्ष में, हो सके तो सेकंड से ही शुरू कर लें, इंटर्नशिप करें, इंडस्ट्री से बात करें, आसपास जो भी इंडस्ट्री हो उनको कांटेक्ट भी करें, उनको किस प्रकार की आवश्यकता है, एक तो बच्चों को वहां इंटर्नशिप के लिए भेजें, इंडस्ट्रीज के एक्सपर्ट्स को, उन इंडस्ट्रीज के जो ओनर्स हैं उनको विश्वविद्यालयों के स्टडी बोर्ड्स में या उनके मैनेजमेंट बोर्ड्स में, एकेडमिक काउंसिल में, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में स्थान दें, ताकि रोजगार और शिक्षा के बीच का, कौशल और विद्या के बीच का जो अंतर अभी तक था वह अंतर समाप्त हो सके। यह प्रयास विशेष तौर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बाद से किया जा रहा है, और इसमें बहुविषयक
1: जी
0: और लचीली शिक्षा हमने इसमें जोड़ी है उसके साथ ही, और कौशल कक्षा 6 से ही आरंभ हो जाए, और IITs का नंबर बढ़ाया गया है, IIMs का नंबर बढ़ाया गया है, NITs बहुत सारी खोली गई हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस बहुत सारे खोले गए हैं, आईसर्स बनाए गए हैं जो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का एक प्रकार से समानांतर बन सके, ताकि बच्चों को सच में ही, जो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ समय पहले कहा था कि आप
1: जी
0: सपना देखें हम आपको उड़ान का अवसर देंगे, तो ये विश्वविद्यालय वस्तुतः उन सपनों को सत्य करने के लिए और युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने के लिए सच में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। कॉलेजेस में और विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर के रूप में, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के रूप में आ सकते हैं और बच्चों को अपनी विशेषज्ञता से लाभान्वित कर सकते हैं। ये बिल्कुल नई बात लगभग पिछले 3 वर्षों से भारत की उच्च शिक्षा में आई है।
1: और इन सब का उद्देश्य यही है कि जो बच्चे जिस विषय की पढ़ाई कर रहे हैं वो थियरी के साथ साथ इंडस्ट्री में क्या कुछ घट रहा है उसको भी करीब से जान सकें, समझ सकें, ताकि जब वो इंडस्ट्री में प्रवेश करें तो वो उन चीजों के लिए नए नहीं रहें। संजीव जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहले अगर पढ़ाई बीच में छूट जाए तो साल बर्बाद हो जाता था, लेकिन जब से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है और उसमें बीच में पढ़ाई छोड़ने पर क्रेडिट्स सुरक्षित रखने वाला एबीसी सिस्टम हो या फिर मातृभाषा में पढ़ाई, कागजों पर तो ये बहुत बड़े नियम लगते हैं और लगता है कि बहुत बड़ा बदलाव हो गया, लेकिन बतौर पत्रकार ग्राउंड जीरो में क्या बदला है इससे?
2: ग्राउंड जीरो पे बदलाव तो आया है। आप अगर देखेंगे तो भारत का फोकस जो था पहले, अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पहले आई 1986 में, उसमें कुछ बदलाव हुआ 1992 में, लेकिन तब से लेके उसके बाद नेक्स्ट पॉलिसी आई, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने पॉलिसी ही नहीं लेके आए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई 2020 में, मतलब ऑलमोस्ट 3 दशक बाद। तो अब ये जरूरी भी थी बिकॉज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इंडिया ने हस्ताक्षर किया था 2015 में, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उसके मुताबिक लानी थी टू इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल बाई 2030। सो उसमें बदलाव तो काफी आया है, लेकिन अगर आप एंशियंट इंडिया में देखें, हमारा ज्ञान पहले 3 चीजों पे आधारित था, ज्ञान जो नॉलेज, विजडम प्रज्ञा और ट्रूथ सत्य को अचीव करने के लिए।
1: जी।
2: सो आप देखेंगे कि हमारे एंशियंट भारत में तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटी, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी बहुत हाई स्टैंडर्ड्स की यूनिवर्सिटीज थी, जो उन एंशियंट इंडिया में पुरानी शताब्दियों में भी लोग चाइना से और यूरोप से और कहां कहां से लोग पढ़ने आते थे वहां, और इन हाउस फैसिलिटी थी वहां स्टूडेंट्स के रहने की, 4-4, 5-5 हज़ार बच्चा वहां पढ़ता था। तो भारत ने कहीं ना कहीं बीच में जब इन्वेड हुआ, पहले मुगल से फिर ब्रिटिश से, समहाउ ये अपनी एज लूज कर दी। उसके बाद भारत ने दोबारा फोकस किया है, अब दोबारा अपने आप को, क्योंकि डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो भारत के पक्ष में है और यंग कंट्री इंडिया माना जा रहा है और स्किलिंग को बढ़ावा देते हुए हर युवा को स्किल से एम्पावर करने से उसको सक्षम बनाएं कि वो वर्ल्ड में टेक ओवर कर सके। सो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो अब की है, ये बहुत वास्ट डॉक्यूमेंट था जो प्रिपेयर किया। इसमें हायर एजुकेशन में बहुत रिफॉर्म्स आए, इसमें लोअर एजुकेशन में रिफॉर्म्स आए, जैसे हमने पहले इनिशिएटिव

0: डिस्कस किए कि कैसे बच्चे को बचपन से ही प्ले स्कूल से ही उसको रुझान उसका ताकि स्कूल जाने का हो, ड्रॉप आउट ना हो, ये सब इंश्योर की। और प्लस क्वालिटी हायर एजुकेशन, जैसे हायर एजुकेशन में आप देखेंगे कि पहले बहुत ज्यादा किसी लेवल तक करप्शन भी थी, और आज भी जो बच्चा कभी विचलित हो जाते हैं कभी, लेकिन रिफॉर्म्स के माध्यम से, जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया थी पहले, उसको रिप्लेस करके नेशनल मेडिकल कमीशन लेके आए, एंट्रेंस से एग्जाम होता है, अभी और रिफॉर्म्स प्रोसेस में हैं, और रिफॉर्म्स कस्तूरी रंजन कमेटी बैठी है, और इसके ऊपर हाई पावर्ड कमेटी एक और रिफॉर्म्स को आगे लेके जा रही है। सो ये बहुत जरूरी है कि रिफॉर्म्स इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, और इसमें जो टार्डिनेस है, जो करप्शन है, जो चीजें एम्बेड कर जाती हैं हमारे सिस्टम में, उसको रिमूव करने के लिए कंटिन्यूअसली रिफॉर्म की प्रोसेस जरूरी है। शिक्षा ही भारत को आगे ले जा सकती है। जब हर इंडियन जब निपुण होगा शिक्षा में, तभी भारत आगे विकसित बन सकता है।
1: सुषमा जी, अभी संजीव जी ने एक अपने सवाल के जवाब में जो बताया एनएमसी के बारे में, हम उसी पर चर्चा करते हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन, एनएमसी के आने के बाद देश में मेडिकल सीटों को लेकर एक बड़ा बदलाव आया है। एमबीबीएस और पीजी दोनों की सीटें लगभग दोगुनी हो गई हैं। डॉक्टरी की पढ़ाई के इस तरह आसान और सुलभ होने से हमारे देश के युवाओं के लिए और गांव शहरों की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए इसके क्या मायने हैं, और पिछले दो दशकों में इसमें जो परिवर्तन हुए हैं वो भावी भारत के निर्माण में कितनी अहम भूमिका निभा सकते हैं?
2: अगर विकसित भारत की बात करें और भावी भारत की बात करें, तो शिक्षा और स्वास्थ्य वो दो मजबूत पिलर्स होते हैं जिनके आधार पर किसी भी विकसित राष्ट्र की नींव रखी जाती है। तो शिक्षा के क्षेत्र में हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत परिवर्तन किए हैं, जो अर्ली चाइल्डहुड केयर से लेके, जिसकी बात अभी हमने की, शिक्षा के लिए विद्यालय से पहले ही खेल खेल में तैयार किया जाए, से विशेषज्ञ डोमेन स्पेसिफिक विश्वविद्यालय खोले गए हैं, वह एक बात है। लेकिन रेगुलेशन भारत में एक समस्या थी, और ये माना जाता था या ये घटित हो गया था कि जो भी नियंत्रक नियामक आयोग हैं या परिषदें हैं, वह अपने आप में भ्रष्ट निकाय बन गए थे, क्योंकि पारदर्शिता नहीं थी। इसलिए एक तरफ अभी हेकी जो जल्दी ही आएगा, यूजीसी का स्थान लेगा और बहुत सारी परिषदों का स्थान लेगा, लेकिन 2020 में ही भारतीय चिकित्सा परिषद के स्थान पर भारतीय चिकित्सा आयोग या राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग लाया गया, क्योंकि मेडिकल एजुकेशन में इतना ज्यादा रेगुलेशन था, जैसे लॉ एजुकेशन में भी है लगभग। तो यहाँ संरचनात्मक सुधार तो ये हुआ कि 4 स्वायत्त बोर्ड बना दिए, अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड, मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड, एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मेडिकल एजुकेशन, क्योंकि एथिक्स भी उस रिसर्च के लिए भी आवश्यक है और शिक्षा के लिए भी आवश्यक है। और इसके साथ साथ शिक्षक संकाय से की योग्यता से जुड़े हुए जो नियम थे उनको भी अपडेट किया गया है, और वहीं से जो सुधार आरंभ हुए, तो मेडिकल कॉलेजेस में सीटों की पारदर्शी विधि प्रक्रिया, यानी आप नीट के माध्यम से एकीकृत हो गए, साथ ही साथ पारदर्शी प्रवेश व्यवस्था हो गई, क्योंकि आपको पता है आपका कौन सा स्थान है, आपने कहाँ अप्लाई किया है, एंड एवरी इंस्टीट्यूशन इज सपोज टू पुट इट ऑन देयर बोर्ड, पुट इट ऑन देयर वेबसाइट। तो यह भविष्य के लिए इसलिए बहुत सुंदर है कि भारत का बच्चा कहीं यूक्रेन भागता था, कहीं चीन भागता था, कहीं और किसी विदेश में भागता था, क्योंकि यहाँ मेडिकल सीट्स उसके लिए उपलब्ध नहीं थी। तो मेडिकल सीटों का बढ़ना दो प्रकार से उत्तम है। एक, जो बच्चा यहाँ चिकित्सा शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, चाहती है, उसको यही अवसर उपलब्ध हो रहे हैं, और जो भारत के विभिन्न चिकित्सालयों में चिकित्सा विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं है या टीचर, मेडिकल टीचर्स उपलब्ध नहीं थे, वह भी अब उपलब्ध होंगे।
1: भारत की डेमोग्राफिक डिविडेंड का पूरा लाभ उठाने के लिए स्किल इंडिया, जिसे हम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कहते हैं, PMKVY 4.0 की शुरुआत हुई है इस देश में, और उसके तहत हम देख रहे हैं कि आज के समय की जरूरत के अनुसार AI, रोबोटिक्स और 3D प्रिंटिंग जैसी फ्यूचरिस्टिक स्किल्स में युवाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। स्किल और रोजगार के क्षेत्र में जो परिवर्तन आया है, और जब से ये योजना शुरू हुई है करोड़ों युवाओं को इससे प्रशिक्षित किया जा चुका है। और सुषमा जी ने भी थोड़ी देर पहले कहा था कि कौशल से जुड़े विश्वविद्यालय भी चल रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं, युवाओं में उनको स्किल्ड बनाने में उनको खुद का व्यवसाय शुरू करने में, नौकरी खोजने की बजाय नौकरी देने में इसकी कितनी बड़ी भूमिका आप देख रहे हैं?
0: जी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि भारत को विकसित बनाने के लिए शिक्षा का बहुत महत्व है, और शिक्षा का महत्व ये है कि अगर जब तक उसके हर सिटीजन ट्रूली ग्लोबल सिटीजन ना बने, कि शिक्षा यहाँ ग्रहण करे और हर जगह उसकी वैल्यू हो। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसका विजन भी यही था कि एक तो अपनी मदर टंग में शिक्षा प्रदान करनी, उस पे फोकस था, दूसरा इंडियन इथॉस में रूटेड हो हमारा एजुकेशन, और तीसरा हर सिटीजन को एक ट्रूली ग्लोबल सिटीजन बनाना। तो स्किलिंग बहुत जरूरी एस्पेक्ट था, क्योंकि डेमोग्राफिक डिविडेंड आपने बात करी, भारत का एक एडवांटेज है, बहुत मेजर एडवांटेज है, और जब तक उसके युवा शिक्षित नहीं होंगे, स्किल्ड नहीं होंगे कि वर्ल्ड पावर के साथ जो बाकी देशों के युवा हैं उनके साथ कंपीट करने के लिए, जब ट्रूली ग्लोबल नहीं होंगे तो वो कंपीट नहीं कर सकते। तो इसलिए स्किल यूनिवर्सिटीज, अगर आपको याद हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने 2014 में, तो सबसे पहले उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री में एक स्किल डिपार्टमेंट, एक स्पेशल अलग बनाया, जिसमें युवाओं को स्किल करने के लिए, जैसे पहले हमारे हायर लेवल पे IITs होती थी स्किल करने के लिए, IIMs थे, लोअर लेवल पे ITIs वगैरह थी और पॉलिटेक्निक्स थे। तो उसके अलावा अब स्किल यूनिवर्सिटीज भी बन रही हैं, और जैसे एम्स की बात करी कि वो हेल्थ एजुकेशन में, अब एम ये है कि हर स्टेट के पास एक एम जरूर हो, एक एटलीस्ट हो, 12 या 14 निर्माण हो चुके हैं एम्स एक से शुरू करके, सिमिलरली हर स्टेट के पास होगा। सो स्किल यूनिवर्सिटीज में भी इस स्पेसिफिक फील्ड्स में, जैसे हायर एजुकेशन की हमने बात करी, तो स्किल प्रदान करने के लिए युवाओं को इवन पॉलिटेक्निक्स और ITIs जो थे उनको भी अपग्रेड किया जा रहा है अब। तो बहुत सारा फोकस जो है वो स्किलिंग पे लग रहा है, और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एजुकेशन इज कंटिन्यूअसली वर्किंग इवन विद द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया जा रहा है, इंडस्ट्री को इन्वॉल्व किया जा रहा है, सो दैट द यूथ बिकम एम्पावर्ड विद ग्लोबल स्किलिंग स्किल्स।
1: सुषमा जी, एक सवाल परीक्षा पे चर्चा से जुड़ा भी। परीक्षा की जब भी हम बात करते हैं, परीक्षा की चर्चा करते हैं, तो दो दशक पहले के भारत में जब मैं विद्यार्थी था तो घर का माहौल ऐसा हो जाता था कि पता नहीं घर में क्या हो गया है। टीवी ऑन होना बंद हो जाते थे, अगर कोई मेहमान आने वाले हैं तो बता दिया जाता था कि अभी परीक्षा चल रही है बच्चों की, आप थोड़े समय बाद आइए। घर में शोर शराबा नहीं होता था। लेकिन उसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा जैसे कार्यक्रम की शुरुआत की, खुद बच्चों से बात करते थे, खुद उनके अभिभावकों को बताते थे, और कुल मिलाकर एक माहौल तैयार किया गया कि परीक्षा डर का मामला नहीं है, इसे आप एक त्योहार की तरह देखिए, एक उत्सव की तरह देखिए, अगर उसमें आप नाकाम हो भी जाते हैं तो सुसाइड करने की जरूरत नहीं है, डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है, जीवन में बहुत सारे अवसर हैं। इस बदलाव से बच्चों के मेंटल हेल्थ और कॉन्फिडेंस में बहुत परिवर्तन आया, अभिभावकों को भी बातें समझ में आई। कैसे देखते हैं बच्चों के मनोविज्ञान के नजरिए से, उनके विकास के नजरिए से और सामाजिक परिवर्तन के नजरिए से कितना बड़ा बदलाव आप मानती हैं परीक्षा पे चर्चा को?
2: जी, सबसे पहले तो इसकी जो खूबसूरती है या सौंदर्य है वो ये है, प्रधानमंत्री स्वयं बच्चों से बात करें, ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है कि विद्यार्थियों को राष्ट्र के प्रधानमंत्री से बात करने का, संवाद करने का अवसर मिल रहा है। तो राष्ट्र के शीर्ष नेतृत्व के साथ वो बात करते हैं, सीधा संवाद करते हैं, विद्यार्थी करते हैं, शिक्षक करते हैं, अभिभावक करते हैं, और इसको एग्जाम वॉरियर्स अभियान भी उन्होंने आरंभ में चलाया। ये मुझे लगता है बहुत ही समीचीन था और सामयिक भी था, क्योंकि एक समय ऐसा आया, बिल्कुल सही है, मैं भी उसी समय की उपज हूँ, जब आपने कहा टेलीविजन भी बंद, घर में मेहमानों का आना भी बंद, कमरा भी बंद, और बच्चे के लिए जैसे सजा हो उसे एक एग्जाम के लिए तैयारी करनी है और अधिक से अधिक मार्क्स लेने, उसमें अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने हैं, और एक एग्जाम ना हुआ ऐसा लगता था जैसे जीवन वहीं रुक गया है, और वहीं रुककर उसको सफलता ही हासिल करनी है, उसके बाद उसका दरवाजा खुलेगा। उसमें बहुत बड़ा बदलाव माननीय प्रधानमंत्री जी के संवाद से आया है, और इसे आप इस रूप में भी देख सकते हैं कि 3 करोड़ से अधिक पंजीकरण अब तक, नौवां संस्करण 2026 में हुआ था उसमें इतने पंजीकरण हुए, और सहभागिता भी बहुत बड़ी है,
3: क्योंकि कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थी इसमें भाग ले सकते हैं, अलग अलग श्रेणियों में पंजीकरण कराते हैं, और उद्देश्य भी यह है परीक्षा के तनाव को कम करना। यहाँ मैं विशेष तौर पर एक आंकड़ा लेना चाहती हूँ कि हमारे देश के यदि विद्यालयों के आंकड़े हम लें तो विद्यार्थी माध्यमिक स्तर तक तो एनरोलमेंट 88.5% है, लेकिन 9वीं से 12वीं तक ये घटकर 56.4 56.4% हो जाता है। मुझे लगता है कि इनको भी एड्रेस करना अवश्य ही माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य रहा होगा, ताकि जीवन के प्रति, परीक्षा के प्रति, अंकों के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हो और तनाव कम हो तो व्यक्ति अपने आप अवसर देख

0: लगता है,
1: जी
0: खोजने नहीं पड़ते पर उसको अर्थ कर सकेंगे।
1: संजीव जी, आखिर में परीक्षा पे चर्चा का एक और महत्वपूर्ण पहलू रहा स्ट्रेस को कम करना, और कहीं ना कहीं उससे जो परिणाम हमें देखने को मिले वो बहुत शानदार रहे। संक्षेप में, कार्यक्रम में समय कम है, क्या बताएंगे आप?
2: जी, ये जो परीक्षा पे चर्चा जो प्रधानमंत्री जी ने 2018 में इनिशिएटिव शुरू किया, इसका पर्पस मेनली यही था कि हाउ टू अप्रोच एग्जाम्स इन अ स्ट्रेस फ्री एंड इजी मैनर। सो सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री ने इंटरेक्शन स्टूडेंट के साथ, टीचर्स के साथ और पेरेंट के साथ, मैं आपको बता दूं कि टोटल इस इनिशिएटिव के साथ अभी तक टोटल 4.5 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी, यू नो, स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स जुड़ चुके हैं। 4.2 करोड़ तो स्टूडेंट्स ही हैं, 25 लाख टीचर्स हैं, 6 लाख पेरेंट्स हैं, और पहला संस्करण इसका 16 फरवरी 2018 को हुआ। उसके बाद प्रधानमंत्री ने इसमें काफी पहलू उठाए। फॉर एग्जाम्पल, 1 2024 में उन्होंने इस पे बहुत इंपॉर्टेंटली बच्चों को ये भी बताया कि अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए रीलें देखने में, और हैव एनफ स्लीप, नींद बहुत जरूरी है ताकि अगले दिन फ्रेश होके अपना एग्जाम दे सकें। उन्होंने पहले एक बारी पबजी का भी, जो
1: जी
2: बहुत क्रेज की तरह बच्चों में फैल चुका था, बाद में तो गेम बैन हो गई, लेकिन पबजी के बारे में भी मेंशन किया कि वो बच्चे नहीं उसमें करें। सो ये जो इनिशिएटिव था, बेसिकली बहुत स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेटिव भी है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी उसके साथ अपने अनुभव भी उसके साथ जोड़ देते हैं।
1: तो श्रोताओं, शाला प्रवेश उत्सव से शुरू हुई प्राथमिक शिक्षा की एक छोटी सी चिंगारी आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, निपुण भारत और गतिशक्ति विश्वविद्यालय जैसे वट वृक्ष का रूप ले चुकी है। गुजरात के दूर दराज के गांव में ड्रॉप आउट रेट कम करने के लिए एक संकल्प से लेकर आज 145 करोड़ भारतीयों के विकसित भारत 2047 के सपने तक, ये यात्रा सिर्फ योजनाओं की नहीं बल्कि सोच के परिवर्तन की यात्रा है। जब देश का शीर्ष नेतृत्व शिक्षा को केवल कागजी डिग्रियों तक सीमित न मानकर हर बच्चे के आत्मविश्वास, उसके मानसिक स्वास्थ्य, उसकी मातृभाषा और उसकी कुशलता से जोड़ता है, तब जन सेवा की यही भावना वास्तव में एक स्वर्णिम देश सेवा का रूप ले लेती है। चर्चा में शामिल होने के लिए संजीव जी आपका और सुषमा जी आपका बहुत बहुत आभार।
2: जी, बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 12वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा, शिक्षा और कौशल, भविष्य की नींव। इसमें भाग ले रहे थे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की पूर्व सदस्य प्रोफेसर सुषमा यादव और वरिष्ठ पत्रकार संजीव चोपड़ा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप NewsOnAIR और YouTube चैनल NewsOnAIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।

0: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
1: ओह लवली, वेल डन।
0: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
2: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
3: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
2: नो, लोन लिए गए काम में लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
3: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
1: आप कौन?
4: आरबीआई कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं वैष्णवी। मुख्य समाचार। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत नोटिस पाने वाले मतदाताओं से बूथ स्तर के अधिकारी उनके घरों से दस्तावेज एकत्र करेंगे। मतदाता

0: सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत कल से दिल्ली के कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। दिल्ली में वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपायों की समीक्षा, तोड़फोड़ और निर्माण कार्यों पर 1 नवंबर से 31 जनवरी तक प्रतिबंध। सरकार ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत दिल्ली उद्योग मित्र पोर्टल का शुभारंभ किया। और दिल्ली सरकार और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के बीच सांस्कृतिक शैक्षणिक सहयोग पर समझौता। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत जिन मतदाताओं को विसंगतियों के संबंध में नोटिस जारी किए गए हैं, बूथ स्तर के अधिकारी उनके घरों से दस्तावेज एकत्र करेंगे। एक आधिकारिक बयान के अनुसार इस कदम का उद्देश्य मतदाताओं के लिए सुनवाई प्रक्रिया को आसान बनाना तथा उनके निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों और सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों के कार्यालयों में जाने की जरूरत कम करना है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत कल से दिल्ली के कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने विद्यार्थियों से इन शिविरों का लाभ उठाकर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने की अपील की है। ये शिविर बुधवार तक चलेंगे। मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय के अनुसार दावे और आपत्तियां 30 अक्टूबर तक दाखिल की जा सकती है। दावों और आपत्तियों पर नोटिस और उनके निपटारे की प्रक्रिया 30 नवंबर तक जारी रहेगी। अंतिम मतदाता सूची अब 4 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के उपायों की समीक्षा की गई। बैठक में श्री यादव ने दिल्ली के 37 चिन्हित प्रदूषण स्थलों पर 10 अक्टूबर तक जनभागीदारी कार्यक्रम आयोजित करने और संबंधित पक्षों को शामिल करने पर बल दिया। दिल्ली सरकार ने 1 नवंबर से 31 जनवरी तक तोड़फोड़ और निर्माण कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की भी घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने शमशान घाटों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए तकनीकी उपाय तलाशने और विद्युत शवदाह गृहों के बारे में लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। कार्य योजना के अंतर्गत दिल्ली के 500 पेट्रोल पंप पर PUC प्रमाण पत्र नहीं तो ईंधन नहीं व्यवस्था लागू की जाएगी, जहां स्वचालित नंबर प्लेट पहचान प्रणाली उपलब्ध है। धूल प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सड़कों के पुनर्विकास और फुटपाथ निर्माण का काम तेज किया जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 और परिवर्तन योजना को बढ़ावा देने के लिए पंजीकरण अभियान और जन भागीदारी शिविर आयोजित किए जाएंगे। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए प्रशांत कुमार।
0: नगर निगम ने अनधिकृत निर्माण तथा दिल्ली के मास्टर प्लान और भवन उपनियमों के उल्लंघन के खिलाफ जारी प्रवर्तन अभियान के अंतर्गत 29 ध्वस्तीकरण कार्रवाई की। इसके साथ ही 10 संपत्तियों को सील किया गया और 7 ध्वस्तीकरण आदेश जारी किए गए। नगर निगम ने फील्ड अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे कड़ी निगरानी बनाए रखें और दिल्ली मास्टर प्लान, भवन उपनियमों तथा अन्य संबंधित नियमों के लागू प्रावधानों के अनुसार उल्लंघनों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करें। नगर निगम ने कहा कि ये प्रवर्तन अभियान राजधानी के सभी 12 जोनों में जारी रहेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत दिल्ली उद्योग मित्र पोर्टल का शुभारंभ किया। ये पोर्टल दिल्ली में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के इकोसिस्टम को मजबूत करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसके माध्यम से उद्यमियों, व्यापारियों, MSME, स्टार्टअप्स, औद्योगिक इकाइयां और निवेशकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं और अनुमतियों तक एक ही डिजिटल इंटरफेस के माध्यम से आसान पहुंच मिलेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार आगे भी पोर्टल में और अधिक सेवाओं को जोड़ने, प्रक्रियाओं को सरल बनाने और डिजिटल प्रवर्तन को मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य करेगी। दिल्ली के उद्योग मंत्री मंजेंद्र सिंह सिरसा ने कहा कि अभी तक 15 विभागों को पोर्टल से जोड़ा जा चुका है।
3: सभी दिल्ली डिपार्टमेंट्स को अब तक हमने 15 डिपार्टमेंट्स ऑन बोर्ड ले लिए हैं, 50 से ज्यादा सर्विसेज कर दी हैं। अगले महीने तक 100 से ज्यादा सर्विसेज और 21 डिपार्टमेंट जो हैं वो इसके ऊपर ले लिए जाएंगे।
0: सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वडनगर से वाराणसी तक जा रही बाइक यात्रा आज दिल्ली बॉर्डर पहुंची। इस अवसर पर यात्रियों का स्वागत करते हुए दिल्ली के कला और संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि ये यात्रा मार्ग में निरंतर सामाजिक कार्यों को बढ़ावा दे रही है।
4: इस यात्रा का सबसे शानदार पक्ष ये है कि सेवा संकल्प अभियान के तहत यात्रा निकली है और जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ सेवा के कार्यों को कर रहे हैं। अब दिल्ली में भी आते ही यहाँ से सीधा वृक्षारोपण के कार्यक्रम के लिए गए हैं, उसके बाद हनुमान मंदिर में स्वच्छता अभियान भी सभी यात्री करेंगे।
0: इसके बाद यात्रा वाराणसी के लिए पुनः प्रस्थान करेगी। दिल्ली के उप महापौर डॉक्टर मोनिका पंत ने आज गिरधर लाल अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल में मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं, दवाओं की उपलब्धता, स्वच्छता व्यवस्था तथा चिकित्सा और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर का जायजा लिया। इस अवसर पर डॉक्टर पंत ने बताया कि अस्पताल के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर और सुदृढ़ बनाने के लिए लगभग 4 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है। उप महापौर ने अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिया कि उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाए तथा अस्पताल में स्वच्छता, दवा उपलब्धता तथा उपचार संबंधी व्यवस्थाओं के नियमित समीक्षा की जाए। विश्व रेबीज दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC के पशु चिकित्सा विभाग द्वारा निशुल्क रेबीज जागरूकता और टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। NDMC ने बताया कि इस शिविर में पालतू पशुओं के लिए निशुल्क स्वास्थ्य जांच, एंटी रेबीज टीकाकरण और पशु चिकित्सा परामर्श की सुविधा प्रदान की गई। साथ ही पशुओं की देखभाल और रेबीज की रोकथाम को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। केंद्र सरकार ने आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा योजना पोर्टल की शुरुआत की। ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एक एकीकृत डिजिटल मंच उपलब्ध कराएगा। इसके माध्यम से पशुपालन और डेयरी विभाग की पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत बीमित पशुओं की पॉलिसी जारी करने, बीमा दावों के निपटारे, निगरानी और रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया को आसान बनाया जा सकेगा। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने पेरू की यात्रा के दौरान लीमा में भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ संवाद किया। इस अवसर पर श्री गुप्ता ने पेरू और पड़ोसी बाजारों में भारतीय व्यवसायों की उपस्थिति के विस्तार की संभावनाओं पर विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि विदेशों में रह रहे भारतीय केवल आर्थिक योगदान देने तक सीमित नहीं है, बल्कि वे भारत की संस्कृति, परंपराओं और विरासत के महत्वपूर्ण प्रतिनिधि भी हैं, जो भारत और पेरू के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश में 100 करोड़ से अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा है। वे आज नई दिल्ली में आयोजित औद्योगिक संबंध और श्रम तथा पुरस्कार संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
5: हम 25 करोड़ लोगों को SIC की हेल्थ सिक्योरिटी दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं, 10 करोड़ किसान के अकाउंट में हर 4 महीने 2000 रुपया डालते हैं। आज देश के 10 स्टेट ऐसे हैं जो महिला के अकाउंट में प्रति महीने कोई ना कोई 2000, 1500, 1200 ऐसी अमाउंट डालते हैं। तो मैंने कहा कि क्या सोशल सिक्योरिटी का पार्ट नहीं बन सकता, और कैलकुलेशन चालू करा तो उन्होंने स्वीकारा कि इंडिया आज 101 करोड़ यानी कि 68% लोगों को सोशल सिक्योरिटी देता है।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
6: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: सरकार ने राजधानी की समृद्ध कला, सांस्कृतिक विरासत, पर्यटन और शैक्षणिक क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की। इस पहल के अंतर्गत दिल्ली सरकार और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इसका मुख्य उद्देश्य संस्थागत साझेदारी को स्थापित कर सांस्कृतिक और शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा देना है। एक रिपोर्ट।
7: दिल्ली सरकार ने बताया

0: के समझौते के अंतर्गत राजधानी के स्थापित और युवा कलाकारों को आईसीसीआर की प्रतिष्ठित होराइजन सीरीज और अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सवों में सहभागिता का सीधा अवसर मिलेगा। इसके साथ ही आईसीसीआर के विशिष्ट शैक्षणिक आगंतुक कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले विदेशी अतिथियों और विद्वानों की मेजबानी दिल्ली में की जाएगी। इस समझौता में आईसीसीआर से जुड़े विदेशी छात्रों के लिए राजधानी में अध्ययन शिविर का आयोजन भी किया जाएगा, जिससे राजधानी के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा मिले। वहीं दिल्ली में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक दलों की भागीदारी के लिए आवश्यक खर्च दिल्ली सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
1: दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मादक पदार्थ तस्करी मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी के पास से 2.5 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थ बरामद किया गया। दिल्ली पुलिस ने कहा कि यह गिरफ्तारी ऑपरेशन कवच के अंतर्गत की गई है। देश आज शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। भगत सिंह का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1907 में पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है।
2: शहीद आजम भगत सिंह के मन में देश की आजादी के लिए लड़ने का जज्बा अपने परिवार से ही मिला था। उनके दादा, पिता और चाचा सभी स्वतंत्रता आंदोलन में पूरी तरह सक्रिय थे। भगत सिंह खुद भी इस आंदोलन से जुड़े और देश की आजादी के लिए आवाज उठाने वाले क्रांतिकारी बन गए। अंग्रेजों के कठोर और दमनकारी कानूनों का विरोध करने के लिए उन्होंने साल 1929 में केंद्र विधानसभा में ऐसे बम फेंके जिससे किसी की जान न जाए। इसके बाद उन्होंने खुद को अंग्रेजों के हवाले कर दिया और गिरफ्तारी दी। साल 1931 में अंग्रेजों ने उन्हें फांसी दे दी। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि भगत सिंह भारत के शौर्य, साहस और स्वाभिमान की अमर चेतना है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद आज दिल्ली की विश्वविद्यालय के शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेज फॉर वुमेन के 35वें वार्षिक दिवस समारोह में शामिल हुए। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सूद ने कहा कि ऐसे अवसर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और आने वाली पीढ़ी में नेतृत्व क्षमता विकसित करने के महत्व को दर्शाते हैं। उन्होंने कॉलेज के विद्यार्थियों और शिक्षकों को निरंतर सफलता और भविष्य में अनेक नई उपलब्धियों के लिए शुभकामनाएं दी। राजधानी दिल्ली में आज बादल छाए रहे और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 28.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कल आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है, वहीं कल का अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत नोटिस पाने वाले मतदाताओं के से बूथ स्तर के अधिकारी उनके घरों से दस्तावेज एकत्र करेंगे। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत कल से दिल्ली के कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। दिल्ली में वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपायों की समीक्षा, तोड़फोड़ और निर्माण कार्यों पर 1 नवंबर से 31 जनवरी तक प्रतिबंध। सरकार ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत दिल्ली उद्योग मित्र पोर्टल का शुभारंभ किया और दिल्ली सरकार और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के बीच सांस्कृतिक शैक्षणिक सहयोग पर समझौता। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार के निपटान, भुगतान और संदेश प्रणालियों के एकीकरण तथा केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राओं से संबंधित पहलों के समय पर क्रियान्वयन के लिए कदम उठाने पर सहमत हुए हैं। दोनों पक्षों ने आज मुंबई में निवेश संबंधी भारत यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के दौरान इस समझौते पर सहमति जताई। बैठक की अध्यक्षता वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अबुधाबी निवेश प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक शेख हामिद बिन जायद अल नहयान ने की। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ाने के लिए ऊर्जा, उद्योग, बुनियादी ढांचा और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों की पहचान की गई है।
1: एनुअली वी हैव बीन मीटिंग रेगुलरली।
2: हम सालाना और नियमित रूप से बैठकें करते रहे हैं और दोनों पक्षों के व्यापारिक समूहों की संतुष्टि के अनुसार ठोस और महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान कर रहे हैं। आज हमने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, पोत निर्माण, आधुनिक बंदरगाहों के विकास, खाद्य सुरक्षा, विशेष रूप से खाड़ी क्षेत्र के लिए कृषि नवाचार, लॉजिस्टिक्स के विस्तार, AI और उभरती प्रौद्योगिकियों पर मिलकर काम करने, ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा फिनटेक क्षेत्र में अपने सहयोग का विस्तार करने जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को बढ़ाने पर भी चर्चा की है।
1: एक्सपेंडिंग आवर कोऑपरेशन इन द फिनटेक सेक्टर।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि मानव अंतरिक्ष उड़ान, स्टार्टअप और नए अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत फ्रांस अंतरिक्ष सहयोग ने एक नए चरण में प्रवेश किया है। डॉक्टर सिंह ने आज नई दिल्ली में फ्रांस के उच्च शिक्षा, अनुसंधान और अंतरिक्ष मंत्री फिलिप बैप्टिस्ट के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के दौरान ये बात कही। सरकार ने आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा योजना पोर्टल की शुरुआत की। यह पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एक एकीकृत डिजिटल मंच उपलब्ध कराएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य पशुधन बीमा सेवाओं को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और सुलभ बनाना है। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि अब किसान बीमा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और पूरी प्रक्रिया की डिजिटल माध्यम से निगरानी की जाएगी। ये पोर्टल हिंदी और अंग्रेजी के अलावा क्षेत्रीय 11 क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध होगा।
3: इस बीमा पोर्टल का लाभ किसानों को उठाना चाहिए। किसानों के लिए एक समस्या थी, दुर्घटना हो जाए, कोई बीमारी से पशु की मौत हो जाए तो उनकी आजीविका पर सीधा असर पड़ता था और उनकी आजीविका को सुरक्षित करने के लिए यह बीमा योजना प्रधानमंत्री जी ने 2014 में देश के सभी जिलों में चलाया। आज उसको आगे बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पोर्टल लॉन्च किया गया है।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि देश ने पश्चिम एशिया में जारी संकट और होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यवधान के बावजूद कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में आई चुनौतियों का अब तक सफलतापूर्वक सामना किया है। कोलकाता में मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में श्री पुरी ने ये बात कही। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार स्थिति पर लगातार नजर रख रही है और ये सुनिश्चित करेगी कि आपूर्ति में आए व्यवधान नियंत्रण से बाहर न हों। सर्वोच्च न्यायालय ने 2,000 रूपये से अधिक के UPI लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये शुल्क 15 अक्टूबर से प्रभावी होने हैं। न्यायालय ने केंद्र सरकार, रिजर्व बैंक और अन्य प्रतिवादियों से जवाब मांगा है और 4 सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। न्यायालय ने कहा कि यह मुद्दा कानूनी से अधिक तकनीकी है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज भी पदक जीतने का सिलसिला जारी रखा है। निशानेबाजी, क्रिकेट, कुराश, एथलेटिक्स और मुक्केबाजी में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। भारत ने आज अपने खाते में 8 और पदक जोड़े हैं। पुरुष क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। लंबी दूरी के धावक गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ के फाइनल में 3:36.72 के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ रजत पदक जीता। भाला फेंक स्पर्धा में यशवीर सिंह ने 85.14 मीटर के शानदार थ्रो के साथ रजत पदक देश के नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय आर एस रघु। Union Home Minister Amit Shah today inaugurated the Conference on Prahar CT Policy and Strategy in New Delhi. Speaking on the occasion, Mr. Shah said that under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, the government has adopted a zero-tolerance policy against all forms and manifestations of terrorism. The Home Minister also stressed on the need for consistent efforts to strengthen and improvise the Prahar strategy through a continuous analysis of terror incidents and establishing a strong and concrete Prahar mechanism for the next 10 years. Focusing on percolation of the tenets of Prahar up to the Thana level, Mr. Shah emphasized adopting a proactive approach towards every aspect of

सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज। वक्त हो गया है मधुरिमा का। मैं रुचिका स्वागत करती हूं आप सभी सुनने वालों का।

झूमता मौसम मस्त महीना, चांसी गोरी एक हसीना, आँख में काजल मुँह पे पसीना, याला याला।

आपको बता दें कि ये खूबसूरत गीत आपने सुना लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज में, और फिल्म थी उजाला। एक और गीत है हमारे पास, बहुत ही खूबसूरत गीत है, फिल्म है गूंज उठी शहनाई, और ये गीत भी लता मंगेशकर जी की आवाज़ में है जो हम आप तक पहुंचाएंगे। और आपको बता दें कि ये जो गीत हम आप तक पहुंचाएंगे फिल्म गूंज उठी शहनाई से, इस गीत का जो राग है वो है राग बिहाग। और राग बिहाग की जो खासियत है वो ये है कि ये राग बिलावल ठाट से उत्पन्न होता है, और इसके आरोह में रे और ध नहीं लगाते और अवरोह में सातों स्वर लगते हैं, इसीलिए इसकी जो जाति है वो औढ़व संपूर्ण मानी जाती है। इसमें सभी स्वर शुद्ध लगते हैं, और ख़ास बात यह है कि कुशल संगीतज्ञ बड़ी कुशलता से इस राग में तीव्र म का भी प्रयोग करते हैं। वादी स्वर ग और संवादी स्वर नी माना जाता है, और इस राग को गाने बजाने का समय रात का दूसरा प्रहर माना जाता है। तो चलिए फिलहाल आप तक पहुंचाते हैं लता मंगेशकर जी की आवाज़ में ये खूबसूरत गीत। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1।

0: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो? इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
1: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
2: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
3: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
4: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
0: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं, तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
5: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
1: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
0: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।

0: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
1: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
2: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
3: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है, हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे, आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
4: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
5: जी हाँ, सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: कहते हैं हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे खेल में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। नमस्कार श्रोताओं, रात के 8:30 बज चुके हैं और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की तरंगों पर खेल जगत का सबसे विश्वसनीय और आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन। उम्मीद, जज्बे और जुनून से सजे कार्यक्रम के आज के अंक में मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त जया भारती और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अतहर सईद। अतहर, आपको भी मेरा नमस्कार।
1: नमस्कार जया, और हमारे तमाम खेल प्रेमियों को भी मेरा नमस्कार। जया, आज का दिन अगर बात करें तो भारतीय खेल इतिहास के उन सुनहरे पन्नों में दर्ज होने जा रहा है जिससे बरसों तक याद रखा जाएगा।
0: बिल्कुल अतहर, और आज का दिन भारत के लिए वाकई मेडल मंडे साबित हुआ है क्योंकि नागोया के मैदानों पर आज एक या दो नहीं बल्कि पूरे 8 पदकों की बरसात हुई है। चांदी और कांसे की इस चमक ने हर खेल प्रेमी का वीकेंड के बाद का जो मंडे है ना, एकदम खुशनुमा बना दिया है। तो आज की विस्तृत चर्चा से पहले आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खेल सुर्खियों पर।
1: बिल्कुल, एशियाई खेलों में पुरुषों के जेवलिन थ्रो में भारत का ऐतिहासिक डबल धमाका, यशवीर सिंह को रजत तो रोहित यादव ने जीता कांस्य पदक।
0: बाधा दौड़ में विद्या रामराज ने रचा इतिहास, पीटी उषा का 42 साल पुराना नेशनल रिकॉर्ड।

0: और तोड़ा।
1: ट्रैक एंड फील्ड पर अन्य भारतीय एथलीटों का भी जलवा बरकरार। गुलवीर सिंह और मुरली श्रीशंकर ने जीता रजत, तो पारुल चौधरी ने कांस्य पदक हासिल किया।
0: निशानेबाजी की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में ईशा सिंह ने रजत पदक जीता। मुक्केबाजी में लवलीना बोरगोहेन, प्रिया घंगस और कपिल पोखरिया सेमीफाइनल में देश के लिए 3 और मेडल पक्के किए।
1: और बारिश के कारण भारत अफगानिस्तान पुरुष क्रिकेट मैच रद्द। बेहतर रैंकिंग के आधार पर टीम इंडिया सीधे सेमीफाइनल में।
0: श्रोताओं, अब रुख करते हैं हमारी सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, क्योंकि नागोया के मिज़ुहो पार्क एथलेटिक्स स्टेडियम में पुरुषों का जेवलिन थ्रो फाइनल अभी समाप्त हुआ है और अथर नीरज चोपड़ा की अनुपस्थिति में, जो आज हमारे दो युवा खिलाड़ियों ने जिस तरह से भाला फेंका है, उसने तो आज इतिहास ही रच दिया।
1: बिल्कुल शानदार रहा जया, पूरे देश के लिए गर्व से झूम उठने वाला पल है, क्योंकि पुरुषों के जेवलिन थ्रो फाइनल में भारत के यशवीर सिंह ने 85.14 मीटर के शानदार थ्रो के साथ रजत पदक अपने नाम किया। वहीं रोहित यादव ने भी गजब का जज्बा दिखाते हुए 84.35 मीटर की दूरी नापकर कांस्य पदक जीत लिया है। पोडियम पर एक साथ दो तिरंगे लहराते देखना अजया सचमुच अद्भुत था।
0: बिल्कुल अधर, लेकिन यहाँ एक बात जो टीस बनकर रह गई वो ये है कि श्रीलंका के रमेश थरंगा ने 88.55 मीटर का थ्रो करके स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। भले ही आज पोडियम पर एक साथ दो तिरंगे लहरा रहे हैं, लेकिन वो जो गोल्ड की चमक होती है ना, उसकी कमी आज जरूर खल रही है। जेवलिन का वो स्वर्ण पदक ना मिल पाने का एक छोटा सा मलाल तो मन में रह ही जाता है।
1: हाँ बिल्कुल ठीक कहा जया आपने, एक भारतीय होने के नाते मैं इस भावना को बेहतर तरीके से समझ सकता हूँ। स्वर्ण पदक चूकने का दर्द हमेशा बड़ा होता है जया, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि नीरज चोपड़ा की अनुपस्थिति में इन युवा खिलाड़ियों पर कितना दबाव था। खेल जगत में जया एक बात कही जाती है कि सोने की चमक अपनी जगह है, लेकिन तपे हुए तांबे और चांदी का जज्बा भी कम नहीं होता।
0: बिल्कुल,
1: भले ही आज सोना हमारे हिस्से में नहीं आया, लेकिन इन दोनों जाबाजों ने अरशद नदीम और एशिया के दिग्गज थ्रोअर्स को पीछे छोड़कर ये साबित कर दिया कि भारत का जैवलिन का भविष्य बेहद सुरक्षित हाथों में है।
0: बिल्कुल, और इन युवा खिलाड़ियों को हमारे तरफ से भी सलाम, जिस तरह से उन्होंने जैवलिन थ्रो में भारत की मजबूत स्थिति को दर्शाया है। तो चलिए जेवलिन के बाद अब रुख करते हैं आज सुबह की उन शानदार सफलताओं का, जिन्होंने आज मेडल मंडी की शुरुआत की थी। तो शुरुआत महिलाओं की मुक्केबाजी से, जहां रिंग में आज हमारी स्टार बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ने तो कमाल ही कर दिया।
1: बिल्कुल जया, टोक्यो ओलंपिक के पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन ने महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग के क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया की सोंग सियोन को एक तरफा मुकाबले में 5-0 से धूल चटा दी। इस जीत के साथ वे सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं और भारत के लिए कम से कम एक कांस्य पदक पूरी तरह पक्का कर चुकी हैं। लवलीना बोरगोहेन के साथ प्रिया घंगास ने भी 60 किलोग्राम वर्ग के क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान की मिसगोना समादोवा को 5-0 से हराया और सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की। इसके साथ ही भारत के नाम दो और पदक सुनिश्चित हो गए हैं जया।
0: बिल्कुल, और इसके साथ ही कपिल पोखरिया ने भी सेमीफाइनल में जगह बना ली और 3 मेडल पक्के हो गए हैं अब दो की जगह। और अगर शूटिंग रेंज की भी बात करें तो वहां भी आज रजत की चमक बिखेरी है हमारी खिलाड़ियों ने। ईशा सिंह ने भी देश का मान बढ़ाया है।
1: बिल्कुल जया, महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में भारत की ईशा सिंह ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता। हालांकि यहाँ भी भारत का दर्द वही रहा, ईशा चीनी खिलाड़ियों से बेहद करीबी शूट ऑफ में गोल्ड मेडल जीतने से चूक गई जया।
0: उफ, ये बेहद करीबी मुकाबला था और निशानेबाजी और जेवलिन दोनों जगहों पर हम सोने के बहुत करीब आकर रजत पर रुक गए। मतलब सचमुच किसी शायर की वो पंक्ति याद आती है कि मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं।
1: क्या बात है।
0: तो स्वर्ण पदक न मिलने की निराशा अपनी जगह, लेकिन ईशा की इस चांदी की कीमत भी सोने से कम नहीं है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भी ट्वीट करके तुरंत ही ईशा को इस बड़ी सफलता के लिए बधाई दी थी।
1: कहते हैं जया के पथ क्या पथिक की कुशलता का यदि पथ में बिखरे शूल ना हो और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या यदि धाराएं प्रतिकूल ना हो। तो अभी दिन बाकी हैं, पदक आने बाकी हैं, सुनहरे चमक जो है स्वर्ण पदक की वो भी हमारे पास आना बाकी है। अब बात करते हैं एथलेटिक्स के उस मैदान की जया जहां हमारे एथलीटों ने पदकों की लाइन लगा दी। आज गुलवीर सिंह, पारुल चौधरी, विथ्या रामराज और

0: मुरली श्रीधरन चारों ने पदक जीते हैं। जरा इस रोमांचक दौड़ और जंप का लेखा जोखा हमारे श्रोताओं के सामने हम जरूर रखेंगे, है ना?
1: बिल्कुल, आज ट्रैक एंड फील्ड में कुल चार पदक आए हैं, जैसा कि आपने अभी बताया कि चारों ने पदक जीते हैं। सबसे पहले पुरुषों की 1500 मीटर फाइनल दौड़ में गुलवीर सिंह ने अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय निकालते हुए रजत पदक जीता। इसके बाद महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में विद्या रामराज ने 42 साल पुराना पीटी उषा का नेशनल रिकॉर्ड तोड़ते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया।
2: Well, this is the bronze age in her life. Couple of bronze medals for Vidya Ramraj, and that means that over the last 3 or 4 years, she's sort of maintained that level. Of course, the others get better, so even when you're getting better, you're still very much keeping yourself in that mix. Good to see her being the top three in this category at the Asian level.
1: विद्या रामराज ने जिस तरह से इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अपना नाम दर्ज कर दिया है, उन्होंने देश की दिग्गज एथलीट उड़न पड़ी पीटी उषा के जो नाम था पिछला रिकॉर्ड, उसे तोड़ते हुए अकेले शीर्ष पर स्थापित किया। पिछला रिकॉर्ड संयुक्त नेशनल रिकॉर्ड पर था, जिसमें रामराज और पीटी उषा ने संयुक्त रूप से यह रिकॉर्ड बनाया था। तो ये जो इन्होंने रिकॉर्ड बनाया, इसे कहते हैं कि बाधाओं को चीर कर सफलता का नया कीर्तिमान लिखना। तो आइए सुनते हैं रिकॉर्ड बनाने के बाद विद्या रामराज ने क्या कहा।
3: I'm so happy. I feel like athletics will improve more. I'm really happy. I just not break the record. I feel I want to go to 51 second. So I did today. Today is my day. I'm happy. Age is not just a number. I'm a 28. So don't think about age. Just go for it. Just run your race.
1: तो विद्या ने ट्रैक पर 54.75 सेकंड का बुलेट जैसा समय निकाला और तीसरा स्थान हासिल किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने 0.67 सेकंड के बड़े अंतर से नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम किया है। और हमारी लंबी दूरी की स्टार धाविका पारुल चौधरी ने भी तो आज कमाल किया है। पारुल ने महिलाओं की 5000 मीटर फाइनल दौड़ में एक और कांस्य पदक हासिल किया, जो इस एशियन गेम्स में उनका दूसरा मेडल है। वहीं कुराश में पिंकी बलहारा ने, महिलाओं की 200 मीटर दौड़ स्पर्धा में हरित भद्रा ने भी शानदार खेल दिखाते हुए भारत की झोली में एक और कांस्य पदक डाला है। और अदर मुरली श्रीशंकर की लॉन्ग जंप का वो लाइव ड्रामा तो हर खेल प्रेमी की सांसें रोक देने वाला था।
0: बिल्कुल ठीक कहा जया, वो तो अविश्वसनीय था। श्रीशंकर ने अपने दूसरे प्रयास में 8.07 मीटर की छलांग लगाकर रजत पदक सुनिश्चित कर लिया था, लेकिन चौथे प्रयास में उनके टखने में गंभीर मोच आ गई और उन्हें व्हील चेयर पर बाहर जाना पड़ा। आखिरी क्षणों में उज्बेकिस्तान के एथलीट ने 8.06 मीटर की जंप लगाई, यानी श्रीशंकर से मात्र 1 सेंटीमीटर कम। चोटिल होने के बावजूद श्रीशंकर ने भारत के लिए रजत पदक सुनिश्चित किया, सुरक्षित रखा।
1: बिल्कुल, और अतर आज सिर्फ ट्रैक एंड फील्ड पर नहीं बल्कि क्रिकेट के मैदान पर भी कुदरत ने गजब का खेल दिखाया। आज भारत और अफगानिस्तान के बीच खेला जाने वाला पुरुषों का जो दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला बारिश के की भेंट चढ़ गया कह सकते हैं। तो खेल प्रेमियों को एक रोमांचक मैच की उम्मीद थी, लेकिन इंद्रदेव के आगे किसकी कहां चलती है।
0: बिल्कुल, आगे बढ़े तो और बात करें तो निशिन के करोगी स्पोर्ट्स पार्क मैदान पर कल रात से ही बारिश हो रही थी जया। आलम यह था कि आउटफील्ड पूरी तरह पानी से भर चुका था, मैच तय समय से काफी देर तक रुका रहा और आखिरकार अंपायरों को बिना टॉस किए ही मैच रद्द करने का फैसला सुनाना पड़ा। लेकिन दिल थाम कर बैठी, क्योंकि मैच भले ही रद्द हुआ हो लेकिन हमारी टीम इंडिया के लिए खुशखबरी आई है। क्या खुशखबरी है जया?
1: बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि जब किस्मत बुलंद हो तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं, और नियमों के मुताबिक मैच धुलने के बाद भी भारतीय पुरुष टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंच गई है। अदर जरा हमारे श्रोताओं को आसान शब्दों में समझाइए कि आखिर ये एशियाई खेलों का कौन सा अनोखा नियम है जिससे बिना एक भी गेंद फेंके भारत को अंतिम चार में पहुंचा दिया।
0: बिल्कुल जया, एशियाई खेलों में दरअसल क्रिकेट के लिए एशियन ओलंपिक काउंसिल यानी OCA का एक बेहद दिलचस्प नियम काम करता है। नियम के अनुसार यदि नॉकआउट या क्वार्टर फाइनल जैसे बड़े मुकाबले बारिश या किसी अन्य तकनीकी कारण से रद्द हो जाते हैं तो उस मैच में शामिल दोनों टीमों टीमों में से जिसकी आईसीसी T20 रैंकिंग या सीडिंग बेहतर होगी उसे विजेता मानकर अगले दौर में भेज दिया जाता है। और ऐसा कुछ हुआ है इस मैच में भी।
1: अरे वाह, और इस मामले में तो हमारी टीम इंडिया का सिक्का पूरी दुनिया में चलता है, क्योंकि भारतीय टीम इस समय आईसीसी T20 रैंकिंग में दुनिया की नंबर वन टीम है, जबकि अफगानिस्तान की रैंकिंग 10वीं है। और इसी सर्वोच्च सीडिंग का फायदा सीधे श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली भारतीय टीम को मिला। वैसे दिलचस्प बात यह भी है कि आज इसी मैदान पर कुछ घंटों पहले पाकिस्तान और हांगकांग का पहला क्वार्टर फाइनल भी इसी तरह रद्द हुआ था, और पाकिस्तान भी बेहतर रैंकिंग के आधार पर सीधे सेमीफाइनल में पहुंच गया है। वैसे अतर इस वाक्य ने तो साल 2023 के हांगझोऊ एशियन गेम्स की भी यादें ताजा कर दी है, जहां फाइनल मैच में भी बारिश विलन बनी थी और भारत को इसी रैंकिंग नियम के तहत गोल्ड मेडल मिला था। खैर, अब सेमीफाइनल में भारत के सामने कौन सी टीम चुनौती पेश करेगी?
0: जय भारत का अगला मुकाबला यानी सेमीफाइनल मैच 1 अक्टूबर को खेला जाएगा। कल यानी 29 सितंबर को श्रीलंका और नेपाल के बीच तीसरा क्वार्टर फाइनल मैच होना है। उस मैच की विजेता टीम सीधे सेमीफाइनल में हमारी सूरमाओं से टकराएगी। और हाँ, आशाता अगर कल का मैच भी बारिश में धुला तो श्रीलंका बेहतर रैंकिंग के कारण आगे आ सकती है।
1: बिल्कुल, यानी कि बिना मैदान पर पसीना बहाए भी हमारी क्रिकेट ब्रिगेड मिशन गोल्ड की तरफ एकदम एक कदम आगे बढ़ चुकी है। भले ही फैंस को चौके छक्के देखने ना मिले हो, लेकिन सेमीफाइनल का टिकट पक्का होने की खुशी छोटी नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: और इन ताजा पदकों के बीच कल रविवार को समरकंद के बिसात से जो ऐतिहासिक डबल पोडियम फिनिश की खबर आई है, उसकी गूंज आज भी पूरे देश में है। भारत ने पुरुषों में सिल्वर और महिलाओं में ब्रॉन्ज जीता है। कल समाप्त हुए 46वें फिडे चेस ओलंपियाड में भारतीय पुरुष टीम ने रजत और महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। और सबसे गर्व की बात यह रही कि ओवरऑल जो शानदार प्रदर्शन के आधार पर दी जाने वाली प्रतिष्ठित नोना ग्रैम्पिंडा शेवली ट्रॉफी को भारत ने लगातार तीसरी बार अपने पास बरकरार रखा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज पूरी टीम की सराहना की है, उन्हें बधाई दी है।
0: उधर भारतीय मूल की होनहार शतरंज खिलाड़ी बोधना शिवानंदन ने सबसे कम उम्र की महिला ग्रैंड मास्टर बनकर इतिहास रच दिया है। इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व करने वाली 11 साल की बोधना ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में कल समाप्त हुए 46वें शतरंज ओलंपियाड में ये उपलब्धि हासिल की।
1: वहीं तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली। कल खेले गए मैच में वेस्टइंडीज के 296 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत ने 41 ओवर में 4 गेंद में 2 विकेट खोकर 300 रन बनाकर जीत हासिल की। तो खेल प्रेमियों, आज एशियन गेम्स में भारत ने 8 पदकों के महाधमाके के साथ इतिहास रच दिया है। भले ही आज सोने का तमगा हमारी झोली में नहीं आया, लेकिन हमारे खिलाड़ियों का ये रजत और कांस्य भी किसी सोने से कम नहीं है, क्योंकि जीत और हार तो दांव की बात है, असली खिलाड़ी तो वो है जो अंत तक हार ना माने। और कल का दिन भी बेहद खास होने वाला है, जहां दोपहर 11:30 बजे यानी कि दिन के 11:30 बजे भारतीय पुरुष हॉकी टीम बांग्लादेश के साथ पूल ए के मैच में उतरेंगी। वहीं गुलवीर सिंह एक बार फिर पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में ट्रैक पर दिखाई देंगे। तो अपने भारतीय एथलीटों को चीयर करते रहिए, क्योंकि जब आप और हम मिलकर उनका हौसला बढ़ाएंगे तभी तो हमारा भारत जीतेगा। और श्रोताओं, अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स स्कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल के मैदान की हर खबर के साथ।
0: तब तक के लिए नमस्कार।
1: नमस्कार।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह का आतंकवाद से निपटने के लिए मजबूत तंत्र बनाने का आह्वान। प्रत्यर्पण पोर्टल शुरू। भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार उपायों को लागू करने पर सहमत। दोनों देशों का 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को $200 अरब करने का लक्ष्य। केंद्रीय दल सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए कर्नाटका और महाराष्ट्र का दौरा करेगा। पशुधन बीमा दावों और निगरानी को सुव्यवस्थित करने के लिए पशुधन बीमा पोर्टल शुरू। भारत और मंगोलिया के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू। सेंसेक्स 6 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा, 72,772 पर बंद। एशियाई खेलों में भारत ने 8 और पदक जीते। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यशवीर ने रजत और श्रीशंकर मुरली ने लंबी कूद, गुलवीर सिंह ने 1500 मीटर दौड़ तथा ईशा सिंह ने निशानेबाजी में रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय आतंकरोधी नीति और रणनीति प्रहार सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में प्रहार के 7 स्तंभों पर चर्चा हुई। इनमें आतंकवाद की रोकथाम, उससे निपटने की कार्रवाई, आंतरिक क्षमताओं का एकीकरण, मानवाधिकार, आतंकवाद के लिए अनुकूल परिस्थितियों को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में समन्वय तथा पूरे समाज की

0: भागीदारी से पुनर्प्राप्ति और लचीलापन शामिल है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से 2026 के बीच सरकार 36 देशों से 288 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाई है। श्री शाह ने नया प्रत्यर्पण पोर्टल भी शुरू किया। ये विदेशों में मौजूद भगोड़ों को भारत वापस लाने के प्रयासों में समन्वय और तेजी लाने में मदद करेगा। उन्होंने राज्य पुलिस बलों से केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर काम करने के लिए समर्पित टीमें गठित करने का आग्रह किया। भानु प्रताप की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार के निपटान, भुगतान और संदेश प्रणालियों के एकीकरण और केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राओं से संबंधित पहलों के समय पर क्रियान्वयन के लिए कदम उठाने पर सहमत हुए हैं। दोनों पक्षों ने आज मुंबई में निवेश संबंधी भारत यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के दौरान इस समझौते पर सहमति जताई। बैठक की अध्यक्षता वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अबुधाबी निवेश प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक शेख हामिद बिन जायद अल नहयान ने की। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ाने के लिए ऊर्जा, उद्योग, बुनियादी ढांचा और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों की पहचान की गई है।
2: Annually, we have been meeting regularly.
1: हम सालाना और नियमित रूप से बैठकें करते रहे हैं और दोनों पक्षों के व्यापारिक समूहों की संतुष्टि के अनुसार ठोस और महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान कर रहे हैं। आज हमने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, पोत निर्माण, आधुनिक बंदरगाहों के विकास, खाद्य सुरक्षा, विशेष रूप से खाड़ी क्षेत्र के लिए कृषि नवाचार, लॉजिस्टिक्स के विस्तार, AI और उभरती प्रौद्योगिकियों पर मिलकर काम करने, ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा फिनटेक क्षेत्र में अपने सहयोग का विस्तार करने जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को बढ़ाने पर भी चर्चा की है।
2: एक्सपेंडिंग आवर कोऑपरेशन इन द फिनटेक सेक्टर।
0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच द्विपक्षीय व्यापार वित्त वर्ष 2025-26 में 101 अरब 25 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया, जबकि गैर तेल व्यापार 2025 में 76 अरब 20 करोड़ डॉलर रहा। दोनों पक्ष 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार में 200 अरब डॉलर के साझा लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि देश ने पश्चिम एशिया में जारी संकट और होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यवधान के बावजूद कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में आई चुनौतियों का अब तक सफलतापूर्वक सामना किया है। कोलकाता में मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में श्री पुरी ने ये बात कही। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार स्थिति पर लगातार नजर रख रही है और ये सुनिश्चित करेगी कि आपूर्ति में आए व्यवधान नियंत्रण से बाहर न हो। केंद्र सरकार कर्नाटक और महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए टीम भेजेगी। नई दिल्ली में रबी फसल अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही। संवाददाताओं से श्री चौहान ने कहा कि महाराष्ट्र और कर्नाटक सरकारों ने अपने अपने राज्यों के बड़े हिस्से में सूखा घोषित किया है।
3: राज्य सरकारों ने महाराष्ट्र में बड़े हिस्से पर और कर्नाटक में भी बड़े हिस्से पर सूखा घोषित किया है। भारत सरकार राज्यों के साथ डट के खड़ी रहेगी। कर्नाटक में भी 3 अक्टूबर को टीम बना के भेज रहे हैं वहां की स्थिति के आकलन के लिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से बात हुई है तो वहां भी हम टीम की तैयारी कर रहे हैं। मैं स्वयं भी उन राज्यों में जाके स्थिति देखूंगा और हम अपने किसानों के साथ, राज्य सरकारों के साथ पूरी ताकत से खड़े रहेंगे इस परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत की। ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एक एकीकृत डिजिटल मंच उपलब्ध कराएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य पशुधन बीमा सेवाओं को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और सुलभ बनाना है। एक रिपोर्ट।
5: पशुधन बीमा पोर्टल से देश में पशुधन बीमा कार्यक्रमों के बेहतर तालमेल, रियल टाइम मॉनिटरिंग और डेटा आधारित प्रबंधन में मदद मिलेगी। इससे पूरे देश में पशुपालकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराए जा सकेंगे। श्री सिंह ने कहा कि ये पोर्टल किसानों की आजीविका की सुरक्षा और प्रधानमंत्री

0: नरेंद्र मोदी के उस विजन को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम है।
1: इस बीमा पोर्टल का लाभ किसानों को उठाना चाहिए। किसानों के लिए एक समस्या थी, दुर्घटना हो जाए, कोई बीमारी से पशु की मौत हो जाए तो उनकी आजीविका पर सीधा असर पड़ता था, और उनकी आजीविका को सुरक्षित करने के लिए यह बीमा योजना प्रधानमंत्री जी ने 2014 में देश के सभी जिलों में चलाया। आज उसको आगे बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पोर्टल लॉन्च किया गया है।
0: ये पोर्टल हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 11 क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध होगा। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि बेहतर सड़क बुनियादी ढांचे के कारण देश की माल ढुलाई लागत में कमी आई है। श्री गडकरी नई दिल्ली में एक निजी मीडिया सम्मेलन में बोल रहे थे।
3: So if you want to make more export,
4: अगर हमें निर्यात को बढ़ाना है तो हमें लॉजिस्टिक लागत को कम करना होगा। आर्थिक संस्थानों द्वारा किए गए विशेष शोध और IIM बेंगलोर, IIT कानपुर तथा IIT मद्रास की एक रिपोर्ट से ये स्पष्ट संकेत मिलता है कि भारत में लॉजिस्टिक लागत में 6% की कमी आई है। पहले ये लगभग 16% थी, और एक वर्ष पहले मिली रिपोर्ट के अनुसार सड़कों के बेहतर निर्माण के कारण इसमें 10% की कमी आई है।
3: 6% so it comes to 10% one year before.
2: सर्वोच्च न्यायालय ने 2,000 रूपए से अधिक के UPI लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये शुल्क 15 अक्टूबर से प्रभावी होने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों से जनगणना के लिए समय निकालने का आग्रह किया। कल मन की बात कार्यक्रम में किए गए अपने आह्वान को दोहराते हुए श्री मोदी ने कहा कि जनगणना में भाग लेना सभी नागरिकों का राष्ट्रीय कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि इस भागीदारी से देश के भविष्य की सही तस्वीर सामने आती है। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। ये कार्रवाई 18 सितंबर को उड़ी आतंकी हमले के बाद की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया।
5: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं कि सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से इस संकल्प को कैसे वास्तविकता में बदला गया।
6: भारत के सहकारी क्षेत्र में 8.5 लाख से अधिक पंजीकृत समितियां शामिल हैं, जिनसे 32 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हैं। यह क्षेत्र खेती के ऋण, डेयरी, चीनी, मत्स्य पालन, आवास और विपणन जैसे क्षेत्रों में फैला है और ग्रामीण भारत के लगभग 98% हिस्से को कवर करता है। साल 2021 तक इसके लिए कोई अलग से मंत्रालय नहीं था। इसकी जिम्मेदारी कृषि मंत्रालय के पास थी, जो अलग अलग विभागों और राज्यों में बंटी हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जुलाई 2021 में भारत में पहली बार एक अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया गया। इस मंत्रालय ने राष्ट्रीय सहकारिता डेटाबेस तैयार किया ताकि ये जानकारी प्राप्त की जा सके कि जमीनी स्तर पर वास्तव में कितनी समितियां काम कर रही हैं। इसके अलावा बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए नए नियम बनाए गए। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का डिजिटलीकरण किया गया। साथ ही सहकारी बैंकों को सीधे सरकारी योजना के तहत मिलने वाले पैसों से भी जोड़ दिया गया। नई दिल्ली में आयोजित वैश्विक सहकारिता सम्मेलन 2024 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण को रेखांकित किया और कहा कि यह लाखों गांवों, महिलाओं और किसानों की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर रहा है।
5: आज
7: भारत में हम सरकार और सहकार की शक्ति को एक साथ जोड़कर भारत को विकसित बनाने में जुटे हैं। हम सहकार से समृद्धि के मंत्र पर चल रहे हैं। भारत में आज 8 लाख यानी 800,000 सहकारी समितियां हैं, यानी दुनिया की हर चौथी सहकारी समिति आज भारत में है।
6: भारत टैक्सी भी सहकारिता मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण पहल है। ये सहकारी

0: जल पर आधारित एक चालक केंद्रित गतिशीलता मंच है। इसका उद्देश्य जनता को सस्ती, सुरक्षित और विश्वसनीय परिवहन सेवाएं प्रदान करते हुए चालकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। भारत टैक्सी में शामिल होने के बाद अपने सकारात्मक अनुभवों को साझा करते हुए राजीव कुमार नाम के एक चालक ने सभी साथी चालकों से भारत टैक्सी को अपनाने और सहयोग के माध्यम से समृद्धि के इस मिशन को आगे बढ़ाने का आह्वान किया।
1: मैं सभी से रिक्वेस्ट ये करूंगा, ड्राइवर भाई, सारथी भाइयों से, कि सभी सहकार भारत टैक्सी से जुड़े और इसमें ज्यादा से ज्यादा काम करें। सहकारिता का यह है सहकार से समृद्धि की ओर, तो इसको भी समझने की जरूरत है। जो विजन है कि लोगों के उत्थान के लिए जो कार्य कर रहे हैं उसमें सहकारिता में अपनी भागीदारी निभाई है।
0: पिछले 5 वर्षों में सहकारिता मंत्रालय ने सहकारी समितियों को समावेशी विकास के इंजन के रूप में बदल दिया है। जैसे जैसे भारत समावेशी और सतत विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, सहकारी समितियां समान विकास और मजबूती को बढ़ावा देना जारी रखेंगी। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और मंगोलिया के बीच आज से सीधी विमान सेवा शुरू हो गई है। नई दिल्ली और उलान बटार के बीच नियमित उड़ान शुरू होने से दोनों राजधानियों के बीच यात्रा का समय करीब 5 घंटे रह जाएगा। मंगोलिया की हुनू एयर द्वारा संचालित ये सेवा हर सोमवार को उपलब्ध होगी। इससे पहले यात्रियों को पेइचिंग या इंचियोन जैसे स्थानों पर विमान बदलना पड़ता था और यात्रा में लगभग 13 से 18 घंटे लगते थे। सीधी विमान सेवा से पर्यटन, चिकित्सा और व्यापार सहित कई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच आवागमन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इस सेवा की घोषणा पिछले वर्ष अक्टूबर में नई दिल्ली में मंगोलिया के राष्ट्रपति यू खुरिल सुख और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवाददाता सम्मेलन के दौरान की गई थी। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज भी पदक जीतने का सिलसिला जारी रखा है। निशानेबाजी, क्रिकेट, कुराश, एथलेटिक्स और मुक्केबाजी में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। भारत ने आज अपने खाते में 8 और पदक जोड़े हैं। पुरुष क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। लंबी दूरी के धावक गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ के फाइनल में 3:36.72 के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ रजत पदक जीता। भालाफेंक स्पर्धा में यशवीर सिंह ने 85.14 मीटर के शानदार थ्रो के साथ रजत पदक देश के नाम किया। निशानेबाजी में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। सेंसेक्स 6 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया है। 1124 अंक घटकर 72772 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 360 अंक गिरकर 22780 दर्ज हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह का आतंकवाद से निपटने के लिए मजबूत तंत्र बनाने का आह्वान। प्रत्यर्पण पोर्टल शुरू। भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार उपायों को लागू करने पर सहमत। केंद्रीय दल सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए कर्नाटका और महाराष्ट्र का दौरा करेगा। पशुधन बीमा दावों और निगरानी को सुव्यवस्थित करने के लिए पशुधन बीमा पोर्टल शुरू। भारत और मंगोलिया के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani. I am Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. Home Minister Amit Shah calls for stronger mechanism to combat terrorism, launches new extradition portal. India and UAE agree to implement initiatives for trade in local currency. Aim to boost bilateral trade to $200 billion by 2032. Central teams to visit Karnataka and Maharashtra to assess drought situation. Government launches Pashudhan Bima portal to streamline livestock insurance claims and monitoring. Non-stop flight between India and Mongolia takes off. Sensex hits a 6-month low to close at 72,772. And at Asian Games 2026, India add 8 more medals. In men's javelin throw, Yashveer Singh takes silver. Sri Shankar Murali in long jump, Gulveer Singh in 1500-meter race and Isha Singh in shooting also strike silver. And now the news in detail. Union Home Minister Amit Shah today inaugurated the conference on Prahar, National CT Policy and Strategy in New Delhi. The conference deliberated upon the 7 pillars of Prahar, including prevention, response, aggregating internal capacities, human rights, attenuating conditions for terrorism.

0: नमस्कार दोस्तों, जनता के साप्ताहिक मंच पब्लिक स्पीक में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं मुनीश शर्मा। दोस्तों, कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, लेकिन जब अचानक कोई बीमारी घर का दरवाजा खटखटाती है तो इलाज के खर्चे की चिंता जैसे चेहरे की सारी मुस्कान छीन लेती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कैसा हो अगर देश का हर नागरिक, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, बगैर किसी आर्थिक बोझ के बेहतरीन इलाज पा सके। जी हाँ, हमारा देश इसी दिशा में एक बहुत बड़ी स्वास्थ्य क्रांति का गवाह बन रहा है। इसीलिए आज हम बात कर रहे हैं आयुष्मान भारत और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं की, जो सिर्फ सरकारी योजनाएं भर नहीं है बल्कि हर भारतीय नागरिक को सेहतमंद और आत्मनिर्भर बनाने का एक मजबूत सुरक्षा कवच है। तो दोस्तों, डिजिटल इंडिया के इस दौर में अब स्वास्थ्य सेवाएं भी आसान हो रही हैं। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम गहराई से जानेंगे कि आप और आपका परिवार इन सेवाओं का पूरा लाभ कैसे उठा सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आपकी अच्छी सेहत ही देश की असल तरक्की है। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के संयुक्त सचिव किरण गोपाल वास्का जी को। आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन हमारे स्टूडियो में।
1: नमस्कार
0: दोस्तों, हम आपको बता दें हमारी फोन लाइंस खुली हुई हैं, आप मिलाइए हमारे स्टूडियो के लैंडलाइन नंबर। लेकिन पहले मिलाना मत भूलिए दिल्ली का कोड, यानी 011, और फिर घुमाइए 233-1-0-4-8-1 या 237-1-7-1-1-7 या फिर 237-1-7-1-0-6 और 233-1-4-4-4-4 पर भी।

0: आप हमसे बात कर सकते हैं। आप चाहें तो व्हाट्सएप नंबर से भी अपने सवाल दोस्तों हमें भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 9289094044। आप हमारे ट्विटर @AIRNewsAlert पर भी टैग AskAIR के जरिए अपने सवाल पूछ सकते हैं। और ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप NewsOnAIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। और हमें आपकी फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार है दोस्तों। और मैं देख रहा हूँ कि हमारे एक श्रोता अभी हमसे लाइन पर जुड़ रहे थे और उम्मीद है कि फिर से वो लौटेंगे। बिल्कुल हमारे श्रोता आ गए हैं रायबरेली उत्तर प्रदेश से, रमा शंकर वाजपेयी जी। वाजपेयी जी कहिए, क्या है आपकी जिज्ञासा?
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: मैं ये पूछना चाहता था कि आयुष्मान कार्ड के द्वारा किस उम्र के लोगों को किस तरह के इलाज को जो है सुविधा प्राप्त हो सकती है।
0: जी जी
2: नमस्कार।
1: कौन से अस्पतालों में?
2: नमस्कार वाजपेयी जी, ये प्रश्न पूछने के लिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जो भी श्रोता हैं उनको आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की जो सुविधाएं हैं इनके बारे में समझाने में ये बहुत ही लाभकारी होगा। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो आयुष्मान भारत PMJAY की योजना की जो लाभ है वो किसी भी उम्र के व्यक्ति को, अगर जो पात्र परिवार में होते हैं तो उनके लिए ये उपलब्ध है। तो जो भी पात्र परिवार हैं उनके जितने भी सदस्य हों, किसी भी उम्र के हों, वो इस लाभ का योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं इसके। और अगर आप 70 वर्ष या उसके ऊपर के उम्र के हों तो आप भले किसी भी आय वर्ग के हो आपको इस योजना के अंतर्गत सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। आपको आयुष्मान कार्ड आपका बना सकते हैं। और जहाँ तक बोले इलाज का सवाल है, आपको जो भी इलाज जो भर्ती होने योग्य है, जिसमें आपको एक दिन या उससे अधिक भर्ती होना पड़ेगा, जो IPD सेवा कहते हैं, उसके अंतर्गत 27 स्पेशलिटी के अंतर्गत 1961 अलग अलग प्रक्रियाओं के अंतर्गत आप सेवा प्राप्त कर सकते हैं। और अब ये सेवा जो है आप पूरे देश भर के अंदर लगभग 39,000 अस्पताल हैं, जिसमें सरकारी अस्पताल तो है ही, इसके साथ साथ लगभग 18,000 प्राइवेट अस्पताल भी हैं जो पंजीकृत हैं इस योजना के तहत। इसमें आप सेवा प्राप्त कर सकते हैं और ये बिल्कुल ही कैशलेस सेवा है। आपको किसी भी तरह का शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपको ट्रीटमेंट है वो निःशुल्क मिलेगा। आप जाएं, अपना कार्ड दिखाएं, पंजीकरण कराएं और जो भी आपकी सेवा है उसमें प्राप्त करें।
0: जी, हम बात करेंगे कि इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके विषय में आपसे जानेंगे कि किन लोगों के लिए। ये तो 70 वर्ष में तो कोई आय की सीमा नहीं लागू हुई, लेकिन क्या है उसके विषय में जानेंगे। लेकिन अभी हम देख रहे हैं एक और हमारे श्रोता हिसार हरियाणा से हमारे साथ लाइन पर हैं राजेंद्र जी। कहिए राजेंद्र जी, क्या है आपका सवाल?
3: मनीष जी को नमस्कार और विशेषज्ञ जी को नमस्कार।
0: नमस्कार।
3: विशेष जी ये जानना था कि जो नया कार्ड बनवाना हो तो उनके लिए क्या क्या शर्तें होगी और क्या कब कब बनते हैं, ये इसके बारे में जानना था। नमस्कार।
2: नमस्कार राजेंद्र जी, सबसे पहले आपको अगर अपना कार्ड बनाना है तो आप आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या वो आयुष्मान व्हाट्सएप चैटबॉट के जरिए से, या फिर 1-4-555-14 ये हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है उस पे भी आप कॉल कर सकते हैं। उस पे कॉल करके अपना कार्ड बनाने की जो जानकारी है आप वो प्राप्त कर सकते हैं। ये कार्ड जो है बनाने के लिए आपको, आपके पास अगर जो राशन कार्ड है जिसमें आप इस योजना के तहत जो शामिल है इन परिवारों को पहले से ही लिस्ट करके हरियाणा सरकार ने जो अपलोड किया है हमारे पोर्टल पे, उस पे आप अपना आधार नंबर या राशन कार्ड नंबर डाल के आप इसको सर्च कर सकते हैं। इससे आप अपना आधार नंबर से अपना EKYC कर अपना कार्ड आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह वहाँ की जो अगर आपको ये चेक करना है कि आप पात्र है कि नहीं, आप किसी भी नज़दीकी सरकारी अस्पताल में या CSC केंद्र में जाके अपनी ये जानकारी देके आप जो है कार्ड की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं।
0: जी, हमारे जो श्रोता अभी हमसे जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं पब्लिक स्पीक और चर्चा कर रहे हैं हम आयुष्मान भारत और हर नागरिक के लिए डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं विषय पर, और आपकी जिज्ञासाओं का समाधान कर रहे हैं। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के संयुक्त सचिव किरण गोपाल वास्का जी हमारे साथ। तो आप भी हमें फोन करके सवाल पूछ सकते हैं, जैसे अब पूछ रहे हैं शिमला हिमाचल प्रदेश से हमारे श्रोता हैं योगेश। कहिए योगेश जी, क्या है आपका प्रश्न?
4: नमस्कार जी।
0: जी नमस्कार।
4: मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्कीम चलाई जाती है आयुष्मान भारत, तो उसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट द्वारा भी स्वास्थ्य के लिए योजनाएं चलाई जाती है। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश द्वारा हिम केयर स्कीम चलाई जाती है। तो ऐसी स्थिति में प्रश्न उठता है कि हम कौन सी स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ ले और किस तरह से ले, और पता कैसे चलेगा? क्यों ऐसा भी हो सकता है कि इस दौड़ में हम इन दोनों ही स्वास्थ्य लाभों से वंचित रह जाए? तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ऐसी स्थिति में आपकी जो स्कीमें होती है जहां पर क्लैश कर रही है सेंटर की भी और स्टेट की भी, तो ऐसी स्थिति में हमें साधारण नागरिक को क्या करना चाहिए?
2: योगेश जी, ये बहुत ही अहम प्रश्न है, क्योंकि PMJAY के अलावा हमारे जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर लगभग 56 अलग स्कीम चलती है जो राज्य सरकारों के भी है। लेकिन इसमें एक मुख्य विषय आपको मैं बताना चाहूँगा। जैसे अगर आप PMJAY के जो लाभार्थी हैं और उस योजना के अंदर पात्र हैं, तो आपके जो परिवार हैं, जो पात्र परिवार है, इनकी सूची पहले से तय की गई है और ये ऑनलाइन पोर्टल पर पहले से ही डाला हुआ है। जहाँ तक राज्यों के स्कीम का सवाल है, और जो लोग इन योजनाओं में कवर नहीं होते हैं, मान लीजिए हिमाचल में मान लीजिए कुछ परिवार जो है PMJAY के अंतर्गत आते हैं, और अगर आप उस परिवारों में नहीं आए हैं, तो अन्य परिवार जो हैं जो राज्यों के स्कीम में ये कवर होते हैं, जैसे कि हिमाचल का हिम केयर है। एंड ये भी एक मैं बताना चाहूँगा कि PMJAY स्कीम जो है ये बिल्कुल निशुल्क है। मतलब आप इस स्कीम के और ये गरीब परिवारों के लिए है। आपको याद होगा 2011 में एक सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस हुआ था, जिसमें परिवारों की जो गरीबी रेखा के नीचे के जो परिवार है उनका भी चिन्हांकन किया गया था। तो इन ऐसे परिवारों को चुना गया है कि जो बिल्कुल ही गरीब हैं, और गरीबी के जो 40% सबसे नीचे परिवार जो हैं उनको इसमें स्कीम में लिया गया है। उसके अतिरिक्त जो है कुछ राज्य जैसे हिमाचल है, कई राज्य है जिन्होंने बाकी लोगों को कवर करने के लिए भी कुछ स्कीम लिया है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप क्या PMJAY के अंतर्गत कवर्ड है, आपका परिवार उसमें है। उसके लिए बहुत ही आसान है, आयुष्मान ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं आपके प्ले स्टोर से, और उसमें आप अपना आधार नंबर डाल के चेक कर सकते हैं कि आपका परिवार PMJAY के अंतर्गत आता है कि नहीं। अगर PMJAY के अंतर्गत आता नहीं है, तब आप देखिएगा कि आपके स्टेट का जो स्कीम है, राज्य के जो योजना है, उसमें अंतर्गत कवर आप उसमें पा सकते हैं। इसमें मेरे ख्याल से हिमाचल प्रदेश में आपको एक प्रीमियम फीस उसमें देनी होती है, एनरोलमेंट बेस्ड फीस है, वो करके आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ राज्यों में ये है, कुछ राज्यों में निःशुल्क है। तो आपके राज्य में जो स्कीम लागू है उसमें आप देख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको देखना है कि आप PMJAY के अंतर्गत कवर्ड है कि नहीं। और जैसे मैं कह रहा हूँ, बहुत ही आसान है, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं चेक, 1-4555 पे कॉल करके चेक कर सकते हैं, और आयुष्मान ऐप के माध्यम से भी आप ये पहले चेक कर सकते हैं।
0: जी, हिमाचल प्रदेश के बाद अब ये कॉल हमारे श्रोता कर रहे हैं मध्य प्रदेश से, छतरपुर मध्य प्रदेश से राशिद अहमद खान। कहिए क्या है आपका सवाल?
5: नमस्ते सर।
0: नमस्कार।
5: सबसे पहले दो महान विभूतियों को, लता मंगेशकर जी को और भगत सिंह साहब को, मैं अब पूरे देशवासियों की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ उनकी जन्म जयंती पर।
0: जी,
5: मेरा छोटे छोटे दो निवेदन सर। एक तो ये कि एक आयुष्मान कार्ड से एक फैमिली में कितने सदस्य कवर होते हैं। दूसरा ये कि अगर BPL का राशन कार्ड नहीं है तो कितने आधार, मतलब आर्थिक आधार तक पे उसके आयुष्मान कार्ड की सुविधा मिल सकती है।
0: जी, दो सवाल आपने किए कि कितने सदस्य, और

0: दूसरा आपने उनका जो एलिजिबिलिटी है उसके विषय में पूछा है। जी
1: राशिद खान जी, सबसे पहले आपका जो सवाल है कि एक कार्ड पे परिवार के कितने सदस्य कवर होते हैं, मैं आपको इसमें आपको बता दूं कि जो पात्रता है इस योजना के अंतर्गत एक पूरे परिवार की है। तो अगर आपका परिवार पात्र परिवार में शामिल है तो इसका मतलब है कि आपके परिवार में एक व्यक्ति हो, दो हो, तीन हो या उससे अधिक हो, ये सारे जो हैं किसी भी उम्र के हों, ये सभी इसमें कवर होते हैं। और रही दूसरी बात, अगर आपके पास बीपीएल कार्ड नहीं है, ये मैं पहले बता दूं कि जो योजना के अंतर्गत जो शामिल करने की जो मापदंड है, जैसे मैंने कहा कि ऐसी सीसी सर्वे जो हुआ था उसके अंतर्गत अलग अलग पैमाने लगाए गए थे कि जैसे गरीब हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं है, अलग अलग गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनको इस योजना में शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त आपका जो समग्र आईडी है, मध्य प्रदेश से आप कॉल कर रहे हैं तो आपके यहाँ समग्र आईडी का प्रचलन है, तो समग्र आईडी को के माध्यम से आप जो हमारा आयुष्मान ऐप है या व्हाट्सएप चैटबॉट है या फिर अपने नज़दीकी अस्पताल में इस समग्र आईडी को इस्तेमाल करके आप चेक कर सकते हैं कि आप इन शामिल परिवारों में जो पीएमजे के अंतर्गत भी हैं और उसके अतिरिक्त जो राज्य की स्कीम के अंतर्गत है, इसमें आप चेक कर सकते हैं और अपना कार्ड बना सकते हैं। सो इसमें जो एलिजिबिलिटी है ये राज्य तय करते हैं। उसमें जैसे पहले जितने भी पीएमजे के अंतर्गत परिवार लगभग 12 करोड़ परिवार पूरे देश में शामिल थे, उसके अतिरिक्त उसको बढ़ाते हुए लगभग 37 लाख परिवार अपने आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका के परिवारों को जुड़ा गया। उसके बाद फिर 70 वर्ष के ऊपर के प्रति उम्र के प्रति नागरिक को इसमें जोड़ा गया है। तो इस तरह से जैसे पीएमजे का जो मापदंड है वो बहुत ही स्पष्ट है, उसके और उसके अंतर्गत अगर राज्यों ने अपना अपना स्कीम को एक्सटेंड किया है और परिवारों को शामिल किया है, तो मध्य प्रदेश में आप समग्र आईडी का उपयोग करके इस आपकी पात्रता को आसानी से चेक कर सकते हैं।
0: तो राशिद खान जी, हम उम्मीद करते हैं कि जो आपकी जिज्ञासा है उसका समाधान अवश्य हुआ होगा। और दिल्ली से हमारे श्रोता जुड़ गए हैं हमारे साथ, जगदीश जोशी जी। जोशी जी, क्या है प्रश्न?
2: सर नमस्कार।
0: नमस्कार
2: और शुभ संध्या आपको भी और जो विशेषज्ञ बैठे हैं इनको भी।
0: जी
2: तो मेरा क्वेश्चन ये है कि एक्चुअली मेरी एज है 49 और मैं ब्लाइंड पर्सन हूँ टोटली, और घर में हमारे 5 मेंबर है, वाइफ है और 3 बच्चे हैं, जिसमें देखिए 2 बच्चे एडल्ट हैं, हालांकि वो पढ़ ही रहे हैं, बिल्कुल जॉब वगैरह नहीं करते, और एक छोटा बच्चा है वो 6 में पढ़ता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या मेरा ये कार्ड बन सकता है? मेरे पास बीपीएल फैमिली से आता हूँ, बीपीएल कार्ड भी है, और दूसरी बात ये है कि हम 5 में से 4 लोग मेंशन है उस कार्ड में, छोटा बच्चा जो उसको हमने 2018 से अप्लाई करा हुआ है लेकिन वो बीपीएल कार्ड में उसकी एंट्री है नहीं, तो क्या उसको भी उस कार्ड का लाभ मिल पाएगा या नहीं, और कैसे और कहां बनेगा? तो मुझे इस बारे में थोड़ा अपनी विशेषज्ञ टिप्पणी से अवगत कराएं सर।
1: जगदीश जी, प्रश्न पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि मैंने दूसरे श्रोताओं से कहा है, पात्रता ढूंढने के लिए सबसे आसान और बेहतर तरीका है हमारे कॉल सेंटर पे 14555 में कॉल करके पूछना, जिससे आपको समझ में आएगा, वो बता सकेंगे कि आप इस योजना में कवर है कि नहीं। और दिल्ली में जो पात्र परिवार हैं उनके लिस्ट में से चेक करके आपको बताया जाएगा। अगर आपके बच्चे आप मोबाइल यूज़ कर सकते हैं तो आप उसमें भी चेक कर सकते हैं, एक बहुत ही आसान है। और दूसरा, मैंने जैसे पहले कहा, अगर कोई भी परिवार इस योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों में शामिल होता है तो उसके परिवार के सभी सदस्य इसमें कवर्ड हैं। इसमें आपको जो आपका कार्ड है, राशन कार्ड है, उसमें आपके जो भी नए परिवार के सदस्य हैं, जैसे कोई जन्म हुआ किसी का या किसी के शादी होने से कोई नई बहू आई, इस तरह से नए सदस्यों के जोड़कर ऑटोमेटिकली जो है आप के नए सदस्य जो है इस योजना में जुड़ जाएंगे।
0: जी, एक और हमारे श्रोता दिल्ली से ही धर्मवीर जी हमारे साथ लाइन पर हैं। धर्मवीर जी, प्रश्न कहिए अपना।
3: जी नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: आमिर गांधी, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ
1: जी। जी
0: मेरे दो सवाल हैं कि जैसे मदर की सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट की जो कार्ड बना, एक ही कार्ड बना, उसमें 5+5 लिखा आया है, ये क्या हम सेंट्रल और दिल्ली गवर्नमेंट का एक ही कार्ड माने? दूसरा, क्या अगर फैमिली में दूसरा भी कोई सीनियर सिटीजन हो जाता है तो उसका भी अलग से कार्ड बन सकता है क्या, नहीं बन सकता? और साथ में ये भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि राशन कार्ड में तो नए नाम तो कुछ जुड़ते नहीं है, चाहे परिवार में नया सदस्य आए, कोई बच्चा हो तो उसका नाम नहीं कहीं जुड़ पाता, ऐसा क्यों हो रहा है? और लास्ट में एक छोटी सी बात और रखूंगा मुनीश जी, अभी लाइन पे बोला जा रहा था
1: जी। जी जहां तक आपने बात कही राशन कार्ड में क्यों नहीं जुड़ पाता, वो एक अलग विभाग की समस्या है, लेकिन हाँ जो आपका ये प्रश्न था उसके विषय में, जो पहला है उसके विषय में जरूर हमारे विशेषज्ञ आपको बताएंगे।
2: धर्मवीर जी, जैसे आपने कहा है कि आपके परिवार में एक सदस्य है जो 70 वर्ष के ऊपर है, महिला है, और उनको कार्ड में दिया गया है जिसमें लिखा है 5+5, इसका मतलब ये है कि दिल्ली में जो योजना चल रही है इसमें भारत सरकार के तरफ से जो 5 लाख का कवर दिया जा रहा है उसके अतिरिक्त दिल्ली सरकार 5 लाख का कवर और दे रही है। तो इसका मतलब यही है कि उसी प्लेटफॉर्म पे, उसी योजना के अंतर्गत आपको 5+5 पूरे 10 लाख का कवर का लाभ मिलेगा। और जहाँ तक दूसरे परिवार के दूसरे सदस्य जो सीनियर सिटीज़न बाद में होंगे, उन्हें भी इस आयुष्मान व्यय वंदना के अंतर्गत कवरेज मिलेगा, जिसमें आपके अभी जो मौजूदा लाभार्थी हैं वो और जो भी नए लाभार्थी 70 वर्ष के अतिरिक्त ज़्यादा होंगे तो उनको भी इसी योजना के अंतर्गत जोड़ के उसको एक परिवार मान के दोनों को 5+5 लाख का जो है लाभ दिया जाएगा। उनका भी कार्ड जो है जैसे ही वो 70 वर्ष पार करते हैं, पूरा करते हैं, तो उनका भी कार्ड बनाया जा सकता है
1: जी। आपसे ये जानना चाहेंगे भास्कर साहब कि आयुष्मान भारत डिजिटल जो मिशन है वो क्या है, उसका दायरा और किस तरह से जो उसकी प्रगति है और आम लोगों तक क्या उसकी पहुंच है, इस विषय में बताइए।
2: ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है ये भारत सरकार की ये बहुत ही महत्वाकांक्षी और फ्यूचरिस्टिक योजना है, जो आने वाले जो तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इस तरह के जो भी डेवलपमेंट है, इन सब का लाभ किस तरह से हेल्थ सेक्टर में लाया जाए और उससे जो जो लाभार्थी हैं, जो सिटीज़न हैं, नागरिक है, उनको बेहतर सेवाएं दिया जाए, इसके लिए ये स्कीम बेसिकली बना गया है। इसका उद्देश्य ये है कि जो पूरे देश में अलग अलग अस्पताल हैं या कोई लैब हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर हैं, जो निजी अस्पताल भी हैं और सरकारी अस्पताल भी हैं, इन सभी को इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल तरीके से जोड़ना, ताकि जो भी मरीज़ हैं उनके जो आज के दिन में जो हेल्थ रिकॉर्ड बनते हैं, कोई डॉक्टर की डॉक्टर पर्ची लिखते हैं, या कहीं आप भर्ती होते हैं तो उसका डिस्चार्ज रिपोर्ट मिलता है, या कहीं आप टेस्ट कराने जाते हैं तो उसका टेस्ट रिपोर्ट मिलता है, आज के दिन में हमारे पास एक कागज़ में ये सारी चीज़ें उपलब्ध है। इस योजना का उद्देश्य ये है कि इन सभी को डिजिटाइज़ किया जाए, ताकि डिजिटल तरीके से इन सभी कागज़ों को एक साथ रखा जाए, ताकि कोई भी व्यक्ति एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल जाए तो इतना बड़ा कागज़ों का गट्ठा ले जाने के बजाय ये डिजिटल माध्यम से एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल आसानी से ये डेटा चला जाए। और जैसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल हिस्ट्री, ये किसी भी व्यक्ति को बचपन से ले कर बड़े होने तक जो भी अलग अलग समस्याएँ हुई हैं स्वास्थ्य के, उन सब की जानकारी हो साथ में, ताकि जब भी आप एक नए केस के लिए, नए इश्यू के लिए डॉक्टर के पास जाए तो उनको पता हो कि अच्छा 2 साल पहले क्या हुआ, उस समय आपने क्या दवाई ली, उससे क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, ताकि आपको आज बेहतर ट्रीटमेंट मिल सके। सो जैसे UPI के माध्यम से आज हम डिजिटल ट्रांजैक्शन हर जगह कर पा रहे हैं, इसी तरह ये पूरा तंत्र जो है एक डिजिटल इकोसिस्टम बनाकर जो नागरिक है उनको बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ देना, और सारे हेल्थ सर्विसेज को एक मोबाइल ऐप के माध्यम से, टेली कंसल्टेशन के माध्यम से और लेटेस्ट तकनीक को उपयोग करके ये दूर दराज इलाकों में भी ये सेवाएं को और

0: स्पेशली सेवाओं को बेहतर तरीके से देने का एक ये प्रयास है। इसके अंतर्गत सभी नागरिकों को एक यूनिक हेल्थ आईडी, जो आभा नंबर कहते हैं, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट दिया जा रहा है। अभी तक लगभग 98 करोड़ लाभा आभा नंबर बन चुके हैं, और इसके माध्यम से जहां आप अस्पताल में जाएं तो वहां इस नंबर से पंजीकरण हो, ताकि जहां जहां पर भी आप जा रहे हैं उन सभी जो दस्तावेज है डिजिटल रूप में एक जगह पे उपलब्ध हो, ताकि आपको आगे बेहतर सेवाएं मिल सके।
1: जी हाँ, यानी कोशिश कुल मिलाकर ये है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की, कि जो रोगी हैं, मरीज हैं, उन्हें अपनी पर्चियाँ, पुरानी रिपोर्ट, फाइलों के बंडल लेकर के घूमने की ज़रूरत न पड़े और उपचार उन्हें सरलता से उपलब्ध हो। हमारे श्रोता ठाणे महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, गुरुनाथ जी। जी गुरुनाथ जी, कहिए क्या है प्रश्न आपका?
2: हाँ जी सर, नमस्कार।
1: नमस्कार
2: सर, मेरा तो दो क्वेश्चन है छोटे छोटे। ये जो आयुष्मान कार्ड है उसके अंतर्गत दायरे में के मतलब कौन सी बड़ी बड़ी बीमारियां जो होती है हेल्थ के रिलेट, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। और ये जो कितने मतलब प्राइवेट सेक्टर सरकारी हॉस्पिटल सभी इसमें जुड़े हुए हैं। और मेरा तीसरा सवाल है, जब कोई प्राइवेट या सरकारी हॉस्पिटल इसको कभी कभी देखा गया एक्सेप्ट नहीं करते हैं, स्वीकार नहीं करते बिल के बारे में जब बोला जाता है, तो इसके बारे में कंप्लेंट कहाँ की जा सकती है इसके बारे में?
0: गुरुनाथ जी, ये प्रश्न पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे मैं पहले कह रहा था, इस योजना के अंतर्गत 27 स्पेशलिटीज़ के अंतर्गत लगभग 1961 प्रोसीजर, जिसमें नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, हृदय रोग के संबंधित सभी रोग, डायलिसिस, आँख के संबंधित रोग, और इस तरह के कई सारे जो स्पेशलिटी है इसके अंतर्गत, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट है और कैटरैक्ट ऑपरेशन है, और जैसे गॉल ब्लैडर रिमूवल है, आई मीन 1961 अलग अलग प्रोसीजर हैं। लगभग जो भी बीमारियां होती हैं आम तौर पे, जिसमें आपको सर्जरी करानी पड़े या किसी में आपको भर्ती करना पड़े एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, जितना भी उसमें आवश्यकता हो, इस तरह के सभी बीमारियां कवर हैं। जैसे मैं कहूँगा कि लगभग सभी बीमारियाँ जो हैं इसमें कवर्ड हैं। और जहाँ तक ट्रीटमेंट का सवाल है, पूरे भारत में लगभग 39,000 अस्पताल हैं जहाँ पर आप ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आप महाराष्ट्र से हैं तो ज़रूरी नहीं है कि केवल महाराष्ट्र में ही आपको ये लाभ मिलेगा। आप अगर गुजरात जाएं या दिल्ली आएं या कहीं भी अगर जाना पड़ा आपको और आपको वहाँ पर ट्रीटमेंट लेना पड़ा, तो इस योजना के अंतर्गत आप अपना आयुष्मान कार्ड दिखा कर आप उसमें लाभ ले सकते हैं। तो प्राइवेट में 18,000 से अधिक अस्पताल हैं जो इसमें कवर हैं, जो आपको ट्रीटमेंट दे सकते हैं पूरे देश भर में। तीसरा प्रश्न आपका ये था कि अगर कोई अस्पताल आपको मना करे या पैसा मांगे, तो मैं बता दूं ये बिल्कुल ही इसमें बिल्कुल अलाउड नहीं है। किसी भी तरह का पैसा मांगना या ले देना इसमें ज़रूरत नहीं है। और कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम हो तो आप, जैसे मैंने कहा, 1-4-555 1-4-5-5-5 पर आप कॉल करके तुरंत एक SOS ग्रीवांस, हम इसको कहते हैं, कि जिसको 5 घंटे के भीतर एक मतलब बहुत ही जल्द इस तरह के कंप्लेंट को हम लेते हैं, बहुत ही सीरियस गंभीरता पूर्वक लेते हैं और इंश्योर करते हैं कि कोई आपसे तुरंत बात करे, आपके जो लोकल डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर होते हैं उनसे बात करें और किसी और उस अस्पताल को बताएं, ताकि आपको समय पर सेवा मिल सके। तो ये एक बहुत ही बड़ा तंत्र है, पूरे देश भर में ये चल रहा है, ताकि जो लाभार्थी हैं उनको किसी भी तरह का तकलीफ ना हो और उनको समय पर सेवा मिल सके।
1: जी, तो आपके लिए मैं हेल्पलाइन नंबर फिर से दोहरा देता हूँ, 1-4-555-1-4-5-5-5। इस पर यदि आपकी कोई भी समस्या है तो आप सूचित कर सकते हैं और उसमें समाधान अवश्य होगा। और हमारे ये श्रोता भी महाराष्ट्र से हैं, सोलापुर महाराष्ट्र से, प्रकाश रावत। जी रावत जी, कहिए क्या है प्रश्न आपका?
3: मैं प्रकाश रावत सोलापुर महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। मेरा ये सवाल है कि दो तीन बार में एडमिट होने के बाद, पुनः फिर से एडमिट होने के बाद जो खर्चा आएगा वो आयुष्मान में कवर हो जाएगा? दूसरा ये सवाल है कि 18 कोटी को नागरिकों को कैंप लगाकर आयुष्मान कार्ड वितरित होना चाहिए।

0: से मेरी गिनती है।
1: प्रकाश रावत जी, पहले मैं बता दूं, ये जो 5 लाख का प्रति परिवार प्रति साल का जो कवर है, मान लीजिए 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है और अगले साल 31 मार्च तक ये 5 लाख का है, तो अगले साल 1 अप्रैल से फिर से 5 लाख हो जाएगा। इसका मतलब प्रति साल आपको 5 लाख का कवर मिलेगा। तो इसमें कोई बंधन नहीं है कि आप केवल एक बार ट्रीटमेंट ले सकते हैं या 2 बार ट्रीटमेंट ले सकते हैं, जितनी आपकी आवश्यकता हो, जितने बार आपको जाने की अस्पताल जाने की आवश्यकता पड़े, उतने बार आप इसका योजना के अंतर्गत आप लाभ ले सकते हैं। और महाराष्ट्र सरकार, जहाँ तक हमें पता है, जगह जगह पर ये कैंप लगा कर कार्ड बना रही है। मैं तो कहूँगा, आपके पास अगर मोबाइल फ़ोन है तो आप अपने खुद कार्ड बना सकते हैं और आपके अड़ोस पड़ोस के भी कार्ड जिनकी आवश्यकता है वो बनाकर उनकी सहायता कर सकते हैं। आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर या फिर आयुष्मान व्हाट्सएप चैटबॉट के माध्यम से ये कार्ड आप खुद बना सकते हैं। और महाराष्ट्र सरकार भी जगह जगह पर ये कैंप लगाकर कार्ड बना रही है, तो आपके यहाँ पर भी ये कार्ड बन रहे होंगे।
2: अच्छा, ये देखिए वास्कर साहब, कि हमारे यहाँ जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं जो CGHS स्कीम के लाभार्थी हैं, यदि वो ऐसी जगह रहते हैं कि वो उन्हें वहाँ लाभ उसका नहीं मिल रहा है, तो क्या वो आयुष्मान के लाभार्थी होने के पात्र हैं?
1: बिल्कुल, जो आयुष्मान व्यय वंदना है, जो 70 वर्ष या उससे अधिक के लाभार्थियों को कवर करने का स्कीम है, इसके अंतर्गत अगर आप CGHS या किसी राज्य सरकार के स्कीम में कवर हैं लेकिन आपको लगता है कि PMJ के अंतर्गत जो लगभग 39,000 अस्पतालों में आपको लाभ लेने से बेहतर आपको लाभ ले लेना है, तो आप उस योजना को ना चुनकर PMJ व्यय वंदना को चुन सकते हैं। आप इसमें कार्ड बना सकते हैं और कार्ड बनाते समय आपके हुए वाली डिक्लेयर करना होगा कि हम CGHS छोड़कर हम इस न्याय योजना में शामिल होना चाहते हैं।
2: जी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के संयुक्त सचिव किरण गोपाल वास्कर जी, आप हमारे स्टूडियो में पधारे, हमारे साथ आपने चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह सोमवार रात ठीक 9:30 बजे एक नया विषय लेकर फिर होंगे हाजिर। आज्ञा दीजिए, मैं हूं मुनीश शर्मा। नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय आतंकरोधी नीति और रणनीति प्रहार सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में प्रहार के 7 स्तंभों पर चर्चा हुई। इनमें आतंकवाद की रोकथाम, उससे निपटने की कार्रवाई, आंतरिक क्षमताओं का एकीकरण, मानवाधिकार, आतंकवाद के लिए अनुकूल परिस्थितियों को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में समन्वय तथा पूरे समाज की भागीदारी से पुनर्प्राप्ति और लचीलापन शामिल है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से 2026 के बीच सरकार 36 देशों से 288 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाई है। श्री शाह ने नया प्रत्यर्पण पोर्टल भी शुरू किया। ये विदेशों में मौजूद भगोड़ों को भारत वापस लाने के प्रयासों में समन्वय और तेजी लाने में मदद करेगा। उन्होंने राज्य पुलिस बलों से केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर काम करने के लिए समर्पित टीमें गठित करने का आग्रह किया। भानु प्रताप की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार के निपटान, भुगतान और संदेश प्रणालियों के एकीकरण और केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राओं से संबंधित पहलों के समय पर कार्यान्वयन के लिए कदम उठाने पर सहमत हुए हैं। दोनों पक्षों ने आज मुंबई में निवेश संबंधी भारत यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के दौरान इस समझौते पर सहमति व्यक्त की। बैठक की सह अध्यक्षता वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अबुधाबी निवेश प्राधिकरण के संबंध प्रबंध निदेशक शेख हामिद बिन जायद अल नहयान ने की। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ाने के लिए ऊर्जा, उद्योग, बुनियादी ढांचा और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों की पहचान की गई है। केंद्र सरकार कर्नाटक और महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति का आकलन करने के

0: ये टीमें भेजेगी। नई दिल्ली में रबी फसल अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही। सरकार ने आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत की। ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एक एकीकृत डिजिटल मंच उपलब्ध कराएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य पशुधन बीमा सेवाओं को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और सुलभ बनाना है। सर्वोच्च न्यायालय ने 2,000 रुपए से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये शुल्क 15 अक्टूबर से प्रभावी होने हैं। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा पार कर आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। ये कार्रवाई 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। भारत और मंगोलिया के बीच आज से सीधी विमान सेवा शुरू हो गई है। नई दिल्ली और उलानबटार के बीच नियमित उड़ान शुरू होने से दोनों राजधानियों के बीच यात्रा का समय करीब 5 घंटे रह जाएगा। मंगोलिया की हुनू एयर द्वारा संचालित ये सेवा हर सोमवार को उपलब्ध होगी। सीधी विमान सेवा से पर्यटन, चिकित्सा और व्यापार सहित कई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच आवागमन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इस सेवा की घोषणा पिछले वर्ष अक्टूबर में नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंगोलिया के राष्ट्रपति यू खुरेल सुख की संयुक्त संवाददाता सम्मेलन के दौरान की गई थी। सेंसेक्स 6 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा। 1,124 अंक घटकर 72,772 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 360 अंक गिरकर 22,780 दर्ज हुआ। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज भी पदक जीतने का सिलसिला जारी रखा है। निशानेबाजी, क्रिकेट, कुराश, एथलेटिक्स और मुक्केबाजी में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। भारत ने आज अपने खाते में 8 और पदक जोड़े हैं। पुरुष क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। लंबी दूरी के धावक गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ के फाइनल में 3:36.72 सेकेंड के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ रजत पदक जीता। वहीं महिलाओं की 5000 मीटर फाइनल में पारुल चौधरी ने कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय सायरा मुज्तबा। Union Home Minister Amit Shah today inaugurated the conference on Prahar, National City Policy and Strategy in New Delhi. The conference deliberated upon the 7 pillars of Prahar, including prevention, response, aggregating internal capacities, human rights, attenuating conditions for terrorism, aligning international efforts, and recovery and resilience through a whole-of-society approach. Speaking on the occasion, the Home Minister said, "The government has adopted a zero-tolerance policy against all forms and manifestations of terrorism." He highlighted that from 2019 to 2026, the Narendra Modi government successfully brought back 288 fugitive criminals to India from 36 countries. Mr. Shah said as a result of better coordination among agencies, more than 40 modules of Shehzad Bhatti network involved in cross-border smuggling of weapons, explosives and narcotics were busted. More than 100 FIRs were registered and 350 individuals were arrested across 15 states. He said at the same time, the government declared Shehzad Bhatti network a terrorist organization under Unlawful Activities Prevention Act. In turn, the UAE have agreed to take steps for the timely implementation of initiatives relating to settlement of trade in local currency, integration of payment and messaging systems, and central bank digital currencies. The two sides reached the agreement during the 14th meeting of the India-UAE High-Level Joint Task Force on Investments in Mumbai today. It was co-chaired by Commerce and Industry Minister Piyush Goyal and Managing Director of Abu Dhabi Investment Authority, Sheikh Hamad bin Zayed Al Nahyan. Addressing media after the meeting, Mr. Goyal said India has set a target of raising its total exports of goods and services to $1 trillion this year from $863 billion last year. He said the two countries aim to take bilateral trade to $200 billion by 2032.
2: The comprehensive

0: Delhi today. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan said, the governments of Maharashtra and Karnataka have declared drought in large parts of their states. He said a central team will be sent to Karnataka on 3rd of October to assess the drought situation. The Agriculture and Farmers Welfare Minister today addressed the National Agriculture Conference Rabi Campaign 2026 in the national capital today. He called upon states to complete preparations for the Rabi season through coordinated planning, scientific assessment and close field-level monitoring. Mr. Chauhan said that amid climate change, erratic rainfall and water constraints, food security and higher farm incomes would require data-driven planning and stronger center-state coordination rather than conventional approaches. The government today launched Pashudhan Bima Portal in New Delhi. Speaking on the occasion, Union Minister for Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Rajiv Ranjan Singh said that this initiative is aimed at making livestock insurance services more transparent, efficient, accessible and technology-driven. Mr. Singh said that this portal is an important step towards protecting the livelihood of farmers and fulfilling the vision of Prime Minister Narendra Modi to increase the farmers' income, safeguard the agricultural and livestock assets, and promote the use of technology. India continued its impressive medal-winning run at the Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan today, with athletes making their mark across shooting, cricket, kurash and boxing. The country added 8 more medals to its tally, while the men's cricket team advanced to the semi-finals. In athletics, India secured a double podium finish in the men's javelin throw, with Yashveer Singh clinching silver and Rohit Yadav bagging the bronze. Srishankar Murali clinched the silver medal in the men's long jump, while Srishankar's competition ended prematurely after he suffered an injury during his fourth attempt. President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi congratulated the medal winners and wished for many more successes ahead. And that is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं सर फिरोजी। भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार उपायों को लागू करने पर सहमत। दोनों देशों का 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को 200 अरब डॉलर करने का लक्ष्य। भारत ने पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाई। नेपाल में हिमलुंग पर्वत के बेस कैंप में हिमस्खलन में 4 लोगों की मौत, 12 लापता। ईरान ने अमेरिका के विमान प्रतिबंधों के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र की विमानन निगरानी संस्था के समक्ष औपचारिक विरोध दर्ज कराया। और एशियाई खेलों में भारत ने 8 और पदक जीते। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यशवीर ने रजत और श्रीशंकर मुरली ने लंबी कूद, गुलवीर सिंह ने 1500 मीटर दौड़ तथा ईशा सिंह ने भी निशानेबाजी में रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार के निपटान, भुगतान और संदेश प्रणालियों के एकीकरण तथा केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राओं से संबंधित पहलों के समय पर क्रियान्वयन के लिए कदम उठाने पर सहमत हुए हैं। दोनों पक्षों ने आज मुंबई में निवेश संबंधी भारत यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के दौरान इस समझौते पर सहमति जताई। बैठक की सह अध्यक्षता वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अबुधाबी निवेश प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक शेख हामिद बिन जायद अल नहयान ने की। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ाने के लिए ऊर्जा, उद्योग, बुनियादी ढांचा और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों की पहचान की गई है।
2: हम सालाना और नियमित रूप से बैठकें करते रहे हैं और दोनों पक्षों के व्यापारिक समूहों की संतुष्टि के अनुसार ठोस और महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान कर रहे हैं। आज हमने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, पोत निर्माण, आधुनिक बंदरगाहों के विकास, खाद्य सुरक्षा, विशेष रूप से खाड़ी क्षेत्र के लिए कृषि नवाचार, लॉजिस्टिक्स के विस्तार, AI और उभरती प्रौद्योगिकियों पर मिलकर काम करने, ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा फिनटेक क्षेत्र में अपने सहयोग का विस्तार करने जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को बढ़ाने पर भी चर्चा की है।
3: एक्सपेंडिंग आवर कोऑपरेशन इन द फिनटेक सेक्टर।
1: इस बीच भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच द्विपक्षीय व्यापार वित्त वर्ष 2025-26 में 101.25 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जबकि

0: जबकि गैर तेल व्यापार 2025 में 76.2 अरब डॉलर रहा। दोनों पक्ष 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार में 200 अरब डॉलर के साझा लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं। संयुक्त कार्यबल ने ओडिशा में प्रस्तावित 11.5 अरब डॉलर के एकीकृत एल्यूमिनियम परिसर और गुजरात में फूड पार्क परियोजना सहित कई निवेश परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से 5 अक्टूबर तक अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे इस बुधवार से शुरू होने वाली 2 दिवसीय G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। बैठक से इतर श्री गोयल अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इन बैठकों में किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। श्री गोयल अमेरिका के वाणिज्य मंत्री के साथ भी द्विपक्षीय बैठक करेंगे। भारत ने नई दिल्ली में आज हुई भारत फिजी द्विपक्षीय संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक में स्वतंत्र, खुले, समावेशी और सुरक्षित हिंद प्रशांत क्षेत्र के अपने दृष्टिकोण में फिजी और प्रशांत द्वीप देशों के महत्व को दोहराया है। बैठक की सह अध्यक्षता रक्षा मंत्रालय में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और फिजी के रक्षा तथा पूर्व सैनिक मामलों के स्थायी सचिव मेसन स्मिथ ने की। बैठक में सैन्य प्रशिक्षण क्षमता निर्माण, सेनाओं के बीच सहयोग, समुद्री सुरक्षा, साइबर प्रशिक्षण, रक्षा उद्योग में सहयोग और सशस्त्र सेनाओं के बीच संस्थागत सहयोग बढ़ाने सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। ये कार्रवाई 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक को महत्वपूर्ण पड़ाव बताया।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। नेपाल के मनांग जिले में हिमलुक पर्वत के आधार शिविर में हिमस्खलन होने से 4 लोगों की मृत्यु हो गई और 12 अन्य लापता हैं। मनांग के मुख्य जिला अधिकारी मुक्ति प्रसाद खनाल के अनुसार हिमस्खलन के समय विभिन्न पर्वतारोहण अभियान के कई अभियान गाइड और सहायक कर्मचारी 7126 मीटर ऊंचे बेस कैंप में थे। अधिकारियों ने बताया कि घटना के बाद 11 लोगों से संपर्क हुआ है, जबकि हिमस्खलन के समय बेस कैंप में 27 लोगों के मौजूद होने की आशंका है। प्रभावित क्षेत्र में हेलीकॉप्टर की तैनाती के साथ बचाव अभियान जारी है। नेपाल के मनांग समेत कई इलाकों में हुई तेज बारिश के कारण भूस्खलन और बाढ़ के बाद मौसम में सुधार होने से बचाव कार्य में मदद मिली है। भारत ने श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के लिए आज 3 टन क्षय रोग रोधी दवाओं की खेप भेजी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत श्रीलंका की सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत और मंगोलिया के बीच आज से सीधी विमान सेवा शुरू हो गई है। नई दिल्ली और उलान बटार के बीच नियमित उड़ान शुरू होने से दोनों राजधानियों के बीच यात्रा का समय करीब 5 घंटे रह जाएगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मंगोलिया की हुनू एयर द्वारा संचालित ये सेवा हर सोमवार को उपलब्ध होगी। इससे पहले यात्रियों को पेइचिंग या इंचियोन जैसे स्थानों पर विमान बदलना पड़ता था और यात्रा में लगभग 13 से 18 घंटे लगते थे। सीधी विमान सेवा से पर्यटन, चिकित्सा और व्यापार सहित कई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच आवागमन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इससे दोनों देशों के बीच सामान की तेज और कम लागत में आवाजाही संभव होने से द्विपक्षीय व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। इस सेवा की घोषणा पिछले वर्ष अक्टूबर में नई दिल्ली में मंगोलिया के राष्ट्रपति यू खुरेल सुख और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त

0: संवाददाता सम्मेलन के दौरान की गई थी। भारत और मंगोलिया एक दूसरे के नागरिकों को वीजा मुक्त यात्रा की सुविधा देते हैं। इसके अलावा ई वीजा की सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे दोनों देशों के बीच यात्रा और आसान हो गई है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: ईरान ने अपने विमानन क्षेत्र पर अमरीका के प्रतिबंधों के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र की विमानन निगरानी संस्था अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में औपचारिक विरोध दर्ज कराया है। ईरान का उद्देश्य निलंबित उड़ान मार्गों को फिर शुरू करना है। ईरान के नागरिक उड्डयन संगठन के प्रमुख अबुजर शिरौदी ने सरकारी मीडिया को बताया कि विदेश मंत्रालय के समन्वय से दर्ज कराए गए विरोध में प्रतिबंधों के कारण उड़ानों में आए व्यवधान से जुड़े दस्तावेज शामिल हैं। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज भी पदक जीतने का सिलसिला जारी रखा। निशानेबाजी, क्रिकेट, कुराश, एथलेटिक्स और मुक्केबाजी में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। भारत ने आज अपने खाते में 8 और पदक जोड़े हैं। पुरुष क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। लंबी दूरी के धावक गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ के फाइनल में 3:36.72 सेकेंड के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ रजत पदक जीता। भालापेक स्पर्धा में यशवीर सिंह ने 85.14 मीटर के शानदार थ्रो के साथ रजत पदक अपने नाम किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार उपायों को लागू करने पर सहमत। भारत ने पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाई। और एशियाई खेलों में भारत ने 8 और पदक जीते। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यशवीर ने रजत और ईशा सिंह ने भी निशानेबाजी में रजत पदक जीता। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I am R.S. Raghu with the World News. The headlines. India and UAE agree on timely implementation of trade in local currency, aim to boost bilateral trade to $200 billion by 2032. India marks 10th anniversary of surgical strikes on terrorists' hideouts in Pakistan. In Nepal, 4 persons killed and 12 others missing as avalanche hits base camp of Mount Himlo. Iran issues formal protest to UN aviation watchdog over US flight sanctions. And at Asian Games, India add 8 more medals. In javelin throw, Yashvir Singh takes silver, Sri Shankar Murli in long jump, Gulbir Singh in 1500-meter race and Isha Singh in shooting also strike silver. India and the UAE have agreed to take steps for the timely implementation of initiatives relating to settlement of trade in local currency, integration of payment and messaging systems, and central bank digital currencies. The two sides reached the agreement during the 14th meeting of the India-UAE High-Level Joint Task Force on Investments in Mumbai today. It was co-chaired by Commerce and Industry Minister Piyush Goyal and Managing Director of Abu Dhabi Investment Authority Sheikh Hamid bin Zayed Al Nahyan. Addressing the media after the meeting, Mr. Goyal said, India has set a target of raising its total exports of goods and services to $1 trillion this year, from $863 billion last year. He said the two countries aim to take bilateral trade to $200 billion by 2032.
3: The Comprehensive Economic Partnership Agreement is now 4 years old. We have doubled our bilateral trade to $100 billion and have set an ambitious target to double it to $200 billion by 2032. The UAE believes in India. They have already invested $25 billion and is the 7th largest FDI source. The ultimate objective of taking investments from UAE to $100 billion in the years to come.
2: India has reiterated the importance accorded to Fiji and the Pacific Island countries in its vision of a free, open, inclusive and secure Indo-Pacific during the second India-Fiji Bilateral Joint Working Group meeting held in New Delhi today. India and Poland also held joint working group meeting in New Delhi. Both sides

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हर सिंगार आपके लिए स्वागत करती हूं मैं कुसुम। ये स्याह रात, ये घटाएं, ये डूबे डूबे से नजारे, चांद खोया है, गुमसुम है सितारे, ये मध्यम मध्यम हवाओं की रवानी सुनाती है कोई मोहब्बत की दास्तां पुरानी।

ये रातें नई पुरानी, ये चंचल हवा के झोंके हमसे कह रहे हैं कि बरसात का मेहमान गुजर गया है, लेकिन आसमान पर सफेद बादलों के गुच्छे अभी भी तैर रहे हैं। फिजाओं में एक नए मौसम के आने की खुशबू तैर रही है और कह रही है कि दिल में उम्मीदें हैं, खुशियां हैं, तो हर मौसम सुख का मौसम है। कैफ भोपाली साहब लिखते हैं कि दिल में आहट सी हुई रूह में दस्तक गूंजी, किसकी खुशबू ये मुझे मेरे सिराने आई। कैफ साहब की कलम जहां खुशबू के अफसाने गढ़ती है, तो वहीं चांद के पार का रास्ता भी दिखाती है फिल्म पाकीज़ा के इस गीत में।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

जी हाँ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम चल रहा है हर श्रृंगार और आज इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ कुसुम। जिस घड़ी डूब के आहंग में तू गाती है, आयतें पढ़ती हैं साजों पे सदा तेरे लिए, दम बदम खैर मनाते हैं तेरी चंगो रबाब, सीना ए नए से निकलती है दुआ तेरे लिए। नमन सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर।

सज रही है ये रात जुगनू सितारों के जेवर से, पलकों पर सुनहरे ख्वाब सजाए ये रात समर रही है। और ये और बात है कि कुछ ख्वाब टूटे हुए कांच से बजते हैं और दिल के कोरों पर छुप जाते हैं। दिल में एक कसक सी उठती है और एक चेहरा चमक उठता है, वो हसीन चेहरा जिसे देखकर दिल महकता है मोहब्बत की खुशबू से और कहता है कि आप यूं फासलों से गुजरते रहे, दिल पे कदमों की आवाज़ आती रही।

मोहब्बत में पागल रूहें महबूब की गली की खाक को भी सलाम करती हैं। हर कदम पर अपने पीछे प्यार के महकते किस्से छोड़ती जाती हैं। हवाएं धीमी धीमी उनके गीत दोहराती हैं और जमी के जर्रे जर्रे पर मोहब्बत की रोशनी के फूल खिल उठते हैं। फिर जब कोई जवान दिल किसी फूल को छू लेता है तो मोहब्बत फिर से जिंदा हो उठती है। फिर दो दिल मिलते हैं और किसी प्यार भरे लम्हे में ये गीत उनकी धड़कनों पर बज उठता है।

इसी गीत के साथ ही हर सिंगार यहीं तक, लेकिन आप जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। फिलहाल इस चैनल पर अब आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय आतंकरोधी नीति और रणनीति प्रहार सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में प्रहार के 7 स्तंभों पर चर्चा हुई। इनमें आतंकवाद की रोकथाम, उससे निपटने की कार्रवाई, आंतरिक क्षमताओं का एकीकरण, मानवाधिकार, आतंकवाद के लिए अनुकूल परिस्थितियों को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में समन्वय तथा पूरे समाज की भागीदारी से पुनर्प्राप्ति और लचीलापन शामिल है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से 2026 के बीच सरकार 36 देशों से 288 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाई है। श्री शाह ने नया प्रत्यर्पण पोर्टल भी शुरू किया। ये विदेशों में मौजूद भगोड़ों को भारत वापस लाने के प्रयासों में समन्वय और तेजी लाने में मदद करेगा। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार के निपटान, भुगतान और संदेश प्रणालियों के एकीकरण तथा केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राओं से संबंधित पहलों के समय पर कार्यान्वयन के लिए कदम उठाने पर सहमत हुए हैं। दोनों पक्षों ने आज मुंबई में निवेश संबंधी भारत यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के दौरान इस समझौते पर सहमति व्यक्त की। बैठक की सह अध्यक्षता वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अबुधाबी निवेश प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक शेख हामिद बिन जायद अल नहयान ने की। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ाने के लिए ऊर्जा, उद्योग, बुनियादी ढांचा और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों की पहचान की गई है। केंद्र सरकार कर्नाटक और महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए टीमें भेजेगी। नई दिल्ली में रबी फसल अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही। सरकार ने आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत की। ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच उपलब्ध कराएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य पशुधन बीमा सेवाओं को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और सुलभ बनाना है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वेलिंग आयोग की 70वीं बैठक में वेल और अन्य समुद्री स्तनधारी जीवों के संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया है। ऑस्ट्रेलिया के हुबार्ट में आज से शुरू हुई 5 दिवसीय बैठक में भारत ने कहा कि समुद्री स्तनधारी जीवों के प्रभावी संरक्षण के लिए संबंधित देशों, वैज्ञानिक संस्थानों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच लगातार सहयोग जरूरी है। भारत और मंगोलिया के बीच आज से सीधी विमान सेवा शुरू हो गई है। नई दिल्ली और उलानबटार के बीच नियमित उड़ान शुरू होने से दोनों राजधानियों के बीच यात्रा का समय करीब 5 घंटे रह जाएगा। मंगोलिया की हुनू एयर द्वारा संचालित ये सेवा हर सोमवार को उपलब्ध होगी। सीधी विमान सेवा से पर्यटन, चिकित्सा और व्यापार सहित कई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच आवागमन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज भी पदक जीतने का सिलसिला जारी रखा। निशानेबाजी, क्रिकेट, कुराश, एथलेटिक्स और मुक्केबाजी में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। भारत ने आज अपने खाते में 8 और पदक जोड़े। पुरुष क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। अब तक भारत कुल मिलाकर 45 पदक जीत चुका है। इनमें 4 स्वर्ण, 20 रजत और 21 कांस्य पदक शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में अपना अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीतने वाले जेवलिन थ्रोअर यशवीर सिंह और कांस्य पदक जीतने वाले रोहित यादव को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने महिलाओं की 5000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतने पर पारुल चौधरी को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने सभी एथलीटों को उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एशियाई खेल में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर यशवीर सिंह और कांस्य पदक हासिल करने पर रोहित यादव को बधाई दी। राष्ट्रपति ने सभी खिलाड़ियों को भविष्य में और अधिक सफलताओं के लिए शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय आर एस रघु। Union Home Minister Amit Shah today inaugurated the conference on Prahar National City Policy and Strategy in New Delhi. The conference deliberated upon the seven pillars of Prahar, including prevention, response, aggregating internal capacities, human rights, attenuating conditions for terrorism, aligning international efforts in recovery and resilience through a whole-of-society approach. Speaking on the occasion, the Home Minister said the government has adopted a zero-tolerance policy against all forms and manifestations of terrorism. He highlighted that from 2019 to 2026, the Narendra Modi government successfully brought back 288 fugitive criminals to India from 36 countries. Mr. Shah said, as a result of better coordination among agencies, more than 40 modules of Shahzad Bhatti network involved in cross-border smuggling of weapons, explosives and narcotics were busted, more than 100 FIRs were registered and 350 individuals were arrested across 15 states. He said, at the same time, the government declared Shahzad Bhatti Network a terrorist organization under Unlawful Activities Prevention Act, UAPA. India and the UAE have agreed to take steps for the timely implementation of initiatives relating to settlement of trade in local currency, integration of payment and messaging systems and central bank digital currencies. The two sides reached the agreement during the 14th meeting of the India-UAE High-Level Joint Task Force on Investments in Mumbai today. It was co-chaired by Commerce and Industry Minister Piyush Goyal and Managing Director of Abu Dhabi Investment Authority Sheikh Hamid bin Zayed Al Nahyan. Addressing media after the meeting, Mr. Goyal said India has set a target of raising its total exports of goods and services to $1 trillion this year from $863 billion last year. He said the two countries aim to take bilateral trade to $200 billion by 2032.
3: The Comprehensive Economic Partnership Agreement is now 4 years old. We have doubled our bilateral trade to $100 billion and have set an ambitious target to double it to $200 billion by 2032. The UAE believes in India. They have already invested $25 billion and is the seventh largest FDI source. The ultimate objective of taking investments from UAE to $100 billion in the years to come.
2: The center will dispatch teams to Karnataka and Maharashtra to assess the drought situation in the two states. Talking to reporters in New Delhi today, Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan said the government

0: Good evening and welcome to Market Mantra. Today being Monday, we will also take calls from you, our listeners, on market-related queries. But do remember, listeners, that we do not address stock or company-specific queries. You can call us on 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do remember to prefix the Delhi STD code 011 in front of these numbers. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Manoj Pathak.
1: Namaskar, Market Mantra ki Tazank mein aapka swagat hai. आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताज़ा खबरों को लेकर हाजिर हैं। आज सोमवार है और आज के दिन आप हमारे साथ बातचीत करते हैं। आज भी हमसे आप पूछ सकते हैं कारोबार, अर्थव्यवस्था या शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी सवाल। बस ये ध्यान रखिएगा कि हम किसी खास कंपनी या शेयर के बारे में जानकारी आपको नहीं दे सकते हैं। हमसे सवाल पूछने के लिए डायल कीजिए 2331-4444, 2331-0481 या फिर 2371-7106। हमारे साथ खबरों पर चर्चा और आपके सवालों का जवाब देने के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शिशिर सिन्हा। शिशिर जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: जी नमस्कार, धन्यवाद।
1: आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं अनुभा रोहतगी।
0: थैंक यू मनोज। Benchmark domestic indices declined sharply. Sensex tanks over 1100 points. Nifty settles below 22,800. India's industrial output grows by 8% in August this year. And global crude oil prices surge around 3.5%.
1: घरेलू शेयर बाजार में आज हुई भारी गिरावट। सेंसेक्स 1100 अंक से अधिक लुढ़का, निफ्टी 22,800 के नीचे बंद हुआ। देश का औद्योगिक उत्पादन इस वर्ष अगस्त में 8% बढ़ा और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के दाम लगभग 3.5% उछले।

0: individuals and rely on their own judgment for taking any financial decision. Manoj.
1: आइए अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन पहले खबरों से पहले आपको लिए चलते हैं गुड़गांव. हमारे साथ फोन लाइन पर है मनीष. मनीष जी स्वागत आपका, सवाल पूछिए.
2: नमस्कार सर, और मार्केट मंत्रा टीम का बहुत बहुत धन्यवाद. आप लोग बहुत ही गरिमापूर्वक और बहुत ही गंभीरता से आप ये प्रोग्राम चलाते हैं, और किसी भी सस्ती या किसी नॉन सीरियस न्यूज से आप लोग बचते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. मेरा सवाल सर ये है कि जैसे मैं एमएफ में एक्सपोजर है मेरा म्यूचुअल फंड्स में, जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप और थोड़ा सा डेट फंड्स में भी है. अभी काफी टाइम से मैं सोच रहा था कि मैं अपनी एसआईपी रोक दूं, क्योंकि मार्केट ठीक होने का नाम बिल्कुल नहीं ले रही है. हालांकि मेरा मानना यह था कि जब मार्केट गिरी होती है एसआईपी में तभी फायदा होता है, क्योंकि कम एनएवी पे आपको ज्यादा यूनिट मिलती है, तो जब मार्केट उठेगी तो हो जाएगा. लेकिन सर ये काफी टाइम हो गया है, और अब आपको क्या लगता है कि क्या मुझे अपनी एसआईपी रोक कर उसको एफडी की तरफ या डेट फंड की तरफ किस तरफ मुझको डाइवर्ट करना चाहिए सर? थैंक यू.
3: मनीष जी देखिए, आपका ये बहुत अच्छा फैसला है कि आपने डाइवर्सिफाई कर रखा है. लार्ज में भी है, स्मॉल में भी है, मिड में भी है, फ्लेक्सी में भी है, और आपका डेट फंड में भी है. तो ये बहुत अच्छा आपका फैसला है. और ये भी जो आपकी सोच है कि जब बाजार गिरता है तो उससे हमें फायदा ही होगा, यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं कि थोड़ा सा आप एक्सपोजर जो है वो इक्विटी से कम करके आप डेट फंड में जा सकते हैं. और आपने खुद ही कहा कि फिक्स्ड डिपॉजिट या डेट फंड, तो मुझे लगता है कि डेट फंड का विकल्प आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि वहां पर एक निश्चित दौर पे जो है वो आपको ब्याज मिलनी है. तो इसीलिए मुझे लगता है कि वहां जाएं आप. जो आपका मान लीजिए कि 100 रुपये में, अगर मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि अगर 70 रुपये आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगा रखा है, इन चारों को मिला दे अगर फ्लेक्सी, स्मॉल, मिड कैप और लार्ज कैप में, और 30% अगर आपने डेट में लगा रखा है, तो उसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, यानी कि 40 कर दीजिए या 45 कर दीजिए. ये आपके लिए एक लंबे समय का बेहतर विकल्प होगा. एसआईपी बंद मत करिए, ये जो है वो चल रहा है, चलने दीजिए. हो सकता है, कहते हैं कि गिरावट आती है, बिल्कुल गिरावट आई है बहुत, जिसे कहा जाए कि हर दिन निफ्टी और सेंसेक्स जो है वो गिरावट का एक रिकॉर्ड ही बना रहे हैं. पहले हमने तेजी की बात करी थी कुछ समय पहले, अब हम लोग गिरावट की बात कर रहे हैं. तो जैसे शेयर बाजार की भाषा में कहते हैं कि एक आपका एक रेसिस्टेंस लेवल होता है और एक सपोर्ट लेवल जो होता है. अब यहाँ पर जो सपोर्ट लेवल है वो काफ़ी हद तक टूटता हुआ नजर आ रहा है, और वो कहाँ तक जाएगा ईमानदारी से बताएं तो आज के दिन में कहना बहुत मुश्किल है. बाजार में एक और गिरावट की आशंका जो है वो इनकार नहीं किया जा सकता है. तो मेरी राय ये है कि आप बने रहें.
0: जी, एंड लेट्स टेक द नेक्स्ट कॉल. सुदीप्ता इज ऑनलाइन विद अस फ्रॉम कोलकाता. सुदीप्ता, वेलकम टू मार्केट मंत्रा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन.
4: हेलो, नमस्ते.
0: सुदीप, तो आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, आप दोबारा अपना सवाल प्लीज रिपीट करें.
4: अगर कोई शुरू करना चाहता
1: सुदीप, तो हमें लगता है आपकी फोन लाइन में और हमारी फोन लाइन में सीधा संवाद संपर्क नहीं हो पा रहा है. आपकी आवाज कटकट के आ रही है, आप एक बार दोबारा फिर से प्रयास करें. आइए, बात चल रही है गिरावट की. वाकई शेयर बाजार गिरावट के दौर से गुजर रहा है, और आज भी अच्छी खासी गिरावट हुई है. बंदड़िए बाजार पर हावी नजर आ रहे हैं. आज के कारोबार में प्रमुख सूचकांक 1.5% से अधिक घाटे के साथ बंद हुए. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1124 अंक घटकर 72,772 पर बंद हुआ. उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 360 अंक गिरकर 22,780 दर्ज हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तारित बाजार पर ध्यान दें तो मिड कैप 100 इंडेक्स 1.6% और स्मॉल कैप इंडेक्स 1.8% नुकसान के साथ बंद हुआ. यानी कुल मिलाकर लगभग अप्रैल के स्तर पर हम फिर से लौट आए हैं. बाजार में आज शुरुआत से ही कमजोरी बनी रही और लगातार पूरे सत्र में बिकवाल हावी रहे. दरअसल पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने का असर, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के दाम ऊपर जाने, बॉन्ड यील्ड में तेजी आने और विदेशी फंड द्वारा पूंजी निकालने का क्रम जारी रहा, जिससे सभी निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई।
0: Benchmark domestic equity indices declined sharply by over 1.5% today. The Sensex plunged 1,124 points to close at 72,772.

0: The Nifty shed 360 points to settle at 22,780. In the broader market at the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 index tumbled 1.6%, while the Small-Cap 100 index tanked 1.8%. Markets opened with gap down this morning and continued their downward trajectory throughout the session as rising crude oil prices, escalating tensions in West Asia, surging global bond yields and persistent foreign fund outflows weighed heavily on investor sentiment.
1: सेंसेक्स स्पेक पर आज ध्यान दें तो इकलौती एक ही कंपनी मुनाफा कमाने में सफल हुई, बाकी सभी 30 में से 29 कंपनियों के शेयर घाटे में रहे। लाभ हुआ सिर्फ इंफोसिस को, जिसके शेयर 0.2% ऊपर उठकर बंद हुए। घाटा उठाने वालों में प्रमुख कंपनियां रहीं लार्सन और टुब्रो, जिसके शेयर 2.8%, पावर ग्रिड 2.6% और अडानी पोर्ट्स के शेयरों में 2.4% का नुकसान हमने देखा।
0: इन द सेक्टोरल इंडिसेस ऑन द बीएसई ऑल 28 सेक्टर्स एज्ड लोअर। अमंग द टॉप लैगर्ड्स पीएसयू बैंक्स स्किडेड 3.2%, पावर टेलीकम्युनिकेशन यूटिलिटीज लॉस्ट 2.3% ईच and mid-small private banks dropped 2.2%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 3,218 companies declined, shares of 1,271 companies advanced, while shares of 228 companies remained unchanged.
1: नजर डालें रुपए की स्थिति पर तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया आज 17 पैसे कमजोर हुआ, 95.99 रुपए के स्तर पर बंद हुआ।
0: एंड लेट्स टेक आवर नेक्स्ट कॉल। अमित झा इज ऑनलाइन विद अस, ही इज कॉलिंग अस फ्रॉम दिल्ली। अमित, वेलकम टू मार्केट मंत्र, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
1: अमित जी, आप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, लगता है आपका धैर्य चूक गया और आप हमारा संपर्क टूट चुका है। बहरहाल आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले प्रतिक्रिया हम लेना चाहें अपने विशेषज्ञ शिशिर जी से। आज की गिरावट के पीछे मुख्य कारक क्या रहे शिशिर?
2: अब मुझे लगता है अमित शायद जुड़ नहीं पाए हैं, उनकी जगह हमारे पास एक नए कॉलर हैं, इनसे पहले बात कर लें फिर मैं आपके।
0: जी, सो नाउ वी हैव ऑनलाइन विद अस कांता इज कॉलिंग अस फ्रॉम गुरुग्राम। कांता, वेलकम टू मार्केट मंत्र, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
3: जी
0: नमस्ते, सवाल पूछे।
3: मेरा सवाल ये है कि जो पीपीएफ का खाता केनरा बैंक में मैंने खोला है, पीपीएफ का खाता,
0: जी जी,
3: तो मैं ये संतुष्टि करना चाहती हूँ कि 15 साल के अंदर कोई जोखिम नहीं होगा मेरे पैसे में अगर बैंक को कुछ भी हो जाए तो?
2: बिल्कुल नहीं कांता जी, देखिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड चाहे बैंक में आप खोलें या डाकघर में खोलें, ये पूरी तरीके से सरकार की ओर से प्रायोजित होता है, यानी कि इसमें मूल और ब्याज की पूरी गारंटी सरकार की होती है। तो बैंक अगर बंद भी हो जाए या बैंक में अगर किसी भी तरीके का नुकसान भी हो जाए तो वहाँ पर आपके पीपीएफ पे कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि जो भी आपका ब्याज बनता है 15 सालों पर जो मूल है आपका वो आपको पूरा मिलेगा।
1: आइए चले मुंबई, मुंबई से हमारे साथ हैं नियमित श्रोता रत्नाकर। रत्नाकर जी स्वागत आपका, सवाल पूछें।
4: हेलो, गुड इवनिंग सर,
1: स्वागत आपका।
4: मेरा सवाल है कि ये शेयर मार्केट का एक टर्मिनोलॉजी के बारे में मुझे जानना है
1: जी।
4: वो है ओवरऑल एमटीएल, टोटल प्रॉफिट एंड लॉस एंड बुक प्रॉफिट। जब भी हमने शेयर सेल कर दिया तो वो पोर्टफोलियो से सेल हो गया, लेकिन उसके बाद में भी जो प्रॉफिट दिखता है वो किधर एडजस्ट होता है, ये मेरा सवाल है।
2: देखिए रत्नाकर जी, अगर आपने अपने कोई भी शेयर बेचे हैं और अगर वो आपके खरीद कीमत से ज्यादा है तो आपका मुनाफा है। जब आपने बेच दिया पूरी तरीके से, उसके बाद उस शेयर में जो भी बदलाव हो रहा है उससे आपका कोई संबंध तो रह नहीं जाता है, वो जो भी निवेशक उसमें हैं उनके लिए वो मुनाफे की बात होती है। एक और बात आपको रत्नाकर जी ध्यान में रखना चाहिए कि हम लोग कहते हैं कि नोशनल प्रॉफिट, यानी कि कई बार होता क्या है कि आप 100 से वो दाम बढ़ करके 120 पे आ जाते हैं, 125 पे आ जाते हैं, 130 पे आ जाते हैं, आप कहते हैं कि ये 150 होगा तभी जा करके बेचेंगे।
0: बिल्कुल,
2: तो ये जो 150 है वो आपके लिए एक नोशनल प्रॉफिट है, वो अगर हो सकता है कि वो पहुंच भी जाए, हो सकता है नहीं भी पहुंचे, आपकी जो लागत थी वो 100 रुपए की थी। तो जहां तक मुझे लगता है कि आपके प्रश्न का जो सार था वो यही था कि हमने शेयर बेच दिया, हमारा मुनाफा या हमारा जो भी घाटा है वो मेरे ऊपर है, उसके बाद उस शेयर में क्या कुछ होता है जब आप उसमें शेयर धारक ही नहीं रहे तो उसके घाटे और मुनाफे

0: से आपका संबंध नहीं रह जाता।
1: लेट्स टेक द नेक्स्ट कॉल। जितेंद्र इज ऑनलाइन विद अस, ही इज कॉलिंग अस फ्रॉम जयपुर। जितेंद्र, वेलकम टू मार्केट मंत्र, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
2: नमस्कार, ये बोल रहा था कि हम लोग को अभी क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए, क्योंकि मार्केट का काफी दिन से, दो साल से ऐसे ही चल रहा है। तो निफ्टी 50 में हम लोग SIP कर रहे थे, और निफ्टी 50 के IT सेक्टर में हम लोग SIP कर रहे थे, लेकिन IT सेक्टर से थोड़ा सा डर लग रहा है, लेकिन हमको विश्वास है कि वो बहुत अच्छा करेगा आगे। तो क्या हम करें अभी समझ में नहीं आ रहा।
0: जितेंद्र जी, आपके विश्वास की ही जीत होगी। और जहाँ तक हम लोगों ने ये भी दौर देखा कि जब AI को लेकर के काफ़ी बड़ी बातें की जा रही थी, उस दौर में IT पे थोड़े समय के लिए दबाव बना, लेकिन उसके बाद IT शेयरों में बाउंस बैक हुआ। आज भी अगर आप देखें तो कोई एक शेयर जो आज 30 शेयरों में कोई एक आगे आया है, तो वो आपका IT सेक्टर ही है। तो मुझे लगता है कि जब गिरावट का माहौल है, उसमें निश्चित तौर पर आप जैसे निवेशक के लिए एक परेशानी और एक प्रश्न चिन्ह है, दोनों चीज़ें हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आप बने रहें, जो आप कर रहे हैं उसको आप थोड़ा थोड़ा करते रहें। और मेरा ये भी मानना है कि जैसे उसको कहते हैं कि एक सुरक्षा भी आप बना लें, कुछ पैसे जो आपने अपने लगाना चाहते हैं उसको यदि थोड़ा आप उसका विविधीकरण कर दें, बैंक में या डाकघर की बचत योजना में लगा लें। डाकघर की बचत योजना बहुत बेहतरीन है, क्योंकि उसमें मूल और ब्याज दोनों की गारंटी जो है वो सरकार की होती है, तो उसमें आपको कम होने का खतरा नहीं है, और आपके लिए वो एक सुरक्षा का भी काम करेगा। तो आप अगर इस तरीके से विविधीकरण कर लें, तो जो आपका घाटा है, देखिए बाजार के घाटे को कोई पूरा नहीं कर सकता, उसके लिए धैर्य ही एकमात्र चीज है, लेकिन अगर आप विविधीकरण करते हैं तो आप घाटे को कम कर सकते हैं।
3: आइए लौटे दिल्ली, दिल्ली से हमारे साथ हैं जगदीश। जगदीश जी, स्वागत आपका, सवाल पूछिए।
4: हाँ जी सर, गुड इवनिंग, जगदीश जोशी नांगली दिल्ली से।
3: जी स्वागत है आपका।
4: सर जो UPI में 0.4 का जो 2000 प्लस की जो पेमेंट का है, तो मैं पर्सनली अपने लिए पूछता हूँ, क्योंकि मैं एक छोटा सा दुकानदार हूँ जिसके पास की 10 रुपए 20 रुपए किसी ने चिप्स लिया या बॉल पेन लिया। तो मैं जानना चाह रहा हूँ दो बातें, कि अगर कोई 10-10, 20-20 रुपए करके अगर 2000 रुपए इकट्ठे होते तब उसमें कटता है, या एक मुश्त कोई करता है तो तब कटता है, क्योंकि हमारे पास तो बहुत छोटा काम है, और एक दो कस्टमर ऐसे हैं जो मतलब 10-20 रुपए डेली ना दे के वो मंथली 2500-3000 रुपए होता तो वो पेमेंट करते हैं, तो उसमें हमें मतलब कितना 3000 या 2500 रुपए, तो हमें कितना उसमें हमारे खाते से कटेगा। ये मतलब छोटे दुकानदार के लिए तो मेरे हिसाब से तो ये थोड़ा सा उस पर बर्डन पड़ेगा, तो आपकी विशेषज्ञ टिप्पणी चाहता हूँ सर, धन्यवाद।
0: जगदीश जी, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है इस समय में। देखिए, आपके पास दो तरीके के ग्राहक हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि खाते में लिख लो, और एक है जो कि नियमित तौर पे आते हैं और जो जो भी आपसे खरीदते हैं उसका या तो नगद या UPI के जरिए भुगतान कर देते हैं। आपने कहा आप एक छोटे व्यापारी हैं, अगर पूरे महीने के दौरान अगर आपके पास कुल UPI के जरिए लेन देन में आपको 1 लाख रुपए से कम की आ रही है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, कि अगर कोई व्यक्ति आपके पास 2000 रुपये यानी कि 1999.99 रुपये तक अगर जो भुगतान कर रहा है, वहाँ पर 1 रुपया भी उसका MDR नहीं लगेगा, यानी कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट हम जिसको कहते हैं। यदि वो 2000 के बाद महीने के अंत में जो खाते वाले आपके हैं और वो आकर के कहते हैं कि चलो हमारा खाता क्लियर कर दो और हम एक बार में आपको 2500 का भुगतान कर रहे हैं, वो यदि 2500 का भुगतान कर रहे हैं, तो वहां पर आपको एक शर्त ये याद रखनी है कि जो अगर 1 लाख रुपए से कम की आमदनी है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा आपकी आमदनी है तो वहां पर आप 2000 के ऊपर का भुगतान जब अगर आप लेंगे तो 0.4% की दर से आपका MDR जो है वो कटेगा। तो इसमें बेहतर होगा कि खाते को 2000 रुपए तक आने ही ना दे और आप उसका नियमित तौर पर भुगतान लेते रहें। वैसे भी कहते हैं ना कि उधार प्रेम की कैंची है, तो ग्राहकों के साथ आपका प्रेम संबंध ना बिगड़े और आपके बचत और आपके खाते के ऊपर बोझ ना पड़े, तो ये दो विकल्प अपना करके देखिए, बेहतर है।
1: एंड ऑन दैट नोट, लेट्स शेयर विद आवर लिसनर्स अ रिलेटेड स्टोरी। द सुप्रीम कोर्ट टुडे रिफ्यूज्ड टू स्टे द सेंटर्स डिसीजन टू इम्पोज मर्चेंट डिस्काउंट रेट और MDR ऑन स्पेसिफाइड पर्सन टू मर्चेंट UPI ट्रांजेक्शन अबव 2000 रुपीज, with the charges set to come into effect from the 15th of next month. A bench comprising Chief Justice of India Suryakant and Justice Joymalya Bagchi and Justice V. Mohana sought responses from the Centre, the Reserve Bank of India and other respondents, directing them to file their counter-affidavits within 4 weeks. The Apex Court observed that the issue is less legal and more technical. Appearing for the court, Additional Solicitor General, I beg your pardon, appearing for the Centre, Additional Solicitor General N. Venkataraman told the bench that 96% of the youth

0: users of the payment gateway would remain exempt.
1: आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। देश में इस वर्ष अगस्त में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP द्वारा मापे गए औद्योगिक उत्पादन में वार्षिक आधार पर 8% की वृद्धि हुई। सरकार की ओर से जारी ताजा आंकड़ों से संकेत मिलता है कि औद्योगिक गतिविधि का विस्तार स्वस्थ गति से देश में जारी है। जुलाई की IIP वृद्धि दर सुधार के साथ 7.4% पर पहुंच गई, जबकि पहले 6.7% वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया था। आज जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार अगस्त में बिजली और गैस आपूर्ति में 12.3% की शानदार वृद्धि हुई है, जबकि IIP सूचकांक में सबसे अधिक भार रखने वाले विनिर्माण क्षेत्र का विकास 9% की दर से हुआ है। जल आपूर्ति, सीवरेज और अपशिष्ट प्रबंधन में भी 6.3% की वृद्धि हुई। हालांकि इस अवधि के दौरान खनन क्षेत्र में 5.6% की गिरावट आई है। क्या कह रहे हैं ये आंकड़े कुल मिलाकर देश की जो औद्योगिक उत्पादन के अच्छे आंकड़े, इसे हम स्वीकार कर सकते हैं?
2: मनोज जी, इसके पहले आपका जो पहला प्रश्न था वो हम लोग रहे
1: शेयर बाजार,
2: कांता जी का फोन आ गया था, तो आपने शेयर बाजार को लेकर के मौजूदा हाल पे जो आपने चर्चा करी थी उसमें देखिए, एक जो हमारे लिए एक सबसे बड़ी चिंता यह है कि अमेरिका में ब्याज दरें जो है वो बढ़ रही हैं, जिसको तकनीकी भाषा में हम यील्ड भी कहते हैं, और ये कहा जा रहा है कि अमेरिका काफ़ी कर्ज ले रहा है, तो जो कर्ज ले रहा है उसके लिए वो ऊंची ब्याज देने को तैयार है। तो एक निवेशक के सामने एक विकल्प है कि वो ऊंची ब्याज वाले पे जाए या फिर हमारे यहाँ आए। एक और महत्वपूर्ण घटना जो आज हुई है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि शेयर बाजार में आज काफी गिरावट थी, कि चीन में पहले अंडरवेट सिचुएशन था, अब वो बेंचमार्क न्यूट्रल हो गया है। अब आप कहेंगे बड़े तो तकनीकी शब्द आप लेकर के क्यों आ रहे हैं, आप इसको ऐसे समझिए कि अगर आपने चीन में 20 रुपया लगाने का फैसला किया था लेकिन आपको कंपनियों पर भरोसा नहीं था तो आपने 10 रुपये ही निवेश किए, यानी कि आप अंडरवेट हो गए। अब क्या हो रहा है कि बेंचमार्क न्यूट्रल होने के बजाय 20 का क्या 20 से ज्यादा निवेश करने की स्थिति में आ गए हैं, करने लगे हैं। तो अब पहले तो अमेरिका में पैसा लोग लगा रहे हैं, चीन में भी जा रहे हैं, तो हमारे लिए स्थिति जो है वो थोड़ी कमजोर हो गई है। दूसरी तरफ हमारी जो कच्चे तेल की स्थिति है आप 104, 105 के ऊपर ही है, भाव चल रहा है, वो भी हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है। तो इन सब का नतीजा है कि बाजार में जो है वो गिरावट का दौर देखने को मिल रहा है, और हालात ये हैं कि अभी के समय में कुछ भी कहना ये जोखिम होगा कि बाजार किस स्थिति में पहुंचेगा, कहां पहुंचेगा। अब आपका जो दूसरा प्रश्न है औद्योगिक उत्पादन को लेकर के, दो क्षेत्र जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक आपका विनिर्माण और दूसरा बिजली उत्पादन, लेकिन बिजली उत्पादन को लेकर के हमें थोड़ा सोचना होगा, क्योंकि हमने कि मौसमी बदलाव की वजह से बिजली की मांग काफी बढ़ी। तो अगर बिजली का उत्पादन दोहरे अंक में रहा है, अगर मैं गलत नहीं तो 12% के ऊपर की बढ़ोतरी बिजली के उत्पादन में रही है, और विनिर्माण में जो बढ़ोतरी की दर रही वो 9% की दर रही, तो ये जो है वो त्योहारी मांग को देखते हुए निर्माण बढ़ा है, उसका असर आपको देखने को मिला है। तो ये 8% एक अच्छी बढ़ोतरी की दर है, और उम्मीद करनी चाहिए कि पहली तिमाही के जो आपके औद्योगिक विकास के आंकड़े हैं उसका असर, दूसरी तिमाही की माफ कीजिएगा, उसका असर जो है वो दूसरी तिमाही के विकास के आंकड़े जो कि 30 नवंबर को जारी होंगे उसमें देखने को मिलेगा।
0: जी, एंड ऑन दैट नोट लेट्स टेक द नेक्स्ट कॉल फ्रॉम दिल्ली। शंकर इज ऑनलाइन विद अस। शंकर, वेलकम टू मार्केट मंत्रा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। हेलो शंकर, इफ यू कैन हियर अस प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। लुक्स लाइक ही इज नॉट, we have lost contact with Shankar, so let's move on to the next story. India and the UAE have agreed to take steps for the timely implementation of initiatives relating to settlement of trade in local currency, integration of payment and messaging systems, and central bank digital currencies. The two sides reached the agreement during the 14th meeting of the India-UAE high-level joint task force on investments in Mumbai today. It was co-chaired by Commerce and Industry Minister Piyush Goyal and Managing Director of Abu Dhabi Investment Authority Sheikh Hamid bin Zayed Al Nahyan. The Commerce and Industry Ministry said that in a statement that these issues are important as they have the potential to make bilateral trade and investment more efficient, accessible and resilient. The areas where two-way investment flows can be enhanced include energy, industry, logistics, infrastructure, technology and artificial intelligence, space, food security, artificial innovation and the startup ecosystem.
1: बहुत संक्षिप्त टिप्पणी, बड़ी ही महत्वपूर्ण मार्के की बात है, लोकल करेंसी यानी

0: स्थानीय मुद्रा में जो बातचीत कारोबार का आह्वान हम कर रहे हैं उस दिशा में, साथ ही संदेश आदान प्रदान और पेमेंट इंटीग्रेशन की बात चलिए, कुल मिलाकर क्या कहा जा रहा है, क्या कह रही है खबर और किस रूप में ये लागू होने की संभावना है आने वाले दिन?
1: देखिए, इसका मतलब है कि आपकी निर्भरता जो है वो डॉलर पे थोड़ी कम होगी और ये हमारे लिए एक अच्छी खबर होगी।
2: जी, एंड लेट्स टेक द नेक्स्ट कॉल नाउ। कृपा शंकर इज ऑनलाइन विद अस फ्रॉम दिल्ली। मिस्टर कृपा शंकर, वेलकम टू मार्केट मंत्रा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
3: धन्यवाद। मैं सर से ये पूछना चाहता हूँ, जैसे अभी आप समझा रहे थे कि 2500 अंक की पेमेंट आपके पास आती है तो आप इसको पूरी ना लें, अगर हम उसको 1000 और 1500 रुपए के हिसाब से लें, 1501 लें, 1000 एक लें तो तब भी चलेगा, और चाहे हमारा लाख से नीचे ही रहता है उस मुताबिक भी ठीक रहेगा। और जैसे हम जॉब करते हैं तो हमारा जो सेट है वो हमारे अकाउंट में UPI में किसी की पेमेंट आ जाती है 5000, 7000, 10000 छोटी मोटी पेमेंट हमारे में डाल दी, तो हमें डलवानी चाहिए कि नहीं डलवानी चाहिए, कि या फिर इसके अंदर भी हमारा तो सिर्फ एक सैलरी है, हमें तो 30000 मिल जाते मंथली, तो हमारे पे क्या कुछ, हम तो दुकानदार नहीं है, तो इस पे क्या आप कहते
1: हैं? पहली वाली जो परिस्थिति है जो आपने कहा कि हम उसको 2500 को दो हिस्सों में बांटते, 1000 रुपये का और 1500 रुपये का, जाहिर सी बात है उसमें आपका कोई लगेगा नहीं। दूसरी बात ये कि 1,00,000 रुपये के नीचे के जो व्यापारी यानी कि छोटे व्यापारी जो हैं उनके वो इस दायरे में नहीं है। तीसरी बात है कि व्यक्ति से व्यक्ति को मिलना वहाँ पर आपके लिए MDR नहीं है। यदि कोई व्यक्ति आपको एक व्यक्ति के तौर पर आपको भुगतान कर रहा है, आपने कहा कि आप एक व्यापारी नहीं है, कारोबारी नहीं है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है।
0: आइए आगे बढ़ें। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस UFBU की 3 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल स्थगित करने के बाद आज देश भर में बैंक खुले रहे। भारतीय बैंक संघ IBA के साथ हुए समझौते के बाद यह निर्णय लिया गया। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ AIBEA ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, प्रस्तावित हड़ताल से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए IBA और 7 बैंक यूनियनों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था UFBU के बीच कल रात हुई बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया। इससे पहले यूनियनों ने मुख्य रूप से 2 मांगों, 5 दिवसीय बैंकिंग सप्ताह को लागू करने और प्रदर्शन से जुड़ी प्रोत्साहन PLI योजना को वापस लेने के लिए 28 से 30 सितंबर तक हड़ताल की घोषणा की थी। और अब चले एशियाई शेयर बाजार यानी दुनिया के दो प्रमुख महादेश से हम कुछ चुने हुए बाजारों की खबर आपको देते हैं। एशिया के प्रमुख बाजार दक्षिण कोरिया के कोस्पी सूचकांक में 2.7% की गिरावट आज बिकवाली के दबाव में हुई। जापान का निक्केई 225 सूचकांक भी 0.7% नुकसान के साथ बंद हुआ।
2: Let's move on to commodities. Global crude oil prices rebounded today after US President Donald Trump rejected an Iranian peace proposal over the weekend aimed at resolving the conflict and reopening the Strait of Hormuz. Brent crude was trading 3.5% higher at $108 per barrel. West Texas Intermediate crude was trading 3.6% up at $95.72 per barrel at the time of writing this report. A very brief comment, Shisha, because I was reading somewhere that one of the international financial service firms actually has said that it has lost visibility on the direction of oil prices for the first time since Iran war. There is no longer a clear baseline scenario for the markets.
1: Very true. At this moment, when today you are listening this one, yeah. I mean that there is going to be an agreement. Tomorrow there is no agreement. So this weekend was very critical,
2: yeah.
1: And did not happen. Anything did not take place. So we are going to see only the southward movement, not the northward movement.
0: हमारे साथ श्रोता अभी भी फोन लाइन पर जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और जुड़ भी चुके हैं, लेकिन हम अहमद अली जी विशेष रूप से आपको धन्यवाद देना चाहेंगे और अन्य श्रोताओं को भी कि हम अब समय अभाव में आपके प्रश्न को नहीं ले सकते। भाग लेने के लिए आपका धन्यवाद। आइए आपको लिए चले सर्राफा बाजार। भारतीय सर्राफा बाजार में आज 24 कैरेट सोने का मूल्य 2.7% घटकर 1,47,980 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार चांदी 4% घटकर 2,23,053 रुपये प्रति किलो के स्तर पर बंद हुई। यहाँ पर हम समझना चाहेंगे आपके माध्यम से शिशिर के, सोने में और चांदी में दोनों में निवेश के लिए अभी का जो स्तर है वह कैसा दिख रहा?
1: डॉलर, देखिए डॉलर जैसे जैसे मजबूत होता जाएगा सोना कमजोर होगा, तो जो लोग निवेश करना चाहते हैं 1.80 से हम 1.47 पे आ गए हैं तो थोड़ा सा एक मौका बनता है सोने में आप पैसा लगा।
0: यदि दीर्घावधि में देखें तो सोने के वैश्विक
1: स्तर पर डॉलर जब

0: भी मजबूत होगा, आपका सोना कमजोर होगा।
1: यह है विशेषज्ञ की सलाह कि डॉलर मजबूत यानी सोने में नरमी, सोने की चमक फीकी हो गई, आपके निवेश के लिए अवसर बन जाएगा। और आप श्रोताओं ने जिस उत्साह के साथ भाग लिया, इसलिए आपकी ओर से हम शिशिर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे।
0: जी धन्यवाद, नमस्कार।
2: And before we close, look at the headlines once again. Benchmark domestic indices decline sharply. Sensex tanks over 1,100 points. Nifty settles below 22,800. India's industrial output grows by 8% in August this year. And global crude oil prices surge around 3.5%. That's all we have time for in this edition of the program. Till we meet again, namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गीत मेरे मन मीत आपके लिए स्वागत करती हूं मैं कुसुम। पहला गीत फिल्म गंगा जमुना से लता मंगेशकर की आवाज में आपके लिए।

इस गीत के साथ ही गीत मेरे मन मीत यहीं तक। कुसुम को दीजिए इजाजत, शुभ रात्रि। आप जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय आतंकरोधी नीति और रणनीति प्रहार सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में प्रहार के 7 स्तंभों पर चर्चा हुई। इनमें आतंकवाद की रोकथाम, उससे निपटने की कार्रवाई, आंतरिक क्षमताओं का एकीकरण, मानवाधिकार, आतंकवाद के लिए अनुकूल परिस्थितियों को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में समन्वय तथा पूरे समाज की भागीदारी से पुनर्प्राप्ति और लचीलापन शामिल है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से 2026 के बीच सरकार 36 देशों से 288 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाई है। श्री शाह ने नया प्रत्यर्पण पोर्टल भी शुरू किया। ये विदेशों में मौजूद भगोड़ों को भारत वापस लाने के प्रयासों में समन्वय और तेजी लाने में मदद करेगा। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार के निपटान, भुगतान और संदेश प्रणालियों के एकीकरण तथा केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राओं से संबंधित पहलों के समय पर क्रियान्वयन के लिए कदम उठाने पर सहमत हुए हैं। दोनों पक्षों ने कल मुंबई में निवेश संबंधी भारत यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के दौरान इस समझौते पर सहमति व्यक्त की। बैठक की सह अध्यक्षता वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अबुधाबी निवेश प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक शेख हामिद बिन जायद अल नहयान ने की। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ाने के लिए ऊर्जा, उद्योग, बुनियादी ढांचा और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों की पहचान की गई है। केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कल संयुक्त अरब अमीरात के अबुधाबी में आयोजित 15वें संयुक्त राष्ट्र अपराध निवारण और आपराधिक न्याय सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन में श्री मेघवाल ने डिजिटल न्याय की दिशा में भारत के प्रयासों, साइबर अपराध और आतंकवाद से निपटने के लिए कड़े उपायों, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि और समय पर न्याय पर बल दिया। भारत ने नस्लवाद, नस्लीय भेदभाव, विदेशियों के प्रति भय और इससे जुड़ी असहिष्णुता का मुकाबला करने तथा सभी के लिए समानता और सम्मान को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। विदेश मंत्रालय में सचिव पश्चिम सिबी जॉर्ज ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान डर्बन घोषणा और कार्ययोजना को अपनाए जाने की 25वीं वर्षगांठ पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने DDPA को पूरी तरह और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए ठोस, राष्ट्रीय स्तर पर संचालित और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। म्यांमार की सेना ने ताकतवर विद्रोही गुट के कब्जे वाले इलाके में बाजार के पास हवाई हमला किया, जिसमें कम से कम 33 लोगों की मौत हो गई और 36 अन्य घायल हो गए। अराकान आर्मी के मुताबिक ये हमला कल क्योक्ताव टाउनशिप में हुआ, जो देश के दूसरे सबसे बड़े शहर मांडले से लगभग 340 किलोमीटर पश्चिम में है। कल दोपहर के समय एक लड़ाकू विमान ने स्थानीय बाजार के पास 2 बम गिराए, जिससे सामान बेचने वालों, खरीदारों और पैदल चलने वालों समेत 33 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। सेना ने हमले पर तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की। जापान एशियाई खेलों में भारत ने कल भी पदक जीतने का सिलसिला जारी रखा। निशानेबाजी, क्रिकेट, कुराश, एथलेटिक्स और मुक्केबाजी में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। पुरुष क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। अब तक भारत कुल मिलाकर 45 पदक जीत चुका है। इनमें 4 स्वर्ण, 20 रजत और 21 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक तथा तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैकाल में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

वक्त हुआ है 12:10 और ठीक 57 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा, मैं हूं राखी आपके साथ। रात की नरमी में घुले हैं पुराने फिल्मी गीत, यादों की खुशबू और आपके अपनेपन का एहसास। तो आइए इस सुहानी रात को संगीत के नाम करें और सुने कुछ ऐसे सदाबहार नगमे जो वक्त गुजर जाने के बाद भी दिल में अपनी जगह बनाए रखते हैं।

प्रेम पर्वत फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। जानिसार अख्तर ने इसे लिखा और संगीत दिया जयदेव ने। सुना है ये मॉनसून की आखिरी बारिश थी, अगले बरस इसका इंतज़ार तो रहेगा ही। बारिश की बूंदों से जुड़ी यादें भला इतनी आसानी से कहाँ जाती हैं। और देखिए, इस बार की बारिश ने मौसम की ऐसी करवट बदली कि सितंबर के आखिरी दिनों में ही दिसंबर की ठंड का एहसास होने लगा। दिल्ली में 27 सितंबर को न्यूनतम तापमान 21 डिग्री तक पहुंच गया। तो मौसम के इस बदलते मिजाज के साथ आइए आज की निशिगंधा में कुछ ऐसे गीत सुने जिनमें कभी बारिश की नमी है, कभी सर्द हवाओं की ठंडक और कभी बीती हुई शामों की मीठी याद।

ना खुदा फिल्म का ये गाना आपने सुना लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज़ में। निदा फाजली ने इसे लिखा और संगीत दिया खयाम ने। बताइए तो सही, आपकी इन पलकों में आखिर छुपा क्या है? कोई ख्वाब, कोई राज, या फिर सितारों सी चमकती हुई खूबसूरत बात? आँखों की तो यही खूबी है, बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह जाती हैं। और जब इन्हीं आँखों की तारीफ में कोई नगमा सजे तो रात और भी हसीन हो जाती है।

उमराव जान फिल्म से आपने ये गज़ल सुनी आशा भोसले की आवाज़ में। शहरयार ने इसे लिखा और संगीत दिया खयाम ने।

वक्त हुआ है 12:35 और ठीक 34 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं निशिगंधा। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

जमीन आसमान फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। अनजान ने इसे लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। अगर तुम मेरे हमराही ना होते तो शायद ये समा भी इतना खूबसूरत ना होता, ये रास्ते इतने हसीन ना लगते और कुछ भी यहाँ ना होता। किसी अपने का साथ ही तो हर मौसम में एक मिठास खोल देता है, हर सफर में एक खूबसूरत कहानी बन जाती है।

प्रेम प्रतिज्ञा फिल्म का गाना आपने सुना बप्पी लाहिड़ी और आशा भोसले की आवाज में। बप्पी लाहिड़ी ने संगीत दिया और इस गीत को लिखा इंदीवर ने। मोहब्बत में शिकवे भी होते हैं, रूठना मनाना भी, कभी दिल दुखता है, कभी कोई सितम भी सहना पड़ता है, मगर इन सब के बीच दिल की एक ही ख्वाहिश रहती है, तुम चाहे जितनी शिकायतें करो, चाहे कोई सितम कर लो, बस अपना प्यार कभी कम मत करना।

तुम्हारी कसम फिल्म से आपने ये गाना सुना मुकेश और आशा भोसले की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया राजेश रोशन ने। वक्त हुआ है 12:54 और ठीक 36 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 1 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 1:10 पर गीत सुहाने मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय आतंकरोधी नीति और रणनीति प्रहार सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में प्रहार के 7 स्तंभों पर चर्चा हुई। इनमें आतंकवाद की रोकथाम, उससे निपटने की कार्रवाई, आंतरिक क्षमताओं का एकीकरण, मानवाधिकार, आतंकवाद के लिए अनुकूल परिस्थितियों को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में समन्वय तथा पूरे समाज की भागीदारी से पुनर्प्राप्ति और लचीलापन शामिल है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से 2026 के बीच सरकार 36 देशों से 288 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाई है। श्री शाह ने नया प्रत्यर्पण पोर्टल भी शुरू किया। ये विदेशों में मौजूद भगोड़ों को भारत वापस लाने के प्रयासों में समन्वय और तेजी लाने में मदद करेगा। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार के निपटान, भुगतान और संदेश प्रणालियों के एकीकरण तथा केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राओं से संबंधित पहलों के समय पर क्रियान्वयन के लिए कदम उठाने पर सहमत हुए हैं। दोनों पक्षों ने कल मुंबई में निवेश संबंधी भारत यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के दौरान इस समझौते पर सहमति व्यक्त की। बैठक की सहअध्यक्षता वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अबुधाबी निवेश प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक शेख हामिद बिन जायद अल नहयान ने की। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ाने के लिए ऊर्जा, उद्योग, बुनियादी ढांचा और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों की पहचान की गई है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कल संयुक्त अरब अमीरात के अबुधाबी में आयोजित 15वें संयुक्त राष्ट्र अपराध निवारण और आपराधिक न्याय सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन में श्री मेघवाल ने डिजिटल न्याय की दिशा में भारत के प्रयासों, साइबर अपराध और आतंकवाद से निपटने के लिए कड़े उपायों, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि और समय पर न्याय पर बल दिया। भारत ने नस्लवाद, नस्लीय भेदभाव, विदेशियों के प्रति भय और इससे जुड़ी असहिष्णुता का मुकाबला करने तथा सभी के लिए समानता और सम्मान को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान डर्बन घोषणा और कार्ययोजना डीडीपीए को अपनाए जाने की 25वीं वर्षगांठ पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही। भारत और इथियोपिया ने कल इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा में दूसरी संयुक्त रक्षा सहयोग बैठक की। दोनों देशों ने सैन्य प्रशिक्षण और अभ्यास, चिकित्सा सहयोग, शांति स्थापना और रक्षा उद्योग सहित आपसी हित के क्षेत्रों पर चर्चा की। भारत ने श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के लिए कल 3 टन क्षय रोग रोधी दवाओं की खेप भेजी। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पर कहा कि भारत श्रीलंका की सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कल लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, एलएचएमसी और उससे संबद्ध अस्पतालों, सुचेता कृपलानी अस्पताल और कलावती सरन बाल अस्पताल की प्रगति की समीक्षा की। इस बैठक में स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचा, विशेष नैदानिक सेवाओं, चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान और रोगी देखभाल को सुदृढ़ करने पर विशेष

वक्त हुआ है 1:11 और ठीक 8 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने, मैं हूँ राखी आपके साथ।

आंखें फिल्म से आपने ये प्यारा सा गाना सुना शमशाद बेगम और मुकेश की आवाज में। इसे लिखा भरत व्यास ने और संगीत दिया मदन मोहन ने।

काजल की फरमाइश, कभी पाउडर की फरमाइश, कभी सरकस की जिद है और कभी

0: अलबेला फिल्म का गाना आपने सुना सी रामचंद्र की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा और संगीत दिया सी रामचंद्र ने। इस गीत की इन पंक्तियों में प्यार के साथ जुड़ी शरारत भी है और एक हल्की सी चेतावनी भी। इश्क की राह पर कदम रखिए तो दिल के साथ साथ होश संभाल कर चलना भी जरूरी है। मोहब्बत अगर हद से गुजर जाए तो आशिक अपना दिल ही नहीं, कभी कभी सब कुछ दांव पर लगा बैठता है।
1: हिंदुस्तान का तेरा तू? हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ,

पतंगा फिल्म का गाना आपने सुना शमशाद बेगम और सी रामचंद्र की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा और संगीत दिया सी रामचंद्र ने। दूर देश गए पिया की याद जब दिल को सताने लगे तो दूरियां भी जैसे आवाज बनकर कानों तक पहुंचती है। एक तरफ इंतजार की बेचैनी, दूसरी तरफ टेलीफोन पर मिलने वाली पिया की आवाज, और इन दोनों के बीच तड़पता हुआ दिल, यही तो है उस दौर के गीतों की खूबसूरती।

मनमौजी फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज़ में। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा और संगीत दिया मदन मोहन ने। ऐसी श्रीमती जी चाहिए जो घर को संभाले, पति का ख्याल रखें और उनकी सेवा में हमेशा तत्पर रहें। अभी गुजारिश कितनी मासूम है और कितनी शरारती, इसका फैसला आप खुद कीजिए।

अल हिलाल फिल्म से आपने ये कव्वाली सुनी इस्माइल आज़ाद की आवाज़ में। इसका संगीत दिया बुल्लो सीरानी ने और इसको लिखा शिवान रिजवी ने।

वक्त हुआ है 1:35 और ठीक 50 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

उड़न खटोला फिल्म से आपने गीत सुना। लता मंगेशकर की आवाज में शकील बदायूनी ने इसे लिखा और संगीत दिया नौशाद ने। कभी कभी कोई राहगीर सिर्फ

था भी फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा और संगीत दिया चित्रगुप्त ने। टाई लग गई, अंदाज बदल गया तो जनाब खुद को समझने लगे हीरो। लेकिन असली इम्तिहान तो किताबों के सामने होता है। यहाँ स्टाइल तो पूरा है मगर पढ़ाई लिखाई में नंबर जरा कम ही नजर आ रहे हैं।

वक्त फिल्म से आपने ये गीत सुना मन्ना डे की आवाज में। साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया रवि ने। मोहब्बत की खूबसूरती शायद यही है कि वक्त गुजरता रहता है, उम्र ढलती रहती है, लेकिन किसी अपने को देखकर दिल की धड़कनों पर उम्र का कोई असर नहीं होता। वही अपनापन, वही तारीफ और वही प्यार भरा अंदाज़।

रुस्तम सोहराब फिल्म का गाना आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और मन्ना डे की आवाज़ में। जानिसार अख्तर ने इसे लिखा और संगीत दिया सज्जाद ने। कभी कभी किसी की याद यूं दिल को छू जाती है कि बीते हुए लम्हे फिर से आंखों के सामने नजर आते हैं। दूरी चाहे कितनी भी हो, सच्चे रिश्तों की याद दिल में हमेशा बनी रहती है।

बहार फिल्म का गाना आपने सुना शमशाद बेगम की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने। वक्त हुआ है 1:57 और ठीक 55 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 2 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 2:10 पर रात सुरमई मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय आतंकरोधी नीति और रणनीति प्रहार सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में प्रहार के 7 स्तंभों पर चर्चा हुई। इनमें आतंकवाद की रोकथाम, उससे निपटने की कार्रवाई, आंतरिक क्षमताओं का एकीकरण, मानवाधिकार, आतंकवाद के लिए अनुकूल परिस्थितियों को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में समन्वय तथा पूरे समाज की भागीदारी से पुनर्प्राप्ति और लचीलापन शामिल है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से 2026 के बीच सरकार 36 देशों से 288 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाई है। श्री शाह ने नया प्रत्यर्पण पोर्टल भी शुरू किया। ये विदेशों में मौजूद भगोड़ों को भारत वापस लाने के प्रयासों में समन्वय और तेजी लाने में मदद करेगा। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार के निपटान, भुगतान और संदेश प्रणालियों के एकीकरण तथा केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राओं से संबंधित पहलों के समय पर क्रियान्वयन के लिए कदम उठाने पर सहमत हुए हैं। दोनों पक्षों ने कल मुंबई में निवेश संबंधी भारत यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के दौरान इस समझौते पर सहमति व्यक्त की। बैठक की सह अध्यक्षता वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अबुधाबी निवेश प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक शेख हामिद बिन जायद अल नहयान ने की। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ाने के लिए ऊर्जा, उद्योग, बुनियादी ढांचा और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों की पहचान की गई है। भारत ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान नस्लवाद, नस्लीय भेदभाव, विदेशियों के प्रति नफरत और इससे जुड़ी असहिष्णुता से लड़ने के अपने संकल्प को फिर दोहराया है। डर्बन घोषणा और कार्य योजना को अपनाए जाने की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने वैश्विक समानता और मानवीय गरिमा को बढ़ावा देने पर भारत का रुख स्पष्ट किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पर कहा कि सचिव जॉर्ज ने नस्लवाद, नस्लीय भेदभाव, ज़ेनोफोबिया और इससे जुड़ी असहिष्णुता से लड़ने और सभी के लिए समानता तथा गरिमा को बढ़ावा देने के भारत के अटूट संकल्प को फिर दोहराया। ठोस कार्रवाई की जरूरत पर जोर देते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने DDPA को पूरी तरह और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए ठोस, राष्ट्रीय स्तर पर संचालित और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि मानव अंतरिक्ष उड़ान, स्टार्टअप और नए अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत फ्रांस अंतरिक्ष सहयोग ने एक नए चरण में प्रवेश किया है। डॉ. सिंह ने कल नई दिल्ली में फ्रांस के उच्च शिक्षा, अनुसंधान और अंतरिक्ष मंत्री फिलिप बैप्टिस्ट के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में चल रहे परिवर्तन ने दोनों देशों के लिए सरकारी संस्थानों और स्थापित एजेंसियों से परे सहयोग का विस्तार करने की नई संभावनाएं पैदा की हैं। सरकार ने कल नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत की। ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एक एकीकृत डिजिटल मंच उपलब्ध कराएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य पशुधन बीमा सेवाओं को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और सुलभ बनाना है। केंद्र सरकार कर्नाटक और महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए टीमें भेजेगी। नई दिल्ली में रबी फसल अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही। भारत ने श्रीलंका की पब्लिक हेल्थ सिस्टम की मदद के लिए कोलंबो में लगभग 3 टन टीवी रोधी दवाएं भेजी हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इन दवाओं को भेजने की जानकारी दी। इसके साथ

वक्त हुआ है 2:10 और ठीक 59 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई। मैं हूं राखी आपके साथ।

दिल तेरा दीवाना फिल्म का ये गाना आपने सुना। लता मंगेशकर और रफ़ी की आवाज़ में शैलेंद्र ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने।

उजाला फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज में। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। झूमता मौसम मस्त महीना और ऐसे खुशनुमा माहौल में अगर चांद सी गोरी एक हसीना नजर आ जाए तो दिल का उसके पीछे पीछे चल पड़ना कोई हैरत की बात नहीं। इस गीत में प्यार की वही पहली हलचल है, आंखों की वही शरारत है और दिल के चुरा लिए जाने की वही मीठी शिकायत। याला याला दिल ले गई।

सुन दी संभाल गोरी उड़ी चली जाए रे।

आपने गाना सुना, लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। चुनरी संभाल गोरी, उड़ी चली जाए रे, और जरा बचके, क्योंकि तेरी नजर का ये तीर कहीं दिल को घायल ना कर दे। कितनी शरारत है इन पंक्तियों में, गोरी की उड़ती चुनरी, उसकी चंचल अदाएं और उस पर नजर की ऐसी कशिश जो सामने वाले को बेचैन कर दे।

वक्त हुआ है 2:31 और ठीक 49 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हां, रात सुरमई है, हवाओं में एक ठहराव है और इस खामोशी में पुराने फिल्मी गीतों की आवाज़ जैसे दिल से कोई भूली बिसरी बात कह रही है।

झूल थी फिल्म का गाना आपने सुना आशा भोसले की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने। रात की तन्हाई है, दीयों की रोशनी भी अब बुझ चुकी है, ऐसे में दिल चाहता है कि कोई अपना पास आकर चुपके से दिल की बातें कह जाए। खामोशी के इस माहौल में कुछ अल्फाज कानों तक पहुंचे और रात की ये तन्हाई थोड़ी सी कम हो जाए।

0: पूरा ओढ़ो। अरे मानो कहा अब तुम हो जवा, मेरी जान धड़कपन छोड़ो।
1: तीन देवियां फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने। प्यार में जब नटखटपन घुल जाए तो बातचीत भी गीत बन जाती है। कभी घूंघट की बात, कभी जवानी पर शरारती ताना और कभी रूठने मनाने का सिलसिला। इसी प्यारी सी नोकझोंक में मोहब्बत का रंग और भी गहरा हो जाता है।

ब्रह्मचारी फिल्म का गाना आपने सुना सुमन कल्याणपुर और रफी की आवाज में। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। मोहब्बत जब दिल से निकलकर आंखों और अंदाज में उतर आए तो उसे भला कितनी देर छुपाया जा सकता है। दो दिलों के बीच की ये कहानी अब सिर्फ उनकी नहीं रही बल्कि हर जुबान पर इसकी चर्चा है और हर किसी को इसकी खबर हो गई है।

गुमनाम फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने।

वक्त हुआ है 2:54 और ठीक 22 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 3 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 3:10 पर हमराही पंकज गोस्वामी के साथ। तो इसी के साथ अब राखी को इजाजत दीजिए।

भूत बंगला फिल्म का गाना आपने सुना मन्ना डे की आवाज में। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय आतंकरोधी नीति और रणनीति प्रहार सम्मेलन का उद्घाटन किया।

0: सम्मेलन में प्रहार के 7 स्तंभों पर चर्चा हुई। इनमें आतंकवाद की रोकथाम, उससे निपटने की कार्रवाई, आंतरिक क्षमताओं का एकीकरण, मानवाधिकार, आतंकवाद के लिए अनुकूल परिस्थितियों को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में समन्वय तथा पूरे समाज की भागीदारी से पुनर्प्राप्ति और लचीलापन शामिल है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से 2026 के बीच सरकार 36 देशों से 288 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाई है। श्री शाह ने नया प्रत्यर्पण पोर्टल भी शुरू किया। ये विदेशों में मौजूद भगोड़ों को भारत वापस लाने के प्रयासों में समन्वय और तेजी लाने में मदद करेगा। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार के निपटान, भुगतान और संदेश प्रणालियों के एकीकरण तथा केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राओं से संबंधित पहलों के समय पर क्रियान्वयन के लिए कदम उठाने पर सहमत हुए हैं। दोनों पक्षों ने कल मुंबई में निवेश संबंधी भारत यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के दौरान इस समझौते पर सहमति व्यक्त की। बैठक की सह अध्यक्षता वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा अबुधाबी निवेश प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक शेख हामिद बिन जायद अल नहयान ने की। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ाने के लिए ऊर्जा, उद्योग, बुनियादी ढांचा और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों की पहचान की गई है। भारत ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान नस्लवाद, नस्लीय भेदभाव, विदेशियों के प्रति नफरत और इससे जुड़ी असहिष्णुता से लड़ने के अपने संकल्प को फिर दोहराया है। डर्बन घोषणा और कार्य योजना को अपनाए जाने की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने वैश्विक समानता और मानवीय गरिमा को बढ़ावा देने पर भारत का रुख स्पष्ट किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि सचिव जॉर्ज ने नस्लवाद, ज़ेनोफोबिया और इससे जुड़ी असहिष्णुता से लड़ने और सभी के लिए समानता तथा गरिमा को बढ़ावा देने के भारत के अटूट संकल्प को फिर दोहराया। भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास कजिंद के 9वें संस्करण में भाग लेने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों का 60 सदस्यीय दल कल कजाकिस्तान के ओस्केमेन के लिए रवाना हुआ। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के निर्देशों के अंतर्गत संयुक्त आतंकवाद रोधी अभियानों को अंजाम देने के लिए दोनों बलों के बीच समन्वय को बढ़ाना और संयुक्त क्षमता को मजबूत करना है। म्यांमार की सेना ने एक ताकतवर विद्रोही गुट के कब्जे वाले इलाके में बाजार के पास हवाई हमला किया, जिसमें कम से कम 33 लोगों की मौत हो गई और 36 अन्य घायल हैं। अराकान आर्मी के मुताबिक ये हमला कल क्योक्ताव टाउनशिप में हुआ, जो देश के दूसरे सबसे बड़े शहर मांडले से लगभग 340 किलोमीटर पश्चिम में है। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। सेना ने हमले पर तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की। रक्षा उत्पादन सचिव संजीव कुमार और पोलैंड की राज्य सचिव तथा उप रक्षा मंत्री मागदेलेना सोबकोवियाक जारनेका ने कल नई दिल्ली में भारत पोलैंड संयुक्त कार्य समूह की बैठक की सह अध्यक्षता की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर बताया कि बैठक में संयुक्त कार्य योजना 2024 से 2028 को लागू करने पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने भारत और पोलैंड के बीच संस्थागत रक्षा और रक्षा उद्योग संबंधी सहयोग को और मजबूत करने पर भी जोर दिया। भारत ने नई दिल्ली में कल हुई भारत फिजी द्विपक्षीय संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक में स्वतंत्र, खुले, समावेशी और सुरक्षित हिंद प्रशांत क्षेत्र के अपने दृष्टिकोण में फिजी और प्रशांत द्वीप देशों के महत्व को दोहराया है। बैठक की सह अध्यक्षता रक्षा मंत्रालय में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और फिजी के रक्षा तथा पूर्व सैनिक मामलों के स्थायी सचिव मेसन स्मिथ ने की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by R.S. Raghu. Union Home Minister Amit Shah yesterday inaugurated the conference on Prahar, National City Policy and Strategy in New Delhi. The conference deliberated upon 7 pillars of Prahar, including

3:10 हुए हैं और अब आप सुनेंगे कार्यक्रम हमराही। मैं हूं आपके साथ पंकज। तो शुरुआत करते हैं, दो गानों के बाद मैं आपसे मिलता हूं यादों की बारात मूवी से। इस गाने की शुरुआत करते हैं और फिर मुलाकात होती है।

ये वो गाने हैं जिन्हें जितना सुनो उतना कम है। 1978 की फिल्म घर से ये गाना था, गुलजार के बोल और आर डी बर्मन का म्यूजिक। इस प्यारी सी जिंदगी के ये आधी रात के हसीन पलों को मैं और आप इन पुराने ड्यूट्स गानों के साथ जिएंगे। मैं हूं पंकज, आपके साथ हमराही शो में सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। तो भुला दीजिए हर परेशानी और खो जाइए इस रात की हल्की ठंडी हवाओं में। दो गानों के बाद मैं आपसे मिलता हूं और ये सॉफ्ट गाना वन ऑफ माई फेवरेट फ्रॉम द मूवी आंगन की गली।

मौसम फिल्म का गाना भूपिंदर और लता जी की आवाज, मदन मोहन की म्यूजिक कंपोजिशन और गुलजार के बोल। इस गाने में लाइन आती है कि जाड़ों की नर्म धूप और आंगन में लेटकर, बस आज से यानी 3 दिन बाद अक्टूबर लगेगा और फिर हल्की ठंड फील होगी। हालांकि दिल्ली में अभी जो इस टाइम है हल्की ठंड फील होती है, इस टाइम तो हो ही रही है, और एक अर्ली मॉर्निंग जो होती है ठंड उस टाइम लगता है कि हाँ भी अब सर्दियाँ आने वाली हैं। और सर्दियों में अपने पसंदीदा इंसान का अगर साथ मिल जाए तो मुझे ऐसा लगता है वो किसी वरदान से कम नहीं होता। हमराही सुन रहे हैं आप मेरे यानी पंकज के साथ सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर, और बहुत खुश नसीबी से अपनी पसंद का हमराही मिलता है, सच मानिए उसके संग जी भर के जीना चाहिए। अगर आपको ऐसा मौका मिल रहा है तो ऐसे मोमेंट खोने नहीं चाहिए, मुझे लगता है ऐसे मौसम भी शायद स्पेशली प्यार करने वालों के लिए तो होते ही है। खैर, अभी आपके लिए जावाज मूवी का गाना किशोर दा और सपना की आवाज में है।

चश्मे बदूर मूवी से ये वाला गाना आपने सुना। जब ये गाना चल रहा था तो मैं एक बात सोच रहा था कि जब सामने से कोई इंसान आपको प्रेम और रिश्ते के लिए ऑफर देना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे रिश्तों को स्वीकार करना चाहिए। आज के समय में कोई अगर आपकी तरफ हाथ बढ़ाए, ये बहुत बड़ी बात है, वरना तो लोग या तो अवॉइड कर देते हैं या फिर कई बार लोग सोचते हैं कि छोड़ो अब इसको क्या बोलें, या कई लोग डर जाते हैं। और आप पता है, हर दिल में ये आरजू रहती है कि कोई इन्हें टूट कर चाहे और प्यार करे, और वही जो है प्यार कभी भी किसी हाल में कम ना हो। और कोशिश करनी चाहिए कि सिर्फ सामने वाला ही नहीं, आप भी अपनी तरफ से प्यार का हाथ बढ़ाएं।

अपने पार्टनर के साथ है, थोड़ी बहुत नोकझोंक होना जो है वो मज़ेदार है, लेकिन कभी कभी बताए मजाक में कुछ बातें जो है वो मन खराब करती हैं। और ऐसे में ये भी सोचना चाहिए कि सामने वाले ने आज दिल बेशक दुखाया हो, लेकिन इसी इंसान ने हमें प्यार भी तो किया है। छोटे मोटे समझौते करने चाहिए क्योंकि परफेक्ट कोई नहीं। खैर, अब अगले घंटे सुबह 4:10 पर मैं आपसे शो में दूसरे शो में मिलूंगा जिसका नाम है अरुणिमा। लेकिन अभी हमराही शो का ये लास्ट गाना आप सुनिए, इसका मजा लीजिए और फिर सुबह 4 बारी बारी से आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे। तो FM गोल्ड सुनते रहिए मेरे यानी पंकज के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय आतंकरोधी नीति और रणनीति प्रहार सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में प्रहार के 7 स्तंभों पर चर्चा हुई। इनमें आतंकवाद की रोकथाम, उससे निपटने की कार्रवाई, आंतरिक क्षमताओं का एकीकरण, मानवाधिकार, आतंकवाद के लिए अनुकूल परिस्थितियों को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में समन्वय तथा पूरे समाज की भागीदारी से पुनर्प्राप्ति और लचीलापन शामिल है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से 2026 के बीच सरकार 36 देशों से 288 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाई है। श्री शाह ने नया प्रत्यर्पण पोर्टल भी शुरू किया। ये विदेशों में मौजूद भगोड़ों को भारत वापस लाने के प्रयासों में समन्वय और तेजी लाने में मदद करेगा। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार के निपटान, भुगतान और संदेश प्रणालियों के एकीकरण तथा केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राओं से संबंधित पहलों के समय पर कार्यान्वयन के लिए कदम उठाने पर सहमत हुए हैं। दोनों पक्षों ने कल मुंबई में निवेश संबंधी भारत यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के दौरान इस समझौते पर सहमति व्यक्त की। बैठक की सह अध्यक्षता वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा अबुधाबी निवेश प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक शेख हामिद बिन जायद अल नहयान ने की। भारत ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान नस्लवाद, नस्लीय भेदभाव, विदेशियों के प्रति नफरत और उससे जुड़ी असहिष्णुता से लड़ने के अपने संकल्प को फिर दोहराया है। डर्बन घोषणा और कार्य योजना को अपनाए जाने की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने वैश्विक समानता और मानवीय गरिमा को बढ़ावा देने पर भारत का रुख स्पष्ट किया। भारत और मंगोलिया के बीच सीधी विमान सेवा शुरू हो गई है। नई दिल्ली और उलानबटार के बीच नियमित उड़ान शुरू होने से दोनों राजधानियों के बीच यात्रा का समय करीब 5 घंटे रह जाएगा। मंगोलिया की हुनू एयर द्वारा संचालित ये सेवा हर सोमवार को उपलब्ध होगी। सीधी विमान सेवा से पर्यटन, चिकित्सा और व्यापार सहित कई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच आवागमन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 5 अक्टूबर तक अमरीका की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे कल से शुरू होने वाली 2 दिन की G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। बैठक से इतर श्री गोयल अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इनमें किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। श्री गोयल अमरीका के वाणिज्य मंत्री के साथ भी द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसमें भारत अमरीका द्विपक्षीय व्यापार समझौते को संतुलित और दोनों देशों के लिए लाभकारी बनाने तथा अंतरिम समझौते को अंतिम रूप देने के प्रयासों पर चर्चा होगी। इस यात्रा से भारत और अमरीका के बीच व्यापार और निवेश संबंध और मजबूत होंगे तथा G20 साझेदारों के साथ भारत का जुड़ाव और प्रगाढ़ होगा। भारतीय नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर सम्मेलन आज से नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 3 दिन के इस सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों और स्थानों के संचालक तथा क्षेत्रीय कमांडर भाग लेंगे। सम्मेलन में सैन्य रणनीतिक स्तर पर नौसेना की अभियानगत तैयारियों की व्यापक समीक्षा की जाएगी। जापान एशियाई खेलों में भारत ने कल भी पदक जीतने का सिलसिला जारी रखा। निशानेबाजी, क्रिकेट, कुराश, एथलेटिक्स और मुक्केबाजी में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। पुरुष क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। अब तक भारत कुल मिलाकर 45 पदक जीत चुका है, जिनमें 4 स्वर्ण, 20 रजत और 21 कांस्य पदक शामिल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। Union Home Minister Amit Shah yesterday inaugurated the Conference on Prahar's National City Policy and Strategy in New Delhi. The conference deliberated upon the seven pillars of Prahar, including prevention, response, aggregating internal capacities, human rights, attenuating conditions for terrorism, aligning international efforts, and recovery and resilience through a whole-of-society approach. Speaking on the occasion, the Home Minister said the government has adopted a zero-tolerance policy against all forms and manifestations of terrorism. He highlighted that from 2019 to 2026, the Narendra Modi government successfully brought back 288 fugitive criminals to India from 36 countries. Mr. Shah said,

जिंदगी चलने का नाम है और ऐसे ही मजे से चलती रहेगी। अरुणिमा शो में मैं पंकज हूँ आपके साथ सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। और लाइफ में पीछे मुड़कर देखो ना तो लगता है कि जो हुआ शायद अच्छे के लिए हुआ और आगे भी अच्छा ही होगा, बस हम अपने कर्म अच्छे और सुंदर बनाए रखें। दो गानों के बाद आपसे मैं फिर मिलता हूँ और इससे हल्की ठंडी 29 सितंबर की छोटी वाली सुबह की आपको गुड मॉर्निंग। और अभी किशोरदा की आवाज में दोस्त मूवी का ये गाना है, 1974 में रिलीज हुई इस मूवी का गाना, वन ऑफ माई फेवरेट गाना है ये और बहुत अच्छा गाना है। इसको आप एक्चुअली में फील करेंगे तो आपको सच में बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ, फिल्म भी बहुत अच्छी है, मौका मिले तो जरूर देखना।

सुबह के 4:28 पर लता जी की आवाज में अगर ये वाला गाना सुनने को मिल जाए तो फिर दिन की शुरुआत अच्छी होनी ही है। लता जी की आवाज थी रजनीगंधा मूवी के नाम, सलील चौधरी का म्यूजिक। हम कई बार है ना किसी सिचुएशन में जो है बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, जबकि ये आपने भी फील किया होगा कि घबराने से जो है काम और ज्यादा बिगड़ता है। शांत रहकर परिस्थितियों पर काबू पाया जा सकता है। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर मैं हूँ पंकज, आपके साथ। शो का नाम है अरुणिमा। देखिए, स्थाई जो है दुनिया में कुछ भी नहीं है, जो होना है ना वो निश्चित होगा और हो रहा है। हमारा किया हुआ कर्म भी तो कई बार हमें सफलता नहीं देता। अब जरूरी थोड़ी कि आप घर से बाहर निकले एक काम को पूरा करने के लिए और वो काम पूरा हो जाए, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि कई चीज़ें अपना टाइम लेती ही हैं। बस हमें इतना करना है कि हम अपना बेस्ट दें और आगे बढ़ें, यही हमारा कर्तव्य है।

कई लोगों ने इस गाने का जो है रिमिक्स वर्जन निकाले, मतलब अपनी आवाज़ में भी गाए, और वो गाने तो अच्छे थे लेकिन जो ओरिजिनल की बात होती है वो तो होता ही ओरिजिनल है। और सच में बहुत अच्छा गाना है। मैंने तो ये मूवी देखी है, माला सिन्हा जी हैं इस मूवी में। अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखना, बहुत अच्छी है। कहते हैं कि रोज़ प्रार्थना करनी चाहिए और न जाने कब कौन सी प्रार्थना जो है वो सुन ली जाए, लेकिन हमारी मांग और नीयत वो दोनों साफ और पवित्र हों। मैं हूँ पंकज आपके साथ, आप सुन रहे हैं अरुणिमा सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली FM गोल्ड चैनल पर। और इसलिए हम किसी का बुरा ना सोचें, ना करें, क्योंकि हमारी कोशिश इतनी रहनी चाहिए कि हम सबका भला करें, हित करें और आशीर्वाद से ना अपनी झोलियां भरें, क्योंकि जिंदगी में जहां कुछ काम नहीं आता वहां दुआएं जरूर काम आती हैं। अभी के लिए आंचल फिल्म से ये गाना।

लता जी की मेलोडियस आवाज़ में, अगर आपको अभी भी ऊँघने में ऐसा लग रहा है, मतलब अभी मैं नहीं उठ रहा हूँ, तो लता जी की आवाज़ आप ये सुनेंगे ये वाला गाना, तो आपको सच में मन करेगा कि चलो आप उठ जाते हैं और दिन की शुरुआत करते हैं। सच में बहुत अच्छा गाना है।

मिल गया। कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिसमें हमारा मन जो है बिल्कुल वैराग्य से भर जाता है, सब कुछ फिजूल सा लगता है, लेकिन पता है इस संसार की माया जो है इंसान को हर बार नाच नचाती है। डिटैचमेंट भी बहुत ज़रूरी है और हद से ज़्यादा मोह जो है वो बहुत नुकसानदायी होता है। और हमें अपनी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो इस समय किसी के प्यार में हैं या बहुत ज़्यादा उससे अटैचमेंट है, इवन हमने भी उस चीज़ को फेस किया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बस ये संसार की चीज़ों का हम मज़ा लें और याद रखें कि पानी नाव के नीचे हो तो अच्छा, लेकिन पानी अगर नाव के अंदर आ जाए तो मुश्किल। खैर, अगले घंटे अगले शो भोर सुहानी शो में मैं पंकज आपसे दोबारा मिलूंगा 5:10। पर अभी अरुणिमा में बाकी के गाने सुनिए और फिर 5 बजे से बारी बारी से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार होंगे। और अभी के लिए संबंध मूवी का मुकेश जी की आवाज में ये गाना।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय आतंकरोधी नीति और रणनीति प्रहार सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में प्रहार के 7 स्तंभों पर चर्चा हुई। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने सभी तरह के आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से 2026 के बीच सरकार 36 देशों से 288 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाई है। श्री शाह ने नया प्रत्यर्पण पोर्टल भी शुरू किया। ये विदेशों में मौजूद भगोड़ों को भारत वापस लाने के प्रयासों में समन्वय और तेजी लाने में सहायता करेगा। नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 3 दिन के इस सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों और स्थानों के संचालक तथा क्षेत्रीय कमांडर भाग लेंगे। सम्मेलन में सैन्य और रणनीतिक स्तर पर नौसेना की अभियानगत तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष के बीच भारत के ऊर्जा हितों की सुरक्षा, समुद्री हितों की रक्षा में नौसेना की भूमिका को रेखांकित करने की दृष्टि से ये सम्मेलन महत्वपूर्ण होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 5 अक्टूबर तक अमरीका की यात्रा पर रहेंगे। वे कल से शुरू होने वाली 2 दिन की G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। श्री गोयल अन्य सदस्य देशों के व्यापार और उद्योग मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इन बैठकों में किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। श्री गोयल अमरीका के वाणिज्य मंत्री के साथ भी द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसमें भारत अमरीका द्विपक्षीय व्यापार समझौते को संतुलित और दोनों देशों के लिए लाभकारी बनाने तथा अंतरिम समझौते को अंतिम रूप देने के प्रयासों पर चर्चा होगी। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत जिन मतदाताओं को त्रुटियों के संबंध में नोटिस जारी किए गए हैं, बूथ स्तर के अधिकारी उनके घरों से दस्तावेज एकत्र करेंगे। इसका उद्देश्य मतदाताओं के लिए सुनवाई प्रक्रिया को सुगम बनाना है। इस बीच SIR के अंतर्गत आज से दिल्ली के कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। शिविर बुधवार तक चलेंगे। दिल्ली सरकार ने 1 नवंबर से अगले वर्ष 31 जनवरी तक धूल उत्पन्न करने वाली गतिविधियों और बाहरी निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। ये फैसला केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के बीच हुई बैठक में लिया गया। कार्ययोजना के अंतर्गत दिल्ली के 500 पेट्रोल पंपों पर PUC प्रमाण पत्र नहीं तो ईंधन नहीं व्यवस्था लागू की जाएगी। प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर रोक, अधिक पार्किंग शुल्क, कार्यालयों के समय में बदलाव और वर्क फ्रॉम होम जैसी व्यवस्थाएं भी लागू की जाएंगी। भारत ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान नस्लवाद, विदेशियों के प्रति नफरत और इससे जुड़ी असहिष्णुता से लड़ने के अपने संकल्प को दोहराया है। डर्बन घोषणा और कार्ययोजना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने वैश्विक समानता और मानवीय गरिमा को बढ़ावा देने पर भारत का रुख स्पष्ट किया। भारत और मंगोलिया के बीच सीधी विमान सेवा शुरू हो गई है। नई दिल्ली और उलानबतोर के बीच नियमित उड़ान शुरू होने से दोनों राजधानियों के बीच यात्रा का समय करीब 5 घंटे रह जाएगा। मंगोलिया की हुनू एयर द्वारा संचालित ये सेवा हर सोमवार को उपलब्ध होगी। सीधी विमान सेवा से पर्यटन, चिकित्सा और व्यापार सहित कई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच आवागमन को बढ़ावा मिलेगा। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिणांतरिक कर्नाटक तथा तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिक्काल में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज मध्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिक्काल में कुछ स्थानों पर गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। सुबह के 5:10 और 11 सेकंड हुए हैं और अब शुरू होता है कार्यक्रम भोर सुहानी। मैं हूं पंकज आपके साथ। तो इस शो की शुरुआत करते हैं दो गानों के साथ और शुरुआत होती है चांदनी मूवी के इस सॉन्ग से। तो इन दो गानों के बाद मैं आपसे मिलता हूं। आप ऐसे ही गानों का मजा उठाइए। गुड मॉर्निंग।

पाली के लिरिक्स और मैंने प्यार किया फिल्म का ये गाना था एसपी बालसुब्रमण्यम और लता जी की आवाज में। और मौसम जो है वो हल्की ठंड का आ रहा है और अभी भी मौसम सच में बाहर बहुत अच्छा है। मैं स्टूडियो की खिड़की से देख रहा हूँ, सच में अभी तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अभी तो खैर दिन ही नहीं हुआ, रात ही जैसा है, लेकिन ये रात नहीं है, सुबह के 5:23 हो चुके हैं। और मैं पंकज हूँ आपके साथ, शो का नाम है भोर सुहानी, सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर। तो अभी दो गाने के बाद मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ और अभी लता जी की आवाज़ में राम लखन मूवी का ये गाना।